ओम शांति। हमारा ये जीवन सुंदर प्रभु की सौगात है। अपने जीवन की ब्यूटी को देखो, कितना सुंदर ये हमारा जीवन है। क्या हम इसको सुंदर बनाए रखते हैं या हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? क्या हमने बाबा का बनकर जीवन जीने की कला सीख ली है? सुख लेते देते आगे बढ़ें, खुशियां बांटते हुए इस यात्रा को तय करें, बोझ से मुक्त रहकर अपनी मंजिल पर पहुंचें। क्या हम इस पर विचार करते हैं? जबकि स्वयं भगवान हमें साथ देने आ गया है, जबकि उसने स्वयं कह दिया, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे दे दो, जबकि उसने बार बार कह दिया, जो अब तक बीत चुका उसको बिंदी लगा दो, पास्ट को भूल जाओ, वर्तमान का आनंद लो, तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जरा उसकी ओर तो देखो, अपने ब्राइट फ्यूचर को सामने लाओ, अपने देव स्वरूप पर नजर डालो। पास्ट यदि तुम्हारा कड़वाहट से भरा हुआ था तो अब वो दिन पूरे हो गए, अब ईश्वरीय मिलन के दिन आ गए हैं, अतिंद्रिय सुखों के दिन आ गए हैं। कई मनुष्यों में बिना मतलब की आदत होती है पास्ट का चिंतन करते रहना। नो डाउट किसी का जीवन बहुत बुरा बीता हो, किसी ने स्वयं बहुत पाप किए हो, या किसी को बहुत सताया गया हो, किसी ने किसी को बहुत कटु वचन बोले हो, अपमान किया हो, भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, या किसी के जीवन में बहुत अनहोनी घटनाएं हुई हो, अपने प्रियजनों की मृत्यु क्यों किसी ने देखी हो, या कोई बहुत भयानक सीन देखे हो, मृत्यु देखी हो, डेड बॉडीज देखी हो, मुर्दे पड़े हुए देखे हो, आग में जलते हुए लोग देखे हो, या स्वयं इन चीजों से गुजरे हो, तो वो पास्ट सचमुच बहुत भारी होता है और वो मनुष्य के मानस पटल पर इतना ज्यादा छा जाता है कि उसको डिलीट करना बहुतों के वश की बात नहीं होती। परंतु गहराई से चिंतन करें, जो बीत गया सो तो बीत गया, उसको पुनः वापिस आने में अब 5000 वर्ष ही लगेंगे, उससे पहले वो वापिस नहीं आएगा, इसलिए उसको दफना दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो बदबू ही फैलेगी, जीवन बदबू से भर जाएगा, इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करके कि वो भी हमारे कुछ कर्मों का ही परिणाम था, या ज्ञानवश हमने ऐसे कार्य किए, उसको बिंदी लगा दो। जब स्वयं भगवान कह रहा है, बच्चे पास्ट को भूल जाओ, तो हम उसे क्यों याद करें? देखिए, भूलती वही चीज है जिसको हम हल्का लेते हैं। अपने पास्ट को अब हल्का कर दो, उसे सीरियसली ना लो कि मेरे साथ ये क्या हुआ या मैंने ये क्या क्या कर डाला, जो हुआ वो सब खेल था। ये भी सोचकर दुखी ना हो कि वो कल्प के बाद फिर होगा, कल्प कल्प होगा, नहीं, केवल एक बार ही होगा। इसलिए ज्ञान युक्त होकर, ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपने पास्ट को पूरा विस्मृत करो। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां पास्ट को विस्मृत करा देती हैं। जितना जितना हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे, ऑटोमेटिकली पास्ट भूलता जाएगा, हमें लगेगा वो किसी और जन्म के संस्कार थे, वो किसी और जन्म की घटनाएं थी, और स्मृति स्वरूप होने का सीधा सा अर्थ है पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। तो आइए आज सारा दिन हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और उसी के नशे में रहेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अपने को चमकती हुई तेजस्वी आत्मा देखेंगे, संकल्प देंगे, मैं इस देह की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ।
अपने देव स्वरूप को देखेंगे सजा सजाया सिंहासन पर विराजमान डबल ताज बहुत डिवाइन कंचन काया पूज्य स्वरूप मंदिर की देवी या देवता श्री गणेश या श्री विष्णु अपने उस स्वरूप को इमर्ज करेंगे और वर्तमान में श्रेष्ठ ब्राह्मण और मुझे बनना है डिवाइन फरिश्ता पांचों स्वरूपों को याद करते रहेंगे। धुन लगा दें कुछ समय के लिए तो पास्ट पूरी तरह भूल जाएगा। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। एक लड़की सुबह सुबह बहती जल धारा की तरह उत्साह से भरी हुई थी। जब वह अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं व लक्ष्यों के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही थी, इस बारे में वह बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपने समय व क्षमता का सदुपयोग वह किस तरह करना चाहती है। लेकिन अगली सुबह वह बस उन नई नई फिल्मों की बातें कर रही थी जो उसने अभी तक नहीं देखी है। वह उन पेस्ट्रियों के नाम गिना रही थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं खाई थी, और यह कि वह अपनी विंडो शॉपिंग को कितना मिस कर रही है। बात यह नहीं है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यह है कि 24 घंटे में यह बदलाव कैसे आ गया। जिन लोगों के साथ वह उस दिन थी और जिन लोगों के साथ वह अगले दिन थी, उसी से यह सारा अंतर आया था। लोगों की संगत में रहना दोधारी तलवार जैसा होता है। उसमें यह शक्ति भी होती है कि वह आपका विकास कर दे, और यह शक्ति भी होती है कि आपका विनाश कर दे। हम जिन लोगों की संगत से घिरे रहते हैं, उसका इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने वर्तमान व भविष्य को कैसे बनाते हैं। यह सच है कि ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपने परिवेश के बावजूद ऊपर उठे हैं, लेकिन हम यहाँ अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन मस्तिष्क का स्वरूप उनके परिवेश के कारण ही तो बनता है। आपके मन मस्तिष्क का मौजूदा स्वरूप

बीते कल द्वारा ही नहीं रचा गया है, बल्कि वह उन लोगों द्वारा भी तरह तरह से रचा गया है जिनकी संगत में आप कल तक रहते आए हैं, और आपके आने वाले कल का स्वरूप उन लोगों द्वारा रचा जाएगा जिनकी संगत को आप अपना आज सौंप देंगे।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नियमित रूप से गिरजाघर जाने वाले एक सदस्य ने वहां जाना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो पादरी ने उसके घर जाने का सोचा। उस शाम बहुत सर्दी थी। पादरी को वह आदमी दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उस व्यक्ति ने पादरी का स्वागत किया, अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उसके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। पादरी कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद पादरी ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया लेकिन बोला कुछ नहीं। वह व्यक्ति यह सब बस देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। पादरी के आने के समय हुए अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। चलने से पहले पादरी ने वह ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। पादरी चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंगारे वाले उपदेश के लिए। मैं अगले रविवार से दोबारा गिरजाघर आया करूंगा। जो बुद्धिमान लोगों की संगत में रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला हानि ही झेलेगा। कहा जाता है कि गोद लिया गया बालक एक समय के बाद लगभग उस परिवार के सदस्यों के समान ही बन जाता है जिस परिवार ने उसे गोद लिया है। सच है, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम अपनी गति को जितना बढ़ा सकते हैं यदि वह उतनी नहीं बढ़ रही है, और जितने शील शोभा शिष्टता गौरव और गरिमा के साथ हम रह सकते हैं हम उतना नहीं रह रहे हैं, तो हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। चाहे वह कोई संगठन हो जिसमें हम काम करते हैं, चाहे उन लोगों का साथ हो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, या वह परिवार हो जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं। यदि वह हमारा सृजन नहीं कर रहा है तो हमें वहां से किसी ऐसे स्थान पर चले जाना होगा जहां हमारा विकास हो सके। यह एक कठिन कदम है लेकिन जरूरी है। कबाड़ के ढेर में किसी बीज को बर्बाद कर देने की क्या तुक है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

असाधारण लोग वे साधारण लोग होते हैं जो हर साधारण कार्य को असाधारण जोश के साथ करते हैं। महान जीवन का अर्थ है किसी प्रयोजन के साथ स्वयं को एकाकार कर देना, एक ऐसा प्रयोजन जो आपके जीवन से बड़ा हो और जिस पर आप अपनी अंतिम सांस तक अपनी हर सांस को न्योछावर करते रहना चाहते हों। आप इतिहास तब रचते हैं जब आपके पास कोई ऐसा प्रयोजन हो जो आपको हर सुबह थोड़ा जल्दी उठने को और हर रात थोड़ा देर तक जागे रहने को प्रेरित करता हो और इसके बीच के हर पल को जोश की प्रबलता से भरता हो। अपने हर कार्य में अतिरिक्त योगदान दें ताकि आपका जीवन असाधारण हो जाए। आपकी सारी उपलब्धियों में महानतम है अपने जीवन को उपलब्धियों से परिपूर्ण करना और फिर यह कह सकने योग्य होना, मैंने जो भी हासिल किया है उसने मेरे अस्तित्व को मलिन व दूषित नहीं किया है, मैं वैसा ही हूँ जैसा हमेशा से था। जीवन का सबसे बड़ा आनंद है इंसानों के बीच रहते हुए इंसानियत से थोड़ा ऊंचा उठकर जीना, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच इंसानों की तरह चलना। आप अपने हृदय को किसी भी बाहरी चीज से अछूता रहने दें। साइकिल चलाना आ जाने के बाद जो एक बड़ा रोमांच होता है वह है हैंडल से हाथ छोड़कर उसे चलाना। इस तरह से साइकिल चलाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह देखना कि ऐसा करते हुए लोग हमें देख रहे हैं। किशोरावस्था में किसी बस या ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना साहस का एक बढ़िया प्रदर्शन समझा जाता है। दरअसल लोगों में यह ललक उस काम को करने की नहीं होती बल्कि दूसरों की नजर में आने की होती है। जीवन में हर कोई उस अवस्था से गुजरता ही है जिसमें दूसरों की नजर में आने और अपनी एक पहचान बनाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यह वह समय होता है जब कोई भी अच्छाई केवल इसीलिए अच्छाई लगती है क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, और तो और कोई बुराई भी तब इसीलिए अच्छाई लगने लगती है कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही होती है। विडंबना तो तब होती है जब कोई अच्छाई भी बस इसीलिए अच्छाई नहीं रह जाती क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहती है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरों की नजर में आना, यह अहम की खुराक है, लेकिन आखिरकार हमें उस अवस्था से ऊपर उठना चाहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर भाई, क्या पहुँचा दोगे? हैं भाई, कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं भाई, ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? भाई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने स्वभाव के अनुसार अहम को पोषण चाहिए और इसीलिए वह सदा इसका भिखारी बना रहता है। अहम के साथ समस्या यह है कि जब तक आपके अहम का पोषण होता है तो आप श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जब आपके अहम का पोषण नहीं किया जाता तो आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में यह आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। जब अहम आता है तो बाकी सब चला जाता है, और जब अहम चला जाता है तो सब आ जाता है। अपने अहम को संतुष्ट करने के चक्कर में आप कितने मूल्यवान संबंध खो चुके हैं। आपको जब अपने अहम को दूर करके संबंध को बचाना था, तब आपने संबंध को दूर जाने दिया और अहम को बचा लिया। अहम कभी इस योग्य नहीं होता कि उसके लिए इतनी भारी क्षति सही जाए। जब आप अपने अहम की सेवा करने में लगे होते हैं, तब कितने ही सुनहरे अवसर गंवा देते हैं। तब हर पल भारी होता है, हर स्थिति दिमाग की नसें हिला देने वाली होती है, हर बातचीत तनावपूर्ण होती है। अहम से भरा हृदय हमेशा आग पर चल रहा होता है, जल रहा होता है। अहम और सहजता का मिलन कभी नहीं हो पाता। अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा ले जा रहे एक कौवे ने पाया कि कई चिड़ियां उसके पीछे पड़ गई हैं। उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। तब सारी चिड़ियां कौवे को छोड़कर उस टुकड़े के पीछे झपट पड़ी। तब आकाश में अकेले उड़ते कौवे ने कहा, उस मांस के टुकड़े को छोड़कर मैंने आकाश की आजादी पा ली। अपने अहम को छोड़ देने से आपको भरपूर आजादी मिल जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम अपने वेलबींग के बारे में बात करते हैं या अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर देखते हैं तो प्रायः सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अनेक आयामों के बारे में हम समझते आए हैं। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के नीचे की जो परतें हैं वो भी हमें समझ में आ रही हैं। प्रायः जब हम अपनी तबीयत खराब है ये बात कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। जब तक वो शरीर की गड़बड़ी दिखती नहीं है तब तक हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या ऐसा संभव है कि हम स्वास्थ्य को बिगड़ने से पहले पहचान ले? क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है? अगर ये समझ में आ जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि हम स्वस्थ बने रहें? ऐसे ही विषयों पर सही जानकारी हासिल करना आवश्यक है जिससे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकें। रेडियो मधुबन की यही कोशिश है कि हम ऐसी सही जानकारियां आप तक लेकर आए जिससे हम सभी स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य कहते ही हम आज अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य समझने लगते हैं। जब तक शरीर में कोई गड़बड़ी, किसी प्रकार की व्याधि दिखाई नहीं देती या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, असहजता महसूस नहीं होती, तब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान देते ही नहीं है। आज हम स्वास्थ्य के अनेक परतों के बारे में जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर भी हमारा चिंतन चलता है। तो ऐसे में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को सही तरीके से आप कैसे देखते हैं? क्या स्वास्थ्य के विषय में बेहतर समझ होने से क्या हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं?
1: अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, ये जरूर संभव है। जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि हमको बादल दिख रहे हैं और तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी, तो हम घर से एक छाता पहन के निकले। तो इसी तरीके से यदि हमको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमें क्या चीज नुकसान कर सकती है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप ही क्या एग्जांपल लें भैया, जो अगर हम आबू रोड स्टेशन पे रहते हैं तो हमको गर्मी लगती है और अगर हम सीधे कोई गाड़ी या टैक्सी लेके ऊपर माउंट पे चले जाते हैं तो हमें ठंडक लगने लगती है। तो हम अब नीचे में टी शर्ट में या एक पतला कुर्ता में घूम रहे हैं तो ऊपर जाके हमें एक पतली जैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और अगर आपको सही ज्ञान है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि आप क्या चीज जो आपको फायदा कर सकती है, क्या चीज आपको नुकसान दे सकती है, तो आप अपने आप को ज्यादा बचा लेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, हम सारे लोग जो भी ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, हम एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी तरीके का नशा हमें नहीं करना चाहिए। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो कोई भी अगर हम नशा करते हैं वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति का भी नुकसान करता है। हमें मालूम है वो चीज हमें

0: नुकसान कर रही है, तब भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और हमें किसी एक अच्छे व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति या समाज में कोई अपना बहुत इष्ट मित्र रिश्तेदार की जरूरत है, जो हमें अगर समझा देता है कि ये चीज तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन दोनों को नुकसान कर रही है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। अधिकतर जगहों में ये देखा गया, कोई गुरु अगर है वो बता देता है कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए चीज अच्छी नहीं है, तुम छोड़ दो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। एकदम यही बात है, अगर आपको मालूम है कि आपको ये चीज नुकसान कर सकती है, आप अपने आप को बचा लें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, तो आप मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।
1: ये बात समझ में आती है कि स्वस्थ रहना संभव है अगर हम थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, हमारा भोजन, खान पान इत्यादि चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना सहज है, ये बात समझ में आती है। आज स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम कई बीमारियों को आम समझ लेते हैं, या हम समझते हैं कि ये तो कॉमन चीज है, ये होना तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है डायबिटीज। पिछले दिनों हमने डायबिटीज के विषय पर बहुत गहराई से चिंतन किया और उसको बेहतर तरीके से समझा। और एक दूसरी बीमारी जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आम रीति बोलचाल में सुनने को मिलता है वो है बीपी। लोग कहते हैं कि आप कोई डायबिटीज बीपी की गोली तो नहीं लेते, ये जैसे दोनों साथ साथ की बात की जाती है। और बीपी के बारे में जब हम समझने की प्रयास कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, क्या चीजें हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर को समझकर उसका सही निदान, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उसका सही निदान क्या है, इन चीजों को भी हम समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जब हम हृदय रोग से संबंधित चीजें हो या बीपी से संबंधित चीजें हो तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, वो है डैश डाइट। हमारे कई श्रोता मित्रों के लिए नई चीज होगी, मगर जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं वो इन चीजों को ज्यादा सुनते होंगे। तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये डैश डाइट है क्या, इसके बारे में आप
0: डैश डाइट इसके बारे में बात करें तो ये है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका सीधा साधा ये मतलब है कि हम भोजन में ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर पाए। और अब सबसे अच्छी बात इस डैश डाइट की है कि हमारा मतलब ये अमेरिका में विकसित देशों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है और उन्होंने अब हमारे भारत में भी इसके बारे में लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। डैश डाइट कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम साधारण भाषा में ये समझिए कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हाइपरटेंशन को, अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भोजन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले भी बात की कि बहुत ज्यादा चाय पीने से, बहुत ज्यादा कॉफी पीने से, सिगरेट पीने से और शराब या अल्कोहल पीने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और सबसे पहली बात, जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो कहा जाता है कि ये चाय, कॉफी, सिगरेट और शराब या जिसमें भी निकोटीन होता है, इसको प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। अगर हम बहुत सिंपल परिभाषा में बोले कि जिस चीज को रिसर्च करके अमेरिका और यूरोप के कंट्री के रिसर्चर्स ने, डाइटिशियंस ने, डॉक्टर्स ने ढूंढा, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने बातों में बहुत पहले बता रखा था कि आप सब्जी, फल और अनाज खाइए, पूरा अनाज खाइए, आप घी की मात्रा, मांस मछली एकदम नहीं खाइए, घी को बहुत कम खाइए, तेल को बहुत कम खाइए, आप नमक को एकदम कम कर लीजिए। तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन में हम सबसे पहले जो चीज को कंट्रोल करने या एकदम कम करने की बात करते हैं वो है नमक। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहता है कि आप नमक की जगह थोड़ा मतलब थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए जिससे खटास आ जाए, आप कुछ ऐसे मसालों का हल्का प्रयोग कर लीजिए जिससे आपके स्वाद में उतनी परेशानी ना हो। पर अगर आपको जरूरत है तो आप करीब 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक नमक रोज खा सकते हैं। सोडियम के लिए ये बोला जाता है कि 2.5 ग्राम तक आप नमक दिन में खाइए। आप अपने जो आपका पूरा भोजन है उसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि आपको खूब सारा फल खाना है, खूब सारा सलाद खाना है और आपको होल व्हीट ग्रेन्स जो है उसको खाना है। अगर यंग जनरेशन के लिए मैं बात करूं, जिन आजकल तो बहुत छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो चीज को उनको छोड़ देना चाहिए, वो है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। ये श्रोता मित्रों को जान के अचंभा होगा कि इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कैफीन और शुगर और इवन सॉल्ट का भी कंपोनेंट होता है। तो कृपा करके अगर हम फ्रोजन फूड को, कोल्ड ड्रिंक को, आइसक्रीम को, इसको अगर हम छोड़ दें तो हम अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा पाएंगे। हमें खाना क्या है, हमें खाना है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलेड, घर में बना हुआ भोजन, उसमें तेल और नमक की मात्रा हमें कम रखनी है। हमको जहां तक हो सके थोड़ा सा नमक को नींबू से चेंज करना है कि जिससे हमें खट्टापन थोड़ा सा मिल जाए जो हमारा काम कर पाए। बस ये एकदम सरल भाषा में डैश डाइट का मतलब है।
1: अब ये बात समझ में आती है कि हम नमक की मात्रा को लेकर सजग हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम तो ये बात समझना आवश्यक है कि नमक को हम इतना हानिकारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, अक्सर ये चीज कहा जाता है अनेक जगहों पर, ये कहावते हैं कि नमक से स्वादिष्ट कुछ नहीं, अगर एक चिटकी नमक डालो तो स्वाद बिल्कुल ही बदल जाता है, स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, इत्यादि लोग कहते हैं। और खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, या कहीं पार्टीज वगैरह पे जाते हैं, या कहां पर भी जब हम डाइनिंग टेबल पे नमक की शीशी रखी हुई देखते हैं और लोग सोचते हैं ये तो अच्छी चीज है, स्वादवर्धक चीज है, इसको हम ऊपर से छिड़क लें। कई बार लोग सलाद के ऊपर नमक छिड़क लेते हैं, या किसी चीज में जैसे दही खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल लेते हैं। तो ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस सी नजर आती है कि नमक तो अच्छी ही चीज, इसमें खराबी क्या है?
0: भैया नमक में सोडियम है, नमक को अगर हम केमिकली ब्रेक करें तो वो सोडियम क्लोराइड है, और हमारे हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हमारे हृदय को सिकुड़ने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास ज्यादा सोडियम होता है तो हमारा हृदय तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए नमक का एक कंपोनेंट है सोडियम, उसको रोकने की बात की जाती है। इसमें जो नमक है उसको NaCl कहते हैं, और NaCl का जो सोडियम है ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, नमक जो है वो शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, तो इसकी वजह से हम जब नमक ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और हमारा खून की का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए वो जो प्रेशर है ब्लड का तो बढ़ जाता है। नमक के लिए इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि एलोपैथी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो थोड़ा सा काम करना कम कर देती हैं, कि अगर हमें नमक जो है वो अगर हम सॉल्ट को खा रहे हैं, तो इसीलिए नमक को रोकने की बात की जाती है कि अगर नमक ज्यादा रहेगा तो वो हमारे शरीर में, बॉडी में पानी को जो है वो रिटेंशन करेगा, उसका हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी रक्त की धमनियां हैं उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए नमक को हम भोजन में कम करने की बात करते हैं।
1: यानी ये जो हम टेबल सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फलों के ऊपर, जैसे अभी वाटरमेलन खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, या फिर ककड़ी या खीरा खाते हैं, तो कई चीजों के ऊपर नमक छिड़कने की आदत जो है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए?
0: भैया प्रकृति ने अपने स्वाद दिया है। हम लोग एक पुरानी बीरबल और अकबर की कहानी भी कहते हैं कि भोजन में सबसे स्वादिष्ट क्या है, तो बोलता है नमक। आपने भी एग्जाम्पल दिया कि एक चुटकी नमक डालते ही खाने का स्वाद जो है वो बदल जाता है। सबसे बेसिक बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति ने अपना स्वाद दिया है, तो भैया वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी या तरबूज, ये बिना नमक डाले भी खाया जा सकता है। और आप खुद देखते हैं कि नमक और नींबू दोनों डाला जाता है। तो जिनको भी अगर ये ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें नमक को रोक लें और आप प्लीज नींबू का प्रयोग करके खीरा और ककड़ी को खा लें। तरबूजे में प्लीज उसको अवॉइड करें। तरबूजा खुद इतना मीठा है, उसमें इतना अच्छा पानी है, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज नमक डाल के उसका स्वाद न डिस्टर्ब करें।
1: एक और चीज जो प्रायः हम देखते हैं कि हम चीजों को स्वादिष्ट बनाने के प्रयासों में ये भूल जाते हैं कि इसका शरीर पर असर क्या होता है, और ऊपर से नमक इन चीजों में ऐसा इस्तेमाल करना, और खासकर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आज आपने डैश डाइट के बारे में बताया, तो ये आखिरी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये डैश डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं, या सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे फॉलो करने की जरूरत है?
0: अगर आप हफ्ते में दो दिन डैश डाइट में कोई भी चमत्कारिक चीज नहीं है, वो एक बेसिक बात ये बोलती है कि फल खाइए, सब्जी खाइए और आपका मन करे, और आप होल व्हीट खाइए, मतलब चोकर समेत आटे की रोटी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, छिलका लगा हुआ चावल खाइए, आप मिलेट्स खाइए, तो एक सिंपल की बात है कि जो हेल्दी फूड है वो डैश डाइट का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया गया है कि नमक कम खाने की बात की गई है। अगर आप डैश डाइट हफ्ते में दो या तीन दिन करते हैं, मतलब आप खूब फल, खूब सब्जी, खूब सलाद, खूब सारा होल व्हीट ग्रेन खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तेल और घी कम खाते हैं, तो आपका वजन भी कम होगा। आप ये हल्का भोजन है और इससे कोई भी कर सकता है कि जो भी कर ले उससे उसको फायदा ही होगा, क्योंकि एक तरह से स्वस्थ भोजन है जिसमें सिर्फ हेल्दी खाने की बात कही है, कम नमक खाने की बात करी गई है और शाकाहारी भोजन करने की बात की गई है।
1: बहुत स्पष्टता से आपने ये बात हमको कही कि हम डैश डाइट के बारे में सिर्फ ये न सोचें कि ये सिर्फ बीपी के मरीजों के लिए है, मगर हम सभी लोग भी इसका पालन कर सकते हैं, और अगर हफ्ते में हम एक आध दिन भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम उठाते हैं, ये बात समझ में आती है। प्रायः ये चीज देखने को मिलती है कि लोग ये सोचते हैं कि घर में कोई एक बीपी का मरीज है तो उनके लिए अलग भोजन हो और बाकी लोग नॉर्मल भोजन करेंगे जिसमें अधिक मात्रा में नमक हो या इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्ट होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक नहीं है, मगर घर में जो एक व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। हम सब अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबको धीरे धीरे इन बदलावों को लाने की जरूरत है, जिससे हम ज्यादा सब्जियां खाएं, चुकर सहित आटे की रोटियां खाएं, नमक की मात्रा को कम करें। इन सभी चीजों को समझकर हम भी एक स्वस्थ समाज की रचना करने में, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ राष्ट्र की रचना में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े, उन्होंने हम सभी श्रोता मित्रों के लिए सुलभ मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य में उपलब्ध कराया। आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने बीपी की इस समस्या के लिए डैश डाइट कैसे कारगर है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने ही भोजन में अगर इन परिवर्तनों को लाते हैं, जैसे डैश डाइट का परिवर्तन उन्होंने बताया, तो उन छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और घर परिवार में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपी के मरीज हैं उनको भी ठीक करने में हम सहयोग दे सकते हैं, उन्हें भी हम बेहतर स्वास्थ्य की ये तोहफे प्रदान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़े हुए और भी विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार और आज फिर आप सबका स्वागत अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। शिव बाबा हमारे परम पिता, ऐसे लगता है कि कितने नजदीक का रिश्ता है। उन्हें पहचान लिया हमने, उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें याद करने का तरीका अभी भी तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आपने कहा शिव बाबा कि आपने हमसे पहचान कराई और इतना अच्छा एक एहसास दिया सिस्टर शिवानी। बहुत से दर्शक इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, यही हमारे परम पिता हो सकते हैं, क्योंकि पिता ऐसा ही हो सकता है, वो परमात्मा ऐसा ही हो सकता है,
1: और कैसा तो हो ही नहीं सकता।
0: लेकिन उन्हें याद कैसे करें? आपने कहा कि मेडिटेट करने का एक तरीका, मेडिटेशन से ही उन्हें याद किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। कैसे किया जाए मेडिटेशन? और उसके अलावा एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तब कई बार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, मेडिटेशन के और भी प्राणायाम है, कुछ और तरीके होते हैं, तो ये मेडिटेशन कुछ खास है, कुछ अलग है?
1: हाँ, पहले तो हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना तो करते ही हैं रोज, तो अब ये नई चीज करने की क्या जरूरत है? यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन? प्रार्थना हम करते हैं, मैं भी बचपन से करते आई थी, तो मुझे सिखाया गया था कि गायत्री मंत्र आपको रोज बोलना है। तो मैंने विधि पूर्वक, मतलब पता नहीं कितने साल, मे बी 20 years और व्हाटएवर, एवरी डे विदाउट फेल। लेकिन इवन टुडे आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, यू नो, तो बिकॉज आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ इट, इट डिडंट हैव माय फीलिंग्स,
0: आई कुडंट रिलेट, यू नो, वी आर नेवर एबल टू रिलेट।
1: वो मैंने जो याद किया हुआ था या जो मुझे याद कराया गया था, उसको मैं विधि पूर्वक एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड रोज सवेरे उठकर बोल देती थी। अब आप इमेजिन करो, एक क्षण के लिए हम 100 लोग ऐसे खड़े हैं एक मंदिर में और सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और अचानक से परमात्मा स्वयं नीचे आ जाए, और हम सबको चॉइस है और चांस है कि हमें जो बात उनसे कहनी है वो हम उनसे कहें, तो हम क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, हम अपनी ही भाषा में बात करना चाहेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ।
1: अपने दिल के भाव होंगे ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100 लोग एक ही बात करेंगे इकट्ठे। और अब क्या हो रहा है कि जो हमने याद की हुई बातें हैं, जो रटी रटाई बातें हैं, रोज हम बिल्कुल एक्यूरेटली उसको वैसे के वैसे बोल देते हैं, तो उसमें हमारे अपने कोई भाव नहीं है। और दूसरी चीज, हमें जो कहना है प्रार्थना में, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हम खड़े होते हैं उस स्वरूप के सामने और हमें जो कहना है वो कहकर फटाफट से चल पड़ते हैं। टाइम तो ज्यादा होता भी नहीं है आजकल, बहुत लेट हो रहा है, तो जो हमें कहना है बहुत जल्दी जल्दी से उसका उच्चारण किया और वहां से चले गए। अब आपको और मेरा रिलेशन है, अगर मैं रोज आऊं और आपके सामने सिर्फ बोलूं और बोलकर चले जाऊं और आपकी बात कभी सुनो ही नहीं, हाउ कैन दैट बी अ रिलेशनशिप?
0: मैं आपकी बात सुन सकती हूँ?
1: हाँ,
0: मैं गॉड की बात सुन पाऊंगी?
1: तो रिलेशनशिप तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन ही होगा ना। वन वे कम्युनिकेशन में तो कभी रिलेशनशिप नहीं होता, वो तो फिर आप दीवार के सामने खड़े होकर बोल के चले जाओ।
0: दैट्स व्हाट इट इज एक्चुअली।
1: तो फिर बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पॉन्स, आपको कोई जवाब तो चाहिए नहीं, आपको बस विधि पूर्वक वो बोलना और चले जाना।
0: प्रार्थना मतलब मैं अपनी बात कह दूंगा और मैं ये मान लूं कि वहां तक बात पहुंच गई है और अब मैं रिजल्ट का इंतजार करूंगा।
1: तो
0: कि
1: वो तो फिर वो मांगने वाली प्रार्थना है कि मेरा या ये काम हो जाए, मेरा वो काम, वो तो एक एप्लीकेशन सेंटर है। रोज एक एप्लीकेशन डल जाती है, जी मेरा ये काम हो जाए, और रोज एप्लीकेशन डलेगी।
0: लेकिन क्या ये रिश्ता बहुत सुंदर, मतलब अगर
1: मेडिटेशन एंड प्रेयर में यही फर्क है। Prayer is a one-way communication. It's not even actually a one-way communication because it's just a rote, you know. और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो याद किया हुआ है उसको बोलने के लिए उसको फील करना जरूरी नहीं होता, तो हम कुछ और सोचते हुए उसको बोल कर भी चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पूरा हो गया, यू नो, चाहे हम कोई पुस्तक पढ़े या कुछ बोल दें। एंड मेडिटेशन इज अ two-way communication. ये दो शक्तियों के बीच आपस की वार्तालाप है, इट इज अ डायलॉग, यू नो, जहां हम बोलेंगे
0: और वहां से
1: संकल्पों के आधार से और वहां से जवाब आएगा, तब उसमें कोई रटी रटाई बात नहीं चलेगी। अगर आप
0: तो
1: और मैं रट के बात करें,
0: उसके तो डायनेमिक्स,
1: इसीलिए हमने उस टाइम कहा कि रिलेशनशिप विद गॉड इज रियल, डायरेक्ट एंड डायनेमिक, It's absolutely real, direct. It's a living relationship. और प्रेयर में आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर जब वो प्रार्थना बनी थी तो किसी ने बहुत सुंदर भावों से उसको बनाया था, उसको लिखा था, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं वो किसी और के भाव थे. अगर मैं मुझे कोई और सेंटेंसेस दे दे और मुझे आपसे वो सेंटेंस बात करनी होगी तो देन इट्स लाइक अ मशीन इन द मिडल.
0: और किसी और की, और इनफैक्ट भाषा भी अगर मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा,
1: तो फिर हम नहीं कर सकते. तो मेडिटेशन और प्रेयर में सबसे बड़ा ये फर्क है. दूसरा आपने क्या कहा था,
0: प्राणायाम भी. एक ये भी बात कही जाती है कि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं.
1: जहां तक हमें समझ में आया है तो प्राणायाम बहुत अच्छा है शरीर के लिए,
0: इस बॉडी तक.
1: यस, इस शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर कि सेहत बनाने के लिए, हमें अपनी बीमारियों से मुक्त करने के लिए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ. और जितनी थोड़ी देर हम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी चीज़ पर हम अगर कंसंट्रेट करेंगे तो मन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. तो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर लें बाहर लें, उस पर जब कंसंट्रेट करते हैं तो माइंड की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और वो हमें रेस्ट देती है. जो चीज इतनी फास्ट चल रही है अगर वो किसी भी कारणवश थोड़ी स्लो हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट देगी. लेकिन एक रिलेशनशिप परमात्मा के साथ बन जाए वो नहीं होगा. स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वो नहीं होगा. इट विल जस्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ थॉट्स. रेस्ट मिलता है तो थोड़ी सी चार्जिंग हो गई है ऐसे लगता है. लेकिन चैनलाइज थॉट्स को एक डिफरेंट डायरेक्शन में करें, थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और फिर परमात्मा से एक रिश्ता जोड़े, ये उसमें नहीं हो पाएगा.
0: और अगर हम देखें कि एक ऐसा भी योग या मेडिटेशन का टेक्निक है कि यू नो थॉट्स को आने ही ना दिया जाए, यू नो नो थॉट वाली right. जो सिचुएशन आ जाए, वो एक्चुअली इज नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल, बिकॉज मैंने कोशिश की थी तो मुझसे नहीं हो पाया था, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट, यू नो.
1: नेचुरल प्रोसेस ऑफ द माइंड इज टू थिंक, यू नो. तो सोचना एक नॉर्मल चीज है. अब अगर उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो और भी ज्यादा फोर्स से बाउंस बैक करेगा. और सप्रेस करके करेंगे क्या, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है,
0: थॉट एक और,
1: ये भी एक थॉट ही है, है ना. तो और फिर उससे क्या होगा कि चलो हमने सपोज अचीव कर लिया कि नो थॉट, बिल्कुल कोई थॉट नहीं है, तो उतनी थोड़ी देर तो रेस्ट होगा, बिकॉज नो थॉट्स, एवरी थॉट इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. तो उतनी देर कोई थॉट नहीं है, लेकिन फिर जब एक्टिविटी में गए कर्म के क्षेत्र में तो नो थॉट के साथ नहीं चल सकते, है ना. तो वो आपको बेनिफिट करेगा 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जितनी भी देर. लेकिन कर्म में गए थॉट्स, फिर क्या होगा, फिर वही नेगेटिव.
0: लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन का पर्पस जो है वो है रिलेशनशिप, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड. तो ये अगर हम नो थॉट में जाते हैं
1: तो वो वही, तो मतलब वो लेवल पे तो रीच करना इम्पॉसिबल है. लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें कि एटलीस्ट थॉट्स में पॉजिटिविटी तो आ जाए, जो हमें रिलैक्सेशन चाहिए, एक एटीट्यूडनल चेंज चाहिए, वो तो आ जाए, तो वो भी नहीं आएगा. हमें बेनिफिट मिलेगा सिर्फ उतनी देर, क्योंकि उतनी देर मन को यूज नहीं किया, उसको शांत रखा. अगर कर पाते हैं तो तब वो इम्पोर्टेंट है. और दूसरा जो कहते हैं मंत्र जाप करना, चैंटिंग, विच इज वेरी गुड. सी ईच ऑफ दीज मेथड इज वेरी गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत आराम देते हैं, वो शक्ति निर्माण करते हैं. अब मंत्र जाप करना, कि हम कोई एक शब्द का उच्चारण बार बार बार बार करते हैं. अब जिसने भी किया हो उसने ये अनुभव किया होगा कि शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, कि आप जितनी देर उसका उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसके साथ लगे हुए हैं. लेकिन थोड़ी देर के बाद, कई दिनों के बाद क्या होगा, अब आपको इंटेलेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है उसका उच्चारण करने के लिए, तो मुख से उच्चारण होता जाएगा, मन यहाँ वहाँ कहीं भटकता रहेगा. वो तो ऐसे ही हो गया जैसे रोज एक ही सब्जी खाने शुरू कर दें. तो थोड़े दिन तो खा सकेंगे, 3 दिन 4 दिन, लेकिन उसके बाद कहेंगे आपको यही सब्जी बनानी आती है सिर्फ, तो हम रास्ते में आते आते कहीं और से खाना खाकर आ जाएंगे कि उनके घर वही सब्जी मिलेगी. तो द माइंड ऑल्सो विल नॉट टेक द सेम थिंग एवरी डे.
0: नो, बट हाउ विल इट, अगेन आई जस्ट वांट टू आस्क, हाउ चैंटिंग मेक्स अस reach near God, you know, makes us...
1: Chanting makes the mind again energized, because jitni der aap... See, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन को एक रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए तरह लिया जाता है कि मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन. जहाँ कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं है वहाँ रिलैक्सेशन है. तो जब आप चैंटिंग कर रहे हैं शुरू शुरू में एक्यूरेटली, तो आप एक ही थॉट ले रहे हैं, वो वर्ड भी एक बहुत पॉजिटिव हाई एनर्जी वर्ड होता है. जैसे कई लोग ओम कर रहे हैं, तो ओम इज अ वेरी हाई एनर्जी वर्ड. लेकिन उतनी देर आपको कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए, लेकिन जब बहुत समय
0: तो ग्रेजुअली आने लगते हैं,
1: है ना? Yes. तब हम ओम ओम ओम बोल रहे हैं और मन सोच रहा है आज क्या करना है, ऑफिस में क्या जाना है. तो उसके बाद तो वो वाली भी जो प्राप्ति थी कि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए, तो वो भी खत्म हो जाती है. तो इसलिए ये सारे विधि बहुत यूजफुल है, लेकिन मेडिटेशन हमें थोड़ा सा इससे भी ऊपर लेकर जाता है, जहां हम अपने माइंड की क्रिएटिविटी जो है वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने में यूज करते हैं. हर एक के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है उसमें अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, अपनी अपनी एक एसेंस होती है. इसी तरह परमात्मा के साथ संबंध, वो जब एक क्रिएटिव रिलेशनशिप बनेगा तो फिर याद करना बोरिंग नहीं लगेगा.
0: अच्छा, एंड अगेन इट विल बी वेरी यूनिक. योर्स इज अ यूनिक रिलेशनशिप विद हिम, आई विल हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप. एब्सोल्युटली, वी आर नॉट गोना हैव अ सेम काइंड ऑफ.
1: दैट्स व्हाई वी सेड कि हम दोनों खड़े होकर एक ही बात नहीं कर सकते.
0: हाँ.
1: आपको जो बातें करनी है वो डिफरेंट होंगी और मुझे जो बात करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट. ये कैसे हो सकता है कि सारे लोग खड़े होकर परमात्मा से एक ही बात कर रहे हैं? जैसे एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा गाय चराने के लिए लेकर गया पहाड़ी पर, गऊपाल जो होता है ना, काउहर्ड. अब उसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया, अब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया. तो उसने देखा ये सारी गाय घास चर रही है, तो उसको ऐसे ही एक थॉट आया, कहता है भगवान भी ऐसे ही हमें नीचे छोड़ देता है, खुद ऊपर बैठ जाता जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इस पेड़ के नीचे. उसके पास भी कुछ नहीं होगा करने के लिए इस टाइम, क्योंकि हम सब तो नीचे अपने अपने घास चर रहे हैं, है ना. तो वो भगवान को कहता है मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होगे, क्यों ना आप आ जाओ, हम दोनों बातें करते हैं, यू नो. एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक दिस, मन ही मन जो उसे बात करनी है वो करने लगता. उतनी देर में एक पंडित जी वहां से गुजरते हैं, देखते हैं वो कुछ कुछ कुछ ऐसे बोल रहा है. तो कहते हैं बच्चे तू किससे बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं. तो कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ. अच्छा, भगवान से क्या बात कर रहा है? कहा बस यही, मैंने कहा आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, आ जाओ थोड़ी सी बातें करते हैं. तो पंडित जी बहुत गुस्सा करते हैं, भगवान का डिसरिगार्ड, तुम्हें ये भी नहीं पता परमात्मा से कैसे बात की जाती है. तो पंडित जी उसे एक श्लोक सिखा देते हैं, बहुत मुश्किल से वो बच्चा सीखता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था. कहते अब ये ही परमात्मा को बोलना है सिर्फ, ये होता है भगवान को याद करना. तो बच्चा सीख लेता है, उसके बाद वो ही श्लोक बोलता रहता है, कहानी है. एंड पंडित जी घर पहुंचते हैं बहुत खुश, रात को भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं, कहते हैं आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने एक बच्चे को आपको याद करना सिखा दिया. तो जैसे कि एक आवाज वहां पर आती है, ये तूने क्या किया आज? वो बच्चा रोज इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता था मेरे से, तूने उसको एक सेंटेंस पकड़ा दिया. अब वो रोज वो ही बोलेगा, ना उसमें उसकी कोई भावना होगी, ना उसकी मिठास होगी, बस वो मैकेनिकली वो बोलता जाएगा. सो इट जस्ट लूजेस इट्स ब्यूटी एंड इट जस्ट बिकम्स अ मैकेनिकल प्रोसेस. After that, there's no feeling in that.
0: बिल्कुल, God also wants us to be, you know, wants to interact with us in our natural form.
1: Because a parent,
0: हम जैसे हैं, हाँ.
1: It's like रोज अपने मम्मी पापा के सामने खड़े हो जाओ और रोज एक पेज पढ़कर आ जाओ. अब वो कौन सा रिलेशन होगा? और उनको कुछ बोलने मत दो, है ना? और रोज वही वाला पेज पढ़ो. Different भी नहीं, variety भी नहीं उसमें, या एक पेज भी नहीं, एक word ही बोल दो सिर्फ. तो अब वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आप आओगे. जैसे हम आते हैं काम से घर, तो पेरेंट्स वेट करते हैं ना, आएंगे सारा हालचाल सुनाएंगे, बातें करेंगे. हम जाएं एक वर्ड लें और आधा घंटा वो एक वर्ड ही बोले, और उनकी तो कोई सुने ही नहीं कि उन्होंने सारा दिन आज कैसा बिताया. कौन सा रिलेशनशिप है? कौन सा रिलेशनशिप है?
0: ब्यूटीफुल. वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप,
1: दैट रिलेशनशिप एंड दैट एट एवरी स्टेप. What am I doing? What are you doing? Okay, come. I'm about to begin my work. Everything. At every step. With feeling. And that's why I said living relationship. Not a mechanical process out of fear. Out of necessity. Out of compulsion. A relationship which is important to me, which I treasure, And that's why I live it.
0: And to create that relationship, we don't have to go anywhere.
1: Nowhere.
0: वो रिश्ता बनाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना.
1: बाकी सब रिश्ते बनाने में कितना effort है.
0: हाँ.
1: कितना effort है, right? कोई भी रिश्ते में आज effort तो करना ही पड़ता है ना. हर संबंध में effort है. ये संबंध तो कितना effortless है. And that too a relationship with the perfect being.
0: You know, the soulmate. Yeah, the actually, soulmate. Everything, so, unconditional
1: absolutely.
0: love, which I've been looking for.
1: Absolutely.
0: Actually, I'm dying. You know, for that.
1: तो वो उससे मिल जाता है. तो अब हमें ये चेक करना है कि हम परमात्मा को अब कैसे याद करें. क्या हम अभी तक इसी तरह से याद करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है. सी अगेन, नो रॉन्ग एनीथिंग अबाउट इट, बट दिस इज अ पर्सनल रिलेशनशिप. तो वो अगर यू नो व्यक्तिगत संबंध, एक बहुत निकट का संबंध आप जोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो याद पर्सनलाइज्ड होगी. वो रटी रटाई मैकेनिकल वो नहीं होगी. किसी को भी हम याद करते हैं ना, तो याद के चार आधार होते हैं. एक होता है यू नो परिचय के आधार पे याद. सपोज कल आपके घर में फंक्शन है, तो आप एक लिस्ट बनाएंगे आज कि कल किस किस को बुलाना है. तो सारे जो आपके परिचित लोग हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएंगे. थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस याद में, उसको भी नहीं भूलना, उसको भी नहीं भूलना. तो लिस्ट बनाते हैं कोई भूल ना जाए. तो ये है परिचय के आधार पर याद, लेकिन थोड़ी मेहनत वाली याद होती है. दूसरी प्रकार की याद है जहाँ प्राप्ति होनी है,
0: कुछ लेना है,
1: हमें उनसे कुछ मिलना है. जैसे कोई बिजनेस डील होने वाली है, आपको पता चला कोई बिजनेसमैन आ रहा है, लेकिन वो सारी रात में कभी भी पहुंच सकता है. आप जागते रहेंगे, कब आएगा, मुझे उसके साथ डील साइन करनी है. क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ मिलने वाला है. सपोज वो सवेरे 3 बजे आ गया, आप उस टाइम रेडी हैं, आप मिलते हैं, साइन करते हैं. सारी रात आप याद करते हैं जब तक वो चीज आपको मिलती नहीं, लेकिन मिलने के बाद भूल गया कि खत्म
0: हो गई ना.
1: हो गई. हाँ. प्राप्ति करनी थी, प्राप्ति करने तक याद थी, उसके बाद फिनिश्ड हो गया. दूसरा है संबंध के आधार से याद,
0: रिश्ते
1: कि मेरा कोई रिलेशनशिप है. जैसे एक लड़की है, उसको उसके लिए शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो वो याद करती है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा. तो इट इज मोर एन इमेजिनेशन कि वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, पतला भी, मोटा भी, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, पता नहीं. फिर एक दिन उसका रिश्ता जुड़ जाता है, तो संबंध जुड़ गया. अब संबंध जुड़ते ही जो याद होगी, वेरी क्लियर,
0: व्यक्ति व्यक्ति के
1: नाउ शी नोज एग्जैक्टली होम शी इज गोइंग टू रिमेम्बर, क्योंकि उसको पूरा क्लैरिटी है और उसके साथ उसका संबंध जुट गया है. अभी सिर्फ संबंध जुटा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो संबंध और भी घनिष्ठ होता जाएगा, तो वो याद भी और भी गहरी होती जाएगी,
0: पहचान बढ़ती जाएगी.
1: पहचान वही, तो वो संबंध के आधार पे पहचान एक है. तो पहचान हम बहुत लोगों को पहचानते हैं, लेकिन रिलेशन हर एक के साथ नहीं जुड़ता. एंड चौथी प्रकार की याद है स्नेह के आधार पर याद, जहाँ प्यार है तो वो वाली याद है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ और बच्चा, बच्चा बहुत दूर है, किसी दूसरी कंट्री में है, लेकिन माँ को उसकी याद कॉन्स्टेंटली आएगी, याद करना नहीं पड़ता. अगर बच्चा फोन करे और उसको आवाज से थोड़ा लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहेगा ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ठीक नहीं है. और फिर खाना खाएगी तो उसके बारे में सोचेगी, सोएगी तो उसके बारे में सोचेगी कि वो कैसा होगा इसका. तो जहाँ स्नेह है वहाँ याद सताती है. हम याद करना नहीं चाहते लेकिन भूल ही नहीं पाते हैं. मतलब कॉन्स्टेंटली, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटली ही इज ऑन माई माइंड, यू नो, मेरे को उनके अलावा
0: कुछ और,
1: नहीं और कोई याद नहीं आता. परिचय वाली याद मेहनत वाली है. प्राप्ति वाली याद, जब तक प्राप्ति हुई तब तक. संबंध के आधार पर याद, और फिर स्नेह वाली याद. परमात्मा के साथ कौन सी वाली याद है?
0: स्नेह
1: होनी चाहिए, स्नेह वाली, राइट? अभी तक क्या हो रहा था, मेहनत करनी पड़ती थी याद करने में, क्योंकि परिचय भी पूरा नहीं था. गॉड है, कोई तो है, शक्ति है, क्या है, कौन है, पता नहीं, कोई ऊपर.
0: हम अगर अपनी पूरी जिंदगी में देखें तो हर 3 मिनट बाद या हर 4 मिनट बाद हम ओ गॉड कर रहे
1: हैं. दैट्स बिकॉज़ क्यों हम ओ गॉड करते हैं? सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में वो रिमेम्बरेंस है कि जब मैं तकलीफ में थी तब वो ही आया था मुझे बचाने के लिए. और जिसने अगर एक बार हमें बचा लिया तो वो तो चला गया.
0: रियलाइजेशन भी रहा है शायद, है कि वही बचाएगा.
1: हाँ, क्योंकि वो उसने एक बार बचाया था उसने एक बार बचाया था, उसके साथ मैंने वो परफेक्ट रिलेशनशिप अनुभव किया था, उसने मुझे दुख से छुड़ाकर सुख दिया था, इसलिए मैं जब भी अब दुखी होती हूँ. ओ गॉड वेयर आर यू, यू नो लॉट ऑफ पीपल से दिस, ओ गॉड वेयर आर यू, यू नो एज इफ लाइक दे वुडंट इवन रियलाइज व्हाट दे आर सेइंग, इट्स बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो ओ गॉड वेयर आर यू. तो ये एक है कि परिचय के बिना ही हम याद करने की कोशिश. दूसरा था प्राप्ति वाली याद, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो,
0: मैं ये चढ़ाऊंगा,
1: हाँ, मैं वो चढ़ाऊंगा, मतलब परमात्मा के साथ भी डीलिंग. मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं या बड़ा वाला काम है तो 500 रुपए का, मतलब कितना नीचा हम उसको भी ले आते हैं कि जैसे वो भी हमारे यू नो पेड़े के लिए या वो हमारे 100 रुपए, मतलब भावना है, भावना सही है लेकिन याद डीलिंग के लिए नहीं है. वो हमारा वैसे भी सब कुछ कर देगा क्योंकि वो हमारा पिता है. हमें मांगने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स से कभी बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है. बच्चे की जरूरत आने से पहले ही माता पिता उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं. तीसरा संबंध, जैसे जैसे अब संबंध जुड़ता जाएगा तब हमारी याद में वो क्लैरिटी आने शुरू हो जाएगी. और जब वो संबंध इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि वो स्नेह से भर जाएगा तो फिर उसको याद करना नहीं पड़ेगा,
0: रहेगा,
1: फिर आप उसको भूल ही नहीं सकते हो. वो हर क्षण हर कर्म पे शिव बाबा आपके साथ है. और वो उसका स्वरूप हमने जाकर आगे ले लिया कि परमात्मा हर जगह है. परमात्मा हर जगह नहीं है लेकिन मेरे हर कर्म में, हर क्षण में, हर संकल्प में उसकी याद मेरे साथ,
0: मेरी सांस के हर माला की हर बीड में जो कहा,
1: मतलब श्वासोश्वास उसकी याद है, कि मतलब निरंतर याद है. तो जिसकी स्थिति में वो निरंतर याद परमात्मा की होगी वो आत्मा की क्वालिटी कैसे हो जाएगी, यू नो. तो मेडिटेशन मतलब ये याद करना. तो मेडिटेशन लाइक वी सेड द अदर डे, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिरी, टू हील, कि जो घाव हो गए हैं उसको हील करना है. और वो हील करने वाला वो है, मात पिता कहो, टीचर कहो, डॉक्टर कहो, सर्जन कहो, वो हील करने वाला है. इट इज लाइक वी हैव रिचार्जेबल बैटरीज. अब बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर के जो आयन्स होते हैं वो डिसओरियंट हो जाते हैं. अब जैसे ही पावर सप्लाई आता है, उसको कनेक्ट करता है, जैसे ही वो करंट पास करता है उसके थ्रू, तो वो आयन्स फिर से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. सिमिलरली मैं आत्मा भी एक बैटरी की तरह हूँ जो डिस्चार्ज हो गई है. डिस्चार्ज मतलब वो प्योरिटी, वो पीस अब मुझे अनुभव नहीं हो रही है जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी थी. जैसे ही वो पावर सप्लाई से कनेक्शन जुड़ता है तो धीरे धीरे वो ओरिएंटेशन फिर से होना शुरू हो जाता है. That is meditation. The battery connects to the power source, doesn't have to do anything after that. Just connect. The power source will do the rest of the work. जैसे ठंड है, आप हीटर के सामने खड़े हो जाओ, आपको थोड़ी कहना है मुझे गर्मी चाहिए. हीटर है, the source of energy is there. You just face towards that. That's all. वो automatically आपके पास आता जाएगा. लेकिन आवश्यकता है कि हम उसकी तरफ घूम ले. अब वो है और हम उसकी तरफ पीट करके उस तरफ चले और फिर कहें मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो तो होने वाला नहीं है. तो दैट वन स्टेप वी हैव टू डू टू ट्यून टू दैट
0: फ्रीक्वेंसी.
1: यू नो जैसे रेडियो ट्रांसमिटर होता है, वो अपनी वेव्स हर तरफ फैला रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको फिर उसकी तरफ की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है. अगर हम ही अपनी फ्रीक्वेंसी दुनियावी चीजों में सिर्फ ट्यून करके रखेंगे, फिजिकल संबंधों में ट्यून करके रखेंगे, भौतिक जो हमें पदार्थ चाहिए उसके साथ ट्यून करेंगे, तो वो वेव्स तो आ रही है लेकिन उसके साथ ट्यूनिंग किया ही नहीं है. जैसे ही कुछ क्षण निकाल के उसकी तरफ ट्यूनिंग किया, इट विल जस्ट फ्लो. एब्सोल्युटली. सो दैट इज मेडिटेशन, लेट कैचिंग द फ्रीक्वेंसी by tuning to that frequency. तो वो थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें हम वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग कर देते हैं उसके साथ, बस देन द वर्क कंटिन्यूज.

0: you one thing. Like, now we're able to understand कि क्यों ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं. सदियों से हम काम कर रहे हैं उस पर, सदियों से हम परमात्मा तक पहुँचने के तरीके ढूंढ रहे हैं. और ऐसा नहीं कि हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी है, हम सिंसियरिटी से अपनी पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है. अब अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं, अब तरीके आपने कहा जैसे कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा अभी भी?
1: फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के बाद कितना वक्त लगता?
0: वी हियर द वॉइस देन एंड देयर, क्लैरिटी.
1: बस उतना ही वक्त लगेगा. फिर इट्स लाइक एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स से गुम गया है. अब वो ढूंढ रहा है उनको, या पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं, इधर वेज. अब ढूंढने में कितना टाइम लगे, दैट कैन नॉट बी सेड, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने उसको ढूंढा. हमने भी परमात्मा को अनेक जन्मों से ढूंढा, जब तब सब कुछ किया, संन्यास किया, मंदिरों में खड़े रहे, एक पांव पर खड़े रहे, पता नहीं क्या क्या किया, ताकि एक क्षण का उसका साक्षात्कार हो जाए. वो नहीं मिला. हम उसको ढूंढ नहीं पाए, वी कैन नॉट फाइंड हिम, क्योंकि हम अपने फिजिकल के अंदर इतना ट्रैप्ड है कि हम उस प्योरिटी के ओशन को नहीं पहचान सकते हैं. इनफैक्ट उसकी वाइब्रेशंस आ रही थी, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ ट्यून नहीं कर पाए. लेकिन जब वो आता है हमें ढूंढने के लिए, हम उसे नहीं ढूंढ पाए, वो आकर हमें ढूंढता है. अब जब कनेक्शन मिल जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, अब उसका प्यार खींचने में कितना टाइम लगेगा?
0: अब तो कुछ नहीं लगना चाहिए.
1: एग्जैक्टली सेम थिंग. अब तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए. समय सिर्फ तब तक था कि मिला नहीं अब तक. लेकिन मिलने के बाद, एक पिता अपने बच्चे से बिछड़ा हुआ था, लेकिन जब मिल गया, अब वो बच्चा कहे कि मुझे अपने पिता का प्यार मिलने में कितने साल लगेंगे. कई लोग बोलते हैं हम मेडिटेशन की उस अवस्था को कितने टाइम में पहुंचेंगे. तो कोई अवस्था नहीं है.
0: It's like the moment I'm tuned, actually.
1: Absolutely. The moment the child recognizes the father, father has recognized the child. But the moment the child recognizes the father, तो वो प्यार,
0: वो रिश्ता जुड़ गया.
1: वो रिश्ता जुड़ गया. अब आप कहे कि कितने सालों के बाद मुझे उसका प्यार मिलेगा? नहीं, वो तो उसी क्षण आपके साथ जुड़ गया. लेकिन अब उसको लेना, उसके साथ वो संबंध जोड़ना. ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन हो और फिर मैं इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाऊं, मैं मुड़कर चले जाऊं,
0: क्योंकि मैं मानने को तैयार ही ना हूं कि आप ही हैं वो पिता जिसे मैं ढूंढ रही थी.
1: तब आज लाखों लोग इतने कुछ दिनों से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, लाखों करोड़ों लोगों ने ये परिचय लिया होगा कि शिव बाबा निराकार, वो परम पिता परमात्मा हमारा आ चुका है, वो हमारा पिता है. अब उनमें से कितने लोग वो अगला कदम उठाएंगे सच में उसके साथ वो संबंध जोड़ने में? उनको वो प्यार पाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं. यू नो, बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस, बट दिस इज अगेन अनदर बिलीफ. सो व्हाई शुड आई बिलीव दिस? जहां इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे, वहां ये भी एक और कॉन्सेप्ट है. दैट इज हाउ इट हैपेंड विद मी. आई सेड दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, you know, ke God is, it's an interesting concept, it sounds very logical, but how will I believe that God has come? You know, scientifically, very challenging, ke God has come, bhai isko believe karo, ke Paramatma is srishti par aa chuke hain. To main bahut sare bhai behno se mili, jinke bahut sare anubhav the, which they shared their relationship. And mere man mein sirf ek hi thought aaya, which set me on this journey, and that was, ये सब लोग कह रहे हैं कि इनको परमात्मा मिल गया है, शिव बाबा इनको रोज इतनी पालना देता है और इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है. वो ये सब लोग कह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं. कोई और ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं ना, तो एक महात्मा होता है, दो तीन चार लोग, यहाँ तो लाखों और लाखों ऐसे उसके प्यार में, जैसे पता नहीं क्या उनको मिल गया. तो मैं कहा ये सब कह रहे हैं तो झूठ तो ये हो नहीं सकता, कुछ तो मिला है. अब कैसे पता चले?
0: एक्चुअली यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कहीं ओढ़ा हुआ तो नहीं है.
1: हाँ, तो नाउ आई हैव टू ट्राई ना, आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास दो चॉइस है, या तो इसको बिलीव कर लूँ अभी और ट्राई करूँ, या तो इसको रिजेक्ट कर दूँ कि ये झूठ है, कोई नहीं, भगवान नहीं आ सकता इस तरह से सृष्टि पर. तो मैं कहा रिजेक्ट करूँ अगर और बाद में पता चले कि नहीं सच में आया हुआ था, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान कि भगवान आया, मुझे इंट्रोडक्शन भी दिया और मैंने अपनी लिमिटेड इंटेलेक्ट के कारण उसको पहचानने से स्वीकार नहीं किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया. दूसरा ऑप्शन था कुछ समय के लिए स्वीकार कीजिए. यू नो आई हैड टू डूइंग मैथमेटिकल बैकग्राउंड, आई जस्ट टुक इट अप एज अ हाइपोथेसिस, क्योंकि हमें यही सिखाते थे कि कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए यू अज्यूम, यू नो. तो वो वाला समहाउ इट वर्क्ड, कि इट सेड अज्यूम या सपोज दिस इज इक्वल टू दिस. सो आई सेड ओके, सपोज दिस पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा इज रियली गॉड एंड ही हैज कम, नाउ लेट मी बिगिन माई जर्नी. तो द जर्नी बिगैन एंड आई गेव माई सेल्फ कुछ महीने कि मैं ये 3 या 4 महीने ये एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. आफ्टर दैट आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी एल्स, देन इट हैज टू बी माय एक्सपीरियंस. तो इट स्टार्टेड विद द हाइपोथेसिस कि सपोज सच में वो पिता आ चुका है और वो मुझे ही ढूंढ रहा है. देन आई बिगैन दिस जर्नी, यू नो, सेंटर पर जाना, जो ज्ञान वहां मिल रहा है उसको सुनना, स्टडी करना. मिरेकल जो हमने देखना है लाइफ में, लोग कहते हैं ना भगवान कौन सा मिरेकल करता है, वो मिरेकल आत्मा को अनुभव होने लगता है कि कैसे अपने अंदर परिवर्तन आ जाता है, कैसे उस परमात्मा का प्यार हर क्षण, उसकी मदद, उसकी प्रेजेंस हर क्षण अनुभव होने लग गई. तो इट डिड नॉट टेक मी टू मेनी मंथ्स एक्चुअली, विद इन सम टाइम आई सेड देयरफॉर दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, दिस इज रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ. इट स्टार्टेड विद अ बिलीफ, यू नो, इसीलिए बहुत सारी बिलीफ्स है, लेकिन बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए. तो वी स्टार्ट विद द बिलीफ, उसके साथ एक्सपेरिमेंट इन दिस इनर लेबोरेटरी, ऑल दैट एक्सपेरिमेंट वेंट ऑन, ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में बहुत कुछ मिला. तुमने कहा यस, राइट रिलेशनशिप, दिस इज गॉड,
0: वंडरफुल.
1: एंड नाउ दैट्स बीन लाइक 12 years आई थिंक. सो the journey goes on and the relationship,
0: and you experienced it then and there,
1: not within one day,
0: no, but then like maybe a month,
1: yeah, maybe it, see actually hum usko time frame mein fix nahi kar pate, I wouldn't remember ki wo date kaun si thi, but it just gradually happened because I could just experience so much love. I could just experience him being with me every time, and that's all. And I said, that's it, I found the one. I found the one the world was looking for.
0: It was an aha moment. Hooray.
1: It was not a moment, it was a journey actually. Yeah. You know, a lot of people, for them it's a moment. कि उनको एक मिनट में जैसे निश्चय हो जाता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये परमात्मा है. For me it was not a moment. You know, it's very lucky other people जिनको एक मिनट में ये निश्चय हो जाता है कि हाँ, मुझे एक मिनट में नहीं हुआ. It took me some time, you know, to experiment and then say yes. And then I didn't even know when I said the yes. You know, जैसे इट्स लाइक, यू नो, जैसे कोई लौकिक में कॉलेज में हमें कहते थे, बॉय परस्यूज द गर्ल, यू नो, द गर्ल नेवर कम्स टू नो व्हेन शी फेल इन लव बिकॉज़ द बॉय जस्ट कीप्स परस्यूइंग हर. सेम विद गॉड एंड मी, ही जस्ट केप्ट परस्यूइंग मी एंड आई डोंट नो व्हेन आई फेल इन लव विद हिम. सो इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट.
0: ब्यूटीफुल.
1: एंड देन यू से दिस इज द ट्रूथ, बट इट स्टार्टेड विद अ बिलीफ दैट यस, दिस इज पॉसिबल.
0: तो शुरुआत एक बिलीफ से करनी पड़ेगी, एक एजम्पशन से करनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है. अब खुद एक्सपेरिमेंट उस पर करें, खुद को एक्सपीरियंस उस अनुभव से गुजारने दें, और फिर हम तय करें कि क्या हम वो देयरफॉर थ्योरम इज प्रूव्ड हम भी कह पाते हैं या नहीं. सिस्टर शिवानी, आज पूरा आपने हमें शिव बाबा के बारे में बताया और किस तरह से उनके साथ हम अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं और कितना आसान है, किस तरह से किया जा सकता है, ये अभी हम थोड़ा जानेंगे. लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, दैट्स अमेजिंग. आई थिंक यू आर द लकी गर्ल, राइट?
1: वी आर ऑल वेरी लकी.
0: एनीवे, आई विल ट्राई माय लक. लेकिन हम कोशिश आगे आने वाले में अब कदम उठाने को हम तैयार हैं. कैसे उठाना
1: है? अब हम वो रिश्ता जोड़ने के लिए
0: तैयार हैं. तो आपका हम फिर साथ लेंगे. आप वो रिश्ता जोड़ चुकी हैं, हमारी उंगली पकड़ के आप उस रिश्ते तक हमें लेकर जाएंगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. एक रिश्ता जुड़ता है तो बाकी सब रिश्ते कितने छोटे, कितने गौन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते वहीं रहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता हमारा वो रिश्ता है जिसे हम सदियों से तलाश रहे थे. ये हमारे सोलमेट की पहचान है, सोलमेट के साथ जुड़ा रिश्ता है. शिव बाबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए आप भी तैयार हैं? उंगली पकड़ाने के लिए, उंगली पकड़ के हमें उस रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, लेकिन क्या हम और आप चलना चाहते हैं, मैं ज़रूर चलना चाहती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी चलना चाहेंगे। अगली कड़ी में हम उस रास्ते का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे उस पर चला जाए, कैसे हम शिव बाबा तक पहुँच सकते हैं। कोई और सवाल है, कोई और बात है जो आप जानना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, 8:13 हो गया है और आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम में। और 16 सितंबर 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शिक्षक 1947, 25 गते 31 अश्विन मंगलवार, विक्रम संवाद 2082 अश्विन कृष्ण पक्ष दशमी मंगलवार अदरा आज है। इस्लामी हिजरी 1447, 23 रबीउल अव्वल मंगल अदरा आज है। बलवंत सिंह और इन सभी का जन्मदिन है जिनके बारे में बातें करेंगे। और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस आज है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि विश्व में इस तरह की चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और ओजोन परत को लहर जो है वो साथ में यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे में पूरे विश्व में मनाया जाता है। धरती पर जीवन को पनपाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इतिहास और भूगोल के अध्ययन में ये बिल्कुल साफ है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ इंसान को कड़ी मेहनत और प्रगति से सफल फल स्वरूप मिली है उसे आज खुद इंसान ही मिटाने पर तुला हुआ है। तो आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो,
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार गुडीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया से आप आ जाते हैं, दिल के अंदर उजाला हो जाता है। तो एक मेरा भजन भी सुना देना सर।
0: बिल्कुल, सुनाते हैं। कौन सा भजन सुनना चाहेंगे आप?
1: डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, डमरू बजाना पड़ेगा, साथ में गौरी नंदन गणेश को लाना पड़ेगा। हेलो
0: जी, जी जी
1: आवाज आ रही है?
0: आ रही है।
1: डमरू वाले बाबा डमरू बजाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भजन सुना देना सर।
0: जी जी,
1: साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भाई है, भूलाराम जी है, अनिल भाई है, एक वो है महाराष्ट्र वाले।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: सुभाष भाई को तो मेरे दिल के अंदर ऐसा लगता है बात मिलती है, उनकी बातें उनकी भाषा में बोलते हैं ना, मेरी प्यारी प्यारी मीठी मेरी भाषा लगती है। वो सुनते होंगे, विश्वास करते होंगे ये मेरा ऐसा क्यों बोलते हैं।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग सर जी।
1: ठीक
0: है, आ जाइए फिर नाश्ता वास्ता करके, अपना रेडियो पे लाइव प्रोग्राम करते हैं, मजा आएगा। हाँ, पहले आ जाइए इधर नीचे ही आ जाए नाश्ते के पास, फिर फोन कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ, भोजन भोजन जहाँ किया था ना रात में। हाँ हाँ, ओके ओके। चलिए, गुडीलाल जी ने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया और बहुत ही खूबसूरत बातें, और सभी को याद करते हुए आनंद ही आनंद है। तो डमरू वाले तुमको आना पड़ेगा ये गीत भी सुनना चाहते हैं, तो आइए इस गीत से शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 16 सितंबर आज है और बुधवार का दिन है, तो आशा करूंगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और विश्व की सभी आत्माओं को याद करते हुए सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करते हैं और गणपति बप्पा सबके विघ्न हरे, दुख हरे और सुख दे, ऐसे शुभ आशा के साथ आइए बात करते हैं बलवंत सिंह के बारे में जिनका आज जन्मदिन है। साथियों, जैसे कि आज विश्व ओजोन दिवस भी है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हर साल हम इस दिवस को मनाते भी हैं और बताते भी हैं। तो ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु 0-3 का यौगिक है। ओजोन परत सामान्य धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। गैस सूर्य से निकलने वाली बैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को ओजोन परत हमें बचाती है, मगर जहरीली गैसों से ओजोन परत में एक छेद हो जाता है और अब इस छेद को भरने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो जहरीली गैस हम इंसानों द्वारा एसी और कूलर जैसे उत्पादों से इस्तेमाल होती है, अपना जीवन अधिक से अधिक आरामदायक बनाने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, यही उसका जो है नतीजा है। तो इस चीज़ को हमें मात्र समझने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर तो हम इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें बड़ी मुश्किल में आ गई। तो ऐसे में हमें कुछ और विकल्प ढूंढना होगा कि कैसे हम पराबैंगनी किरणों से नुकसानों से बच सकते हैं। इस पर पूरा जो है संसार के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पर थोड़ा सा जो काबू है वो पाने की कोशिश चल रही है। तो ओजोन परत, ये जो विश्व ओजोन दिवस, इसी दिन को मजबूत करने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए, और जितना हो सके ज़रूरत के अनुसार चीज़ें यूज़ कीजिए और जब ज़रूरत ना हो चीज़ों को बंद रखें, है ना। तो आइए बलवंत सिंह के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और गीत की तरफ ले चलता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गणपति बप्पा की चमक और दमक आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रघुनाथ मंडल। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, ये चमक ये दमक, बड़ा आनंदित होकर आप सुन रहे होंगे। और जिस तरह से इस गीत को प्रेजेंट किया गया है, वैसे भी ये गीत जो है बड़ी भावना युक्त और मन को छू लेने वाला भावनाओं से तैयार था गान। तो चलिए बलवंत सिंह के बारे में बातें करते हैं अभी। और बलवंत सिंह जी जो है जिले कुतपुर गांव, मृत्यु मार्च 1917 को हुआ था, आज़ादी के दीवाने, और 10 वर्ष तक अंग्रेजी की सेना में भी काम किया था। 1905 में सेना से त्यागपत्र दे दिया और धार्मिक क्रियाकल्पों में लग गए। कुछ समय बाद बलवंत सिंह अमेरिका होते हुए कनाडा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भारत की दासता के कारण और जातीय भेदभाव से भारत से गए लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्होंने इसके विरोध में उठाई आवाज़, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसको विश्वास हो गया कि भारत से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त होने पर ही इस भेदभाव का अंत असंभव है। बलवंत सिंह विशेष रूप से पार्टी के संपर्क में आए। कामगटा मारू जहाज से भारत के लोगों को कनाडा के तट पर उतारने का प्रयास करने वालों में भी शामिल थे। भारत आकर उन्होंने पंजाब में लोगों को विदेशी सरकार के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने लिखा कि बलवंत सिंह पंजाब में राजद्रोह फैला रहे। बलवंत सिंह बैंकॉक गए हुए थे और उन पर कनाडा के सिखों के विरुद्ध काम करने वाले हॉकिंस की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया और 1915 में गिरफ्तार हुए और ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए गए। दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर भी मुकदमा चला और मार्च 1917 में लाहौर जेल में उनको फांसी दे दी गई। तो ये थी कुछ खास बातें बलवंत सिन्हा के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और डमरू वाले बाबा का प्यारा गीत आप सुन रहे थे और बड़ा आनंदित होकर आप झूमना नाचना भी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आपके जो पैर है वो थिरक रहे होंगे जब आप इस तरह के खूबसूरत गीत सुनते हैं। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और विशेष MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बातें करते हैं। सुब्बुलक्ष्मी एक व्यक्ति ऐसे रहे जो संगीत के अंदर महारत हासिल कर चुकी थी। कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है इन्हें, और भारत की एक ऐसी महिला गायिका थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन संगीत की रानी बताया गया, और वो स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा था। तो ऐसे महान सुब्बा लक्ष्मी जी की बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। हेलो जी, नमस्कार।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग रमेश।
0: गुड मॉर्निंग सुभाष जी, स्वागत है आपका।
1: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते दोस्त सुरेश भाई जोटाना वाले, सभी गांव वाले सुरेश भाई, भूरी राम भाई, भूरी लाल जी भाई, सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और आपने ओजन के बारे में हमेशा बहुत दिन विशेष की जानकारी देते हैं। स्वतंत्र सैनिक बलवंत भाई जी, उनकी भी जानकारी आपने बहुत ही अच्छी दी। सभी दोस्तों की बातें सुन रहा हूँ, और आप डेली आते ही गणपति बापा मोरिया, तो आखरा दिन ये गणपति उत्सव हम बहुत खुशी से मनाते, तो आपका ये गणपति के लिए जो भावपूर्ण उद्गार आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और सभी को आज के दिन विशेष आने वाले सभी फेस्टिवल की बधाई, शुभ भावना और नमस्कार भाई जी। ओम शांति, ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी बातें आपने बताई, अपने अनुभव को साझा किया हमारे साथ में। 8:41 हो रहा है और आप हो मेरे साथ। तो आइए सुब्बू लक्ष्मी के बारे में बातें करते हैं, जिनकी महिमा जो है लता मंगेशकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ने की है। जी हाँ, इनका विशेष सुब्बू लक्ष्मी का जन्म मंदिरों के शहर मुदेर मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज्य में 16 सितंबर यानी आज ही के दिन 1916 को वीणा वादक लेख अधिकारी के यहाँ उनकी माता का नाम और जन्म स्थान ही अंकित है। यहाँ पर हुआ था। उनका बचपन का नाम कुंजम्मा था। उनकी नानी अक्कमल्ला वायलिन वादक थी और उनका प्रसिद्ध नाम MS था। बचपन में कुंजम्मा अपने छोटे भाई और बहन के साथ संगीत के वातावरण में पली बड़ी। उनका घर मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास में था और सुब्बुलक्ष्मी देवदासी परिवार से बिलोंग करती थी। और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत एकेडमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। और इस तरह से शुरुआत से ही आपका मन संगीत के साथ संबंध हो गया था, और सुनकर आपके चेहरे पर संगीत को देखते ही आपको खुशी होती थी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:50 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। तो चलिए, पहला एल्बम की बात अगर हम लोग करें या म्यूजिक की बात करें, तो जब सुब्बू लक्ष्मी जो है बचपन से ही संगीत के जो आवरण है वातावरण में पली बड़ी, और सुब्बू लक्ष्मी का बहुत दिल था और वो इन चीज़ों को सीखती रही। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत अकेडमी में सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया था। शुरू से ही अपना मन में संगीत के संबंध में भावना थी। संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरों पर परमानंद की झलक दिखाई दे, ऐसा उनको लगता था और उन्होंने वो किया। सुब्बू लक्ष्मी बचपन में ही कर्नाटक संगीत से जुड़ी और उनका पहला एल्बम मजहब 10 साल की उम्र में निकला था। और प्रसिद्ध संगीताचार्य सोमगुड़ी श्रीनिवासन अय्यर ने संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पंडित नारायण राव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और सुब्बू लक्ष्मी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपना गायन प्रदर्शन एक समारोह में किया था और आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास संगीत अकेडमी चली गई, जहां 17 साल की उम्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कन्नड़ा के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती में भी उन्होंने गीत गाए। 1945 में भक्त मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की और मीरा के भजन को अपने सुरों में भिरोया, जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। तो ये है कुछ खास बातें सुब्बू लक्ष्मी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ जी,

0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रूपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रूपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर

0: प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
4: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ 9:22 हो रहे हैं। समाचारों के बाद आप सभी से फिर रूबरू हो रहे हैं। नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। 16 सितंबर 2026 आज का तारीख है। तो आइए साथियों, गणेश उत्सव चल रहा है धूमधाम से। आशा करूँगा आप बिल्कुल उत्साह के साथ अपने कार्य को कर रहे होंगे और गणपति बप्पा को याद करते हुए अपने विघ्नों को ख़त्म कर रहे होंगे। तो आइए, आप सभी की खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज गुजरात और विशेष नाडियर से संदीप जसवाल जी उपस्थित हैं, जो आर्चर हैं और ख़ास खेलो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसमें आपने शिरकत की है, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। संदीप जी नमस्ते।
3: नमस्कार जी,
2: कैसे हैं आप?
3: बस मैं बहुत ठीक हूँ
2: जी। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अच्छा लग रहा है कि आप गुजरात से यहाँ पर आए और अपनी भावना विचार और यहाँ कैंपस पहली बार आप देख रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत। एक कॉलर हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। सुरेश जी शायद फ़ोन कर रहे थे। हेलो जी नमस्कार। हेलो
4: जी सर, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है सुरेश जी। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
4: आपका भी स्वागत है। हमारे मेहमान जी आए हैं
2: जी जी।
3: नहीं,
2: तो जी जी जी,
4: तो हमारे मेहमान जी को भी हमारा नमस्ते है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो शुरुआत नहीं हुई है, हमारे मेहमान जी ने क्या बोला नहीं बोला पता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अच्छे बातें तो हम जरूर सुनेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: मेहमान जी से हमारे सभी लोगों को आपको अच्छे दिन की शुभकामनाएं। तो अच्छे रहे, मस्त रहे और हरदम रेडियो मधुबन सुनते रहे, ऐसी शुभकामना सर।
2: जी जी जी जी।
4: और बुधवार है, गणपति जी का दिन है, तो गणपति जी के तो शोर चार एक शोर हो रही है, तो आपकी पसंद का कोई गाना जरूर सुना देना।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: ठीक है सर, नमस्ते।
2: नमस्ते सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संदीप जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को, क्या करते हैं आप? जी
3: जी, सभी को ओम शांति।
2: ओम शांति जी।
3: खुद का इंट्रोडक्शन देने में तो सही नहीं रहता है। भी आपने कहा तो थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: मेरा नाम संदीप जायसवाल है, मैं एक तीरंदाज जी
2: खिलाड़ी
3: रह चुका हूं और अभी मैं फिलहाल तीरंदाजी का कोच के रूप में मैं सेवा देता हूं कि जो चीज मैंने नहीं हासिल कर पाया खिलाड़ी के तौर पर, वो मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो खिलाड़ी है जिसको मैं कोचिंग दे रहा हूं उसको वो मुकाम तक ले जाऊं। हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है, जिस समय वो लोग खेलते हैं अपने देश को, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबका एक सपना होता है कि वो ओलंपिक, जो कि एक खेलों में सबसे बड़ा जो खेल है ओलंपिक में, सबका एक खिलाड़ी का ड्रीम रहता है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और देश के लिए मेडल जीतूं। तो कहीं ना कहीं वो जो है ओलंपिक का जो सपना है वो मैं खुद पूरा नहीं कर सका। कुछ परिवार की जिम्मेदारी और मतलब बड़े बेटे होने के नाते
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: परिवार की जो जिम्मेदारियां थी वो लेनी थी। तो उसके लिए क्या है, ओलंपिक में अगर आपको जाना है तो फिर
2: पूरा
3: मतलब परिवार को त्याग करो,
2: त्याग करो सब कुछ,
3: सब कुछ, मतलब समय ही ज्यादा लगता है उसमें।
2: जी जी जी।
3: तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर मैंने एक सोचा कि चलो मैंने नहीं कर पाया, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, तो क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाए, मैं नहीं तो मेरे से कोई और।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उनको सीखने का सिखाने का।
3: यस, तो मेरा जो अनुभव था वो मैंने शेयर किया, उसके लिए मैंने कोर्स किया कोच बनने के लिए, जो स्पोर्ट्स मैंने स्पोर्ट्स कोचिंग का एक जो कोर्स होता है वो कोर्स करके मैंने फिर एक जगह मेरे को पोस्टिंग मिला, फिर वहां पे मैंने शुरू किया एक बिगिनर लेवल का जो सेंटर था। फिर वहां से मेरा फिर 2 साल वहां मेरा कार्यकाल रहा। उसके बाद अभी फिलहाल में जो मेरा पोस्टिंग है वो नडियाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि गुजरात में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स के हब में गिना जाता है।
2: जी, जी, जी।
3: तो वहां पे टोटल 7 मतलब कि 7 अलग अलग स्पोर्ट्स चलते हैं, जिसमें कि एक हमारी तीरंदाजी भी वहाँ चलती है जो गुजरात का बहुत बड़ा सेंटर है। तो वहाँ पर फिलहाल मैं अभी कोचिंग दे रहा हूँ, मेरे साथ और भी सहभागी लोग हैं, हम मिलकर के कोचिंग दे रहे हैं। हमारे पास टोटल 40 बच्चे हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं, और वो बच्चे हैं मतलब पर्टिकुलर तीरंदाजी के लिए ही, उनको मतलब गुजरात जो गवर्नमेंट है उनको सिलेक्शन करती है, जो बच्चे मतलब कि पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से खेल महाकुंभ हो गया या तो अदर कोई भी मतलब कोई भी छोटा मोटा गेम खेल करके आए होते हैं, उनका एक सिलेक्शन रहता है, वो क्राइटेरिया में आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: फिर वो सारे बच्चों को उधर ही रह करके ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और
2: जी जी जी,
3: वहाँ रह करके बच्चे लोग
2: सीखते हैं
3: ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ उनका गवर्नमेंट सारा खर्चा
2: उठाती है
3: उनको रहना खाना पढ़ाई लिखाई
2: सब कुछ वहीं से
3: सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
2: क्या बात है।
3: तो बहुत अच्छा ये एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें मतलब बच्चों को
2: खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जी। हेलो जी, नमस्कार।
5: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग सुरेश जी, बोलिए।
5: बस सभी दोस्तों को सुनने और सुनाने वाले और मेहमानों को आज के दिन की सामने मंगल कामना।
2: जी जी जी,
5: क्योंकि अपना भारत तो अतिथि देवो भव।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
5: स्टूडियो में मेहमान आए तो उनका तहे दिल से स्वागत है।
2: स्वागत, धन्यवाद।
5: फूलों का हार पहना के स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
5: ठीक है, हमारे रेडियो मधुबन का नाम ही तो मतलब मीठा कितना है, मधुबन का मतलब मीठा, तो बस तो यहाँ तो फूलों से ही स्वागत होगा।
2: जी जी जी।
5: और बस गणपति के दिन चल रहे हैं तो बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है, और गणपति आए तब बारिश भी आ गई तो
2: बिल्कुल।
5: और क्या, गणपति जी बारिश को साथ में लेके आए, और क्या चाहिए अपन। बस तो
2: जी गीत सुनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते हैं आपको सूरज जी।
5: और सर ये रेडियो में थोड़ा डाउन बज रहा है।
2: ठीक है, मैं देख लेता हूँ, है ना। ठीक है,
5: क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है,
2: क्लियर नहीं सुनाई। ओके ओके, थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, 9:29 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम में। और सुरेश जी पिंडवाड़ा से याद कर रहे थे, उसके पहले सुरेश जी जोटाना से याद कर रहे थे, उसके पहले सुभाष जी ने फ़ोन करके जलगांव से याद किया, उसके पहले हमारे गुड़ीलाल जी ने याद किया था अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट से। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, जैसे कि गीत की फरमाइश हुई है, गणपति बप्पा का गीत आपको सुनाते हैं। और इसके साथ में हम लोग बातें जो है खेल के साथ, खेल से हमारा करियर कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे हम अपना और देश का नाम रोशन करते हैं, इस विषय पर बातें कर रहे हैं हम लोग संदीप जी से। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, गणपति बप्पा मोरिया प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए, संदीप जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं। संदीप जी, फिर से एक बार स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आज के समय में खेल किस तरह से हमें अपना पहचान बनाने में कामयाबी दिलाता है और देश का नाम रोशन करने में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस तरह से ये चीजें होती हैं और कैसे हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं खेल करियर की।
1: जी, आपने बताया कि खेल से कैसे हम नाम कर सकते हैं अपना और देश का। तो खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि खिलाड़ी अपना नाम तो रस हम करता ही है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी है वो मेडल जीतता है तो उसका खुद का नाम रोशन होता है, साथ ही साथ उसके गांव का, उसके परिवार का और अपने भारत देश का भी नाम रोशन होता है। अगर वो कहीं विदेश में जा कर के कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता है खिलाड़ी और वहाँ मेडल हासिल करता है, जरूर से वहाँ अपना तिरंगा जो है वो लहराया जाता है और अपना जो राष्ट्रगान है उसका भी वो प्रेजेंटेशन होता है। तो जरूर में साथ में देश का भी नाम रोशन होता है, खुद का तो नाम रोशन करते ही करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे खेल का चयन करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो किस तरह के चयन जो है खेलों का करना चाहिए हमें?
1: जी, ज़्यादातर अभी क्या है, हमारे इंडिया में कल्चर रहा है कि इंडिविजुअल गेम, मतलब कि व्यक्तिगत जो खेल हैं उसमें ज़्यादातर मेडल आने के भी चांसेस है। अगर आपने देखा होगा फुटबॉल जो है, फुटबॉल में भारत का अभी कहीं ना कहीं भारत की टीम जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहाँ की बाकी देशों की जो टीम है वहाँ पहुंची है।
0: जी, जी, जी।
1: तो और क्रिकेट की बात है, क्रिकेट है टीम गेम। क्रिकेट में तो आज इतना क्रेज हो गया कि हर गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, हर कोई क्रिकेट को मतलब पसंद करना चाहता है। पर एक व्यक्तिगत जो गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स है व्यक्तिगत, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तीरंदाजी हो गई, शतरंज हो गया, बैडमिंटन, ऐसे कई मतलब खेल है जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत के ऊपर आधारित है। ना वो किसी टीम गेम में क्या है कि हर कोई खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर उसको मतलब डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि भाई अगर वो
0: खेलेगा वो अच्छा तो फिर अपना काम हो जाएगा,
1: काम होगा, जीतेंगे सब लोग, अगर वो खेलेगा नहीं तो हम हारेंगे ऐसा। लेकिन व्यक्तिगत में क्या है, खुद की मेहनत, अगर आप खुद अच्छा बेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना बेस्ट करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्यादातर आजकल के समय में बच्चे लोग व्यक्तिगत जो खेल है उसमें ज्यादा जाने को उत्साहित रहते हैं और वो लोग ज़्यादातर व्यक्तिगत खेलों में ही अपना बेस्ट रिजल्ट भी दे पाते हैं। अगर हम बात करें व्यक्तिगत इवेंटों में तो आपने सबने नाम सुना ही होगा अपने गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा है, जो कि जेवलिन थ्रो में भारत को उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया।
0: बिल्कुल,
1: तो उनको भी अगर आप सुनेंगे तो वो यही अपना राय सजेशन देते हैं कि आप व्यक्तिगत खेल को चुनिए और अपना करियर आगे बढ़ाइए, ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल गेम्स का चयन करके अपना देश का और खुद का नाम रोशन कर सकते हैं, ये आपने बताया। और ग्रुप में चीज़ें थोड़ी सी टाइम लगती हैं, लेकिन फिर भी आज जो है ये दोनों चीज़ें हमारे बीच में हैं, विकल्प आपके पास हैं कि आप जो भी गेम पसंद करते हैं उस पर आप एक्सेल कर सकते हैं। और जो फंड है, यानी खिलाड़ी जो थोड़ा सा फंडिंग कब शुरू हो जाता है या CSR कब मिलना शुरू हो जाता है खेल में बच्चे को?
1: जी, बच्चे पहले मतलब जो भी खिलाड़ी होता है पहले अपना एक लेवल पे आ जाने के बाद, जैसे कि वो स्कूल लेवल पे खेलेगा, उसके बाद फिर आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। तो वैसे मतलब अलग अलग राज्यों में सरकार ने अलग अलग सब जगह पॉलिसी बनाई है। तो मुझे गुजरात का जब तक पता है, अगर मेरी बात करूँ तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2014 में एक स्कीम निकाला था DLSS करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल। तो उस समय में मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ता था और नेशनल लेवल पे मैं खेलने गया था। तो वहीं पे सरकार ने मेरा जो भी है देखा होगा, मैं नेशनल खेल के आया हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि आप हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की जो प्रोजेक्ट स्कूल है उसमें आइए, उसमें रह करके आप ट्रेनिंग करिए और फिर आप गुजरात सरकार को रिप्रेजेंट करिए। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे मतलब कि जो स्कूल जो होती है बहुत अच्छे लेवल की स्कूल थी, ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पढ़ती थी, और शायद वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की वो बहुत अच्छी स्कूल थी, जहाँ पे रहना खाना हॉस्टल ग्राउंड मैदान सब बहुत अच्छा से था। तो मुझे वहाँ मेरा चयन हुआ, मैं वहाँ गया और मेरा वहाँ स्कूल फीस, मेरी ट्रेनिंग फीस, फिर मैं जब बाहर खेलने जाता था उसकी फीस, सब कुछ वो मतलब स्पॉन्सर करते
0: अरे
1: थे।
0: वाह,
1: फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद, नेशनल में मेडल होने के बाद, इंटरनेशनल खेलने के बाद, दूसरा एक स्कीम है शक्तिदूत करके स्कीम है, उसमें सरकार हर एक खिलाड़ी को विदेश में जाकर के ट्रेनिंग करने का खर्चा, फिर उसको बाहर जब खेलने जाए उसका खर्चा, उसके ट्रेनिंग का खर्चा, हाई लेवल का जो भी खर्चा जितना भी रहता है, एक लिमिटेशन सेट करती है, एक स्टैंडर्ड सेट करके वो खर्चा प्लेयर को वो मतलब देने का प्रयास करती है, जिससे कि प्लेयर अपना बेस्ट दे और आगे बढ़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी बताइए। आपने विदेश में जाके भी प्रेजेंटेशन दिया है,
1: जी
0: रिप्रेजेंटेशन किया है, और भारत में भी अलग अलग जगह आप खेलो इंडिया के माध्यम से आयोजन होते हैं उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। जी
1: जी पहले तो मैं एज अ खिलाड़ी भी हर स्टेट में जा चुका हूँ खेलने के लिए। कहीं भी राष्ट्रीय कक्षा की जो भी स्पर्धाएं होती थी वहाँ पे हम भाग लेने के लिए जाते थे। लेकिन फिलहाल अभी मैं अभी 1 साल के अंदर की बात करूँ तो मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय तीरंदाजी संघ है, उनकी तरफ से मैं एक तो बैंकॉक थाईलैंड में है, वहाँ पे मैं इंडिया टीम के कोच बन करके गया था, जहाँ पे ये शीतल देवी और ये हरविंदर सिंह, जिसको अभी अभी भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, ऐसे खिलाड़ी टीम के सदस्य थे। और मेरे को मौका मिला टीम के साथ जाने के लिए हेड ऑफ डेलीगेशन के नाम पे, और वहाँ पे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद अगर मैं मेरे पर्सनल कोचिंग की बात करूँ, तो मेरे को कोचिंग के बिहा पे, मेरा कोचिंग को देखते हुए, मेरे को भारतीय तीरंदाजी संघ ने पूरे भारत में से 10 लोगों को चयन किया था। स्विट्जरलैंड जो विश्व तीरंदाजी संघ, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की तौर से उनकी ओर से एक कोर्स था वर्ल्ड आर्चरी लेवल 1 कोच का, उसमें भारत में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें मेरा चौथा नंबर रहा।
0: अरे वाह,
1: और भारतीय तीरंदाजी संघ ने मुझे वहां जाकर के भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहां भेजा, और वहां पे मैंने वो कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स था, और
0: हाँ,
1: उसको मैंने फिर पास भी किया।
0: अरे वाह, चलिए संदीप जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, और निश्चित तौर पे हमारे सभी दर्शक और श्रोता बंधु जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, और निश्चित तौर पे उन सभी को अच्छा लग रहा है। और यहाँ राजस्थान में जैसे कि आदिवासी बेल्ट के बच्चे हैं, तो खेलों के लिए ये कैसे आगे आए, क्या कर सकते हैं इनके लिए, या उनको क्या सोचना है, थोड़ा बताइए।
1: जी राजस्थान की बात करें तो जैसे राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे तीरंदाजी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अगर हमारे इंडिया का जो सबसे पहला जो ओलंपिक खेलने वाला जो खिलाड़ी है
0: वो
1: भी
0: राजस्थान
1: राजस्थान से ही रहा है, लिम्बा राम जी बहुत नाम था, उन्होंने ओलंपिक में भारत देश को 4 से 5 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वो बांसवाड़ा जिला है यहाँ पर,
0: उदयपुर
1: उदयपुर, हाँ, तो वहां से वो थे। तो और वैसे कई और खिलाड़ी भी हैं जो राजस्थान से हैं और बहुत अच्छा उन्होंने मतलब नाम अपने भारत देश को नाम दिया है। अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो रजत चौहान जी करके हैं, वो भी जयपुर से हैं, उन्होंने मतलब अपने एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड कप हो, ऐसे कई बड़े बड़े जो खेल हैं उसमें उन्होंने भारत की ओर से मेडल जीत के अपना नाम रोशन किया है। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं राजस्थान से, मतलब अनगिनत खिलाड़ी कह सकते हैं उतने। और अगर अब हम जहाँ अभी बैठे हैं ब्रह्मा कुमारीज की बात करें, तो ये जो सिरोही जिला के अंदर पड़ता है, अभी ये एरिया में तीरंदाजी का अभी इतना जो प्रचलित होना था नहीं हो पाया है। इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ विजिट किया हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ जहाँ भी ये है उसका हमको आगे लेके जाना चाहिए। पर
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात है कि आपने ये एक अच्छा सोचा है, और आप सतत हमेशा चिंतित रहते हैं कि भाई यहाँ तीरंदाजी कैसे शुरू हो और बच्चों को कैसे यहाँ ट्रेनिंग मिले। जरूर मेरे से जो भी हेल्प होती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, और बस हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ के जितने भी आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको हम आगे लेके जाएंगे, वो
0: अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन
1: जी
0: करेंगे
1: जी
0: जरूर। संदीप जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, और आपका सहयोग रहेगा तो यहाँ के जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो भी नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास में लिम्बाराम जिनका आपने नाम लिया वो भी ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये इतिहास को वापस दोहराएंगे, हिस्ट्री मच रिपीट कहा जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक का खिलाड़ी को जैसे कि आदिवासी बेल्ट है यहाँ कर अगर बच्चे करना चाहते हैं खेल में अपना प्रैक्टिस, तो इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बच्चे जो है अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं?
1: जी, कोई भी खेल खेलने के लिए सबसे पहले मैदान होना जरूरी है। कोई भी गेम हो मैदान तो होना चाहिए। तो जैसे कि आपने मुझे कल तो मैदान दिखाया, मैदान तो बहुत काफी अच्छा है, बड़ा है, सुंदर है, तो वहाँ हम कर सकते हैं शुरू। मैदान अपने पास है, फिर मैदान के बाद एक इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा रोल आता है कि भाई कोई भी खिलाड़ी है उसको इक्विपमेंट चाहिए। अगर इक्विपमेंट बेस्ड है तो बिल्कुल वो
0: अच्छे से
1: प्रैक्टिस करो और वो जीत के दावेदारी हो सकता है। वो तो सबसे पहले मैदान है, इक्विपमेंट्स है, उसके साथ है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये अचीवमेंट के अंदर।
0: जी, जी,
1: अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपने सुना होगा स्कूल में भी कि अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसमें भी एक कोचिंग भी बहुत जरूरी है। कोचिंग अगर कोच आपको अच्छा मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का बहुत अच्छा जरिया एक मिल जाता है। तो मैदान हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ट्रेनिंग और कोच, फिर उसके बाद अपना न्यूट्रिशनिस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। खाद खुराक, जैसे कि अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो थोड़ा हल्का खा करके भी अपना जीवन गुजरान चला सकता है। पर अगर स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा यूज करनी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नॉर्मल इंसान से वो ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको खान पीने में भी थोड़ा उसको बेहतर मिल सके, तो अच्छा हो सके।
0: चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के आसपास में लोग सुन रहे हैं, उन सभी को, बच्चों को अगर खेल में आगे बढ़ाना है तो इस तरह का जो विधि है, ग्राउंड आपको चाहिए, ग्राउंड के साथ में इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करने कराने के लिए कोच की ज़रूरत पड़ती है, और कोच के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, और उस प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से बच्चा जो है खेलने में सक्षम होने लगता है, और उनको जो है ऑलराउंड उनका खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा तो उसको खाना थोड़ा नॉर्मल लोगों से अच्छा और बेहतर लगेगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, तब जाके हम बच्चे को एक अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: हाँ जी।
0: अच्छा, मेरी आवाज़ मुझे रिपीट आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, मैं आप सभी को, अब 8:48 हो रहे हैं, तो आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को जन्मे उन लोगों की अगर बात करें तो आज जैसे कि सुब्बू लक्ष्मी के बारे में मैंने बातें की, एक अच्छे कर्नाटक संगीतकारा रही हैं और उन्होंने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव की थी जो एक सिंगर के लिए, एक संगीतकार के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ये ऐसे सुब्बा लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लता मंगेशकर और भारत के विशेष जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ की थी। तो आइए, भारत की महिला बारतोलक है जो गीता रानी, इनका भी जन्मदिन आज है। 1981 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश लेखक, कवि और नाटककार अल्फ्रेड नाइस, इनका भी जन्मदिन आज है। 1880 में इनका जन्म हुआ था। आज़ादी के दीवाने बलवंत सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1882 को हुआ था। बहुत ही पॉपुलर गायिका और अभिनेत्री LS सुब्बलक्ष्मी, 1916 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अमेरिकी कार्टूनिस्ट आर्ट सेंसम, 1920 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। क्रिकेट अभियान एम्पायर आर रामचंद्र राव, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था 1931 को। भारतीय अभिनेता सुशील आनंद, 1977 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय विशेष राजनीतिक और उत्तराखंड मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धानी, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1975 को हुआ था। और भारतीय सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर गीतकार प्रसून जोशी, 1968 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार राम लक्ष्मण, 1942 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तीसरी लोकसभा के लोकसभा महासचिव MN कॉल, 1901 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1893 को हुआ था। तो चलिए, आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

0: चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संदीप जी, जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: बिल्कुल, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को, या तो आप खुद ही, सब लोग स्पोर्ट्स में जुड़े। और स्पोर्ट्स में जुड़ने का और ये भी फायदा है कि आप, आपका नाम तो मतलब मेडल जीत करके आप अपना नाम, देश का नाम तो, एक मिनट फोन।
0: जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार।
2: अरे वो सर, वो राम लक्ष्मण जी का आज दिन है क्या?
0: किसका?
2: उसका एक गाना है, देवा है देवा, शंकर देवा वाला गाना है, गणेश देवा वाला।
0: जी।
2: हाँ, वो गाना थोड़ा कारण मुझे सुना देना सर, लास्ट में।
0: ठीक है।
2: धन्यवाद
0: जी। संदीप जी,
1: जी तो खेल के माध्यम से सब लोग अपना नाम तो रोशन करते हैं मेडल जीतने के बाद।
0: जी,
1: लेकिन एक खेल के साथ जुड़ने का ये भी फायदा है कि आप खेल से जुड़ेंगे तो आपके शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत उसमें, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती है
0: तो शरीर अच्छा रहता है,
1: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो आपको उसमें जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि आपको शरीर को भी स्वास्थ्य से ताकत मिलती रहे।
0: सही। चलिए संदीप जी, बहुत ही सुंदर प्यारा सा मैसेज आपने दिया। खेल से नाम तो होता ही है अपना, परिवार का और देश का, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होता है कि खेल आप खेलते हैं, कोई भी खेल आप खेलते हैं तो आपका फिजिकल व्यायाम हो जाता है शरीर का, और इसीलिए शरीर स्वस्थ रहता है, तो डॉक्टर का खर्चा भी बचेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, हेल्दी रहेंगे आप। तो ये बहुत ही प्यारा सा संदेश संदीप जी ने दिया। संदीप जी हमारे साथ जुड़े, गुजरात से आप आए कल और आज रात को जाएंगे आप, और एक नई जो है शुरुआत करेंगे, और आप लोगों को बीच बीच में आकर मिलते रहेंगे, और उनके बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को, उनको भी यहाँ जो है एक नया जो है एक्सपोज़र मिलने के लिए वो यहाँ पर लेकर आएंगे, उनको मेडिटेशन वगैरह का जो कैंपस है अपना, मेडिटेशन जो है उसके बारे में उनको, बच्चों को अवगत कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।
1: धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में ही कुछ नई बातें लेकर शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। आशना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

अब क्या वो आप आशियाना सुनिए जान जाएंगे। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज का सुंदर सा विचार है, ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ करना चाहूंगी। एक व्यापारी जितना धनी था उतना ही दान पुण्य करने वाला, वह सदैव यज्ञ पूजा आदि करता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने के लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं, आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेच करके थोड़े पैसे ले आइए जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुत्तिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। बारिश के दिन थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़ करके नगर में नहीं जा सकती थी कुतिया। व्यापारी को दया आ गई, उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दी। कुतिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हांफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी, खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचना चाहता है। व्यापारी व्यस्त था, उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता? सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बरोबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनवाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भर करके हीरे जवाहरात रखे, पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थी वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और थैली में रख दिए। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाई और कहा कि इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव से कुछ उधार मांगने को चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते उसने थैली खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया। इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी, उसमें से बेश कीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इससे इस धन से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिला करके जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके लिए भी कंकड़ पत्थर अनमोल रत्न हो सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहे और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चावल रांद्या मूंग रांद्या चावल रे ग्या काचा, चावल रांद्या मूंग।

बना तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये मजाक का गीत था, आप बुरा मत लगाना, मजाक वाले गीत बोलते ना शादी ब्याह में। लेकिन आज मैं आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ चावल पर, तो सोचा कि चलो दो लाइन सुनाई देते हैं। तो चावल कौन सी बीमारी ठीक करता है जरूर आप जानेंगे। देखिए, अतिसार और ज्वर है तो चावल के खिलों को पीस करके सत्तू बनाइए, और आवश्यकता के अनुसार दूध या शहद, चीनी, जल आदि मिला करके स्वादिष्ट इसको कर लीजिए। इसे लाल तर्पण कहते हैं। इसे देश काल और रोगी की दशा के अनुसार सेवन करने से ज्वर, महादत्यय, दाहकता या सीने की जलन, अतिसार, इन सभी में राहत मिलती है। तो अतिसार और ज्वर है तो चावलों के खिलो, जिसको लाजा भी कहते हैं, इसको पीस करके सत्तू बनाइए, और आवश्यकता के अनुसार दूध या फिर शहद या फिर चीनी डालिए या फिर जल, ठीक है, दूध या जल, ये सब मिला करके इसको स्वादिष्ट कर लीजिए। फिर इसको क्या कहते हैं, लाल तर्पण। इसे ही देश काल और रोगी की दशा के अनुसार सेवन करने से ज्वर, महादत्यय, दाहकता या सीने की जलन, अतिसार आदि में लाभ मिलता है। आधा सीसी सिर की तकलीफ है तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले चावल की खील 25 ग्राम के लगभग शहद के साथ खा करके सो जाइए। ऐसा दो तीन दिन करिएगा, इससे आधा शीशी रोग दूर हो जाएगा। आधा शीशी बोले तो आधा सिर दर्द करता हो उसको आधा शीशी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी तकलीफ है मेरे प्यारे श्रोता बंधु जो लगातार चलती रहती है। अब लगातार सिर दर्द होगा, आधा सिर भी हो तो भी क्या सहन होता है? नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सूर्योदय से पहले ही चावल की खील 25 ग्राम के लगभग शहद के साथ खा करके सो जाइए। ऐसा दो तीन दिन करने से आधा सीसी का रोग दूर हो जाता है। अगर फोड़े फुंसियों की दाहकता है, यदि शरीर के किसी भी अंग पर ऐसा फोड़ा निकला हो जिसमें अग्नि के समान जलन और दाहकता का अनुभव हो रहा हो, तो कच्चे चावल को पानी में भिगो करके सिलपट्टे पर पीस करके इसका लेप लगाइए। इससे ठंडक पड़ेगी और रोगी को चैन मिलेगा। कभी कभी ऐसे फोड़े निकल आते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सहा नहीं जाता, इतनी जलन के ऐसा लगे कि अब क्या करें, कैसे ठंडक पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में चावल लीजिए कच्चे, उसका पानी डाल करके उसके पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाकर इस लेप को आप जहां पर भी फोड़ाए वा लगाइए, ठीक है। तो ऐसा करने से ये जो दाहकता है, ये जलन है, वो ठीक हो जाएगी, ठंडक की अनुभूति होगी, और जिसके भी तकलीफ है उसको चैन आ जाएगा कि हाश अब जलन ठीक हुई। और भी सुंदर सा उपाय आपको बता रही हूँ। नेत्रों की लाली अगर है तो सहन करने योग्य गर्म भात, मतलब उबले हुए चावल की पोटली बनाकर सेक करिएगा। वादी एवं कफ के कारण आंखों में होने वाली दर्द युक्त लाली समाप्त हो जाएगी। लेकिन सहता सहता ऐसा नहीं, गरम गरम पोटली भाई आँख का सवाल है, डॉक्टर से राय लीजिएगा और सहता सहता करें, ठीक है। चावल तो हम बनाते ही है, उबले हुए चावल, ठीक है। तो इसकी पोटली बना दीजिए। सेक करने से वादी और कफ के कारण नेत्रों में होने वाली दर्द युक्त लाली समाप्त हो जाएगी। और अगर हृदय की धड़कन चलती है, मतलब धान की फलियों के पौधों के ऊपरी भाग को पानी के साथ पीसकर लेपन करने से हृदय कंपन और अनियमित धड़कन समाप्त हो जाएगी। हृदय की धड़कन बिना कारण ही धड़कती है नियमित, तो धान की जो चावल के धान की फलियों के पौधों के ऊपर, मतलब ऊपरी भाग को पानी के साथ पीस करके लेप करिए, इससे हृदय कंपन और अनियमित धड़कन समाप्त हो जाएगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, मधुमेह व्रण, मतलब चावल के मधुमेह व्रण है तो चावल के आटे में जल रहित गाढ़ा दही मिला करके पुल्टिस बनाकर लेप कर दीजिए। ये पुल्टिस रोग की दशा के अनुसार दिन में 3-4 बार बदल करके बांध देने से शीघ्र लाभ होता है।
मधुमेह व्रण। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही सुंदर है और आप आजमा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए,

बहुत ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा, ठीक है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक, चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, हेलो, तो यहीं पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। और
2: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो यही रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहे और मुस्कुराते रहे।
1: जी, आज का प्रश्न पहले सुना रही हूँ। आज का प्रश्न है, विश्व में, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? आज का विषय है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहिए। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात है, अभी चर्चा ही हो रही थी वही। देखिए, मतलब अपना जीवन कैसे जीना है वो अपन को देखना है, बाकी क्या करे उसकी उसकी तो भावना अपन नहीं बदल सकते, मगर खुद को बदलना सीखिए, खुद को बदलिए। अगर आपने खुद को बदल दिया ना, तो बस यूं समझिए कि सारे विश्व को बदल दिया। क्योंकि आप खुश है तो कुछ कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिंदगी में। मतलब देखिए, आपने जो भी है मतलब आस पड़ोस के लोग, वो तो अपन को मतलब दुख देने की कोशिश भी करेंगे, मगर अपना जीवन बदलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा दीदी
1: जी।
2: इसलिए अपन स्वयं को बदलिए, औरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सही है ना?
1: जी बिल्कुल।
2: हाँ, औरों को बदलने जाओगे तो वहां दुख मिलेंगे, मगर स्वयं को बदलने की कोशिश करोगे तो वहां सुख मिलेंगे
1: जी।
2: अच्छा, प्रश्न का उत्तर तो अभी दो,
1: अगर आपको समय मिले तो फिर जुड़िएगा, नहीं तो फिर दे दीजिए।
2: ज्यादा इंडिया में चीजें आ रही है, एक तो वो देश,
1: आप तो खाली इनडायरेक्टली बता दीजिए तो भी पता चल जाएगा।
2: सस्ती चीजें आ रही है इंडिया में
1: जी,
2: समझ में आ गया?
1: हाँ जी, फिर भी कौन से शब्द से, कौन से मात्रा से शुरू होता है उस देश का नाम? एक मात्रा बताइए खाली।
2: एक मात्रा बता दो
1: जी।
2: अब वो बता दिया तो स्वयं गड़बड़ हो जाएगी।
1: ठीक है, चलिए ठीक है।
2: आपको समझ में तो आ गया होगा ना, मतलब सस्ती चीजें तो वहीं से आ रही है।
1: अच्छा ठीक है, फिर भी कोशिश करिएगा और फिर जुड़ने की, क्योंकि
2: हाँ ठीक है।
1: हाँ जी,
2: और वायरस भी वहीं से आया था।
1: ठीक है, मैं समझ गई, आपका जवाब समझ गई।
2: ठीक है, चलो जय माता
1: जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय आज का बहुत ही सुंदर है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए आप सुकून से अपना जीवन व्यतीत करिए। हेलो,
3: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हो?
3: बहुत ही बढ़िया, खुशी के अंदर है।
1: कहाँ खो गए थे इतने दिन, कहाँ खो गए थे?
3: कहीं नहीं खोया था, इतना नहीं था।
1: बहुत अच्छी बात है जी। आज का प्रश्न है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? जी, और आज का विषय है आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहे।
3: बिल्कुल राइट है, खुश रहे और लोगों का दिल जीते रहेंगे, दुनिया भी खुश रहेगी, दुनिया का दिल भी जीतेंगे, खुश रहेंगे, उनको बिना बात करेंगे, दिल को सोचेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, ये हमारा निवेदन है। और वो छीन है क्षेत्रफल में छीन है
1: जी, अच्छा
3: छीन है
1: जी,
3: और क्षेत्रफल में रूस,
1: अच्छा ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब देंगे, ठीक है?
3: हाँ जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार
1: जी,
3: सुरेंद्र भाई है, बुलाराम जी है, मदन भाई है, धीरेन्द्र भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत आभार, सभी सुन रहे होंगे आपकी आवाज। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, और विषय देखिए बहुत ही सुंदर है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते हैं। अब लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते तो फिर क्या करेंगे, आप बताइएगा। हेलो हेलो, नमस्कार। कहते हैं ना कि भाई चाह कर भी लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते हैं, तो फिर खुद को बदल दीजिए ना, क्यों लोगों की बातों में आते हैं। कोई आपके एक जना तारीफ करेगा तो चार जने आपके आलोचना भी करेंगे, इसलिए आप उनकी धारणा को नहीं बदल सकते। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो उनके लिए जान छिड़कते हैं, फिर भी वो कभी हमें प्रेम देते ही नहीं, कभी हमारी तारीफ नहीं करते, कभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके, उनसे बात करेंगे। हेलो
4: हेलो, नमस्ते, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो?
4: बहुत अच्छे है बाबा की दुआ से, और आपकी भी?
1: हाँ, नहीं नहीं, ईश्वर की दुआ, ईश्वर साथ में है तो सब कुछ है, परिवार की दुआ तो खैर चाहिए।
4: हाँ तो देखो विषय भी बहुत अच्छा है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते कभी
1: जी,
4: हाँ दूसरों को बदलने जाएंगे तो हम खुद खड्डे में गिर जाएंगे दीदी, पहले हमको बदलना है, हम बदले हुए होंगे ना। हेलो
1: जी, हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ हम बदले हुए होंगे, जब हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो हमारी पूरी दुनिया अच्छी लगेगी हमको,
1: बिल्कुल
4: हाँ, तो पहले हमको बदलना है
1: जी, बिल्कुल।
4: और प्रश्न का जवाब तो दे दूँ या
1: अगर दूसरी बार नहीं जुड़ सकते तो दे दीजिए।
4: हाँ तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो देखो सबसे आगे है रूस, और जनसंख्या में भारत देश आगे है हमारा।
1: अच्छा तो ठीक है, देखते हैं सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिए, हम अंत में जवाब देंगे, ठीक है? बहुत बहुत आभार, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, विषय को अच्छा स्पष्ट किया है आपने, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। गणपति के दिन भी चल रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी जगह गरबा वगैरह भी होता है, गुजरात में नवरात्रि में गरबा होता है, राजस्थान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां नवरात्रि में भी गरबा करते हैं और अभी गणपति के दिनों में धूमधाम से गरबा करते हैं। तो चलिए बहुत ही आप भी इसका आनंद ले रहे होंगे, और विषय भी बहुत ही सुंदर है, तो आप विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न भी आज का बहुत सुंदर है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा देश सबसे आगे है। जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, आज के विषय को स्पष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। चलिए जाते जाते भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो पहले बात करेंगे। हेलो
5: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई जोटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस बहुत अच्छे दीदी, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं, आप सभी की दुआ से।
5: चलो अच्छा है, दुआ तो एक दूसरे की चलती रही, इसीलिए तो दीदा दुनिया टिक रही है।
1: जी जी जी,
5: वरना तो हम देखते हैं कहीं कि आज हमारे देश में तो बस दुनिया ही का एक दूसरे की दुआ से तो चलता रहता है।
1: जी
5: अभी तो कितने सारे त्योहार आते हैं जाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
5: बस अच्छा ही हमारा देश है कि हर दम नए त्योहारों की एक धारा चलती रहती है।
1: जी
5: जैसे आपने जो विषय की बात अच्छा दे दी कि स्वयं को बदलो सब कुछ बदल जाएगा। अब देखो हम किसी को उपदेश करने के जाते हैं दीदी, तो वो सामने से वही जवाब आता है कि आपको अपनी ही बात में अपनी ही कर भी बात करो, हमको समझाने के लिए जरूरत नहीं है।
1: जी
5: तो वही जवाब मिलता है दीदी, ठीक अच्छा है तो ठीक है समझ जाता है, वरना तो किसी के कहने के बात हम कहें करेंगे तो उल्टा हमको भी डांटेंगे।
1: जी
5: किसी को कुछ कहना नहीं है, बदलना तो हमको ही बदलना है, बस ऐसा ही रहेंगे कि जो करना उसे करे, हमको क्या करना है हम ही जाने।
1: बिल्कुल
5: आज वैसा ही दीदी, आज लोगों का जो माइंड ऐसा हो गया है, लोगों का एक कुछ ऐसा होता है कि भाई हम तो भले के लिए किसी के कहते, लेकिन कोई सामने वाला को अच्छा लगता है भाई हमारी ये हो सका ये करते हमारे को कुछ सिखाने के लिए आए, लेकिन हमको कुछ सब कुछ सिखा है, हमने दुनिया देखी है, कुछ बात करते हैं।
1: जी
5: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे बस चलो कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो, हम हमारे हिसाब से जो हम सुनते हैं।
1: जी
5: जो आप तो सब कुछ दे रहे हैं फिर भी मैं ऑफलाइन में जरूर दूंगा।
1: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। हाँ जी, और आइए अब यहाँ पर सुन लेते हैं गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में फिर से हम चर्चा करेंगे। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहे, ये तो आज का विषय है। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है। तो जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा और विषय में भी जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। देखिए, हम दूसरों की धारणाओं को तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। हमें पता है कि हम नेक कार्य कर रहे हैं। घर परिवार में अक्सर ऐसा होता है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, घर परिवार में महिलाओं में तूतू में सबसे ज्यादा इसी बात पर होती है कि एक काम में पिटा जा रहा है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है, और कोई सिर्फ बातों में लपेटे जा रहे बातों में लपेटे

0: जा रहे, लेकिन उनकी तारीफ हो जाती है कि अरे भाई फलानी बहू तो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत ही हिलमिल के रहती है, भले वो काम नहीं करेगी। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी
1: ओम
0: नमस्ते
1: शांति।
0: सुरेश भाई।
1: कैसे?
0: ओम शांति।
1: हाँ दीदी, और बहुत बहुत अच्छा विषय चल रहा है।
0: अच्छा ये बताइए,
1: और
0: बॉम्बे
1: मैं,
0: से आ गए आप?
1: हाँ बम्बई तो मैं परसों ही आ गया था बम्बई से। हाँ
0: अच्छा, जी
1: तो दीदी, विषय के बारे में बस ये कहूंगा दीदी कि मैं अभी 2-4 दिन पहले बम्बई गया था, तो कई लोग ऐसे जो भीख मांगते हैं ना, भिखारी भी कहते हैं ना वो, तो दीदी क्या कहते हैं कि जो अभी बच्चिया 17-18 साल की या 20 साल की आसपास में गोद में छोटा सा बच्चा लेकर भीख मांगती है,
0: जी
1: तो अगर तो बच्चा भी होगा तो पति भी होगा, और इतने जवान लोग होकर भी भीख मांगते हैं,
0: जी
1: तो मैंने तो कहा, समझाया कि चलो आप इतने बूढ़े तो नहीं हो गए तो के काम धंधा नहीं हो, कुछ काम धंधा करिए, अपने ये बच्चे आने वाले टाइम में जो ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे, तो बहुत समझाया। लेकिन जो अभी आपने कहा ना कि जो समझते हैं वो समझ जाते हैं और नहीं समझते, तो ये भी होता है, और कई ऐसे लोग भी होते हैं, हम समझाने की कोशिश करें तो नहीं समझते, तो हमें भी यही समझ लेना चाहिए कि चलो वो तो नहीं समझते, पर हमारे जीवन में हम ऐसा कुछ करें ताकि अच्छे, हमारा बच्चों का और सभी का, हम अच्छे रहेंगे ना तो हम भी किसी का भला कर सकते हैं, तो ये एक तो ये बात है दीदी।
0: जी
1: जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है,
1: तो
0: सही बात है।
1: दीदी, हाँ तो दीदी मैं तो ये कहूंगा कि आखिर मुझे भी समझ में नहीं आया, और मैं ये सवाल ढूंढता हूँ कि आखिर ये जवान होते हुए भी ये क्यों कार्य कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य ठीक नहीं रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं।
0: देखिए सुरेश भाई, हमारा भारत देश क्या धार्मिक प्रवृत्ति का है ना, दीन दुखियों को, गरीबों को देखते तुरंत ही अंदर दया आ जाती है, उनके प्रति रहम भाव आ जाता है, और हम
1: हाँ
0: कुछ न
1: हाँ
0: कुछ देने की कोशिश जरूर करते हैं। आप लोगों की आदत पड़ जाती है, जब इजी वे में मिल रहा है तो मेहनत क्यों करे, वो पांचों ही उंगलियां बरोबर नहीं होती ना, ऐसे हर एक के स्वभाव संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं, किसी की आदत पड़ जाती है कि बस मांग के खाओ और मस्त रहो।
1: तो दीदी, जो छोटे बच्चे का भविष्य क्या होगा?
0: इतने अगर वो दूर की सोचते तो वो ऐसा करते ही क्यों, उनको तो ऐसा है
1: वही
0: कि
1: तो
0: हमारा
1: बात
0: कट रहा है, बच्चों का भी ऐसे ही कटेगा।
1: है। तो ये तो चलो उनकी माइंड सेट यही समझ ले।
0: हाँ बाकी तो जब आप यूथ है तो मेहनत कर सकते हैं, अरे इतने काम चल रहे हैं दुनिया में, इतने काम चल रहे हैं, मजदूरी काम भी मिल सकता है, जो भी कार्य करना चाहो मिल जाता है भाई, योग्यता के अनुसार काम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
1: हाँ वही तो।
0: बहुत सारे लोग क्या है कि बस वो मेहनत से कतराते हैं, इजी वे में मिल जाता है तो बस घर घर में मांगना, किसने झिड़क दिया तो क्या फर्क पड़ गया, और किसने दे दिया तो अच्छा ही है, बल्ले बल्ले। कोई कोई देखो आप,
1: दीदी
0: बहुत सारी उम्र होने के बावजूद भी वो मेहनत करते हैं, तो अपन देखते हैं तो क्या कहते हैं, देखो कितने मेहनत करते हैं इस उम्र में भी।
1: चलो, वही वही तो। और कई बुजुर्ग वही पर जो इतने अच्छे 90 साल के बुजुर्ग भी कहीं बेचने के लिए कुछ बेचे हैं, ये है वो कर रहे हैं,
0: जी
1: ये भी। हाँ ये बातें दीदी, लोगों की मानसिकता तो हम चलो बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, और
0: बिल्कुल,
1: कोशिश में अगर वो ठीक है
0: कितनी
1: होंगे
0: बार
1: तो उनका
0: आपने
1: भला हो
0: देखिए
1: जाएगा।
0: न्यूज़ सुनी होगी, समाचार सुने होंगे कि कितने भिखारी जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते तो उनके पास बहुत सारा पैसा निकलता है। तो मतलब देखो भीख मांग करके लाखों करोड़ों जोड़ के जाते हैं, अब क्या काम आया उनके वो
1: बिल्कुल
0: पैसा,
1: बिल्कुल।
0: इससे अच्छा नेक कार्य करो।
1: और वही पैसा छड़ भी जाता है, काम का भी नहीं आता, ये भी मैंने देखा है।
0: जी क्योंकि
1: चलो
0: हम
1: तो
0: किसी
1: ठीक है
0: के लिए
1: दीदी, और
0: करेंगे
1: हाँ
0: तो हमारे लिए वो रास्ता और खुलता जाएगा और हमें मिलेगा।
1: सही बात है, बिल्कुल आपने सही मेरे भी मन में कुछ ऐसे सवाल मन में थे तो वो भी दूर हो गए आपके जरिए से। और सभी को मैं कहूंगा कि आप भी जुड़िए और अपना राय व्यक्त करिए और प्रश्न का जवाब मैंने भेज दिया।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेरा से। आपका देखो कंफ्यूजन था, वास्तव में हर एक के मन में चलते हैं कि भाई आप कमा सकते हैं, आप यूथ है तो कुछ करिए, मांगने से तो मरना भला, ये हम अक्सर कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई की आदत पड़ जाती है, उनकी धारणाएं आप नहीं बदल सकते हो। इसलिए आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव सुख मतलब खुश रहिए। तो वो मुझे नहीं चाहता, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, नहीं क्यों आप टेंशन लेते हो, करने वाला करके भी मस्त है और हम उनका टेंशन से ऊपर नहीं आ रहे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी ना। अरे भाई उसकी धारणा नहीं बदल रही, जाने दो, हम तो भाई जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो गीत है ना। तो आप क्योंकि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें न घबराने की जरूरत है न डरने की जरूरत है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति, ओम शांति। अभय सिंह जी बोल रहे? ओ ज्ञानेंद्र भाई जी, कैसे हो?
2: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं।
0: हाँ जी, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, और विषय के लिए क्या कहेंगे? जी विषय है, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहिए। क्या कहेंगे आप? जी जी, जी जी जी, बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी। ओम शांति जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी, आपने भी बहुत ही सुंदर अपनी बात रखी है। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। घर परिवार में अक्सर देखते हैं ना कि दो दो तीन तीन बहुएं होती, वहाँ पर एक का दिल दुखता रहता है कि मैं इतना करती हूँ, इतना त्याग करती हूँ सभी के लिए, फिर भी किसी का रवैया मेरे प्रति चेंज ही नहीं होता है। फिर भी जो भी करना है मुझे ही कहते हैं, डांटते भी मुझे ही है और काम भी मुझसे ही लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, उषा बहन जी।
0: हाँ जी दयाराम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते।
3: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की और आप सभी आपकी बहनों की और दादियों की।
0: जी
3: मैं इस वक्त बॉर्डर के पास था, जो मैंने बात भी बो के रखी है, तो वहाँ मैं कार्य बात भी कर रहा था और मुझे भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो खोजी भाई आए अभी
0: जी,
3: तो वो हमारे फेंसिंग के आसपास में जो जो पेड़ होते हैं, कहीं ऐसा कुछ होता है जो कुछ दिखने में दिक्कत होती है तो वो काटते हैं, तो मुझे भी बुलाया है।
0: अच्छा,
3: तो मैं भी जा रहा हूँ उसके लिए, कुछ हेल्प करके आता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है,
3: और थोड़ी वो हमारी सेवा करती है तो हम उनकी भी सेवा करती है, जो जो भी हमसे हमारे से बनता है वो मदद करती है, जो हमारे योग्य होता है तो वो तो हमारे करना ही पड़ता है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: वो फौजी भाई चार पांच हमारे साथ रहेंगे और हम जाएंगे चार पांच बंदे, वो जो छोटे छोटे पेड़ बीजे वगैरह होती है तो कुछ दिखाई नहीं देती है तो
0: जी जी, अभी क्या है बारिश का मौसम था ना, बारिश के मौसम में अपने आप ही अनचाहे पेड़ भी लग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं।
3: जी जी, दो महीने पहले काटे थे, फिर भी हो गए, बारिश भी उसके बाद फिर भी बड़े हो गए, तो वो फेंसिंग के पास से होती है तो उनको साफ सुथरा करती है, तो वो कैमरे में सब साफ सुथरा दिखाई दे।

0: देखते हैं आपका जवाब क्या है, ठीक है?
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी, रामपुरा से। व्यस्तता के बाद भी जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो बस इस विषय का सार यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, स्वयं को बदल दीजिए। सामने वाले की धारणाओं को आप नहीं बदल सकते, उनकी धारणा जो हमारे प्रति है सो है। हम सही है, हम सही कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे सामने वाला कितना भी छटपट आए। और अगर हम ही गलत हैं तो अपनी नज़रों में हम गिर जाएंगे सबसे पहले तो। हेलो हेलो,
2: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते, कैसे हो?
2: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी।
2: और आपने जो प्रश्न पूछा है इसका अभी जवाब दे सकता हूँ?
0: दे दीजिए, दे दीजिए।
2: हाँ, तो क्षेत्रफल के अंदर रसिया बड़ा है, और पहले अपने जन जन बस्ती के अंदर तो पहले चीन था, लेकिन अभी अपने अपना भारत है।
0: चलिए ठीक है फिरोज भाई, देखते हैं आपका।
2: और
0: हाँ जी,
2: बस एकदम अच्छे है। और एक के एकता एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं, मोहब्बत खुदा खुदा की मोहब्बत का फरमान हूँ मैं। खता अगर हो जाए तो बख्श देना यारो, गलतियों का पुतला एक इंसान हूँ मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। विषय के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विषय है, आप जाकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और खुश रहिए।
2: बराबर है, दूसरों की गलतियां अपने को देखना नहीं है, और अपने अंदर कितनी गलतियां हैं वो देख के अपने को चलना है, और खुशी से अपने को अपनी अपनी अपने खुशी से अपना जो जीवन बिताना है अपने को।
0: जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: देखो देखो बहन जी, के बदी का अंत है कहीं आस पास, नेकी का अंत नहीं, किताब नेकी की पढ़ले बंदे उसे उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं।
0: बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी।
0: तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और बस कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, दूसरों की धारणा हमारे प्रति कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना है, नेक कर्म करना है और सही मार्ग पर चलना है, फिर चाहे किसी की भी धारणा कैसी भी हो, उनको बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं छटपटाना है कि वो ऐसे है, वो ऐसे, वो क्यों नहीं बदल रहे, क्यों हमसे प्रेम नहीं करते, क्यों हमको मतलब हमारी भावनाओं को क्यों नहीं वो महसूस करते। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समय सब कुछ सिखा देगा, बस आप अपनी खुशी को गायब मत करिए और हमेशा खुश रहिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आज का प्रश्न है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में, लेकिन हम अपने श्रोता बंधु से पहले बात कर लेते। हेलो,
1: हाँ भुराराम बोल रहे हैं। उषा बहन जी, वो आप बोले थे वापस फोन करना, तो इसीलिए किया।
0: आप ऑफ एयर जुड़े थे, हमने कहा कि दो मिनट के बाद फोन करिएगा, ऑन एयर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़े नहीं। विषय तो समाप्त हो गया, कोई रेसिपी आप देना चाहेंगे?
1: नहीं, रेसिपी तो ये अपने वो क्या
0: करता। कुछ आपने जीवन में कुछ बनाया हो तो आप सिखा सकते हैं सबको।
1: अभी ऐसा तो सीखा तो क्या, अभी बाहर पुणे में 30-35 साल सर्विस किया, वहाँ कभी हाथ से बना के सब्जी अगर हाथ से बना के खाते थे, वो ऐसे की आती है सब्जी, ये बनाने को आती है।
0: हाँ तो कोई भी सब्जी बना दीजिए, सिखा दीजिए सभी को सात्विक सब्जी।
1: तो भी इतना क्या बोलो, अभी
0: कभी जीवन में बनाई हो तो सिखा दीजिए।
1: नहीं नहीं बनाई बोले तो पूरा 40 बरस निकाला, उधर कभी फैमिली साथ में रहते थे, कभी नहीं रहते थे, कभी अकेले रहते थे, कभी नाम आते ऐसे मतलब नहीं रहते थे, जब आपके बना के खाते थे।
0: जी जी जी जी,
1: बनाने आती है, दाल भी बनाने आती है।
0: जी जी जी जी,
1: सभी नाश्ता पुआ हुआ सब बना देता हाथ से।
0: क्या बात है, फिर तो पोहे ही सिखा दो। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो चलिए ये थे भुराराम जी ओर से। अगर आप लोग भी कोई भी रेसिपी सिखाना चाहते हैं तो जरूर सिखाइएगा, है ना, हमें बता दीजिए कि हम सिखाना चाहते हैं। हेलो, तो मैं आज आपको, देखिए अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं, गणपति जी के किस किस का भोग लगाते वो चीज़ें ही सिखाती हूँ। मीठी चीज़ें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं आपको सिखा रही हूँ बेसन का लड्डू, ठीक है, क्योंकि बेसन का लड्डू ऐसा है कि गणपति जी के भोग में भी चढ़ता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आजकल थोड़ा सा बच्चों का फास्ट फूड पसंद करने लगे हैं, लेकिन फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभार तो खाएंगे ना भाई, बड़े भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करवाओगे। तो आइए मैं आपको बेसन का लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो होती है ना उसको आप, चलिए सामग्री बता देती हूँ, चने की दाल, घी, पीसी हुई शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, तो ये हो गई सामग्री, चने की दाल, घी, चीनी मतलब पीसी हुई शक्कर को चीनी कहते हैं, ठीक है, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। अब बनाने का तरीका सिखाती हूँ। आप धीमी आंच पर कढ़ाई में चने की दाल सेकिए, मतलब धीमी आंच में आपको सेकना है, अगर आंच तेज करेंगे तो ऊपर से तो दाल काली काली हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक है, इसलिए कढ़ाई गर्म करने तक आप भले थोड़े से तेज रखिए, मध्यम, कढ़ाई का पेंदा थोड़ा मोटा होता है ना, तो पेंदा गर्म हो तब तक आप मध्यम आंच पर रखिए, फिर चने की दाल डालने के बाद धीमी आंच पर इसको सेकिएगा, सेकने की मेहनत है, ठीक है, लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे लेकिन सेकना तो पड़ेगा, तो धीमी आंच पर आप सेकिए, अच्छी तरह हिलाते रहिए, सेकिए बीच बीच में, आप अपना भी काम कर सकते हैं दूसरा, और इसको भी हिलाते रहिए बीच बीच में, और जब खुशबू आने लगे वैसे पता चल जाएगा, एक तो कच्चे कोई भी चीज़ होती है उसकी खुशबू पके हुए की खुशबू अलग ही हो जाती है, तो हल्के हल्के रेड दाने होने लगे समझ जाइए कि चने की दाल सिक गई है, ठीक है, उसको निकाल दीजिए, फिर इसको पीस लीजिए मिक्सर में, थोड़ी ठंडी हो जाए दाल मिक्सर में पीस लीजिए, पीसने के बाद अब इसमें घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स सब डाल करके अच्छी तरह इसका मिक्स कर दीजिए और फिर लड्डू बना दीजिए, जो साइज पसंद करते हैं लड्डू बना दीजिए और बस लगाइए गणपति जी के भोग। तो आप इस तरह बेसन के लड्डू बना सकते हैं जो गणपति जी का भोग में चढ़ता है, बूंदी के लड्डू भी चढ़ते हैं, बेसन के लड्डू भी चढ़ते हैं, मोदक भी चढ़ता है, चूरमा का लड्डू भी चढ़ाते हैं हम, और पेड़े भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह गणपति जी को रोज, क्योंकि 5 दिन हम लाते हैं, घर पर बिठाते हैं, तो 5वें दिन भोग लगाते हैं, आरती पूजा सब करते हैं और भोग लगाते हैं। तो बहने क्या करती है, घर पर ही बनाना ज़्यादा पसंद करती है। ऐसे भले वो बाहर से लाते होंगे, लेकिन गणपति जी को घर पर बिठाते तो एक भावना और भी बढ़ जाती है ना, तो लगता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊं प्रसाद और हाथों से बना करके चढ़ाऊं गणपति जी को और फिर सभी भक्तों को बांटूं। तो इस तरह आप लड्डू बनाकर गणपति जी को चढ़ा सकते हैं, फिर बांट सकते हैं। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। भोग लगाने के बाद ही खाना है, और अभी तो गणपति जी के दिन चल रहे हैं, तो गणपति जी का भोग लगाइए, भक्तों को भी बांटिए, आप भी खाइए। तो ये बन गए बेसन के लड्डू, और आइए फिर से ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, चावल कौन सी बीमारी ठीक करता है आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो बेसन का लड्डू बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है। तो बहुत ही सुंदर आप सभी ने सही जवाब दिया है, एक आध श्रोता बंधु को छोड़कर के बाकी सभी ने सही जवाब दिया है। भारत की जनसंख्या देखिए, क्षेत्रफल में रशिया सबसे आगे है और जनसंख्या में भारत देश सबसे आगे है। भारत की जनसंख्या 148 करोड़ है और रूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, माने 17,98,242 वर्ग किलोमीटर है। तो आप सभी का जवाब सही है। पहले तो मैं जवाब के लिए तालियां बजाना चाहूंगी। अब मैं नाम सुनाना चाहूंगी जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, उनका नाम सुनाना चाहूंगी। सुरेश भाई धानेराव से आपने सबसे पहले जवाब दिया है और आपका जवाब सही है। फिर दीपा जी कप्पासन से, अलका जी कप्पासन से आपका जवाब भी सही है। भूरीलाल जी मानपुर से आपका आधा जवाब सही है, आपने कहा है कि भारत देश सबसे आगे है, नहीं चाइना सबसे आगे है। रशिया का तो जवाब सही दिया है लेकिन चाइना सबसे आगे है, लेकिन चीन नहीं, अभी भारत देश आगे है। फिर सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, सगुना बहन जोटाना से, भूरा राम जी और से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, ज्ञानेंद्र जी यादव, सुरेश भाई धानेराव से बोल गई, दयाराम जी रामपुरा से, फिरोज भाई पालनपुर से। आप सभी का जवाब भी सही है और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए भी ढेर। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी, आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। कर्म परछाई की तरह सदा हमारे साथ रहता है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म की शीतल छाया में चलो, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करो। अब मैं आपको गणपति पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अनत भवन सु भक्तोरी पत राखनिया। तो देखे ये भजन तो मैं कल आपको सुना चुकी हूँ, इसलिए ऑन द स्पॉट में चेंज कर रही हूँ। आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर भजन। यहाँ आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करती तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा।

की तुम ही तो लाज बचाते, अब लाज आज रख मेरी भी, अब लाज आज रख मेरी भी। संकट ने मुझको घेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। हे मात तुम्हारी पार्वती, शंकर जी पिता कहाते, तुम मूषक चढ़ के आओ गणपति, तेरे भक्त तुम्हें ही बुलाते। अब आकर भोग लगाओ गणपति, बालक जान के तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। जो

वो सफल नहीं हो पाते। उषा की लाज राख प्रभु तेरी शरण में डाला डेरा। प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। यहाँ आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करती तेरा। प्रभु

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हाल कैसा है जनाब का? अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
3: अरे, इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
4: आई मासा।
3: अरे, चाय मुझे पिलानी है, मेरी साड़ी को नहीं राजकुमारी।
4: हाँ, ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
5: अरे बेटा, ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
6: दादी, मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
7: ए राम।
4: चल शैतान, स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
6: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
3: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
8: शांति, शांति।
9: अरे शांति, क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
10: अरे राजकुमारी।
4: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
6: नहीं मम्मी, थोड़ा और सोना है।
11: 10 मिनट और बस।
4: अरे चलो, 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
6: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी, 6 ही तो बजे है।
4: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
6: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
12: हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो, अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
9: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
13: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
14: इनको मैं बताती हूँ।
13: अरे दीदी, आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
14: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
9: हाँ, वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
15: अरे भाई साहब, किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
16: लो जी, खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गई हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
2: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं?
15: भाभी जी, आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
9: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
17: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
15: हैं? क्या जी?
17: नहीं नहीं, मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
14: हाँ, कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
18: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी, आप तो टैलेंटेड हो।
2: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं, ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
18: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ, ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
3: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
17: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो।
3: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
16: ला रही हूँ मासा।
17: अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे।
14: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
9: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
12: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
2: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
12: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना
16: जी। मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
9: कुछ कहा राजकुमारी?
16: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
17: ओ ओ ओ ओ ओ,
3: अरे ये कह रहा है ऊपर।
18: अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
5: अरे उसको बैठना है।
17: ओ
16: हाँ, लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है, अरे कोई और फल चाहिए क्या?
18: पैर में दर्द है क्या?
16: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
10: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
16: अरे पिताजी कहाँ गए?
5: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
16: पापा कह रहे, वो लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे पापा पापा पापा वाला?
5: पापा कहते हैं।
16: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
14: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
15: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
2: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पाँव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
14: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बस सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म।
3: हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, यहाँ अब ना कोई सहारा है ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं।
2: और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में, उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं बात मत पूछो।
4: दीदी, रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे।
5: अच्छा। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है?
6: दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं।
5: क्या, ऐसा क्यों?
6: वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं।
5: अरे, हम है ना आपके साथ।
6: हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं।
5: ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।

0: पर अभी ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर छोड़ना ही पड़ेगा। ना आदमी रहा ना सहारा, अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गांव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे।
1: हाँ वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा।
0: सरिता जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
2: ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है?
0: बहन जी अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ?
2: अकेली क्यों, भगवान है ना साथ में।
0: हाँ हाँ भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी? है
2: इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं? लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन के हर समस्या का समाधान है।
0: हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस।
2: माता जी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना।
1: हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी।
0: यहाँ ये अकेली एक औरत मतलब कर भी क्या सकती है?
1: हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा।
2: आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है।
3: वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं।
1: लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं है ना।
2: जब जिम्मेवारियां आती है तो इंसान खुद ही सब कुछ सीख जाता है, और सरिता जी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, वो गांव में जाकर करेगी भी क्या, यहाँ रहेगी तो अपना साड़ी का दुकान चलाएगी।
0: हाँ बात तो आपकी सही है, हम भी भला कब तक साथ दे पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत रखे तब ना।
2: क्या आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी सुनी है?
3: जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी कहानी?
2: हाँ उनकी जीवन कहानी।
1: हाँ मैंने न्यूज में देखा था, वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की आदिवासी समाज की साधारण सी महिला हैं, लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
2: हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहाँ वो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दो जवान बेटे और फिर अपना पति, क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है।
0: आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए।
4: हाँ दीदी मेरे अंदर अब बात ही नहीं रही।
2: हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
3: क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना।
2: जी जी क्यों नहीं, ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है।
4: दीदी हम जरूर सीखेंगे उसे, मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी, अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी।
0: लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है।
2: ऐसा क्यों, स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है, हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है।
4: हाँ जी दीदी मैं समझ गई, अब मैं डर कर नहीं हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी।
0: क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगे?
2: सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है, जिसके साथ ही है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
3: ये हुई ना बात, दीदी आपने तो सबकी सोच ही बदल दी।
1: दीदी अब बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहां पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी।
2: क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।
1: मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ। पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है।
0: बहन जी, आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है। न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया। अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा।
5: आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है। हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता और ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं।

यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार अब ये मौका मिला है कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए और एक शानदार कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो हम हर बार कोशिश करते हैं कि अलग अलग पर्सनालिटीज को, अलग अलग सिचुएशंस को आप सबके सामने ले करके आते हैं इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से, और ऐसी ही कोशिश हमारी आज भी होने वाली है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आप सबको ये प्रोग्राम पसंद ज़रूर आएगा। बाकी तो आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। और अब कोशिश ये भी रहेगी कि अगर हमें हमारे मेहमान मिलते रहेंगे तो प्रोग्राम रेगुलर होता रहेगा। खैर, आप सब जानते हैं श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम एक ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसको सिर्फ ये सोच करके प्रस्तुत किया गया था कि एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में परिवार का, सोसाइटी का या उसके आसपास के माहौल का क्या रोल होता है, और वो किस तरह अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि जॉब मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जीवन साथी की तलाश और उसमें भी एक भरोसेमंद

0: थकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेटेड भी रहना चाहिए और उसके लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम किन से मिलवाने वाले हैं। श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका हमराही प्रोग्राम में स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर चिराग मित्तल सर और एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मित्तल मैम। तो चिराग सर और मोनिका मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
2: थैंक यू।
0: मैं चाहूंगा सबसे पहले चिराग सर, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं।
2: संदीप त्रिवेदी जी का नमस्कार और रेडियो मधुबन का थैंक्स कि उन्होंने हमें आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया। मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मोना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, दिल्ली NCR। एक साल से कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 और शेयर ट्रेडर।
0: जी क्या बात है सर। तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है।
2: मैं संदीप जी रेटिनोसिस पिगमेंटोसा ब्लाइंड हूँ।
0: ओके।
2: तो जब पैदा हुआ तो बहुत रेटिना में काफी छोटा डैमेज था जो एज के साथ बढ़ता गया और बाय एज ऑफ अराउंड 30 आई गॉट ऑलमोस्ट 100% ब्लाइंड।
0: ओके। 30 साल की उम्र में आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गए।
2: जी।
0: ओके। तो आरपी का तो सर सुना है कि मतलब कोई इलाज है नहीं शायद, इसके बारे में आपने कितना कुछ पता किया सर, या आपकी फैमिली ने क्या कुछ जाना समझा?
2: दिल्ली में एम्स मूलचंद से लेके साउथ में एलवी प्रसाद से लेके यूएसए के डॉक्टर्स काफी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, जो टेस्ट हो सकते थे सारे करवा लिए। एक ही सवाल बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बस 5 साल में इलाज आ जाएगा। 5 के 50 साल तो मेरी जिंदगी का ही हो गया, आज तक कोई इलाज आया नहीं। और डॉक्टर्स का जवाब अब तक सेम है, आई डोंट नो।
0: जी, थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि आप बेसिकली मतलब कहाँ से हैं।
2: इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे। पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मम्मी स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों ही क्लासरूम के असिस्टेंट ऑफिसर्स थे। और मेरा बचपन की आप बात करें तो मेरा बचपन एक राजकुमार की जिंदगी से कम नहीं था। डब्बाली, फतेहबाद वगैरह में जब क्लास वन एग्जीक्यूटिव एक्सिन होते थे तो क्योंकि मैं लिटिल बैंड हुआ हूँ तो उस टाइम पर मैं बाइक कार वगैरह भी चला लिया करता था छोटे होते।
0: अच्छा।
2: तो उस टाइम पर अपना साथ में गन्स, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स,
0: क्या बात है,
2: अपने पिक्चर हॉल में अपना शो सेट करवा लिया, किसी फार्म हाउस से कुछ भी उठा लिया। Something like that, पूरा का पूरा उस टाइम पे प्रिंस की तरह लाइफ थी। और मेरे डबली स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे श्री रणवीर सिंह, वो कहते थे कि चिराग, योर फादर हैज मेड यू इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट टू मेंटेन दिस पोजीशन यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
0: राइट, बिल्कुल सही कहा सर उन्होंने कि उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तो सर, जब इतनी अच्छी पोजीशन थी तो मतलब जो थोड़े दबंगई टाइप जो माहौल होता है उसमें भी कभी पड़े आप या नहीं, उससे दूर ही रहे?
2: हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है, यू आर राइट। स्कूल में एक दो बार कान खींचा, स्टेज पे बुलाया गया था करने के लिए, क्योंकि असर आ ही जाता है वो सब करने में।
0: जी जी जी जी जी।
2: बट इसका कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए कि ज्यादा उस ग्रुप के अंदर में ज्यादा गया नहीं। हालांकि मैं अपने टाइम में टाइकोंडो चैंपियन रहा था ब्लू स्ट्रिप के अंदर में, कराटे वगैरह करने का तो ये शौक हमेशा रखता था।
0: जी,
2: बट ठीक है, जो भगवान करता अच्छे के लिए करता है हमेशा।
0: जो गवर्नमेंट जॉब मिला आपको पहला, वो किस एज में मिला?
2: 2016 40
0: की एज में। जनरली इस एज में आते आते लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं या मेहनत करना कम कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा और आखिरकार जो एक अच्छे से अच्छी पोस्ट होती है उसको हासिल किया।
2: उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोनिका मोना को जाता है।

0: मेरे साथ बैठे हुए हैं,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: बढ़िया। तो फिर
0: जब
1: इस पे चर्चा फिर आगे करेंगे जरूर।
0: क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे, तो जैसे फादर साहब ने मेरा बिजनेस सेटअप करवा दिया था, साइबर
1: जी।
0: कैफे और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कोचिंग का। और जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लाइन गई, तो मोनिका ने बताया कि फैमिली के पास कुछ रिसोर्सेज भी थे बिजनेस फेल होने के बाद, कुछ सालों के बाद में जब बिजनेस चले शुरू हो गई। वो कह रहे थे कि आप कुछ और बिजनेस सेटअप कर लो, पर उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि बिजनेस सेटअप करोगे पहले की तरह ये वाले ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस कर चुका था, 8-10 बिजनेस में कर चुका हूँ, साइबर कैफे, वीडियो गेम, शेयर ट्रेडिंग का टर्मिनल, एम इंडिया का मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स, और उसके अलावा भी कई तरह के जो काफ़ी सारे काफ़ी टाइम चलाए हुए बिजनेसेस। तो उन्होंने समझाया कि आप, उन्होंने मेरी कमजोरियों को नहीं क्षमताओं को पहचाना है, कैपेबिलिटीज को पहचाना। उसने कहा कि आप में टैलेंट है, आप क्वालिफाई कर सकते हो जॉब्स को, ब्लेंड होने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करो, और योर एफर्ट एंड कोऑपरेशन, रिजर्वेशन की एज रहते रहते सरकारी गाड़ी में सवार हो गया और
1: क्या बात
0: दिल्ली।
1: है, बहुत जबरदस्त सर। बहुत मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि अब मोनिका मैम का जिक्र चला है तो हमारे श्रोताओं को अब मोनिका मैम से भी मिलवा देते हैं। जी मैम, एक बार फिर आपका स्वागत, और जरा आप भी अपनी जर्नी और अपने बारे में बताइए प्लीज।
2: धन्यवाद सर। जैसा कि बताया, मैं चिराग की वाइफ मोनिका हूँ, और जब मेरी शादी के लिए ये आई थी मुझे देखने के लिए, तो मुझे पता था कि आरपी है और थोड़ा सा आईज विजन में प्रॉब्लम है, बट तब भी जब ये बात इज लाइक हमारे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है लाइक लड़की का, कि
1: अच्छा।
2: इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तब मैंने रियलाइज किया कि बहुत टैलेंटेड है।
1: अरे वाह, उन
2: तो
1: क्वेश्चंस को देखते ही आप समझ गए।
2: हाँ, तभी मैंने समझ लिया था, एंड तो मैंने कहा शादी करनी है तो यही करनी है मुझे,
1: अच्छा।
2: तो तब मुझे लग गया था। और तब साइबर कैफे था इनका, अच्छा तब भी बहुत 2001 की बात है, तब कंप्यूटर्स आए थे हमारे यहाँ नेट, तो तब लगा कि हाँ ये बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो बहुत अच्छा सा रन कर रहे हैं। और 10 साल के बाद धीरे धीरे नेट हर घर में आने लगा, इंटरनेट, फिर
1: राइट
2: बंद होने लगा।
1: जी।
2: तब मैंने देखा कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल्स में बहुत ज्यादा है, आईक्यू बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 24 आवर आप किसी भी बिजनेस में दोगे और उसके बाद आप उसके अंदर एड ऑन करते चले जाओगे, लेकिन जहाँ हो वहीं की वहीं रहोगे, तो आप
1: जी
2: इससे अच्छा 24 आवर स्टडी में दो और कोई अच्छी पोस्ट लो। अब इसमें भी ट्विस्ट है सर, जब मैं छोटी
1: जी
2: थी तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनके पापा SBI बैंक के अंदर मैनेजर थे, तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी किसी SBI मैनेजर से हो, बिकॉज उनको
1: मैनेजर
2: एंट्री हो मिलती है घूमने के लिए।
1: भी जी
2: तो मेरा ये था कि SBI वाले बड़े अच्छे क्रीमी लोग होते हैं, तो शादी के बाद मैंने इनसे कहा कि आप बैंक की तैयारी कीजिए और 100% आप उसमें निकलेंगे और SBI बैंक के ही एग्जाम्स देने आपको।
1: अच्छा।
2: तो छोट भगवान ने, उसमें इनका रिजल्ट आया, पास हुए, असिस्टेंट मैनेजर लग गए सर।
1: जी जी जी
2: दूसरा
1: जी
2: ट्विस्ट ये कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की शादी से पहले प्रोफेसर थी सर,
1: अरे क्या बात है।
2: तो मुझे हुआ कि ये इतने पॉलिटिकल की इनको नॉलेज है, न्यूज वगैरह जितनी भी चैनल्स देखते थे इनको हर चीज की नॉलेज थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम्स दो, नेट क्वालिफाइड करो आप और आप प्रोफेसर लग जाएंगे सर। वो एग्जाम भी दिया, STET, CTET, नेट, सारे एग्जाम से क्लियर करते चले गए सर। मैं बुक्स रिकॉर्ड करती
1: क्या
2: थी, ये पढ़ते थे और ये मार्क्स लेते चले गए। जो सपने मैंने देखे ना सर, वो
1: जी,
2: सब इन्होंने पूरे किए सर।
1: गजब, बहुत ग्रेट मैम। लेकिन अब वो आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग थी तो फिर मैडम पढ़ते नहीं तो करते भी क्या।
0: इसीलिए
1: तो नहीं, वो स्वीट हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मतलब इतने हम्बल कैसे हैं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
2: सॉरी सर, अंबल तो आप भी बहुत हैं सर,
1: नहीं,
2: नेचर ही होता है सर, हर ये तो अपना
1: बहुत
2: अपना
1: बहुत
2: नजरिया होता है
1: मुझे
2: देखने का सर।
1: एक्चुअली बड़ा, जब भी मैं नई फैमिलीज के साथ मैम इंटरेक्शन करता हूँ तो आप दोनों से तो मेरी मुलाकात हुए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और मुझे थोड़ा ये था कि मैं ये प्रोग्राम कर भी पाऊंगा कि नहीं, 1 घंटा बिता पाऊंगा कि नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, मजा आएगा। बात करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, तो मैम आप थोड़ा सा बताएं, आप भी हरियाणा से हैं या कहीं और से हैं?
2: सर मैं राजस्थान से हूँ।
1: क्या बात है, नजर मैम हम भी राजस्थान से।
2: क्या बात है सर, राजस्थान में कहाँ से सर?
1: मैं अजमेर में हूँ।
2: क्या बात है सर, तभी तो राजस्थान वाली होते ही बहुत मीठी है ना सर।
1: ये जो रेडियो चैनल है ये भी राजस्थान में है, रेडियो मधुबन माउंट आबू में, आपने नाम सुना ही होगा और गए भी होंगे शायद।
0: आप बागड़ी में ही बात कर सकते हैं।
2: मारवाड़ी में सर।
0: मारवाड़ी में,
1: मारवाड़ी। लेकिन राजस्थान और धान से कहीं चाहिए ना सर कि अपने यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो खैर, तो राजस्थान में कहाँ से हैं मैम?
2: सर गंगानगर से।
1: गंगानगर, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए मैम कि पॉलिटिकल साइंस से आप तो पहुंच गए ये जो प्राइवेट सेक्टर है, एमडी बन गए आप, और सर जो है कैफे चलाते चलाते पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, तो ये इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या?
2: तो कहानी तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था
1: जी,
2: और चिराग कर रही थी बीकॉम बीबीए एमबीए कर रही थी बीबीए के बाद, तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं और मुझे था कि ये उसमें क्रैक कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं है विद जेआरएफ
1: जी मैम,
2: तो इन्होंने वो क्लियर किया। तो ऐसी जर्नी बनी कि मैंने जब इनसे कहा कि आप पॉलिटिकल में कीजिए तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। उसके लिए वापस से 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीए एमए ये सब इनको करनी पड़ी सर, बीएड एमएड सब कुछ।
1: ये बहुत बड़ी बात होती, नहीं तो लोग करते नहीं है इतना, तो छोड़ देते हैं लोग तो। जी मैम,
2: इनकी डेडिकेशन इतनी जबरदस्त थी सर, सुबह 4 बजे उठते और 8 बजे तक अपनी स्टडी करते, 8 बजे शॉप पर जाते सर, रात को 10 बजे वापस आते, सिर्फ सुबह के जो 4 घंटे होते थे उसके अंदर इन्होंने अपना 100% दिया, जो भी आते हैं अपनी मेहनत से हैं सर
1: जी।
2: मतलब मेरे तो सिर्फ सपने थे, कहते हैं ना बच्चों के साथ माँ बाप अपने सपने पूरे करते हैं, बट मेरे तो हस्बैंड ने ही ये सपना पूरा कर दिया। तो बच्चे अपना करें ना करें मेरी लाइफ सेट है सर।
1: आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर ही हो रहे हैं।
2: और इसमें टेस्ट है सर, ये सब सपने मेरे छोटे होते के थे, बड़े होने के बाद मैंने कहा कि देखो ये सब बचपन के सपने थे, आपने पूरे कर दिए, आप बड़ी हो गई हो, सपने भी बड़े हो गए हैं, आइए इसका एग्जाम दीजिए आप सर। वो भी दिया इन्होंने, वो भी क्लियर किया सर।
1: ग्रेट,
2: पर वो था कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा थी, तो किसी ने सजेस्ट किया हमारे अंकल की प्रोफेसर की जॉब ठीक है, इसमें ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, और एक टाइम 2 बजे के बाद तुम फ्री हो जाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगी, तो ये प्रोफेसर की जॉब रखो। तो हमने SBI भी छोड़ दिया, IAS वाला भी छोड़ के सिर्फ प्रोफेसर पे फोकस किया इन्होंने। फिर
1: और भी कोई मैम सपना बचा है?
2: अभी सपना सर आप सच बताऊं तो एक सपना और था बचपन का, वो भी देखो वो भी ये था कि फॉरेन ट्रिप अगर मुझे लगाना है तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाऊंगी सर, और कहीं नहीं।
1: क्या बात है, ग्रेट।
2: चिराग जी ने मुझे कहा कि थाईलैंड चलो, मॉरिशियस चलो, और अपने आसपास के जितने भी हैं यहाँ पे चलो। मैंने कहा नहीं स्विट्जरलैंड, कहते ठीक है। फिर जो फॉरेन ट्रिप लगा उसमें सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड पे ही पैर रखा सर, वो सपना भी इन्होंने पूरा किया सर मेरा।
1: मतलब लगभग सारे सपने हो गए पूरे
2: सर। एक सपना और था, गाड़ी चलाना सीखना, वो भी चिराग ने सिखाई मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल की गुड़िया थी हमारी, गोद में लेती थी मैं, चिराग को कम दिखाई देता था बट फिर भी मैनेज करके, और एक खाली ग्राउंड में ले जाते थे गाड़ी को, वहां मुझे दे देते थे, और मुझे लगता था डर कि अगर ये गाड़ी कहीं लग गई तो पापा क्या बोलेंगे।
1: हम सही है,
2: पापा से छुपकर गाड़ी सीखते थे सर। तो पापा को बताया चिराग ने कि मैंने मोना को गाड़ी सिखा दिया, अब आप देख लो, फाइनल टेस्ट देना है तो दे दो। तब उन्होंने देखा, कहते ये कब सीखा, कहते मैं शॉप पे आता था, सिखा दी इनको गाड़ी, और सर आज गाड़ी इतनी बढ़िया चलाती हूँ, टच वुड कभी किसी के साथ भी नहीं लगी मेरी गाड़ी।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: सारे सपने सर चिराग जी ने पूरे किए सारे।
1: ग्रेट, मतलब क्या कहें, ये तो एक ऐसा बहुत रेयर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, लेकिन वाकई में ईश्वर की बहुत कृपा है आप दोनों पर, ये अच्छा लग रहा है देख करके। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही रेडियो मधुबन पर, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद भी आ रहा होगा। आज हम चिराग जी और मोना जी से, यानी मोनिका मैम से बातें कर रहे हैं। चिराग सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं, और मोनिका मैम एक कंपनी में जिसका नाम है ईकॉम स्ट्रीट इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। सही कहा मैंने मैम?
2: यस सर, नोएडा बेस्ड कंपनी है
1: जी,
2: और इसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।
1: चलिए तो अब शुरू करते हैं बातचीत मैम, कि ये दिव्य दृष्टि कैसे मिल गई आपको, कि आपने चिराग जी को जब पहली बार मिलने आए तो परख लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया कि भाई ये बंदा तो कुछ करेगा आगे चल करके। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि उस समय आपको ब्लाइंडनेस के बारे में इन जनरल कितना नॉलेज था?
2: सर अब क्या बताऊं सर, ये कहानियां भी ऐसी ऐसी लाइफ में जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है आपके साथ, और स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि ये सब ईश्वर ने कैसे किया, क्यों किया। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो एक टीवी सीरियल आया करता था जिसके अंदर मुझे इसका नाम भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, बस जरा सी झलक याद है सर। उसके अंदर था कि कुछ ऐसा शहर था जिसमें सिर्फ ब्लाइंड्स रहा करते थे, और उसके अंदर जिसको दिखाई देता था उसको उस शहर में रखना क्राइम था। ठीक है, तब छोटे होते आया था कि ब्लाइंड की लाइफ कैसी होती है, मुझे वो देखनी है। अंदर से कुछ ऐसा निकला और जो भी हुआ लाइफ के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे मिल गई। और जब आप ये बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन क्या था सर,
1: आपको ब्लाइंडनेस के बारे में कितना अंदाजा था जब चिराग जी का रिश्ता आपके सामने आया, क्योंकि रिश्ते जाहिर है और भी आए होंगे या हो सकता है तैयारी चल रही होगी, तो आपको कितना नॉलेज था? आपने कभी कुछ खुद से सोचा कि यार कहीं ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो अच्छा खासा विजन है, बाद में क्या होगा, या कुछ भी मतलब आपको आइडिया था क्या?
2: सर इतना आइडिया था कि विजन थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो स्पेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा इतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना हो जाएगा, ये कैसे ऐसा हो जाएगा, पर ये था कि शायद इलाज आ जाएगा 2 साल में 3 साल में तो ठीक हो, जैसा चिराग ने बताया कि डॉक्टर्स कहते रहे थे 2 साल 3 साल में ठीक हो जाएगा।
1: हम समझ रहे हैं 25 साल पहले की उन भावनाओं को फील कर रहे हैं, और थोड़ा मुझे लगा आप इमोशनल भी हो रहे हैं शायद, लेकिन खैर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
2: बट सर कभी इनकी ब्लाइंडनेस को लेकर इतना फील नहीं हुआ कि ये दिखाई नहीं दे रहा है या काम नहीं कर पाते हैं, इन्होंने अपनी इस चीज को कमजोरी कभी नहीं माना सर, हमने हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में ही लिया कि चलो जो भी हुआ है, लेकिन हमें दूसरी चीज हमेशा दी है भगवान ने, एक चीज ली है तो दूसरी दी है। तो इनका जो ब्रेन है ना सर वो आज नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा सही है, जो देख पाते हैं उनसे ज्यादा इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया सर, मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ सर।
1: बहुत अच्छे मैम। और जब सर का रिश्ता आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था मैम, उनको भी तो पता होगा ये सब?
2: हाँ उनको भी पता था, बट ऐसा इतनी वीक नहीं थी ना सर उस वक्त इनकी आईज
1: तो नहीं। आज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैम प्लीज आप अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, आज हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत अच्छा विजन है मैम, उनकी मतलब यूं समझिए कि एक आंख बिल्कुल सही है, एक आंख थोड़ी सी खराब हो सकता है, वो उन तक को भी, और जॉब की तो फिर बात मत करिए, जॉब तो बहुत अच्छा है ही मान लीजिए, फिर भी उनको जब वो रिश्ता लेकर के जाते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि यार ये ब्लाइंडनेस आड़े आ जाती है हमारे, तो उस केस में आपके यहाँ भी तो ये कुछ अवेयरनेस इस बारे में थी या नहीं, कुछ भी ऐसा सोचा नहीं आप लोगों ने, सब ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम।
2: एक्चुअल में सर देखो मम्मी पापा का उस वक्त आप भी जानते होंगे 25 साल पहले इतनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती थी,
1: नहीं होती थी
2: लड़की के साथ, राइट?
1: बिल्कुल सही है मैम।
2: और जो रिश्ता आया था वो मेरी कजन मौसी थी, यानी कि मेरी मम्मी की कजन सिस्टर थी वो
1: जी,
2: और चिराग की चाची लगती थी वो, तो अच्छा हमारी फैमिली के अंदर ही ये रिश्ता हुआ था, उन लोगों में आपस में क्या बात हुई सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट उन्होंने ये था पूछा था कि तुम ठीक हो, खुश हो इस रिश्ते से, तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत एजुकेटेड है पूरी फैमिली, एक्चुअली में एजुकेटेड थी, जैसे हम कहते हैं ना सर रिश्ता सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, पूरे खानदान से होता है, पूरी फैमिली से होता है सर,
1: फैमिली से होता है, ये बहुत सही कहा मैम आपने, बहुत सही कहा जी।
2: तो इनकी मम्मी पापा, इनकी दोनों सिस्टर, सबका नेचर बहुत ही, आज भी मैं कहती हूँ कि वो जबरदस्त था, और मैं जब मेरे फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे, तब भी मैं उनको कहा करती थी, इवन कोई भी रिलेटिव घर पे आता था मैं हमेशा कहती थी कि शायद मैं भगवान में एक टाइम गलती निकाल सकती हूँ, लेकिन अपनी फादर इन लॉ मदर इन लॉ में नहीं निकाल सकती सर। वो मेरे लिए लेवल पे थे सर।
1: बहुत खूब मैम।
2: और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया सर कि जो मैंने मतलब हम लोगों ने ये रिश्ता लिया है या यहाँ शादी की है ना सर, 1% भी पछतावा नहीं है। और शायद ऐसा घर परिवार बहुत ही किस्मत से मिलता है। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ा रहे। मैं गंगानगर से थी, राजस्थान में आपको पता है इतना नहीं होता हमारे यहाँ लड़कियों पे, पर इन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया, कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारी बहू है। एक बेटी से भी ज्यादा दर्जा दिया सर हर चीज ने। तो फैमिली से हुआ है सर ये जो शादी हुई है, पर्सन से नहीं हुई सर।
1: बहुत खूब मैम। ये जॉब आप पहले से करते थे या ये भी शादी के बाद ही शुरू हुई आपकी जॉब?
2: ये शादी के बाद ही सर, हम दोनों ने एक साथ ही जो भी किया अपनी ग्रोथ एक साथ किया सर। बहुत चीजों में चिराग ने मेरी हेल्प की है, बीएड एमएड करना, हम लोग एक साथ एक कॉलेज में जाते थे, लोग हमें हस्बैंड वाइफ कहते ही नहीं थे, कहते तुम तो फ्रेंड्स लगते हो, लगते ही नहीं हो कि तुम हस्बैंड वाइफ हो। हमारी नोक झोंक सब कुछ ऐसे होती थी जैसे फ्रेंड्स में होती है सर। एक साथ बैठना, एग्जाम्स देना, मतलब टोटल हम लोगों ने एक साथ ग्रोथ की। और आज बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं सर, मेरी ट्विंस बेटियां हैं और बेटा है, और ट्विंस लड़कियों ने यूएस में फ्लोरिडा से एमएस कर रही है सर वो दोनों।
1: क्या बात है मैम, ग्रेट, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और सच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप दोनों को, आपकी फैमिली को यूं ही मिलती रहे। ये जो कंपनी है ये आप ही ने स्टार्ट की थी मैम?
2: सर ये की थी हमारे फादर इन लॉ ने रिटायरमेंट के बाद से।
1: अच्छा ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए हम चिराग जी के पास जाएं उनसे पहले कि इस कंपनी का कामकाज क्या रहता है, आप करते क्या हैं दरअसल?
2: सर ये आईटी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन सर।
1: अच्छा एंड्रॉइड आईफोन सबके लिए?
2: हाँ यस सर सबके लिए, वेबसाइट बनाना ये सब करते हैं।
1: आपने भी डेवलपमेंट सीखा मैम या सब बाकी लोग करते हैं? डेवलपर
2: टीम रखी हुई है सर हमने।
1: ओके ओके,
2: तो 30-50 लोगों की टीम है सर, कुछ यूएस के अंदर भी है, यूएस बेस्ड भी है कंपनी, यूएस से ही हमारे क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, इंडियन क्लाइंट्स नहीं होते सर।
1: तो चिराग जी के लिए भी कुछ बनाया मैम एपी के?
2: इस सारे चिराग जी का ये सर और करेंगे सब बन जाएगा।
0: मैं राष्ट्रपति
1: नहीं नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐप
2: नहीं, ऐसा अभी रिक्वायरमेंट नहीं आई चिराग जी को।
1: पूरी कंपनी है
0: चिराग जी के पास। मैं प्रेजेंट हूं अवार्ड देने के लिए।
1: हां मैं वही तो कह रहा हूं, पूरी कंपनी है चिराग जी के पास।
0: राइट, पोस्ट बनाई है मेरे प्रेजेंट।
1: चलिए तो मैं पूछ रहा था सर कि जब शादी की बात चलने लगी घर परिवार में तो क्या डिस्कशन मतलब रहते थे, ये कभी डिस्कशन में था पॉइंट ब्लाइंडनेस वाला या एज अ नॉर्मल जैसे आपने कहा राजकुमारों की तरह रहे हैं तो फिर मतलब वैसे ही सब कुछ चल रहा था?
0: ऑब्वियसली बात है, जब कभी कोई चीज लेने में दिक्कत आई नहीं आज तक तो लड़की लेने में कहां से आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: बिल्कुल। अच्छा फैमिली में कोई भी डिस्कशन इस तरह का नहीं हुआ?
2: नहीं सर, चिराग ओनली 23 के थे और मैं 22 की थी सर।
1: जी मैम,
2: तो बचपन में ही होगी, चिराग तो फन में बस देखने आए थे कि फर्स्ट टाइम चिराग का था लड़की देखने आने का और फर्स्ट टाइम ही मेरा था सर, हम लोग सेकंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। चिराग को ये था कि मैं जाऊंगा, लड़की पसंद आएगी तो ठीक, नहीं तो मैं रिजेक्ट करके आ जाऊंगा।
1: पहली बार में दोनों को दोनों पसंद आ गए।
2: यस सर।
0: जस्ट कहते ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन।
1: यस बिल्कुल सही कहा सर, ये वाकई में मतलब लगता है आप दोनों को और इस तरह की जोड़ियों को देख करके ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच कहा है कहने वाले ने। जी तो चिराग सर आपका क्या ओपिनियन था मैम इससे मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद? बेसिकली फिर इंटरव्यू में मतलब मार्क्स वार्क्स कितने दिए आपने?
0: देखिए 3 राउंड्स हुए।
1: अच्छा,
0: एक के बाद एक अलग अलग ड्रेसेस में आई मोनिका, अलग अलग रूम में बिठाया किया और काफी सारी पॉलिटिक्स से लेके जनरल लाइफ वगैरह सबके बारे में बातें हुई, डिजीज के बारे में बताया कि मुझे पिगमेंटोसा है, कि इस वक्त आगे डिजीज बढ़ेगी, अभी घर में बाहर थोड़ी दिक्कत आती है, घर में और अपने काम करने में कोई इशू नहीं है
1: जी,
0: उस टाइम तक ही था। हमने कहा कि ठीक है बाद में हम हाना का फैसला बाद में करेंगे, चार करने का टाइम रखते हैं। गैप ऑफ अराउंड सलाह मशवरा के बाद में हम दोनों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए पेरेंट्स को।
1: शादी कितने महीनों में हो गई?
0: 7 जनवरी को शायद देखा था ना, और 15 अप्रैल को शादी हुई।
1: ओके ओके 2001।
0: यस
1: ग्रेट, बहुत खूब। तो चिराग सर, फिर मतलब वही बात आती है बार बार, मतलब कि मैम को तो ये उम्मीद थी कि आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आपको खुद को भी क्या उम्मीद थी कि आप ये सब अचीव कर लेंगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना लगभग 38-40 की एज में, एक मतलब स्टूडेंट की तरह एग्जाम देने जाना, और फिर उसके बाद भी कॉलेज एजुकेशन का भी एग्जाम आपने क्लियर किया और नेट सेट सब कुछ, मतलब ये आपने खुद को कैसे समझाया?
0: देखिए, लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि रिजर्वेशन होती है हमारे लिए, दो चैलेंज के लिए। जब मैं 2010 के अराउंड में ब्लाइंड हो गया, तब इसका क्रेडिट मोनिका को जाता है। मोनिका पापा के साथ बैंक में गई थी, वहाँ पे मांडवी को देखा जो भी सी में एज ए पीओ काम कर रही थी।
1: बिल्कुल, मांडवी गर्ग।
0: मांडवी गर्ग, यस यस,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी एक ग्रैंड लड़की से मिली हूँ जो बैंक में लगी हुई है, आप उससे मिल कर आओ। तो मैंने उससे टाइम लिया, रेफरेंस से की मिल के आई थी। तो मांडवी ने मुझे कहा ठीक है, आप घर पे आके मिल लो। हम दोनों अर्बन स्टेट में रहते थे, हिसार में। तो उसके घर जाके मिला, उसने मुझे गाइड किया, सारा बताया। और एक हमारे मदनलाल गोयल साहब हैं जो उस टाइम पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके पास रेफर किया। तो उन्होंने कहा कि आप एमए दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। तो उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई दोबारा शुरू करो। तो और मांडवी ने मुझे गाइड किया एनएबी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, जॉब सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, नेसेसरी कॉन्टैक्ट दिए, टेक्निकल होल्डिंग दी, जो थोड़ा हेल्प की कराने में ग्रेटफुल टू। और उसके बाद में पापा को बताया कि आप इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाओ। तो फिर 2010 में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पापा ने बनवाया, पढ़ाई दोबारा शुरू की आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 11 इयर्स। 99 में मैंने IMS गाजियाबाद, जो देश के नंबर 2 कॉलेजेस में आता है, वहाँ से BBA किया था। और उसके बाद में IMT गाजियाबाद, जो देश के टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता है, वहाँ से PGDBM किया था। तो गैप ऑफ 11 इयर्स आई स्टडीड, पढ़ाई अगेन अपने, जैसे उन्होंने बताया कि सुबह साइबर कैफे था, सुबह 4 बजे उठ के ना डेस्कटॉप से पढ़ाई करना, और उसके बाद में 12 घंटे दुकानदारी करनी, और फिर रात को आके बेहोश होके सो जाना। 2010 में हम लोग देश के तीन कोनों में घूमने गए थे, मैं और मोना। उसके बाद से फिर दोबारा पढ़ाई का इतना जोर चला, 5 साल तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। 15-16 में हमारी फिर SBI में जब जॉब लगी, उसके बाद से तो फिर नो टर्निंग बैक फॉर आवर टूर। वो मोना ही बताया कि कहाँ कहाँ घूमने गए 2010 में, और उसके बाद में कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं।
2: सर, हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 उत्तराखंड के 4 धाम और इंडिया के 4 धाम, सर 51 शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच प्रयाग, पंच कैलाश, सर ये सब फिर हमने किए।
1: मैं हैरान हो रहा हूँ मैम, सच बता रहा हूँ मैं। फैमिली भी साथ साथ चल रही है, इधर बच्चे भी छोटे, और अपनी आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस एजुकेशन भी, और जो अचीव करना है वो भी, और अपनी अपनी जॉब को भी मैनेज करना, तो ये सब, और ये जो घूमना फिरना वाला तो एक और नया एंगल, तो ये सब कैसे कर लिया आप लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
2: और सर, अभी रिसेंटली हम लोग लद्दाख से आए थे। अब इसमें भी आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ सर, हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ गए थे 2021-22 में आफ्टर कोरोना।
1: यस मैम।
2: तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग एक पैकेज में गए थे सर, तो उसके अंदर था केदारनाथ में सिर्फ विजिट करने और दर्शन करने और वापस आने। तो वहां जैसे ही मैं पहुंची तो मेरा मन था कि मैं रात को वहां पे नाइट स्टे हो और रात की आरती देखूं, और स्नोफॉल हो जाए बहुत ज्यादा कि हमें वहां रुकना पड़ जाए। सर 2 बजे हमें कहा, कॉल आई कि अब वापस चलना है आप लोगों को, और ये 2:15 बजे बहुत हैवी स्नोफॉल होने स्टार्ट होगी सर। और ऐसा हुआ कि हमारा वहां जाना बंद, कैंसिल हो गया कि अब जा नहीं सकते हैं, सब बंद हो गया और यहाँ रात को रुकना पड़ेगा। और हम वहां रुके और रात को आरती देखी सर। और उसके बाद नेक्स्ट डे मोदी जी आए सर वहाँ पे, ठीक है, और वो जस्ट हमारे होटल की विंडो के बाहर से हमें दिखाई दे रहे थे।
1: क्या बात है।
2: तो वो अच्छे से हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई सर केदारनाथ, तो वहाँ जैसे गई तो मैंने कहा सारा अली खान हमेशा आती रहती है यहाँ पे केदारनाथ में, और अमरनाथ वगैरह में, तो इस बार मुझे सारा अली खान को देखना है सर। आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो मैं मतलब मंदिर से बाहर निकल रही थी और वो एंटर कर रही थी सर, जस्ट एकदम पास से क्रॉस होकर गई, मैं उसको देख नहीं पाई, अलग बात है, बट वो मेरी बिल्कुल पास से क्रॉस होकर अंदर गई मंदिर में सर। अब इसमें उसको देखा नहीं, वो क्रॉस कर गई, पर ठीक है, ये सपना भी महादेव ने पूरा किया सर। अब भी हम 28 तारीख राखी वाले दिन हम वापस आ रहे थे सर लेह लद्दाख, शक्तिपीठ है लेह में, एक शक्तिपीठ है अगर आपने सुना हो तो, उसके दर्शन करके हम वापस आ रहे थे सर।
1: जी
2: एयरपोर्ट पे सर मुझे सारा अली खान मिली सर, सिर्फ वो और मैं, हम दो ही थे आमने सामने और मैं उसको पहचान नहीं पाई, मुझे लगा सारा है नहीं है। उसके पास गई, मैंने पूछा आप सारा अली खान हो, कहती नहीं। मैंने कहा नहीं आप हो, बस एक सेल्फी चाहिए आपके साथ, महादेव ने उस वक्त आधा अधूरा मिलाया था आपसे और आज पूरा मिलाया सर। सारा अली खान का कोई इत्तफाक नहीं है, ये ऊपर से कॉल है, बस आप ही का आना एक है कि हाँ जो मैंने सोचा वो आज पूरा किया उन्होंने 3 साल बाद। फिर सर चिराग के साथ सेल्फी ली सर हम दोनों ने, सारा अली हम दोनों के साथ। तो सर जो जो जैसा जैसा सोचे है ना सर लाइफ में, वो सब प्री प्लान था सर, वो आज तक होता चला जा रहा है सर। और अब देखिए सर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक ड्रीम था बहुत पहले कि कोई हमारा इंटरव्यू ले सर।
1: अरे गजब क्या बात है, मैंने तो मतलब
2: ब्लेसिंग से ऊपर वाले की, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
1: गजब मैम, मेरी तो चिराग सर से बात हुई 1-2 मिनट की मुश्किल से, मैंने सर को ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर एक प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। अच्छा थोड़ा वो भी रहता है ना, पता नहीं लोग कन्विंस होंगे नहीं होंगे, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बताइए आपकी, आपका कभी ये ड्रीम था, और हमको, हम तो ऐसे ड्रीम को ढूंढते ही हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते ही हैं कि जो इतने इतने मतलब सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में।
2: नहीं सर 10 साल लगे सर ये ड्रीम पूरा होने में, हमारा तो बहुत पहले से ड्रीम था।
1: अच्छा लग रहा है मुझे, और यही हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम लोगों को ये समझा सकें कि जिंदगी का अंत कहीं पर है ही नहीं, बस हमें पहचानने की जरूरत है, वो दरवाजा आपके से जो सामने है, जो शायद नजर भी नहीं आ रहा है, उसको देखना भी है और उसको खोल के आगे बढ़ना भी है,
2: और सर खुशी खुशी लाइफ को जीना भी है।
1: बिल्कुल सही,
2: आपके हाथ में है कि आप लाइफ को किस डायरेक्शन में किस तरीके से जीते हो सर।
1: तो मोना मैम सच बताएं मैम, जब पता चला घर में खबर मिली, न्यूज मिली कि चिराग की जितनी भी रोशनी थी वो पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो गई है, उस दिन को थोड़ा सा याद कीजिए मैम, उस दिन क्या माहौल था, क्या मन में चल रहा था उस दिन, पहले से क्या प्रिपेयर्ड थे या फिर संभाल लिया खुद को।
2: सर ये एक्चुअली में इनकी आईज अब बहुत स्लो गई है ना सर,
1: नहीं एकदम से जिस दिन, अब आज जैसे टॉकिंग सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत पड़ती है सर को ना, लेकिन एक जमाना था जब सर अपनी आंखों से फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर सब एक्सेस कर रहे थे।
2: नहीं सर वो एक्चुअली में ये फोन आए ही बहुत लेट है ना सर, तब तक तो विजन चली गई थी ना सर, तो ये स्टार्ट तब तक तो कीपैड का फोन था, तो
1: इतना जब आपकी शादी हुई तब तक तो सर को ठीक ठाक दिखता था, अच्छा खासा दिखता था, लेकिन एक दिन तो आया होगा ना 2005-6-7-8 कभी तो आया होगा जिस दिन पूरी तरह से पता चला कि नहीं अभी हो गया, तो उस दिन कैसे संभाला आपने खुद को मैम।
2: सर ये आपको ऐसा लग रहा है सर, बट हम लोग अपनी फैमिली में और इन सब चीजों में इतना बिजी थे ना सर, वही बोलते ना कभी इस चीज को हमने नेगेटिव लिया ही नहीं सर।
1: नहीं सवाल नेगेटिविटी का नहीं है मैम, सवाल है कि एक ऐसी चीज जो एक हम एक उम्मीद रखते हैं ना, चलो यार जितनी है उतनी रह जाए, भगवान करे जितनी रोशनी है उतनी तो रहेगी, और खासकर आप जबकि एक अलग बैकग्राउंड से आए थे और आपके लिए ये ज्यादा थोड़ा सा था ना कि भाई इतनी भी रह जाएगी तो बहुत है, एक होता ही ना हम लोग अच्छे की उम्मीद तो करते ही है ना मैम हमेशा से, उस लिहाज से हम ये पूछते हैं।
2: फैमिली का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, अपना खुद का है कि ये उम्मीद थी कि डॉक्टर्स ने कहा है 2 साल बाद विजन आ जाएगी, तो एक बार लगा कि अब क्या होगा कि कैसे करेंगे मैनेज, नहीं दिखाई देता तो आगे बच्चे भी हैं सब कुछ है तो कैसे होगा सब कुछ, तो थोड़ा टाइम आई थिंक अब उतना याद भी नहीं है कि एक बार तो फील हुआ सब कुछ। पापा मम्मी एक्चुअली फैमिली पूरी साथ में थी ना, तो
1: जी मैम,
2: मम्मी से भी डिस्कस हुआ तो बस ये था कि ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। बट एक उम्मीद जो होती है ना, कहते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है, डॉक्टर्स के आप चक्कर काट रहे हो सब कुछ कर रहे हो, फिर वो आपका माइंड तैयार होने लग जाते हैं सब चीजों के लिए।
1: जी मैम,
2: वो ये था कि डॉक्टर्स पे घूमते घूमते ऑटोमेटिक माइंड सेट होता चला गया सर, फिर लाइफ को अलग डायरेक्शन देनी थी तो वो देनी स्टार्ट कर दी थी सर।
1: बहुत खूब मैम, बहुत
2: को भी पहली बार जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तब उनको भी लगा कि हमारे पापा दूसरों के पापा से थोड़ी डिफरेंट हैं। मैंने बच्चों से एक्चुअली में पूछा कि तुम्हें जब पापा का पता लगा तो तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि हमने तो कभी बताया नहीं, बच्चे अपने आप ही देखेंगे जो भी देखेंगे।
1: बिल्कुल सही है मैम।
2: तो कहते हमें भी एक बार लगा, बहुत छोटे होंगे LKG UKG वगैरह में, तो कहते मामा एक बार हमें लगा था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा बड़े आराम से चल रहे हैं, हमारे पापा को हमें बताना पड़ रहा है कि इधर नहीं इधर से चलो, तब हमें पहली बार लगा कि पापा को दिखाई नहीं देता। तो अब बच्चे थे तो बच्चों के मन में बस ये चीज आई, उसके बाद बच्चों ने बहुत केयर करनी स्टार्ट कर दी, इवन अपने लगा बहुत छोटी एज से फर्स्ट क्लास से बच्चों ने। तो आज तक बच्चे अपने पापा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं सर, मुझसे भी ज्यादा।
1: क्या बात है, बहुत खूब मैम, बहुत जबरदस्त। कभी कोई शिकायत रही मैम इन 25 सालों में किसी से भी, लाइफ से या ऊपर वाले से, या कोई रिग्रेट रहा मैम?
2: सर मैंने तो थैंक्स ही कहा है ऊपर वाले को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे सारे सपने चिराग शायद आइज नहीं है इस वजह से ही पूरे कर पाए, मे भी ऐसा भी हो सकता है सर, बट उन्होंने सारे सपने पूरे किए सर हमने, तो मुझे कभी रिग्रेट फील ही नहीं हुआ सर। और मैं तो थैंक्स करती हूँ कि जितना भी जो कुछ भी आज मैं हूँ या जो भी मुझे मिला है वो सिर्फ चिराग की वजह से मिला है सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चिराग सर
0: जी,
1: आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर तो खैर हैं ही हैं, तो फैमिली के अलावा, फैमिली में तो आपके जलवे हमको पता चली गए मैडम के माध्यम से, लेकिन अपनी कॉलेज में कैसे आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होने के बाद तो और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं।
0: देखिए जी, टेक्नोलॉजी ने लाइफ हमारे लिए काफी आसान कर दी है,
1: खासतौर
0: पे ये ChatGPT, Cloud AI वगैरह आने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, डेस्कटॉप के ऊपर में व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी, जीमेल्स, एक्सेल, इनसे काफी ज्यादा काफी इजी हो जाता है। सारे ईमेल्स को पढ़ना, उनके लिए अलग अलग लेटर्स बनाने, ड्राफ्ट सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स बनाने, और जितने भी अब पहले हमारे लिए इश्यूज आते थे कि जो PDFs या OCRs में होते थे नहीं पढ़ पाते थे, अब हम उनको भी अलग अलग AI के माध्यम से सर्कुलर्स को पढ़ पाते हैं, उनका समराइज कर पाते हैं, उनके हिसाब से उनको अपने हम लिख पाते हैं, तो काफी कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत कंफर्टेबली एक साल से सारा चलना, मल्टीटास्किंग में मीटिंग्स लेना करना, सभी के परफॉर्मेंसेस का हिसाब रखना, टास्क देना, उनका रिपोर्ट लेना करना, और हो जाता है, इजिली हो जाता है। आजकल मैनेजमेंट की लाइन में तो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लाइंड व्यक्ति को कोई दिक्कत है नहीं एज ए कैरियर, तो ब्लाइंड लोगों के लिए मैनेजमेंट का फील्ड सही है, जिससे मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे विजुअल चैलेंज साथी इसमें जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते
1: हैं। हिम्मत हार गए हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा उनको भी गाइड कीजिए।
0: देखिए एक हमारे फैमिली में है स्वामी रामदेव जी, हमारे परिवार समूह उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक माँ आई छोटे बच्चे को लेके कि बता जी इसके सिर पे हाथ रख, बाबा जी ने कहा उससे क्या हो, बाबा तो लेडी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, तो बाबा जी ने कहा कि इसे बोलो प्राणायाम करे, कपालभाति करे, उसे ठीक होगा, मेरे हाथ रखने से नहीं हो, तो वही खुद के मरे बगैर स्वर नहीं मिलता।
1: मोटिवेशन
0: हम कितना भी दे सकते हैं लोगों को, लेकिन चलना तो इंसान को खुद ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: ब्लाइंड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जितनी हो सकता है सभी की हेल्प करता हूँ, बुक्स देता हूँ, अलग अलग लैपटॉप्स भी देता हूँ, दान भी करता हूँ, गाइडेंस भी करता हूँ, कोई सफल हो जाता है, कोई नहीं भी हो पाता उनके अंदर में से, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन है आगे बढ़ने की जिल, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहते हैं अरिस्टोटल को, जो सारे ज्ञान अरिस्तो पर ही जाते हैं, तो उसने कंसेप्ट दिया था यूडोमिया, फाइनल कॉज या पर्पस, जो कार्य करने का, जब तक आपका यूडोमिया क्लियर नहीं है, पर्पस उद्देश्य क्लियर नहीं है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। उसी चीज को आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स ने अपना शिव खेड़ा ले लें, जिन्होंने अपना गोल दिया हुआ है सेट योर टारगेट प्लान एक्ट एंड गेट। आजकल जो नए यूट्यूबर्स मोटिवेशन आए हैं उन्होंने इसका नाम दिया प्लेसिबो कंसेप्ट दिया है इसको, कि आप सोचो उसे कर लो। ट्रेड्स सीक्रेट का नाम दिया है रहस्य मोटिवेशन जो लिखते हैं सारे के सारे अरिस्टोटल फिलोसफी से ही निकले हैं सारे मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स। हम तो ये चीज मानते हैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं कि फोकस ऑन फोर डीज। डी पहला डी आपका डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या होनी चाहिए ये सबसे पहला है, क्या मुझे लाइफ में इस तारीख तक ये चीज करनी है, विजुलाइज लाइफ को चीज को। देन डायरेक्शन, उसके लिए प्लान बनाए। देन डेडिकेशन यानी कि समर्पण करें। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डी है इसके लिए डिसिप्लिन, अनुशासन। एंड दैट कम्स विद पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, कि अपना टारगेट बनाए। क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि जब 2010 से लेके 15 तक जैसे मैंने बताया 5 साल हमने कठोर तपस्या की है पढ़ाई के लिए और करने के लिए, सुबह 4 बजे से लेके 5 साल तक कठिन तपस्या की है। उस टाइम पे मेरी कंप्यूटर में एक एक्सेल रिपोर्ट आती थी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया करता था कि आज मैंने ये करना है ये करना है, और लिखा था उसके अंदर में कि ये शिवखेड़ा की बुक पढ़ के जीत आपकी, नई दिल्ली से मंगवाई
1: जीत आपकी
0: वो किताब। उसी से मुझे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन पढ़ने के लिए मिली। और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ अपने विद्युत चलन साथियों को कि और सभी को भी कि वो किताब जरूर कंटस्ट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मान लेता था कि ये टारगेट पूरा हुआ तो अपने आपको ये रिवार्ड दूंगा, टारगेट अगर पूरा नहीं हो पाया तो अपने आपको पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट हो सकती थी 10 उठक बैठक लगाऊं, एक्सरसाइज करूं, खाना कम खाऊं, 2 टाइम 2 दिन 2 घंटे मोबाइल को दूर रखूं, अलग अलग तरह से पनिशमेंट्स अपने आपको दें और अचीव कर लूं तो रिवार्ड। तो ये डिसिप्लिन, तो ये जब तक आप 4 डीज नए लाइफ में नहीं अपनाएंगे हर एक व्यक्ति के लिए, डिजायर डायरेक्शन डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तब तक
1: क्या बात,
0: गोल को पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये पालोगे तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो सर सोसाइटी के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं घूमने फिरने के अलावा मैम के साथ, या नहीं जा पाते हैं?
0: हाँ,
1: ब्लाइंड फील्ड के प्रोग्राम्स होते हैं,
0: ब्लाइंड समाज के प्रोग्राम्स में। तो अभी का आपका ही प्रोग्राम होगा जिसमें हम जाएंगे पहली बार मुंबई में,
1: ये हमारी खुशकिस्मती होगी। चलिए, तो बहुत बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप दोनों की जर्नी के लिए बयान करने के लिए, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो चिराग सर, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या मन में आता है, मतलब आज तो सब कुछ है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया हो, अब आप जब अपने आप को देखते हैं, अपनी जर्नी को देखते हैं, तो क्या महसूस होता है?
0: मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ के 11 साल वेस्ट हुए इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से।
1: राइट,
0: पढ़ाई के बाद में मुझे, जबकि हम मम्मी प्रिंसिपल स्कूल के अंदर में, हमारे रिश्तेदार सभी, कोई सेंट्रल बैंक में मौसा जी मैनेजर, कोई बाकी मामा जी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल प्रोफेसर, पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर मिलना जुलना। जब हम लोगों को नहीं पता था कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या रिजर्वेशन होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आम इंसान को कैसे पता हो।
1: बिल्कुल सही है सर,
0: मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सफरिंग हुई वो रुको ना हो।
1: बहुत सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही एक जरिया होता है सर, इस तरह से जब आपको लोग सुनते हैं या आगे भी सुनेंगे तो ऐसे ही सीखने को मिलता है। तो सर आपको अभी तक लगा कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर कि यार ब्लाइंडनेस की वजह से मैं इस चीज में पीछे रह गया?
0: वो तो अनगिनत जगह पर है, झूठ नहीं अच्छा। बोलूंगा कि हम ये कह लें कि जी बिल्कुल हम सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, नो डिपोर्शन। जो असलियत है वो असलियत है यही है कि ब्लाइंड व्यक्ति को लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हम किसी को पहचान नहीं सकते, इंडिविजुअली चल फिर नहीं सकते, बहुत सारे काम जो लोग कर सकते हैं उनकी तरह से नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर साइट्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, रास्ते हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों का दृष्टिकोण हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, रिश्तेदारों का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता समाज के अंदर में। सो चैलेंजेस बहुत हैं और हमें हर काम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर कैपेबल। और एक स्टेज आती है जब इंसान प्रूव करके थक जाता है कि व्हाई टू प्रूव एंड टू हूम टू प्रूव, इसलिए प्रूव करें कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वे हमारे पूरी जिंदगी लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं बिता सकते। जो इंटरनल खुशी होती है वो चाहती है कि औरों को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लाइफ अच्छे से बीत सके, हमारे लिए अपने व्हाट्स इनफ फॉर अस, ये फाइंड करें कि हमारे लिए क्या इनफ है, क्या अच्छा है, वो फाइंड करें और लाइफ को और मीनिंगफुल और प्लेजेंटली कैसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। यूँ हम लोगों को खुश करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये काम करने वो काम करने करेंगे, फिर तो हम कोलू की बेल की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे पूरी जिंदगी में। उस चीज में रेट रेस में मैं नहीं पढ़ा। जब मैं छोटा था तो मेरे दीदी ने एक घोड़े की फोटो लगाई हुई थी रूम के अंदर, पोस्टर का भागता हुआ घोड़ा और एक पैर उसको मुड़ा हुआ था, और टैगलाइन लिखी हुई थी ईच मस्ट फाइंड हिज ओन रोड। हमें अपना लाइफ, अपना रास्ता खुद फाइंड करना है, खुद देखना है,
1: खुद देखना है, बिल्कुल।
0: औरों की तरह तो लोग तो पता नहीं क्या काम करते हैं दूसरों का, हम औरों की रीस करेंगे तो फिर तो रीस ही करते रह जाएंगे।
1: बिल्कुल सही है।
0: दैट्स इट, लाइफ एंजॉय करें, अच्छे से जिए, सभी के लिए कहूंगा।
1: बहुत जबरदस्त सर। एक बात छोटी सी, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि 7 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो टाइम था 2001 में, उस दौरान बातें वगैरह होती थी आप लोगों की?
0: मोबाइल तो थे नहीं, अमानी जी तब तक लॉन्च किया नहीं था अपना फोन।
1: बिल्कुल,
0: वो सिर्फ तो मूवी आई थी एक उस तरह से
1: पहली बार
0: 180 रुपए का बिल, 200 रुपए का बिल, 300 रुपए का बिल,
1: दीपक और आरती
0: तो बस वही SDPC वाले को बिल पे किया करते थे।
2: 10,000 रुपए का बिल आया,
0: 10,000 रुपए का फोन का बिल देता था, शुरू हुआ करते थे।
1: ये 2001 की बातें सोता हूँ, 10,000 का बिल और केवल 3 महीनों में,
2: ये तो एवरी मंथ था,
0: महीने का है।
1: अच्छा, महीने का, ओ माय गॉड।
2: तो सर वो करते थे सर, लेटर्स बहुत आया करते थे, कैसेट्स रिकॉर्ड होकर आया करती थी सर।
1: अच्छा, क्या बात है,
2: ना दिन का पता था ना रात का पता था सर।
1: माय गॉड, सब कुछ ही मतलब होता था, सारे ही, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था तो मतलब कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ होता था।
2: एक से एक सॉन्ग आया करते थे सर रिकॉर्ड होकर, कैसेट्स में कोरियर आने में टाइम लगता था।
1: कौन से कविताएं भी आती थी कभी, शेरो शायरियां वगैरह भी आती थी कि नहीं?
2: वो सर लिखी हुई आती थी लेटर्स में।
1: अच्छा, लिखी हुई
2: सब टाइप करके भेजते थे सर लैपटॉप से,
0: indiapost.com
2: indiapost.com से।
1: क्या बात है, गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए तो अब आप दोनों से बात करते करते तो कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला हमको तो, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तो मैं 2-3 घंटे और बातें कर सकता हूँ आप दोनों से।
2: सर अभी तो बहुत कहानियां हैं, वाकई में पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी सर हमारी,
1: बातें नहीं खत्म होंगी। कोई नहीं, मुंबई में बाकी की कहानियां मुंबई में सुनेंगे आप दोनों से।
2: यस सर।
1: एक कुछ ऐसी छोटी छोटी मस्ती भरी बातें आप दोनों से कर लेते हैं कि दोनों में जब कभी कुछ हो जाता है, ये है गड़बड़, तो सॉरी कौन बोलता है पहले?
0: देखिए, आई एम द बॉस ऑफ माय हाउस।
1: अच्छा,
0: एंड आई हैव माय वाइफ्स परमिशन टू से सो।
1: जी,
0: वाइफ इज ऑलवेज राइट।
1: अच्छा, तो इसका मतलब आप बोलते हैं?
0: अपना अपना मुंह से कैसे कह सकते
2: पर कोई भी बात हो जाए, चाहे गलती मेरी हो ना हो, बस मैं भी इनसे एक ही बात बोलती हूँ, आपको याद है ना मैं कौन हूँ, आपकी वाइफ, मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती, तो आप क्यों उम्मीद करते हो?
1: बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ रॉन्ग देन अप्लाई रूल फर्स्ट।
2: यस।
1: अच्छा, तो कहीं अगर जाना हो घूमने तो किसकी जगह को अप्रूवल मिलता है, जो फाइनल कौन करता है कहाँ जाना है आप दोनों में से?
2: एक्चुअली ये होता है कि टिकट्स बुक, सब कुछ बुक, बस ये बताया जाता है कि आपको 8 तारीख को वहां चलना है मेरे साथ।
1: क्या बात है, जवाब मिल गया मतलब मुझे।
2: इनके कॉलेज का सब पूछ लेती हूँ कि कब छुट्टियां आ रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे हैं। अभी 9 सितंबर का इनका बर्थडे आ रहा है सर, तो हमने ये कहा इनसे कि 9 को हम वृंदावन चलते हैं, प्रेमानंद जी से मिलकर आते हैं और आपका बर्थडे वही सेलिब्रेट करते हैं, तो सारी प्लानिंग होगी सर। बस इनसे इतना बताना था कि वो चलना है, अब आप अपना मैनेज कर लेना सर। कहते हैं ओके, ठीक है।
1: सही है, चलिए तो सर को एडवांस में बर्थडे के लिए ढेर सारी विशेस, और आप लोग ऐसे घूमते फिरते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहें। मैम ये बताइए कि आपके बनाई हुई कौन सी डिश सर को सबसे ज्यादा पसंद है?
2: सर दाल बाटी चूरमा।
1: अरे वाह, क्या बात है, राजस्थानी सूरमा।
2: राजस्थानी सूरमा सर,
0: और गट्टे की सब्जी झरने वाली।
1: ओके, अच्छा मैम ये बताइए कि मूवीज का शौक है कि नहीं सर को?
2: सर को मूवीज का बहुत शौक है सर, हमने बहुत शादी के बाद हर हफ्ते एक मूवी देखी है सर हमने।
1: अब तक सर को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आप बताओ?
2: अच्छा मैं बताऊं सर, इनको सबसे अच्छी लगती है शोले, शोले के हर इनको पसंद है सर, जबरदस्त लगती है वो मूवी। और इनकी फेवरेट हीरोइन है रवीना टंडन सर।
1: ओहो ओहो हमारा टिप टिप बरसा पानी है क्या बात है, ग्रेट। तो चिराग सर आप भी बता दीजिए, इंडिया में अभी कौन सी ऐसी जगह है जो मैम नहीं गई हैं और उनको जाने की बहुत इच्छा है?
0: शक्तिपीठ का चल रहा है, काफी सारे शक्तिपीठ हम कवर कर चुके हैं, कुछ शक्तिपीठ रह गए हैं, अभी मुंबई आ रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं कि अगर पॉसिबल नासिक भी कवर कर लेंगे और शक्तिपीठ।
1: अच्छा सब जगह जाने का इरादा है आपका?
2: ऑल इंडिया सर।
1: ऑल इंडिया क्या बात है, ग्रेट।
0: फिर कामाख्या मंदिर आसाम वहां पर भी जाना है। काफी जगह, लंबी लिस्ट।
1: अच्छा लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी ऐसी जो जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि बस कहीं और जाए या ना जाए यहाँ जरूर चलना है सबसे पहले?
0: फिलहाल तो बरसाना जाएंगे।
1: अच्छा बरसाना, ओके ठीक है। और मैम का फेवरेट कलर, मैम का फेवरेट कलर?
0: कलर आजकल नजर तो आते नहीं, फिर भी यहाँ तक मुझे याद पड़ता है फेवरेट कलर ब्लैक तो रहा नहीं, मैरून, मैरून टाइप में काफी पसंद करते थे कपड़े।
1: सही है, सही कह रहे हैं?
2: यस सर, राइट।
1: चलिए मतलब सर को याद तो है अभी, देखिए आपकी पसंद के बारे में। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। चिराग सर अगर एक सेंटेंस में मैम के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
0: सिर्फ इतना कि मोना यू आर ग्रेट, यू हैव मेड माय लाइफ एंड तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी सलाहकार हो, फ्रेंड हो, और तुमने ही मेरी लाइफ को काफी अच्छा बनाया है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कहीं अंधेरों में खो चुका होता। तुमने मुझे मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पहचाना, मोटिवेट किया, गाइड किया और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो थैंक्स कहना भी बहुत छोटी चीज होगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए।
1: बहुत बहुत खूब बहुत खूब। मोना मैम अब आप भी कुछ कह दीजिए, एक सेंटेंस में अगर सर की लाइफ को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे?
2: ठीक है सर, अब सर की लाइफ को तो मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी सर उनके लिए।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर।
2: एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
2: करसते रहेंगे हम जन्मों जन्मों तक, एक शुक्रिया प्यार को इतने प्यार से निभाने के लिए।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह। तो सोचता हूँ बहुत बहुत बहुत जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप दोनों क्या मैसेज देंगे?
2: मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी निराश नहीं होना, उसमें भी उम्मीद की रोशनी जरूर देखना, और भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। हमेशा आगे बढ़ते रहो अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ।
1: और चिराग सर आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: सिंपल, खुश रहो, अपने ध्यान समस्याओं की जगह अपॉर्चुनिटीज पर लगाओ, सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट।
1: बहुत खूब बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। चिराग सर और मोनिका मैम बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए।
0: थैंक यू
2: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हमराही प्रोग्राम का इंतजार करते रहें।

0: शांति नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार बनाते हैं। और आज अच्छा दिन है, कठपुतली दिवस है, कविता दिवस है और कविता हमारे साथ है और इसके साथ में परशुराम जी है, आर्टिस्ट और लिरिक्स राइटर, गिटारिस्ट और बहुत सारे वीडियोस आप उनके देखे होंगे। और अगर आप संगीत के बड़े शौकीन हैं तो निश्चित तौर पे परशुराम जी के वीडियोस को भी आपने यूट्यूब पर देखा होगा। और राजश्री नाम से वो अपना चैनल, म्यूजिक चैनल चलाते हैं जिसपे आप लर्निंग वीडियोस देख सकते होंगे। काफ़ी अच्छा स्पष्ट छोटी छोटी बातें बताते हैं लेकिन बहुत अच्छा बताते हैं। और आज ही मुझे सौभाग्य मिला उनका वीडियो देखने का। तो परशुराम जी बहुत बहुत दिन से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप
1: जी? एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। अच्छा लगा यहाँ पर
0: जी जी, हमें अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। और आइए कविता जी, मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा जो है परशुराम जी के बारे में बताइए आप।
2: तो परशुराम जी, इनको हम सतीश नाम से भी बुलाते हैं। एंड ये थाने में इनका एकेडमी है जिसका नाम है किंग जनरी। एंड ये पिछले काफी सालों से, इनफैक्ट कॉलेज के दिनों में मैंने सुना है, हमारा एक दो फैमिली मेंबर ग्रुप है जिसके थ्रू हमारे ये सतीश से मुलाकात हुई। एंड काफी सारे नोन फ्रेंड्स हैं तब से ही। जब हम सब कॉर्पोरेट में रुचि रखते थे, इनका डायरेक्शन बहुत क्लियर था, गोल बहुत क्लियर था लाइफ में। ही इज इनटू मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, गिटार आगे से भी बजाते हैं, पीछे से भी बजाते हैं, ओके जो बहुत ही रेयर व्यू है। एंड यू मस्ट डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। हारमोनिका बजाते हैं, प्लस यूकुलेले नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है वो भी बजाते हैं। एंड Have I missed anything? Guitar, of course, guitar. And

0: किया था रेडियो स्टेशन पे, और इसके अलावा हमने गणपति के टाइम पे भी इसको कहता दुख सकता एंड वो वाला आरती जो है उसको हार्मनी वर्जन में सर ने हमने सर ने हमको सिखाया एंड वी वेंट एंड रेंडर विद द स्टूडियो एंड बिसाइड दिस सर इज इनटू अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स व्हेन इट कम्स टू टीचिंग स्टूडेंट्स एंड ओवर टू सर. आई थिंक मैं जितना भी बोलूँ कम है. ही शुड स्पीक मोर अबाउट हिम.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए कविता जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सती जी के बारे में, परशुराम जी के बारे में. और मैं चाहूंगा कि आप सीधे सती जी से हम लोग सुनते हैं बढ़िया सा जो आप सुनाएंगे.
2: फर्स्टली कविता जी थैंक यू वेरी मच. ये मेरा सबसे लंबा इंट्रोडक्शन था ऑन एयर, बिकॉज ऑन एयर आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप यू नो इरा टाइम आप इंट्रोड्यूस करो किसी आर्टिस्ट को. बट येस थैंक यू वेरी मच फॉर दोज काइंड वर्ड्स. जैसे अभी कविता जी ने बताया कि म्यूज़िक ट्रेनिंग जो है ये मेरा मेन फोर्टे है. करीबन 15 साल हो गए अभी म्यूज़िक ट्रेनिंग में. और वो कहते हैं ना कि एक वक्त ऐसे आता है जहाँ पर अंदर से आपको लगता है कि नहीं आपको वो करना है जो जिसके लिए आपको लगता है आप बने हो, यू नो. और स्कूल के दिनों से कॉलेज के दिनों से ऐसे था कि मुझे पता था कि हाँ म्यूज़िक में रुचि है 100%. और स्कूल के दिनों से गाना तो गाया करता था, दैट वाज देयर. क्लास में कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिले तो गालियाँ करता था, ये अलग बात थी. कॉलेज में जब मैं आया तो थोड़ा सा सीरियस हो गया. कॉलेज बैंड फॉर्म किया मैंने, जहाँ से कॉलेज बैंड यू नो एक ऐसा चीज़ है जो इट्स एन इंस्पिरेशन. और वहाँ से जो शुरुआत होती है यूजुअली कॉलेज बैंड. अभी स्कूल में तो चलो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी आप कर लेते हो, गा लेते हो सबके सामने. बट कॉलेज एक ऐसा फेस है जहाँ पर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, दैट इज़ ऑलवेज बाउंड टू सस्टेन. इसका मतलब है अगर आप कॉलेज में कोई एक्टिविटी शुरू करते हो सीरियसली, तो अगले 5-10 साल अगर उसको आप फॉलो करते हो पैशनेटली 100%, एक सेकेंड करियर आपके लिए वो 100% बन सकता है. मेरे केस में तो येस इट वॉज. तो जैसे मैंने कहा कॉलेज में शुरुआत की थी मैंने कॉलेज बैंड से. और उसके बाद कॉलेज होने के बाद में ऑब्वियसली इंडिया में आज भी म्यूज़िक एज अ करियर, फुल टाइम करियर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है स्टिल. हाँ, हालांकि अभी बिकॉज ऑफ थैंक्स टू रियलिटी शोज़ पिछले 7-8 सालों में कई यूनिवर्सिटीज़ ने म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है. बट जब मैंने कॉलेज फिनिश किया था तब ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे, तो जाहिर सी बात थी कि मुझे उसके साथ जॉब करना ज़रूरी था. बिकॉज द आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग. तो ऐसे नहीं है कि पढ़ाई नहीं की, हाँ स्टडीज़ में आई वॉज डिसेंट. ग्रेजुएशन मैंने फिनिश की पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन. और ऐसे था कि मैंने MBA की पढ़ाई भी स्टार्ट की थी उसी के साथ में. बट समवेयर मुझे ऐसे लगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है और मुझे म्यूज़िक ऐसा करियर 100% फॉलो करना है. कहाँ से शुरुआत करनी है मुझे नहीं पता, शुरुआत हो चुकी थी शायद कॉलेज में. तो ये सिलसिला जो है ये चलता गया करीबन व्हेन आई वाज वर्किंग और मैं ऑफिस में था. अच्छे यू नो लाइक प्रॉपर कॉरपोरेट जॉब में था मैं करीबन 6-7 साल. कॉरपोरेट जॉब के साथ ही म्यूज़िक भी परस्यू कर रहा था मैं. सो मुझे आई हैड मेड इट वेरी क्लियर कि मुझे अगर मैं जॉब पे लगूंगा तो मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे हफ्ते के 2 दिन मेरे लिए मिले, म्यूज़िक के लिए मिले, सैटरडे संडे या कोई भी वीकडे, दैट्स ओके. तो जहाँ पर भी मैंने जॉब की वहाँ पर एक ही प्री रिक्विजिट था, वो है मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए. और फॉर्चुनेटली मुझे छुट्टी मिल गई, तो जिसकी वजह से मैं जॉब के साथ में म्यूज़िक परस्यू कर पाया 5-6 साल. एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा नहीं अब मुझे सीरियसली लेना चाहिए. और उसके बाद में मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन एग्ज़ाम्स दिए, ग्रेड एग्ज़ाम्स, वहाँ से शुरुआत हुई सीरियसनेस जो बोलते हैं ना कि हाँ अब ये मुझे हॉबी से पैशन से करियर में कन्वर्ट करना है. और एक पॉइंट ऐसा था कि अगर मैं अभी कन्वर्ट ना करूँ तो शायद कभी ना कर पाऊँ. तो उस टाइम मैं आई वॉज मे बी 28 साल का था मैं, 27 साल उसके पहले से ट्रेनिंग की शुरुआत की थी मैंने. बट 26-27 साल में आई डिसाइडेड नहीं अब मुझे ये सीरियसली करना है. उस टाइम से जो मैंने शुरुआत की टचवुड

0: फॉर यूर्स स्ट्रगल था. यस, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं था स्ट्रगल, बट हाँ लास्ट 10 ईयर्स 10 साल से इट्स बीन वेरी स्टेबल. स्टेबल हो गया है काफ़ी करियर. और 10 साल में ट्रेनिंग से लेकर म्यूजिक कंपोजिंग, सॉन्ग राइटिंग, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा हो चुके हैं आजकल. कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं म्यूज़िक में क्या करूँ. पहले के टाइम में ऐसा था कि नहीं, म्यूज़िक मतलब सिंगर, म्यूज़िक मतलब सिंगर. बाकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अगर है तो चलो तबला बजा लिया या चलो ऐसे आर्टिस्ट हो गए. बट सोशल मीडिया आने के बाद पिछले 7-8 साल से इतने अपॉर्चुनिटीज़ हो गए हैं कि मैं बोलूँगा कि आप आज ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. जब मैंने शुरुआत की थी तब हाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतने नहीं थे, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. बट आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज में हो, आज से आपको शुरू करना है, डिसाइड करना इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू म्यूज़िक एज अ करियर. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं.
1: सतीश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा जो हमारे युवा साथी सुनेंगे आपको अभी और बाद में भी, निश्चित तौर पे उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि भाई आज के समय में म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हैं. आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, गा सकते हैं, और प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप डालते हो तो लोग जल्दी से, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो अच्छी चीजें लोग जल्दी कैच करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी बनेंगे. और निश्चित तौर पर आप ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, म्यूज़िक वीडियोस बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और यूट्यूबर बन के पैसे भी कमा सकते हैं. ये सबसे पहला जो है सिंपल तरीका है, और उसके बाद तो आप जैसा अच्छा ग्रुप के साथ परफॉर्म करेंगे चीज़ें बनती जाएंगी. सतीश जी, मैं चाहूँगा, फैन वगैरह कुछ चल रहा है क्या आपके आसपास में? कुछ एक नॉइस आ रहा था, फैन अगर बंद कर देंगे तो ज्यादा बेटर है. और मैं चाहूंगा कि सतीश जी का स्वागत में कविता जी एक गीत सुनाई तब तक.
2: थोड़ा रिस्की है सर के सामने गाना, बट ठीक है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: ये एक शिव बाबा का कीर्तन है.
1: जी जी जी
2: हर सांस

हर साथ जो है

बढ़ता है तुम्हारा नशा, तुम्हारा नशा।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं सतीश जी से फिर जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। सतीश जी, मैं चाहूँगा कि आपका स्वागत की यदि पूरा हो गया है तो अब मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के साथ आपका कैसे जुड़ना होगा, वो थोड़ा सा जी।
1: संगीत के साथ वैसे मेरे दादाजी काफ़ी फेमस म्यूजिशियन थे उनके ज़माने के, 40s, 30s, 40s, 50s में। तो मैंने उनको देखा नहीं है, बिकॉज मैं जब पैदा हुआ उसके 2-3 साल पहले वो गुजर गए थे। बट मेरे घर पे आज भी उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स तो है। तो उनके ज़माने में 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले किया करते थे, गंजीरा, गठम, मृदंगम, हारमोनियम, वायलिन। तो उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई, जहाँ पे मेरे रिलेटिव्स जो हैं, मेरी आंटी हैं, तो शी इज़ ऑल इंडिया रेडियो सिंगर, शी वॉज ऑल इंडिया रेडियो सिंगर, अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है, गुजर गई। तो फैमिली में म्यूज़िक तो है ही, मेरे पिताजी गाते हैं, इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर। ये अलग बात है कि प्रोफेशनली परस्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पर्सनल फैमिली रीजंस, बट हाँ जैसे मैंने कहा कि उनके ज़माने में प्रोफेशनली परस्यू करना तो डिफ़िकल्ट ही है, डिफ़िकल्ट ही था उस समय। तो सिलसिला जो है ये करीबन दादाजी से, देन मेरे जो पिताजी के जो जनरेशन है वहाँ से लेकर दिस इज़ द थर्ड जनरेशन। तो म्यूज़िक तो फैमिली में था ही। तो जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स मेरे घर पे थे, पर कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट निकालूं और बजाने की कोशिश करूं, बिकॉज फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिला मुझे इनिशियली। तो स्कूल से ये स्टार्ट हुआ था, कॉलेज में सीरियसनेस थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज ऑफ कॉलेज बैंड। इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे घर पे थे, बट मुझे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इतनी रुचि नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था जो मैंने सीखा था वो था कीबोर्ड, जिसको लोग पियानो बोलते हैं। सो कीबोर्ड, आई हैड अ वेरी स्मॉल कीबोर्ड, तो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं 9th में था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने गिटार सीखना शुरू किया। गिटार सीखने के बाद में जैसे मैंने कहा कि कॉलेज बैंड में जो स्टार्ट हुआ, वहाँ से जो सीरियसनेस आई, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे गिटार प्रोफेशनली सीखना चाहिए। तो सर थे मेरे यहाँ पे, आई एम लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो क्लासेस की कमी नहीं थी, अच्छे क्लासेस की कमी थी। तो आई यूज़ टू गो वॉकिंग, उस समय ज़्यादा मुझे याद है साइकिल भी नहीं थी, सो आई यूज़ टू गो वॉकिंग देन बाई ट्रेन, और ऐसे करीबन 1 घंटे के क्लास के लिए 2-3 घंटे मैं ट्रैवल करता था। सो वैसे करीबन 2-3 साल तो गए इनिशियली लोकली, वहाँ पे एक हमारे सर थे जिनके पास से मैंने बेसिक्स करा, बट उसके बाद प्रोफेशनली जो है वो मेरे यहाँ से करीबन 2-3 घंटे थे। सो वहाँ से मैंने 1.5-2 साल सीखा अच्छे से, और उसके बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसे लगा नहीं, इंक्लिनेशन है मुझ में, और गाना शुरू किया मैंने, सीखना शुरू किया सीरियसली। स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, बिकॉज उस समय यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं था। सो एंड विच आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लक्की कि बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था तो हम ऐसे जाते थे, बुक खरीदते थे, और रीडिंग करके जितना भी नॉलेज है वो थ्रू रीडिंग आता था, रादर देन आजकल क्या होता है ना कि आप सोशल मीडिया में सब कुछ इतना अवेलेबल है फ्री कि आपको पता नहीं कि फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, मिड क्या है, प्रोसेस क्या है, सिस्टमैटिक नहीं है। आपको जो भी आपके हाथ में आ गया आपने वो वीडियो देख लिया, प्रोसेस कोई भी नहीं है। ओके, तो ये दिस इज डेंजरस। तो मेरे टाइम में ऐसे था कि आज भी मेरे पास वो बुक्स है विच इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस सिस्टमैटिक बुक, जहाँ पर आपने शुरुआत की, करेक्ट स्टेप्स, यू फॉलो द स्टेप्स एंड यू लर्न। सो ऐसे मैंने बहुत सारे बुक खरीदे, देन आई स्टार्टेड लर्निंग, और ऐसे हो गया कि मेरे ऐसे जैसे मैंने कहा जॉब के साथ में मैं म्यूज़िक परस्यू करता था, बट सॉन्ग राइटिंग मैंने एक शुरुआत की, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट है गाने लिखने में, सुनने में और लिखने में खुद से। तो ऐसे मैंने गाने लिखने शुरू किए, और मुझे 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिले जब मैं जॉब पे था। सो जिंगल्स लिखे मैंने, कॉर्पोरेट जिंगल्स लिखे, दो गाने भी लिखे, एंड वैसे मैंने शुरुआत की इनिशियली. देन इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग के साथ में म्यूजिक कंपोजिशन, सॉन्ग राइटिंग, एवरीथिंग केम. धीरे धीरे बढ़ता गया. और जैसे मैंने कहा कि एक टाइम आता है ना कि बोलते हैं जब आप किसी को सिखाते हो तो आप और ज़्यादा सीखते हो, एंड दैट रियली वर्क. क्योंकि जब मैंने म्यूज़िक ट्रेनिंग शुरू की तब मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे स्टूडेंट से 2 स्टेप आगे रहना, इसलिए मैंने खुद के लिए लर्निंग शुरू की. और 5-6 साल में अंडरग्राउंड हो गया था. अगर मैं आपको सच बताऊं तो 5-6 साल मैंने बहुत बहुत दिन रात मेहनत की. ट्रिनिटी के एग्ज़ाम्स दिए, दो दो तीन तीन एग्ज़ाम साथ में दिए, ग्रेड एग्ज़ाम्स. रात भर सोता नहीं था मैं, 5-6 घंटे प्रैक्टिस करता था, ऐसे था. तो 5-6 साल बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बट यस इट इज़ पेइंग ऑफ अभी. तो बस वहाँ से शुरुआत हुई, धीरे धीरे एक्सप्लोर होते गए फील्ड्स.
0: चलिए सतीश जी, मैं चाहूंगा कि बहुत ही प्यारा सा जो है प्रेजेंटेशन भी हमें आप वोकल गाइए, और एक इंस्ट्रूमेंट वाला जो है गिटार भी, आप गिटार पे भी कोई गीत बाद में बजाइए. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपके पीछे दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप जो जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं एक सैम्पल पीसेस हमें सुनाइए.
1: एक दो इंस्ट्रूमेंट तो है मेरे पास में जो मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगा.
0: जी
1: फेवरेट
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट गिटार. आई एम नॉट श्योर आप देख सकते हो कि नहीं. सो दिस द वन. सो आवाज़ आ रही है क्लियरली?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल.
1: चलो तो मैं गिटार और वोकल्स के साथ एक गाना पेश करना चाहूँगा. ओपन एयर साहब का गाना है ये. ओपन एयर साहब आई फील अंडर रेटेड, बट जितने भी कॉम्पोजिशंस है एवरग्रीन कॉम्पोजिशंस, और उन्हीं का ही एक कॉम्पोजिशन है पुकारता चला हूँ. क्लियर है? बस
0: बहुत बढ़िया है.

0: तो ये गाना था ओपनर साहब पुकार था
1: जी जी
0: एक और गाना मैं पेश करना चाहूँगा ये 60-70 से हम आते हैं 90s की ओर वन ऑफ माई अगेन वेरी मेलोडियस कंपोजिशन म्यूजिक है जतिन ललित साहब

0: तो ये था
1: गिटार
0: गिटार पीसेस। एक मिनट, चलिए अब मैं पेश करना चाहूँगा वन ऑन द यूकुलेले। तो ये है यूकुलेले, सम लाइक
1: अच्छा
0: समथिंग लाइक गिटार फैमिली ओनली। और आजकल ये सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वैसे सबसे ज़्यादा चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि
1: अच्छा
0: ईजियर ऑप्शन, ईजियर वर्जन ऑफ गिटार, अगर मैं आपको बोलूँ तो। सो इट इज़ लाइक दैट। हालांकि साउंड काफ़ी अलग है, बट हाँ, जिनको गिटार नहीं बजाना है, जिनको ऐसे लगता है कि गिटार डिफिकल्ट है, वो यूकुलेले लेकर यूट्यूब से भी सीख लेते हैं और प्ले कर लेते हैं। हालांकि दैट इज़ नॉट द राइट प्रोसेस, बट स्टिल। तो मैं यूकुलेले में गाना पेश करना चाहूँगा। आवाज आ रही है क्लियरली?
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: हाँ

0: जैसे मैंने कहा फ़र्क इतना ही है कि ये जो यूकेलेले हैं इसमें चार स्ट्रिंग होते हैं और ये जो स्ट्रिंग है ये नायलॉन का बना होता है एज़ कम्पेयर टू गिटार जिसमें यूजुअली स्ट्रिंग स्टील या ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स होते हैं और क्योंकि ये छोटा इंस्ट्रूमेंट है होल्ड करने में ईजी होता है पकड़ने में और बजाने में भी ऑब्वियसली. तो ये था यूकेलेले. और एक और इंस्ट्रूमेंट मैं पेश करना चाहूँगा अगर
1: जी
0: समय है तो. अच्छा मैं दो इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले करूँगा अभी. एक है गिटार और एक है मेरा वेरी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो मैं कॉलेज के टाइम से मेरे साथ लेके घूमता था और कभी इसको मैंने सीखा नहीं इनिशियली पर क्योंकि मुझे दूसरे इंस्ट्रूमेंट आते थे तो काफ़ी इजी हो गया मेरे लिए नोट को समझना सुनना समझना और प्ले करना. सो ये है माउथ ऑर्गन हारमोनिका. बचपन से हम इसको माउथ ऑर्गन बोलते आते हैं बट इसका नाम है हारमोनिका और ये भी कई सारे साइजेस में अवेलेबल हैं और मेरे जो शोज़ मैं करता हूँ यूजुअली उसमें मैं दो से तीन इंस्ट्रूमेंट साथ में प्ले करता हूँ. हारमोनिका के साथ में मैं गिटार प्ले करना चाहूँगा. सो ये दोनों जो हैं साथ में लाइक टू प्ले.

0: Come on. बहुत बढ़िया।
1: तो ये है मेरा तो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने कहा ये हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ चलता है।
0: बढ़िया है।
1: वैसे और एक इंस्ट्रूमेंट्स है बट आई थिंक।
0: चलिए सतीश जी, बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा जो है आपने बहुत प्रैक्टिस भी है आपका और आनंद आता है जब सुनते हैं आपको। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि जैसे नए बच्चे आते हैं आजकल यूट्यूब पे भी सीखना हो गया है, हम लोग भी पिछले कोविड में कंपटीशन शुरू किया था सिंगिंग कंपटीशन ऑनलाइन, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग हैं एज बार है मना बुजुर्ग भी हैं लेकिन गाने के शौकीन रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी गाते हैं आते हैं हमारे साथ में, तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाता है वो एक जगह ठहर जाते हैं। तो वो जो है थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, और फिर उनमें जो है ना एक बदलाव, जो शार्पनेस चाहिए ना थोड़ा सा, जैसे हम लोग एक ही दार एक ही एक्स से कितना जड़ काटेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको ब्रेक लेके एक्स को धार करना पड़ेगा फिर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर कटिंग करेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स मालूम भी पड़ता है सामने, अगर आप वापस एक बार सुनेंगे तो आपको पता चल जाता है लेकिन उसको रिकवर करना मुश्किल लगता है कभी कभी, तो वो कैसे उसको समझे और कैसे हम लोग थोड़ा सा फाइन बने वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से आपने तपस्या की है और निश्चित तौर पे आपको वो समझ में तो तुरंत आ जाता है, और उसको कैसे उसके लिए कितना मेहनत करे कैसे समझे मेन वो फाइन आने के लिए। जी
1: तो ये आप वोकल्स की बात कर रहे हैं खास करके?
0: जी जी खास वोकल की बात कर रहा है।
1: ओके देखिए वोकल्स मेन जो है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिनके पास से आप सीखते हो, किसी घराने से अगर आप सीखते आ रहे हो, ठीक है, तो एक होता है कि हमारा एक पाथवे होता है कि यूजुअली हम जो गाते हैं वो उसी के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से टुडे सेंचुरी, ओके, आपको काफ़ी ओपन रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आप क्या सुनते हो और आप क्या पेश करना चाहते हो, ठीक है। रियाज तो ज़रूरी है, रियाज के बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है, ओके, कोई भी, मैं भी कुछ नहीं हूँ, नो आर्टिस्ट इज़ कम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज़रूरी है बट प्रैक्टिस के साथ में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए नंबर वन, जो आपको बताए कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो, ओके। यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ये नहीं बताने वाला है कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो, इसीलिए ऐसे सोशल मीडिया जो है ये एडवांटेज है बट ये डेंजरस है, बिकॉज क्या होता है ना कि आपके पास एक प्रोसेस नहीं होता है। अगर 20-25 साल मैं पीछे जाऊँ और अगर मैं किसी वो सिंगर को देखूँ, जैसे सोनू निगम हो गया फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब इतनी बारीकियाँ हर एक नोट जो है, ओके, जब तक सुर ना लगे ना तब तक 20-25 टेक दिन भर निकल जाएगा वो एक सुर पक्का सुर लगाने के लिए। आज आज आज के ज़माने में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर का एडवांटेज नहीं था हमारे पास, इसीलिए जो भी करना है वो आपको खुद से करना है। अगर आपको नोट प्रोड्यूस करना है तो आपको पूरा दिन, दो दिन, तीन दिन प्रैक्टिस करना है जब तक वो सही नोट ना लगे। और इससे क्या होता है ना कि आपको पता है कि आपका गोल क्या है और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते थे। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के वजह से उसका 30% भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं, और नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। एडवांटेज है बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी मेरे लिए वो चीज़ कर दे। और इस वजह से आजकल के बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो दैट वो नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी उनके लिए कर देगा फॉर श्योर, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं बोल रहा हूँ। और आगे जाके इवन जैसे बहुत सारे टूल्स आजकल इंट्रोड्यूस हो गए इंस्ट्रूमेंट्स में भी, ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कोविड 2021 में एक ब्रांड है, कंपनी है, जो गिटार का एक कॉर्ड का एक टूल बनाता है, ठीक है ना, ये जो टूल है इसको आप गिटार में, जहाँ पे मैं कॉर्ड, अभी कॉर्ड्स हम होल्ड करते हैं वहाँ पर, ये टूल को आप फिक्स कर दो उसको, एक सर्टन बटन्स होते हैं उसके हिसाब से आप उसको प्रेस कर दो और आपकी जो उंगलियाँ हैं वो उस पर रख दो, वो कॉर्ड का शेप प्ले कर देता है। ओके, अब उनका बोलना क्या था कि आपको कॉर्ड प्लेइंग ईजी हो जाता है उससे, लाखों लोगों ने लिया हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप वो टूल के साथ कितना बजाओगे, 5 कॉर्ड बजाओगे, 6 कॉर्ड बजाओगे, बट उसके बाद क्या, द मोमेंट आप उसको निकाल दो यू आर ब्लैंक, आपको कुछ नहीं आता है। वोकल्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि हम रियाज आजकल, हमारा जो प्रैक्टिस टाइम है, जैसे मेरे टाइम में 5-6 घंटे 7 घंटे प्रैक्टिस किया करता था, आज के टाइम में वो 1-1 घंटा भी लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिकॉज मोटिव उनको पता है अगर मैं गलत नोट भी दे दूँ तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वो मेरे लिए परफेक्ट कर देगा। तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अपनी तरफ, आपको हर एक नोट जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज़ उसको अपने हिसाब से अपने जगह पर रहने दीजिए, और उतना रियाज आपको ज़रूरी है, गुरु ज़रूरी है आपको ये बताने के लिए आप कहाँ पर गलत जा रहे हो, नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा। तो प्रैक्टिस टाइम हैज़ टू बी फिक्स्ड, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालना है, और आपका टाइम, मैं मेरे स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ कि आजकल तो सब बिजी हो गए हैं, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए रोज, बस इतना ही है कि आप 15 मिनट कीजिए, लेकिन 15 मिनट आप एक ही चीज़ कीजिए, अगर आप वोकल सीख रहे हो सिर्फ 2 नोट, और उस 2 नोट को पक्का कीजिए, जब तक सुर नहीं लगेगा तब तक आगे मत जाइए। टाइम लगेगा, स्ट्रगल है, बट यू नो कि 5 साल में आप यू विल रीच समवेयर।
0: बिल्कुल परशुराम जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमारे युवा साथी जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कई बार शॉर्टकट ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। टाइम बीइंग के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको परमानेंट कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो विधिवत चीज़ें करनी है। आज हम लोग देखते हैं कि निश्चित तौर पर जब गाने को सीखने जाते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग अलंकार प्रैक्टिस गाते वगैरह सब कुछ है, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है सुर लगाने की, तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम बिल्कुल हम नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं लगता है कि अरे मेरे तो लिरिक्स याद कर लूंगा, म्यूजिक तो है ही, करोके है, ये है वो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर एंड करोके इन सभी के साथ में हम लोग ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वही प्रॉब्लम कर रहा है जो हमें सूदिंग या फिर फाइननेस की तरफ नहीं ले जा रहा। सतीश जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया कि क्या हो रहा है, तो आज वही चीज़ है कि एक अच्छा गुरु चाहिए ही चाहिए आपको, और आप वंस इन अ वीक उनके साथ बैठिए, लेकिन 1 वीक आप प्रैक्टिस करके उनके साथ बैठिए तो अच्छा लगेगा। गुरु किया लेकिन वंस इन अ वीक जरूर आप क्लास की तरह ले रहे हो तो वो भी इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो गुरु भी करेगा क्या, है ना। गुरु देखेगा कि पहली वाली एक चीज तो इन्होंने ठीक की नहीं, अब आगे कैसे करूँ, तो इसीलिए गुरु का भी विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। तो इट टेक्स, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये तपस्या वाला काम है, हो सकता है कि नेचर ने कुछ आपको गिफ्ट में दिया हो वो अलग बात है, लेकिन ये तपस्या लगता है, और गुरु विद्या है तो उसको सम्मानित करके उसका सम्मान रखना ही है। तो सतीश जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आप सुनाइए और फिर पूरा करते हैं, चाहे आप गीत के माध्यम से बताइए या शब्दों के माध्यम से। जी
1: नहीं, मैं बस वही बोलना चाहूँगा कि गीत तो मैं सुनाना चाहूँगा जाते जाते, मेरा खुद का लिखा हुआ गाना है ये,
0: जी जी
1: गाने का नाम है फतेह। इसके कुछ 4 लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा, मैसेज बस यही कहूँगा जो मैं मेरे स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि क्लासेस अपनी जगह है, सीखना जो है वो अपनी जगह है, बट आप वो सीखने के बाद आप उसका क्या कर रहे हो, रियाज कितना कर रहे हो, प्रैक्टिस कितना कर रहे हो खुद के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है आपको बताना कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं आपको बेस्ट वेज टेक्निक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, गुरु से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस करना है वो तो आप ही को प्रैक्टिस करना है, अगर उसमें भी आप बहाने ढूंढते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे आप ऑफिस जाते हो, 10 बजे आते हो, वो तो चलने वाला ही है, बट हफ्ते में आपके पास 7ों दिन तो आप काम नहीं करते हो, एक आध दिन तो 2 दिन तो आपके पास है ही। अब 2 दिन में अगर आप 1 घंटे भी नहीं निकाल सकते हो, जो दिन के 10 मिनट होते हैं, इसका मतलब आपको इच्छा नहीं है। सिंपल सिंपल है। सो ये है कि हाँ, मुझे मेरे दोस्त जो है वो गिटार बजाते हैं, मुझे भी गिटार सीखने की इच्छा है, इसीलिए मैं गिटार सीख रही हूँ, गिटार सीख रहा हूँ। बस उतना ही है मोटिवेशन, वही है मोटिवेशन। ये नहीं है कि मुझे गिटार सीखना है बिकॉज मुझे गिटार या कीबोर्ड या कोई भी तबला, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, मुझे अच्छा लगता है सुनने में। और जब मैं इंस्पिरेशन जाकिर हुसैन जी को अगर मैं देखता हूँ बजाते हुए, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, इसके लिए मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। सो ये जो है ना, ये मैसेज खुद को देना बहुत ज़रूरी है, ना कि मेरे दोस्त बजाते हैं गिटार बजाते तो मुझे भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, नहीं वो नहीं होता है। तो मैसेज यही है कि अगर आप सीख रहे हो तो आपके खुद के लिए सीखिएगा, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली ऑल्सो। म्यूजिक से बढ़कर बेस्ट मेडिसिन और कुछ नहीं है। इट इज़ अ फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। भले 60-70 साल के बाद आपके आपके साथ कोई रहे ना रहे, म्यूजिक 100% आपके साथ रहने वाला ही है। सो आज जो आप सीख रहे हो वो आपके साथ लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक रहने वाला है। सो मैं यही बोलूँगा, म्यूजिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एंड एक इंस्ट्रूमेंट या वोकल्स या वॉट एवर ज़रूर आपको सीखना चाहिए एज अ म्यूजिशियन। ये मैसेज है मेरे तरफ से। जाते जाते मैं 4 लाइन मेरे गाने का सुनाना चाहूँगा। गाने का नाम है फतेह, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रिलीज। ओके सो वैसे ये गाना भी मोटिवेशनल है, अगर आप इसके लिरिक्स सुनते हो तो। गहरा समंदर है, टूटी तेरी नैया है, कर ले माझी पार नैया, कर ले माझी पार।

0: คนที่ว่าคนที่ว่า
1: जी
0: चलिए मित्रों आज हमने परशुराम जी को सुना काफी अच्छा जो है उन्हें इंस्ट्रूमेंट प्ले करके दिखाया वोकल गा के दिखाया और संगीत के साथ उनका कैसे लगाव रहा और बचपन से ही वो चीजें उनको मिल गई और घर से जो है संगीत का माहौल था वो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं बचपन से उनके अंदर वो अंकुर था बस फिर उन्होंने मेहनत किया और उसको एक फुलवारी बनाया है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक और गिटार प्ले करते हैं। निश्चित तौर पे सभी इंस्ट्रूमेंट डबल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं। ये अपने आप में यूनिक कला जो है अपने अपने अंदर ईजाद किया। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एंड कविता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सरीज जी को जोड़ने के लिए और एक गीत स्वागत में गाने के लिए। और आज के शुभ दिन की फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, सतीश जी की बातें एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की बातें हैं, तो उनकी बातें कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो एक बार वापस उनको सुनिए, बार बार सुनिए और कुछ थोड़ा करिए। निश्चित तौर पर आप कुछ समय के बाद अच्छा कर पाएंगे, एक अच्छा परफॉर्मर बनेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत,
2: ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, रश्मि को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना? अरे भाई रश्मि, रवि की घरवाली। क्या कहा? अब ये रवि कौन है? अरे भाई रवि मीना का पड़ोसी। खैर छोड़ो, अब हम सीधा चलते हैं रवि और रश्मि के घर। रश्मि ने कल ही एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। वो देखो, रवि दीवार पे टंगे कैलेंडर पे कुछ लिख रहा है।
1: 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45। अब से ठीक 45वां दिन। ये मैंने अपने पेन से 3 अक्टूबर पे बना दिया एक गोला।
2: ए जी, 3 अक्टूबर को कुछ खास बात है क्या?
1: हाँ रश्मि, बहुत खास बात है।
2: मुझे भी बताइए ना।
1: अब से ठीक 1.5 महीने बाद है 3 अक्टूबर। तभी तो मैंने इस कैलेंडर पे ये गोला बना के निशानी लगा दी है।
2: लेकिन है क्या उस दिन?
1: रश्मि, कल तुमने मुझे एक तोहफा दिया और अब
2: तोहफा?
1: हाँ भाई, हमारी बेटी, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा ही तो है। और ठीक 1.5 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर को मैं तुम्हें और हमारी प्यारी सी बेटी को एक तोहफा दूंगा।
2: सच?
1: हाँ रश्मि।
2: बताइए ना, क्या तोहफा देंगे आप मुझे और हमारी बेटी को?
1: वो तो एक राज है जो ठीक 1.5 महीने बाद ही खुलेगा। अच्छा रश्मि, मैं जरा खेत तक होकर आता हूँ।
2: जी ठीक है।
0: भाई आखिर ऐसा क्या तोहफा है जो रवि अपनी बीवी और बच्ची को ठीक 1.5 महीने बाद ही देगा? रश्मि भी शायद यही सोच रही थी कि तभी मीना अपनी माँ के साथ वहाँ आई।
3: नमस्ते रश्मि चाची।
2: अरे मीना, आओ आओ। नमस्ते भाभी।
4: कैसी हो रश्मि?
2: ठीक हूँ भाभी।
3: माँ देखो, चाची की बेटी कितनी प्यारी है, छोटी सी। चाची आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी?
2: चुटकी।
5: चुटकी चुटकी, जोर से बजाएगी चुटकी।
4: रवि कहाँ है रश्मि?
2: अभी अभी खेत पर गए हैं कैलेंडर पे गोला बना के।
3: अरे हाँ चाची, ये 3 अक्टूबर पे इतना बड़ा लाल रंग का गोला।
2: पता है भाभी, ये कह रहे थे कि अब से ठीक 1.5 महीने बाद ये मुझे और हमारी बेटी को कोई खास तोहफा देने वाले हैं।
4: अरे वाह रश्मि, क्या है वो खास तोहफा?
2: वही तो नहीं पता।
5: वही तो नहीं पता, कहा भी था कि बता।
3: चाची मुझे लगता है कि रवि चाचा आपको एक नई साड़ी ला के देंगे।
2: नहीं मीना, मेरे ख्याल से वो मुझे चूड़ियाँ लेके देंगे, लाल चूड़ियाँ।
0: और 1.5 महीने बाद।
2: सुनिए सुनिए जी, छुटकी के बाबा, मैं तैयार हो गई हूँ, चलें?
1: अरे वाह रश्मि, छुटकी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: सुनिए अब तो बता दीजिए क्या तोहफा।

0: देने वाले हैं?
1: आंगनवाड़ी चलो, सब पता चल जाएगा।
0: आंगनवाड़ी?
1: हाँ रश्मि, आंगनवाड़ी में भी मिलता है वो तोहफा।
2: लो भाई, रवि और रश्मि चुटकी को लेकर आंगनवाड़ी पहुंच गए।
0: चुटकी के बाबा, तोहफा कहाँ है?
1: वो देखो रश्मि, दीवार पे लगा वो पोस्टर।
0: बच्चों को सही समय पर सभी टीके लगवाएं। एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया।
3: रश्मि बहन,
0: नमस्ते। नरस बहन जी,
3: नमस्ते। अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी प्यारी है। रवि भैया, रश्मि बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी को DPT का टीका लगवाने और पोलियो की पहली खुराक दिलवाने ले आए।
0: अच्छा, तो ये है आपका तोहफा चुटकी के बाबा?
3: तोहफा?
0: जी नरस बहन जी, चुटकी के बाबा ने 1.5 महीने पहले ही कैलेंडर पे बोला।
2: रश्मि ने नर्स बहन जी को तोहफे की सारी बात बताई और नर्स बहन जी हंसते हुए बोली,
3: रवि भैया ने बिल्कुल ठीक कहा था रश्मि, DPT का टीका और पोलियो की खुराक छोटे बच्चों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आखिर ये बच्चों को कई बीमारियों से बचाते जो हैं।
0: वो कैसे बहन जी?
3: रश्मि बहन, DPT का टीका बच्चों को गलघोंटू, काली खांसी और टिटनस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है, जबकि OPV यानी पोलियो की खुराक उसे पोलियो से सुरक्षा देती है। रश्मि बहन, चुटकी का टीकाकरण कार्ड तो लाई हो ना?
0: जी वो तो।
1: ये लीजिए नर्स बहन जी, चुटकी का टीकाकरण कार्ड। ये कार्ड मैंने खूब संभाल के रखा हुआ है।
3: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चुटकी को जन्म की खुराक अस्पताल में ही मिल चुकी है।
0: जन्म की खुराक?
3: रश्मि बहन, जन्म की खुराक मतलब BCG का टीका और पोलियो की खुराक। ये जन्म की खुराक बच्चे को पहले दिन ही दी जाती है।
0: हाँ नरस बहन जी, याद आया, अस्पताल वाले डॉक्टर साहब ने चुटकी के पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही ये टीका और खुराक उसे दी थी। लेकिन चुटकी के बाबा, आपको ये बात कैसे याद रही कि चुटकी को ठीक 1.5 महीने बाद यहाँ लेके आना है DPT का टीका लगवाने और पोलियो की खुराक दिलवाने?
1: मीना की वजह से।
0: मीना की वजह से?
1: हाँ रश्मि, 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे मीना और उसके कुछ दोस्त मिले। वो एक बहुत अलग सी कविता गा रहे थे।
4: सब बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाओ,
5: सब बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाओ,
4: DPT का टीका पोलियो की खुराक दिलवाओ,
5: DPT का टीका पोलियो की खुराक दिलवाओ।
4: भूल न जाना, याद ये रखना बात हमारी पूरी,
5: भूल न जाना, याद ये रखना बात हमारी पूरी।
4: 1.5, 2.5 और 3.5 ये महीने बहुत जरूरी,
5: 1.5, 2.5 और 3.5 ये महीने बहुत जरूरी।
4: 9वें महीने में लगता है फिर खसरे का टीका,
5: 9वें महीने में लगता है फिर खसरे का टीका,
4: बच्चे की सुरक्षा का ये सबसे सही तरीका,
6: बच्चे की सुरक्षा का ये सबसे सही तरीका।
1: मीना बेटी, तुम लोग ये कैसी कविता गा रहे थे अभी?
4: रवि चाचा, हमने ये कविता नरस बहन जी से सीखी थी।
1: समझी रश्मि, उस दिन से मैं भी ये कविता रोज याद करता हूँ।
3: रवि भैया, फिर तो आपको 1.5, 2.5 और 3.5 के अलावा एक चीज और भी याद रखनी पड़ेगी।
1: वो क्या नर्स बहन जी?
3: वो है 9वां महीना।
0: 9वां महीना?
3: हाँ, जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो उसे खसरे का टीका लगाया जाता है। मैंने चुटकी के इस टीकाकरण कार्ड में सब लिख दिया है ताकि आपको याद रहे।
1: नर्स बहन जी, हम इस टीकाकरण कार्ड को तो बहुत संभाल के रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपनी दीवार पे टंगे कैलेंडर पे भी निशानी लगा देंगे ताकि हर बार याद से अपनी चुटकी को आपके पास ला सकें। और रश्मि, ये रहा तुम्हारा तोहफा।
0: लाल चूड़िया।
1: हाँ रश्मि, और अगली बार 2.5 महीने पर और उसके बाद फिर 3.5 महीने पर।
2: भाई वाह, हम सबको भी रवि से शिक्षा लेनी चाहिए। आखिर छोटे बच्चों का सही समय पे टीकाकरण होगा तभी तो वो सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
4: माता पिता हर बच्चे के सीखे सही तरीके,
7: सही वक्त पे लगवाए बच्चों को सारे टीके।
2: भाई वाह, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने, चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। अब चलते हैं बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार शहरों के नाम बताऊंगी, उन चार शहरों में से एक शहर किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है। तुम्हें मुझे उसी अलग शहर का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो उन चार शहरों के नाम हैं आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंडीगढ़ और चित्तौड़गढ़। फिर से बताती हूँ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंडीगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब सोच के बताओ इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो है बाकी के तीन शहरों से अलग।
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: चंडीगढ़।
1: सही जवाब। लेकिन मीना ये तो बताओ कि चंडीगढ़ आजमगढ़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से अलग कैसे है?
3: बहन जी आजमगढ़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ भारत के अलग अलग शहर हैं, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। बच्चों पता है हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है और वो है
2: चंडीगढ़।
1: शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदारी। मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुक, रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है, धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो, हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 4 खाएं आम बारहों महीने पृष्ठ 35। कुछ बच्चे खाने के डिब्बे में खाना देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। नीतू बोली, अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। अमन बोला, नीतू आलू की सब्जी लाई है। प्रीति ने कहा, मैं भिंडी लाई हूँ। अमन ने कहा, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। प्रीति बोली, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। चर्चा करो, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? पृष्ठ 36। लिखो, रसोई घर में से खाने की कुछ चीजें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं, हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी, महीने भर तक खराब नहीं होंगी। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गईं। दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? पता करो। खाने की किन्हीं 2 चीजों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? पृष्ठ 37। खाना कैसे होता है खराब? प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने पर तालिका को रोज भरो। दिन 1, ब्रेड में बदलाव, छूने से, गंध से, हैंड लेंस से देखने में, रंग में। इसी तरह 6 दिन की तालिका बनाओ। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहां से आई होगी? अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। पृष्ठ 38। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। चीजें: दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज लहसुन। घरेलू उपाय: एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। दूसरा उपाय: गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। उपाय 3: उबालते हैं। उपाय 4: खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयापुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा यानी आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। पृष्ठ 39। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहां दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। पृष्ठ 40। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा कर दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। लिखो, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? भाइयों ने मामीडी तांडरा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। पृष्ठ 41। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं?

अगर तुम्हें उस सफर में जाना बनाओ, सबसे पहले क्या खाओगे, हम क्या समझे, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब. You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive. तो internal stability means, you know, no trace of anger. उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, you know. And assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control हैं. Anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, जो की होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही रंगीन और बहुत ही क्यूट, क्योंकि हमारे साथ हैं तीन बहुत प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडियो में. तो एक बार आप लोग सब अपना अपना नाम और क्लास बता दीजिए. वहां से शुरू करते हैं, नील से.
3: मेरा नाम है नील, मैं थर्ड क्लास पे गया हूँ.
4: मेरा नाम है मयंक वाधवानी, मैं फोर्थ क्लास में हूँ.
5: मेरा नाम है देव.
2: कौन सी क्लास में हो आप?
5: KG1.
2: अच्छा अच्छा, आप लोग कौन से गेम्स खेलते हो?
3: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस.
2: आता है टेनिस खेलना है?
4: हाँ. नहीं, हम लोग कई चीटिंग करके बोल रहे हैं.
2: हाँ,
5: मैं करता हूँ.
4: अच्छा अच्छा, से खेलता है.
2: छुपन छुपाई कौन खेलता है?
4: हम.
5: मैं
2: कहाँ छुपते हो?
4: पकड़ाई.
2: अच्छा, फेवरेट जगह छुपने की कहाँ? देव कहाँ जाके छुपते हैं पहले ये बताओ.
4: बाथरूम में.
2: बाथरूम में?
5: हाँ,
4: जनरल वॉशरूम.
2: कहाँ छुपते हो?
5: टेबल के नीचे.
2: टेबल के नीचे. और आप नील कहाँ छुपते हो? हैं, सीक्रेट जगह कौन सी है?
3: पर्दा के पीछे.
2: पर्दे के पीछे.
3: और कोई रूम खाली होगा उधर कहीं छुप जाना, वॉशरूम पे छुप जाना.
2: जल्दी पकड़ में कौन आता है?
3: जल्दी पकड़ पे देव.
2: किसको सबसे जल्दी पकड़ लेना है बताओ?
5: मैं.
2: हाँ.
4: खुद पकड़ जाता है.
2: खुद पकड़ जाता है.
5: बाहर निकल जाता है. दिला दिया. बोलो ना, बोलो ना, क्या किया मेरी अकल.
2: और सब...
5: बोलो ना, क्या किया.
2: और सबसे अभी सबसे लास्ट में कौन? अभी गाना बांट ले, पहले बात कर रहे हैं ना. सबसे
5: ठीक है.
2: पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे फिर गाना, ठीक है? सबसे लास्ट में कौन पकड़ में आता है?
3: सबसे लास्ट में हम दोनों.
2: और क्या क्या खेलते हो गर्मी की छुट्टियों में? क्या करते हो मुझे ये बताओ.
3: हम लोग घूमने आते हैं माउंट आबू.
2: और क्या करते हो गर्मी की छुट्टियों में? डांस करते हो, गाना गाते हो, क्या करते हो?
3: वाटर पार्क पे जाते.
2: वाटर पार्क में जाते हो?
3: गर्मियों की छुट्टियों में मैं गया वाटर पार्क.
5: मैं भी.
2: आप भी गए थे?
5: हाँ.
2: आप भी गए थे? तीनों गए थे?
5: हाँ.
3: अरे तू कैसे गया था?
5: हाँ.
3: नहीं गया था.
2: मयंक नहीं गया था?
3: हाँ दीदी.
2: हाँ.
4: मैं, ये लोग तो अलग रहते हैं, मैं तो कटनी में रहता हूँ. ये लोग तो किसी और शहर में रहते हैं, तो इनको कैसे पता?
2: हाँ, वो दूसरे वाटर पार्क गया होगा, है ना? चलो बताओ, स्कूल को मिस नहीं करते? जब छुट्टी होती है तो स्कूल की याद नहीं आती?
4: नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं. अब दोस्त भी तो होते हैं स्कूल में, दोस्तों की याद नहीं आती?
4: नहीं.
5: जब मैंने ये तोड़ा था ना, तो इसने झोल दिया था.
2: स्कूल की याद किस किस को बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती?
4: नहीं.
2: दोस्तों को मिस नहीं करते?
4: नहीं.
2: नहीं, तो घर पे क्या करते? दिन भर तो खेल नहीं सकते, फिर क्या करोगे दिन भर?
4: हम दिन भर ही खेलते हैं.
2: दिन भर खेलते हो? घर के अंदर इतनी धूप होती है बाहर तो, गर्मियों में फिर
4: हम लोग बाहर खेलते हैं.
2: गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में? नहीं, पसीना नहीं आता ऐसे बहुत सारा?
3: पसीना तो बहुत आता है हमारे को.
2: हाँ, तब भी थकते नहीं हो?
4: नहीं
3: नहीं.
2: दिन भर खेलते रहते हो? ऐसा तो नहीं है, मम्मी बुलाती तो होगी कि अब घर आ जाओ, बहुत हो गया। नहीं,
4: हम खाना खाने ही बस आते।
2: बस खाना खाने जाते हो?
4: हाँ।
2: और खेलते रहते हो दिन भर?
4: रात भर खेलते ही।
2: रात भर खेलते हो?
4: हाँ। क्योंकि ट्यूशन भी नहीं रहती।
2: हाँ।
4: और स्कूल भी नहीं रहती।
3: हाँ।
2: हाँ, KG1 की ट्यूशन भी नहीं रहती होगी। नहीं देव।
3: हाँ।
4: मेरी छुट्टी लग गई।
2: छुट्टी लग गई इसलिए। लेकिन फिर नींद नहीं आती रात को?
3: नहीं।
2: अच्छा, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हो?
3: नहीं।
2: भूत वाली स्टोरीज?
3: नहीं।
2: है कोई सुनाता है?
3: नहीं।
2: फिल्में देखते हो आप लोग, हॉरर वाली, भूत वाली?
3: हाँ, मैं भूतों की कहानियाँ देखता
2: हूँ। देखते हो?
4: मैं नहीं देखता, नहीं तो नींद नहीं आती।
2: नींद नहीं आती ना, डर लगता है ना? मुझे भी लगता है भूत वाली कहानी से तो मुझे।
4: और मुझे रोज ही भूत सपने पे देखता है,
2: है ना?
4: फिर मैं स्वामान बोलता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।
2: खुद को स्वामान अपना याद दिलाते ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मास्टर सर शक्तिवान हो। वेरी गुड। तो आपको नहीं मयंक डर लगता भूत वाली कहानियां देखते हो तो?
3: नहीं
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। तो सपने में भूत आता होगा।
3: हाँ।
2: फिर
3: कुछ नहीं आता।
2: कुछ नहीं होता
3: क्योंकि वो सब तो नकली होता है।
2: हाँ, नकली तो होता है, ये बात तो सही कही।
4: डरावने दिखते हैं।
2: हाँ, लेकिन वो देखने में कैसा डरावना सा होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मुंह होता है, एक आंख होती है, ऐसे खून लगा होता है, तो कितना डरावना लगता है वो।
4: हाँ,
2: तो डर नहीं लगता?
3: डर नहीं लगता।
2: नहीं,
4: ऐसे बहुत खतरनाक खाने वाली होगी तो
2: तब भी नहीं लगता? नहीं, मुझे तो लगता है भाई भूत से डर।
4: मुझे भी
2: है ना?
3: मुझे भी।
2: आपको भी लगता है? हाँ, थोड़ा लगता है कि बहुत लगता है?
3: बहुत।
2: अच्छा, अगर डर लगता है तो किसको बताते हो घर में जाके सबसे पहले?
3: किसी को नहीं।
4: किसी को भी नहीं?
2: किसी को नहीं बताते? नील, आपको तो डर लगता है तो फिर किसी को क्यों नहीं बताते?
4: मैं मम्मी को बताता हूँ।
2: मम्मी को बताते हो? तो मम्मी क्या बोलती है फिर?
4: मम्मी बोलती है कि सामान बोलो, मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ, तो फिर सपने नहीं आएगा डरावने। तो मैं बोलता हूँ तो सपने हट जाते हैं।
2: हट जाते हैं? क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं ना, और याद करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो सब डर के भाग जाते हैं, सारे भूत भाग जाते हैं, है ना? वेरी गुड। आप लोग तो बहुत ब्रेव हो यार, बहुत ब्रेव हो आप लोग तो, दोनों ही। और फिर
3: मेरे को भूत पकड़ता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ वो बोलता।
2: आपको पकड़ता है भूत? हाँ, कब पकड़ा आपको भूत ने? रात को पकड़ा कि सुबह पकड़ा?
4: सुबह तो कैसे पकड़ेगा,
3: मैं रात में ट्रेन में सोया तो ट्रेन में मेरे को भूत दिखा।
2: ट्रेन में भूत दिखा?
3: हाँ,
2: फिर
3: जाला था।
2: हाँ,
3: व्हाइट कपड़े पहना था। उसकी डरावना सी आइस थी।
2: डरावनी आइस थी। फिर क्या किया?
3: और लवेश मामा भी थे मेरे।
2: यश मामा भी थे?
3: और लवेश मामा की दीदी।
2: फिर क्या किया आपने, भूत देखा तो?
3: मैंने लवेश मामा को बोला भूत देखो।
2: उनको दिखा दिया भूत? उनको देख के तो भूत भाग गया होगा, है ना? उसने बोला होगा ये तो बड़े बड़े लोग हैं साथ में इसके, तो भाग जाता हूँ मैं। भागा नहीं भागा भूत?
3: बजरंगबली को बुलाऊ की लाल पली शाह को बुलाऊ?
2: आपने बोला ऐसा कि बजरंगबली को बुला लूंगा मैं अभी?
3: तो बोला था तो भूल गया।
2: भूल गए, भूत भाग गया होगा। आपने बोला ना मैं बजरंगबली को बुलाऊं तो भाग गया होगा फिर। अच्छा, मम्मी से डांट पड़ती है किसी को?
3: पड़ती है।
2: पड़ती है? क्यों पड़ती है?
3: इसकी मम्मी से। अब तूने बहुत हो गया।
2: हाँ, अब उसको थोड़ी देर दे।
4: अरे मुझे तो दे दो, मैंने तो किया ही नहीं हूँ।
2: अच्छा,
4: मुझे दे दे।
2: अच्छा, एक एक करके, एक एक करके।
4: अरे मैं इसके बाद तो मुझे होना।
2: अच्छा, अब नील का चांस, फिर उसके बाद वापस देव का चांस।
3: नहीं।
2: अच्छा, उसको थोड़ी देर दे दो भाई, थोड़ी देर बाद नील भैया को दोगे? पक्का?
3: हाँ।
2: पक्का?
3: हाँ।
2: ठीक है, चलो
3: दे रही
2: है। बिच पिलाएंगे, पहले रुको, पहले बताओ देव, बताओ क्यों डांट पड़ती है मम्मी से? मैं बंद कर दूंगी अभी, आपको बोलना नहीं है अभी आपको। क्यों डांट पड़ती है मम्मी से?
3: हम इधर उधर चले जाते हैं तो
2: खेलने में खेलते खेलते कहाँ चले जाते हो खेलते खेलते?
3: हम हमारी को पग्गी डिगी तो हम ये कमर कुंच बोलता है तो हम कमर कुंच घूम के आते तीन नंबर के ट्रांसपोर्ट तक जाते।
2: मतलब कहीं भी चले जाते हो बिना बताए मम्मी को तो डांट पड़ती है। और मयंक को पड़ती है डांट?
4: हाँ, इसकी मम्मी चिल्लाती है।
3: क्यों? तेरी मम्मी नहीं चिल्लाती क्या?
4: नहीं।
2: क्यों? आपकी मम्मी से डांट नहीं पड़ती आपको?
3: नहीं, मार पड़ती है मगर।
2: मार पड़ती है?
5: मार पड़ती है।
3: पड़ती है।
2: लेकिन मम्मी को बता के जाना चाहिए ना जहाँ भी जाना चाहिए। ये सही बात है या नहीं पहले सब लोग बताओ, मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं? है मयंक? मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं सब जगह?
4: हाँ, मैं तो जाता हूँ।
5: मैं भी।
4: ये लोग बग्गी में, मैं तो जाता हूँ अपनी मम्मी को बता के। इन लोग की मम्मी अभी ना ब्रेड डिपार्टमेंट से भाग के आ गए तो इसकी मम्मी ने मुझे डांटा। इन लोग को थोड़ी ना डांटा।
2: तो आप नील बता के नहीं जाते मम्मी को? तो बताओ फिर नील, आप बता के क्यों नहीं जाते मम्मी को जहाँ जाते हो?
3: क्योंकि हम आ जाते हैं।
2: टाइम से आ जाते हैं कि देर करते हो?
3: मगर मम्मी बॉस नहीं दे रहती। बॉस दे रहेगी तो मम्मी टाइम बोलेगी तो मैं टाइमिंग देख के आ जाऊंगा।
2: अच्छा, मतलब घड़ी चाहिए आपको, घड़ी देख के टाइम देख के। तो मम्मी को बोला आपने कि मम्मी मेरे को घड़ी चाहिए ताकि मैं टाइम से आ जाऊं?
3: मैं बोला था फिर भी नहीं दिलाई।
2: फिर भी नहीं दिलाई? अच्छा, कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है आपको बड़े हो जाओगे आप थोड़ा तब दिलाएंगी वॉच। बड़े लोग पहनते हैं ना वॉच, है ना? आप लोग छोटे?
3: अरे नहीं
2: नहीं,
3: मम्मी इसीलिए नहीं पहनाती है क्योंकि घूम कर देता।
2: घूम कर देते हो?
3: अभी घूम नहीं करूँगा, घूम नहीं करूँगा बोल रहा हूँ फिर भी नहीं दिला रही।
2: तो आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे ना उनको, सब चीजें जगह पे रखोगे, बता के जाओगे तो फिर मम्मी दिलाएंगे वॉच, है ना देव? चलो, तो हम सब इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी अपनी मम्मी को प्रॉमिस करेंगे कि हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, उनको बता के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पहले बोलो यस। सब लोग बोलो यस। हम प्रॉमिस करते हैं।
3: हम प्रॉमिस कर ले।
2: मयंक ने बोला ही नहीं।
4: हम प्रॉमिस करते हैं।
2: फिर से 1 2 3 यस
4: यस।
2: हम प्रॉमिस करते हैं।
4: हम प्रॉमिस करते हैं।
2: जहाँ भी जाएंगे,
4: जहाँ भी जाएंगे
2: मम्मी को बता के जाएंगे,
4: मम्मी को बता के जाएंगे
2: और टाइम से घर वापस जाएंगे,
4: टाइम से घर वापस जाएंगे।
2: ये वेरी गुड। तो अब बजाएंगे हम गाना। अच्छा, और लेते हैं इजाजत रेडियो मधुबन 107.8 एफएम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय
4: बाय बाय
3: बाय बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। एक और सुनहरा दिन खेलने के लिए आप सुन रहे हैं खेले परिवार पढ़ेगा प्यार।
1: छोटी बड़ी बातें इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

खेल तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। थोड़ी कल्पना लगाओ, थोड़ी मस्ती का मूड बनाओ और फिर कोई भी काम खेल और कोई भी सामान खिलौना बन जाएगा। अपने बच्चों के साथ खेलने का सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे माँ बाप के और करीब आ जाते हैं, आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं। मुझे बचपन का वो टाइम सबसे ज्यादा याद आता है जब मेरे मम्मी पापा और मैं मिलकर उल्टी पुल्टी तुकबंदी करते थे या वो नकलची बंदर बनके एक दूसरे की एक्टिंग करते थे। मेरी बेटी को भी इन सब में बहुत मजा आता है। ये मजेदार भोले भाले खेल खेलकर मेरा भी मन हल्का होता है, टेंशन तनाव सब दूर होता है। अच्छा चलो आओ देखें एल्मो के घर में आज खेल खेल में कैसे प्यार बढ़ रहा है।

0: खुशबू। एल्मो को कपड़ों पर प्रेस की खुशबू बहुत पसंद है पापा।
1: मुझे भी एल्मो।
0: एल्मो को पापा की लाल पीली शर्ट भी बहुत पसंद है।
1: अरे वाह, पापा की लाल पीली शर्ट में तुम तो कुछ और ही लग रहे हो एल्मो।
0: पक पक पक पकाक।
1: पक पक पकाक। आहा, तो ये एल्मो नहीं लाल पीली मुर्गी है। एल्मो मुर्गी तो मैं कौन हूँ?
0: मैं बकरी। पापा बकरी है।
2: अरे वाह, यहाँ पापा और एल्मो नहीं मुर्गी और बकरी प्रेस कर रहे हैं।
1: मैं
2: खूं खूं खूं खूं
0: है।
1: ये कौन?
0: खच खच खच खुजली वाला। मम्मी बंदर है।
2: क्या हुआ एल्मो, तुमको बंदर नहीं पसंद?
0: एल्मो की फ्रेंड काजू को बंदर बनना बहुत पसंद था, पर काजू तो अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई।
2: ओह एल्मो, क्या तुमको काजू की याद आ रही है?
0: एल्मो को रोना आ रहा है।
1: एल्मो, जब हमारे दोस्त दूर चले जाते हैं तो कभी कभी उनको याद करके मन उदास हो जाता है और रोना भी आता है।
0: क्या मम्मी पापा भी कभी कभी उदास हो जाते हैं?
2: हाँ एल्मो।
1: पता है एल्मो, मैं उदासी कम करने के लिए क्या करता हूँ? एक गहरी लंबी सांस लेता हूँ, ऐसे,
0: ऐसे?
1: हाँ, एकदम ऐसे। अब थोड़ा बेहतर लगा?
0: हाँ पापा, एल्मो को लंबी सांस लेकर अच्छा लगा।
2: तो अब तुम हमें काजू की तरह बंदर बन के दिखाना चाहोगे?
0: हाँ, खाओ खाओ खाओ खाओ एल्मो बंदर, खी खी खी खी काजू बंदरिया, धम धम धम धम नाचे दोनों।
2: अरे वाह, नाचे दोनों नहीं, नाचे तीनों, मम्मी बंदर भी, छम छम छम चम चमा चम चम,
1: धम धमा धम धम धम धम धमा धम, नाचे पप्पा बंदर, नाचे चारों।
0: पता है, एक बार एल्मो ने काजू के पप्पा की बेल्ट लेकर अपनी दुम बनाई थी।
2: मैं भी एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी, मम्मी जब भी चुन्नी सुखाने डालती थी, मैं उसे ओढ़कर बंदरिया वाला डांस करती थी, जैसे आज किया, चम चम चम।
0: एकदम काजू की तरह। एल्मो को मम्मी पापा के साथ बंदर बंदर खेलने में बहुत मजा आया। अगर एल्मो काजू को बता पाता तो और मजा आता।
1: तुम बिल्कुल काजू को बता पाओगे एल्मो। मैं शाम को काजू के पापा को फोन करूंगा और तुम काजू से ढेर सारी बातें कर सकते हो।
0: हाँ, फिर एल्मो काजू को बताएगा कि मम्मी पापा और एल्मो ने बंदर बंदर खेला और बहुत मजा किया। ये! पर अभी एल्मो को और खेलना है।
1: तो हो जाए एक बार फिर बंदर डांस, धम धमा धम धम धम धम धमा धम धम,
2: चम चमा चम चम चम,
0: नाचे संग संग एल्मो पापा मम्मी, चम चम चम।
3: लुई में अंदर काफी मजेदार खेल चल रहा था।
1: हाँ, हमें एल्मो के साथ नए नए खेल बनाने में और खेलने में बहुत मजा आता है। एल्मो को समझाने का मौका भी मिलता है।
2: एल्मो के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, खेल खेल में कितनी बातें हो जाती हैं, और हम तीनों मिलकर जब खेलते हैं तो परिवार में अपनापन बढ़ता है।
3: बिल्कुल, बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और खेल खेल में बच्चे सीखते भी हैं। पर सबसे ज्यादा जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। अपने बच्चों की दुनिया को, उनके मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ खेलना। तो खेलें सब संग।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में। आज हमारे साथ है विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला, जो हमें आत्मबल और सफलता के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का विषय आत्मबल से श्रेष्ठ शुभ एवं पवित्र कार्यों की पूर्णता। डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि आत्मबल कैसे हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने, चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वे यह भी समझाएंगे कि आत्मबल और खुशी के बीच क्या संबंध है और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस कार्यक्रम को सुनना न भूलें और जानें कि कैसे आप अपने जीवन में आत्मबल को विकसित कर सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: नमस्कार, बाल संसार इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं। आज हम लोग बाल संसार कार्यक्रम में बहुत ही यूनिक बातें करेंगे, जिसमें आत्मबल के बारे में बातें करेंगे। और पिछले कई एपिसोड से आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छी तरह से। तो आज हम लोग आत्मबल का जो विकास कैसे किया जाए, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत आनंद मंगल में हूँ
1: जी। जी, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जिस तरह से आत्मबल और इस पे बात करने वाले हैं।
2: हाँ जी,
1: पिछले कई एपिसोड में कुछ कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम लोग इस पर जोर देंगे
2: जी।
1: और डॉक्टर अजय शुक्ला जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आत्मबल का विकास करने के लिए कौन कौन से तरीके प्रभावी हो सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें।
2: मनुष्य जीवन में चिंतन के जितने भी पक्ष होते हैं, उसमें जब हम स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो भी हमारे बीच में वातावरण है और जिस वातावरण में हमारे को स्वयं को सम्मिलित करना पड़ रहा है, उन दोनों को अगर विजुलाइज किया जाए तो पता चलता है कि जो इनपुट हमारे पास में आ रहा है, उसी का प्रभाव हमारे मानस पर पड़ता है। मानस दर्शन एक नैसर्गिक क्रिया है और इसके माध्यम से स्वयं व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उसको पता चलता है कि जिस भाव जगत के साथ, जिस विचार जगत के साथ मैं अपना जीवन में जी रहा हूँ या इस संसार में विचरण कर रहा हूँ, इसके बाद में जब मैं स्वयं का मूल्यांकन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग, गुणों का प्रयोग समाज में कर पा रहा हूं या नहीं। या अपने विकास के लिए जब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो मुझे ये इस बात का एहसास होता है कि जिन बातों से या सामान्य स्थितियों से मेरा विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और उसमें कुछ एडिशनल इनपुट की आवश्यकता है। एडिशनल इनपुट मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आत्मबल से पहले दो चीजें आती हैं, शारीरिक और मानसिक शक्ति। शारीरिक और मानसिक शक्ति को तो सामान्य स्थितियों में हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब आत्मबल की बात आती है तो वहां थोड़ा सा ठहरते हैं और सोचते हैं कि ये नई चीज क्या हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई विशेष कार्य होता है, अति महत्वपूर्ण कार्य होता है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में कोई कार्य होता है, तो हमें लगता है कि कुछ यहां पर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए भी हमारे पास देश काल और परिस्थिति सेम रहते हैं जैसे कि पुराने समय में थी, और आज के वर्तमान परिवेश में भी हमको वो वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि यहां आत्मशक्ति का विनियोजन करना पड़ेगा, और वो आत्मशक्ति का विनियोजन जब हम करते हैं और जब परिणाम निकल के आता है, तो हमको लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम बोल रहे थे, वही हमारा आत्मबल था और उस आत्मबल ने हमको इस कार्य को संपादित करने में, अर्थात इस कार्य की पूर्णता में आरंभ से लेकर अंत तक जिस शक्ति की आवश्यकता थी, उस शक्ति में कमी नहीं आने दी और मैं पूरे उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, प्रेम के साथ, संपूर्ण समर्पण से अपने आत्मबल को में समाविष्ट कर पाया और एक श्रेष्ठ परिणाम के प्रति में आसान्वित हो सका। जी
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आत्मबल का विकास करने के लिए किस तरह के तरीके हमें अपनाना है। और जहां पर मुझे लगता है कि एक सिंपल साधारण सी बात है कि हर बात को कहते हैं कि थिंक इन अ राइट वे, तो ये जो चीजें हैं इसको अगर आप अपनाते हैं तो आप आत्मबल को प्रभावी ढंग से अपने जीवन में अपना सकते हैं। कई बार हम लोग जो है वास्तविकता से थोड़ा अनभिज्ञ होकर भी कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो आत्मबल आपका वहां पर काम भी करता है, लेकिन आत्मा की जो सच्चाई है उससे नहीं जुड़ पाती, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जिसके कारण हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने बहुत अच्छा एलईडी बल्ब्स लगाया दीपावली में और देखा कि लाइट ही नहीं है, तो इसकी चमक कैसे आएगी, है ना? और वो लाइट आएगी जब आप कनेक्ट करेंगे मेन प्लग के साथ, आप कनेक्ट करके बटन ऑन कर देंगे तो वो लाइट आ जाएगी। उससे आपको एक झटके में जो खुशी होनी चाहिए वो आपको मिल जाती है। कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर वो सिर्फ कलर्स दिखेंगे आपको, उसमें जो एनलाइटमेंट वाली बात आती है वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मुझे लगता है कि आपके मानस पटल पर काफ़ी अलग अलग विचार आते होंगे, तो थोड़ी देर के लिए उन विचारों को आप किनारा करके आप अगर ध्यान से सुनेंगे इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि एपिसोड के साथ साथ आपकी आत्मा भी जागृत होती जाएगी। तो आइए एक और सवाल पूछना चाहूँगा अजय शुक्ला सर से। आत्मबल कैसे हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और चुनौतियों को पार करने में मदद करता है?
2: जीवन में आत्मबल की महसूसता के जितने भी आयाम होते हैं, उसमें सबसे प्रथम आयाम को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा।
1: जी जी।
2: एक विद्यालयीन प्रोग्राम के अंतर्गत मैं बच्चों से बातचीत कर रहा था और मैंने उनसे कहने का प्रयास किया कि देखिए, हम लोग अपने जीवन में जिस भाव जगत के साथ, जिस विचार जगत के साथ गतिशील होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अति आवश्यक होती हैं और कुछ सामान्य होती हैं और कुछ अति विशिष्ट होती हैं। सामान्य स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो एक बार हमको रिव्यू करना होता है कि जब भी हमने अपने जीवन में कोई चैलेंज लिया है या अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड फीचर में क्या चीजें हमारे मन में चल रही हैं, क्या सफलता असफलता के बीच में द्वंद्व है, क्या उपलब्धि मिलेगी या सफलता मिलेगी इसके बीच में द्वंद्व है, मैं असफल हो जाऊंगा यह बात आपको कहीं मन में कचोट रही है। ये बहुत सारी बातें जब जीवन में हमारे सामने एक साथ होती हैं तो वहां हमारे मन पर दबाव पड़ता है और एक तनाव भी होता है। देखिए, दबाव और तनाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस दबाव और तनाव के कारण ही आप किसी कार्य को करते हैं। तो जब जीवन में दबाव और तनाव को आप कहीं ना कहीं मैनेज करने की स्थिति में होंगे, मैनेज से अर्थ यह है कि वो सकारात्मक दबाव है जो एक अभिप्रेरणा के रूप में आपके अंतर्मन में काम कर रहा है, और इसी प्रकार से वो जो तनाव आपको दिखाई दे रहा है और वो जो तनाव है वो भी कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा हुआ है। जितने भी दुनिया में इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है, उसमें बिना तनाव के हम विकास नहीं कर सकते, अर्थात तनाव और दबाव ये दोनों ही हमारे साथ में चलते हैं, गतिशील रहते हैं और इसको केवल मैनेज करते हैं और आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये कार्य करने की एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि साधारण स्थिति या विशिष्ट स्थिति या अति महत्वपूर्ण स्थिति में आप ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल चीजें क्या हैं। तो आपने वैचारिक ढांचे को, वैचारिक चिंतन को खंगालने का प्रयास करेंगे, उसे थोड़ा मांझने का प्रयास करेंगे, तो आपको छोटे छोटे तीन तत्व वहां दिखाई देंगे। उसमें पहला तत्व है कि हम कहीं ना कहीं साधारण मन स्थिति के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि कुछ होगा या नहीं होगा, अर्थात हम अपने प्रति संशय से भर जाते हैं। और तीसरी स्थिति आती है कि हम धीरे धीरे स्वयं के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। अब इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जिन लोगों के पास में ये तीन चीजें हैं, वो द्वंद्व और दबाव से भरे हुए हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों के मन में उमंग है, उत्साह है, कार्य करने के प्रति इच्छा शक्ति है, उन्हें लगता है कि सफलता या असफलता बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा प्ले करना, मेरा मूवमेंट करना, मेरा प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, कुल मिला के आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो पुरुषार्थ करना, एफर्ट करना, इसको वो महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसी एफर्ट करने की स्थिति और उसके परिणाम पर उनको बहुत अधिक दबाव नहीं होता है। सोचते हैं हार या जीत दोनों में से कोई तो होगा, लेकिन मैं अपने एफर्ट में, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करने में जिस उमंग उत्साह के साथ गतिशील होना चाहता हूं उसे मैं बनाए रखूंगा। तो आप देखेंगे कि ये सारी बातों का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि हम अपने अंदर कार्य करने की जो है, अंतर्मन की शक्ति है, उसको बना के रखें, उस पर विश्वास करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम ही वो इंसान हैं जो उपलब्धियों के लिए बने हैं। तो आप देखेंगे कि सृजन, अर्थात आपके अंदर मानस में से सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस अपने आप डेवलप होगा और आप बहुत कम टाइम में एक बेहतरीन स्थिति को लेके अचीवर बन जाएंगे। जी,
1: जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे और अभिभावक जो सुन रहे हैं हमें, उन सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है, कभी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं और परिस्थिति को हम लोग अपने मानसिक और अपने फाइनेंस या फिर अपने जो क्षमता है उसके बीच में वो तालमेल बिठाने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कोशिश के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा उसको अगर साक्षी होना शुरू कर देंगे आप, मतलब परिस्थिति के वश होकर सोचना नहीं है, परिस्थिति को साक्षी होकर देखने का अगर आपका एक तरीका आ जाए आपको, तो मुझे लगता है कि हर कठिन परिस्थिति से आसानी से आप जो है पार हो सकते हैं, क्योंकि साक्षी होने में आपको आत्मबल मदद करता है, आप कनेक्ट हो जाते हो अपनी चेतना से और परम चेतना से। तो ये एक तरीका है और जैसे अजय शुक्ला जी ने जिस तरह से उन चीज़ों को बहुत ही गहराई से आपको बताया, उस पर चिंतन करें। आइए आगे बढ़ते हुए, वक्त हो गया एक छोटा से ब्रेक का, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये गीत भी बड़ा ही यूनिक आपको सुनाने वाले हैं, जहाँ पर हमें जो है इस गीत का जो सही मायने में अगर भाव समझ लेंगे ना आप तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन गीत के शब्दों के साथ जुड़ने से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक ओरा आपको, एक जो कनेक्टिविटी तो हो जाती है, लेकिन और थोड़ा सा अगर डीप साइलेंस में अगर आप इसको सुनेंगे तो यहाँ पर इस गीत के साथ परमात्मा की जो उच्च क्वालिटी की महिमा है वो बताई गई है। तो आशा करूँगा कि ये गीत, जैसे कि इसके लाइन है, डॉक्टर अजय शुक्ला ने इस गीत को चयन किया है आप सभी के लिए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कहने का भाव ये है कि अच्छा बुरा ये हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के लिए ना अच्छा है ना बुरा है, वो दोनों से पार है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को याद आ रहा है अजय शुक्ला जी को सुनते सुनते, कि हम लोग अगर डिवाइड करेंगे अच्छा बुरा, है ना, तो ये चीज़ ही गड़बड़ कर देता है और यहाँ पर फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, है ना। या तो आप अच्छा बनने का कोशिश करेंगे या बुरा हो रहा है तो वहाँ उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और दोनों जगह आप हार सकते हैं। इसीलिए हमें जो है हार और जीत से परे हो जाना है, सुख दुख से परे हो जाना है, पाप पुण्य से परे हो जाना है। तो वो आत्मा की शक्ति है जहाँ पर आप साक्षी होकर इस खेल को देखने का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुन रहे हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आशा करूंगा जिस भाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरी थी, शायद उस भाव को आप समझ पाए। तो आइए फिर से मैं डॉक्टर अजय शुक्ला सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। आत्मबल पे बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं कि आत्मबल आपको खुशी देता है या शांति देता है, लेकिन वो कैसे कनेक्ट हो पाए, इसके लिए एक सवाल है। अजय शुक्ला सर, आत्मबल और खुशी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? एक ये, और ये कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ये दूसरा पहलू जी।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे ही इस गीत की महिमा भाई जी आपने किया है, और निश्चित तौर पर मेरे जीवन में जितने भी वर्कशॉप होते हैं मैं प्रयास करता हूं कि इस गीत का मैं उपयोग करूं, और इस गीत के पहले एक लाइन बोलने का प्रयास करता हूं, और वो भी एक गीत का ही भाव है जिसमें कहा गया है कि जब हम बाल मन को लेकर चलते हैं या बाल हृदय को लेकर चलते हैं, तो वहाँ एक मधुर ध्वनि हमें किसी केंद्रीय भाव तक लेके जाती है, और वो केंद्रीय भाव यही होता है कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे सरकार दुनिया के पालनहार। लेकिन ये बात लास्ट में मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ मेरे और बच्चों के बीच में अभी कनेक्टिविटी यहाँ पूर्ण हुई, अर्थात वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करेंगे, और जब तक वो मेरे साथ में कार्य कर रहे थे तो मैं उनसे कहता था कि इस लाइन को जब आप उस समय प्रयोग करना जब आप मैच्योर हो जाओ, लेकिन प्री मैच्योरिटी सिचुएशन में आपको एक लाइन और उपयोग में लानी है, और वो ये लाइन है जिसमें थोड़ा आप डायरेक्ट सुनेंगे तो वहां लगेगा कि नकारात्मक भाव है कि जो खिल न सके वो फूल हम हैं और तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तो जो खिल न सके वो फूल हम हैं, अगर ये हम सोचते हैं तो वहां डिप्रेशन की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन अब आप अपने आप को वर्कशॉप या अच्छे विचारों के बाद जब उठाते हैं तो वही मनोदशा आपको एक नई दृष्टि और एक नई सृष्टि देती है, और एक नए विचार संवाद पर स्वयं को स्थापित करने में मदद पहुंचाती है, और वहां आप गर्व और गौरव से कहते हैं जो खिल सके वो फूल हम है। तो ये स्टेटमेंट आते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन की जो एक बाहर आ जाती है, जो खिल सके वो फूल हम है और तुम्हारे चरणों की धूल कब से तक रहेंगे हम। तो अभी अब एक नया स्टेटमेंट है, तुम्हारे नैनों के नूर हम है। जब ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली और कुछ दिन आप 10-20 साल इसमें जियो, और जब जी के आनंद आ जाए तो फिर आप बोलना कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और जो भी देना हो दे दे सरकार दुनिया के पालनहार। अब आपको ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है। अगर आपने दूसरा लिया तो वहां चैलेंज की सिचुएशन बढ़ जानी है और आत्मबल बहुत बड़ी बहुतायत मात्रा में लगने वाला है। लेकिन अगर आपने बिगिनिंग यहां से रखी कि तुम्हारे नैनों के नूर हमें और जो खिल सके वो फूल हमें, तो यहां आपके अंदर एक प्लानिंग करने का भाव आएगा और आप आत्मबल को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इस बात को कंक्लूड कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझे आत्मा के द्वारा इस जगत में रहते हुए ये मान लिया गया है कि अब मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ शुभ और पवित्र विचारों के सानिध्य में ही गतिशील करना है, मैं इसके नीचे कंप्रोमाइज करने वाली स्थिति में नहीं हूं। अब आप पूछेंगे कि क्या आपसे ही पूछा जाए कि आप इसको कैसे जीते हैं, तो मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा कि जब मेरे पास में कोई साधारण व्यर्थ और नकारात्मक सोच का व्यक्ति आता है तो मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई साहब मैंने इस पर काम करना बंद कर दिया है। कई बार आप अपने आप को सेव भी करते हैं और करना भी चाहिए। सेव में इसलिए कह रहा हूं, आपको एक और पक्ष रखना चाहूंगा कि जब मेरे साथ में बहुत सारे मेरे मित्र होते हैं तो वो कहते हैं कि कार्यक्रम के पहले माँ सरस्वती की हम वंदना करना चाहते हैं, और आज मुझे एक रेफरेंस याद आता है, मेरे मित्र बोले कि मैं इस वंदना को कर रहा हूं लेकिन आप एज ए बिहेवियर साइंटिस्ट उसमें कुछ करेक्शन हो तो कर देना। मैंने कहा देखो धार्मिक प्रार्थना और वंदना के अंदर जो भी लिखा गया है, राइटर ने लिखा है, उनका कुछ भाव जगत उस समय रहा होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन करके अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम कुछ करेक्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो बड़ा सुखकारक होगा और हमारे अंदर एक दृष्टि भी पैदा हो जाएगी कि परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं हो तो उन्हें हम अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार के भाव जगत का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटी सी वो लाइन थी, मुझे सारा स्टेंजा याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं उसे तरन्नुम में थोड़ा सा गाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो हमारे मित्र गाते थे वो महासरस्वती को आह्वान करते हुए कहते थे

0: मैं उम्मीद करता हूं कि दुर्दशा और महादशा के बीच में हम अंतर करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दुर्दशा एंड महादशा, यही हमारे आत्मबल को यहाँ आइडेंटिफाई भी कर रहा है, हमें प्रोवोक भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है और इंस्पायर भी कर रहा है कि प्लीज यूज एवरी टाइम योर आत्मबल. जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छा एग्जाम्पल देकर आपने शब्दों का जो है सुंदर परिभाषित करने की कोशिश की, जहाँ पर गीत में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का बल जो है क्षीण होता है, लेकिन वहीं पर अगर एक शब्द का प्रयोग हम लोग अगर बदलाव करते हैं तो वहीं पर आत्मा की जो शक्ति है रीज होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, ये हमने समझा. तो आइए एक और आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा. आत्मबल को बढ़ाने के लिए बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, कौन कौन से एक्टिविटीज़ उनसे करवाना चाहिए ताकि उनका आत्मबल बढ़े. और मुझे लगता है कि ये शब्दों का खेल भी बड़ा अच्छा है जहाँ पर बच्चों का मनोबल और आत्मबल दोनों बढ़ सकता है.
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कहा. और जब गतिविधियों की बात आती है तो मन में अपने आप नेचुरल रूप से खुशी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारी वर्किंग जो शैली है उसमें बदलाव होता है. कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं वो कितना भी क्रिएटिव वर्क है, लेकिन उस क्रिएटिविटी में भी कुछ इनोवेटिव्स हम लाने का प्रयास करें. हम प्रयास करें कि जो हमारे कार्य हम निश्चित दौर में करते हैं, निश्चित समय में पूरा करते हैं, उसी के दरमियान, उसी के पैरेलल में कुछ चीज़ें हम अपने शौक जो मर्यादा के अनुकूल भी हों. जैसा कि मैंने पिछले कई एपिसोड में कहने का प्रयास भी किया है कि मन जो चंचल है, इस मन को अलग अलग दशाओं में नई नई सिचुएशन में एस्टेब्लिश करने के लिए इतने सारे श्रेष्ठ और अच्छे विकल्प आप पैदा कर दीजिए, दे दीजिए, कि वो मन भी कहेगा कि इतने अच्छी सराउंडिंग में मैं रहता हूं तो अब मैं यहां से कहीं और नहीं जाऊंगा. और वो मन आत्मा के इतने नियंत्रण में आ जाएगा कि आपको वहां दंभ नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में जो सरलता है, सहजता है, विनम्रता है, इन गुण मूल्यों के साथ में, आत्मिक शक्ति के साथ में, आप अपने आप को पाएंगे कि आपको अलग से एफर्ट भी नहीं करना पड़ा और मन की चंचलता और मन की स्पीड को आपने भांप लिया, इस पर नियंत्रण कर लिया, इस पर एक दृष्टि आपने डाली और इसको इतने सारे काम दे दिए कि मन जब इन कामों में लगा रहता है और आप इसके पास आते हैं और आप इससे पूछिए कि हे मेरे मन, तू जब नम है तो अब बता तेरे को मैं एक नया डायरेक्शन क्या दूं, तो वो मन जहां कठोरता से युक्त था, आप धीरे से उसमें माइनर चेंज करिए, उसको नम कर दीजिए, देखिए वो कितना अनुकूल हो जाता है, कितना स्नेहिल और कितना प्यारा हो जाता है. और वेट करेगा वो एवरी टाइम कि आप उसको नई गाइडलाइन, नई दिशा दें श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कार्यों के माध्यम से जीवन की उच्चता तक पहुंचने के लिए.
1: जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया. आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आत्मबल पर जो बातें हमने की. और निश्चित तौर पे हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव जो चीज़ों को है लेना है. और जिस तरह से शब्द जो है उसको भी अगर आप चेंज कर पाएँ तो वो भी आपके जीवन को बेहतर बना सकता है. और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने सोच में बदलाव लाएं, है ना. थिंक बिग कहा जाता है, मतलब बड़ी सोच. बड़ी सोच का इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बड़ी सोच कहते ही हमें लगता है कि पैसा बड़ा होना चाहिए हमारे पास या हमारे पास बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए. हम लोग मटेरियल या मनी माइंड होके सोचना शुरू कर देते तो वो भी गलत हो जाता है. बड़ी सोच माना सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन की सोच और कल्याण की सोच हो. बना आप सारे संसार के लोगों के लिए भलाई के बारे में सोचना, ये बड़ी सोच है. ऐसे नहीं कि आपने अपने लिए सोचा, अपने लिए भी सोचना ज़रूरी है, लेकिन अपने साथ में जब आप सर्व के हित के बारे में सोचते हैं, सबका भला हो, सब सुखी हो, तो ये बड़ी सोच है. और इसको फॉलोअप करते हुए बना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है और सुन के श्रवण है, खुशी मिलती है, लेकिन कार्य करने में आप अकेले हो जाते हो, है ना. यहाँ पर मेरी आवाज़ है और आप है तो बल मिल रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप खुद अकेले काम करना शुरू करेंगे तो वहाँ आपकी सारी सोच जो है वर्तमान सिचुएशन को लेकर शुरू हो जाता है. तो वहाँ पर आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है. एक नोट अपने पास रखिए कि आप इस सोच के साथ बात करेंगे, इस सोच के साथ काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा काम करेगा, आप करके देखिएगा। आपको एक कहते हैं ना, जैसे कि आप एकदम थका थका सा लग रहे हो, तो आपको अगर एक किसी ने विटामिन की गोली दे दी या बढ़िया सा जो है खीर बना के आपको दिया गया है, या एक बढ़िया सा गुलाब रूहअफ़ज़ा जो है आपको पिला दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी रेज हो जाती है और आप अच्छा फील करते हैं। तो वैसे ही आप अगर ऐसे थॉट्स लेकर चलेंगे और उस थॉट में ताकत आएगी इतनी कि आपको थकान नहीं महसूस होगा, आपको खुशी होगा, कोई भी काम कोई भी टास्क हो उसको बड़े अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ बाल संसार कार्यक्रम में। बस इतना ही। एक बार अजय शुक्ला सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी आत्मन को भी ढेर सारी खुशियां। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए सफर इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं। आज विशेष 16 सितंबर है। 16 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करूं तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और बलवंत सिंह, MS सुब्बा लक्ष्मी, श्यामलाल गुप्ता, पार्षद परसून जोशी, रामकृष्ण लाराम लक्ष्मण, पुष्कर सिंह धामी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही ज्वाला प्रसाद, AB तारापुरे, अर्जुन सिंह, कपिल वात्सल्यन, केशर भाई केरकर, जहां आरा रोनाल्ड रॉस, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को एक सुंदर विचार के साथ शुरू करते हैं। जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। सफर इस कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्कार, आप सुन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। आइए 16 सितंबर के कुछ बातों से आपको रूबरू कराने वाला हूं। और आज विश्व ओजोन दिवस है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो है एक क्लाइमेटिक बात है और मौसम की बात है, जहाँ पर धरती पर जीवन को पनपने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। इतिहास और भूगोल में अध्ययन से एक बात सामने आती है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ रहा है, लेकिन जो चीज़ें इंसान को कड़ी मेहनत और प्रकृति के फल स्वरूप मिलती हैं, उसे आज खुद इंसान ही मिटाने पर लगा हुआ है। लगातार प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप कर इंसान ने खुद को प्रकृति के सामने ला खड़ा किया है। और जहां प्रकृति उसका विनाश कर सकती है, जंगलों वनों की कटाई पर असंतुलित एक इंबैलेंस कर पैदा कर देती है, वहीं गाड़ियों के हवा को प्रदूषित कर कूर किया जा रहा है, और वहीं उस जल को भी इंसान ने नहीं बख्शा जिसकी वजह से धरती पर जीवन संचालित होता है। और औद्योगिकी के इस युग में इंसान हर उस चीज़ का हरण कर रहा है जो उसकी प्रकृति की राह में रोड़ा बन रहा है। इसी तरह इंसान ने अपने आराम और सहूलियत के लिए ओजोन परत को भी नष्ट करने की ठान ली है, जो उसे सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। दिनों दिन बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियों के कारण आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो समझने वाली बात ये है कि आज थोड़ा भी धूप आपको 10 या 11 बजे भी निकलते हैं तो आप उसे सहन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा जो है तेज़ हो जाती है। और 12-1 बजे अगर बाहर निकलते हो तो उस गर्मी में शायद ही आप जो है बिना छाता या फिर बिना गाड़ी के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जो बहुत ज़्यादा हमें जो गर्मी लग रही है, हमारी स्किन को जो है ख़राब कर रही है, तो ये सारी चीज़ें ओजोन परत की कमी के कारण हो रही है। तो वही इसके बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु 0-3 का यौगिक है, औसत है। और ओजोन परत सामान्य धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ये गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है, मगर जहरीली गैसों और ओजोन परत में एक छेद हो जाने की वजह से अब इस छेद को भरने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यह कैसे भरा जाए या इसके लिए जहरीली गैस या हम इंसानों द्वारा ऐसी और कूलर, एसी और कूलर जैसे उत्पादों का इस्तेमाल होती है, और अपना जीवन अधिक से अधिक आरामदायक बनाने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वही उसका नतीजा है। और पिछले 2 दशकों से समताप मंडल में ओजोन की मात्रा कम हो रही है। इसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर व विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करना, गैस कूलर, फ्लोरा कार्बन और हेलोन है। ये गैसेस एरोसोल से एक फॉर्म की वस्तुओं को फुलाने और आधुनिक अग्निशामन उपकरणों में

प्रयोग की जाती। यही नहीं, सुपर सोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन की मात्रा को कम करने में मदद करती है। ओजोन की परत विशेष तौर से ध्रुवीय वातावरण में बहुत कम पाई जाती है। ओजोन परत एक छिद्र अटलांटिका के ऊपर स्थित है। तो आइए इसके बारे में और जानने के लिए आपको और थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा किन किन चीज़ों से ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने एसी और कूलर को थोड़ा सा उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपकी ज़रूरत है, और उसे खुला या फिर ज़्यादा समय तक आप उपयोग में ना रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ओजोन, विश्व ओजोन दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। इसमें शुभकामनाओं की बात बहुत कम है, लेकिन इसमें जो है हमें जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। हमें जो ओजोन परत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें छेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है। अब पैरा बैंगनी किरणों से जो नुकसान हो रहा है, आम तौर पर ये पैरा बैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली एक किरण है जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये ऊर्जा ओजोन की परत को नष्ट या पतला कर रही हैं। इन पैरा बैंगनी किरणों को तीन भागों में बांटा गया है और इसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक UVC 200-280 होती है। ओजोन परत हमें उन किरणों से बचाती है जिनसे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। पैरा बैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बढ़ती मात्रा में चर्म कैंसर, मोतियाबिंदु के अलावा शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही नहीं, इसका असर जैविक विविधता पर भी पड़ता है और कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। इसका असर सूक्ष्म जीवाणु पर होता है। इसके अलावा ये समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे मछलियों व अन्य प्राणियों की मात्रा भी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में ओजोन परत के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दशकों से इसे बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन 23 जनवरी 1995 को यूनाइटेड नेशन की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया। उस समय लक्ष्य रखा गया कि पूरे विश्व में 2010 तक ओजोन फ्रेंडली वातावरण बनाया जाएगा। हालांकि अभी भी लक्ष्य दूर है, लेकिन ओजोन परत बचाने की दिशा में विश्व ने अनेक कार्यक्रम किए जा रहे, उल्लेखनीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ओजोन परत को बचाने की जो है अब पूरी जद्दोजहद मेहनत किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। परिणाम ये है कि आज बाजार में ओजोन फ्रेंडली फ्रिज कूलर आदि आ गए हैं। इस परत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि फोम के गद्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, रूम फ्रेशनर व केमिकल परफ्यूम का उपयोग ना किया जाए और ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशन का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अपने घर की बनावट ओजोन फ्रेंडली तरीके से किया जाए, जिसमें रोशनी, हवा व ऊर्जा के लिए प्राकृतिक सूत्रों का प्रयोग हो। तो ये विशेष रूप से हमें करना है और इन चीज़ों को आप मार्केट में जो है देख सकते हैं कि इस तरह के जो है ओजोन फ्रेंडली इक्विपमेंट बोलना चाहिए आपको। जब भी खरीदें आप तो ओजोन फ्रेंडली इक्विपमेंट अगर आप मांगते हैं तो वो आपको चीज़ें मिल सकती है बाज़ार में। थोड़ी बहुत महंगी या हो सकती है लेकिन फिर भी ये आपके लिए बड़ा ही काम के है। इन चीज़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप सुनाए हैं रेणु माधवन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ एक विशेष संगीतज्ञ के साथ, आपकी बातचीत कराने वाला हूँ, एक विशेष संगीतकारा के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है इन्हें, और भारत की वो ऐसी पहली गायिका थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनके गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया, तो वहीं स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा है। सुब्बू लक्ष्मी का जन्म मंदिरों के शहर मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज्य में 16 सितंबर यानी आज के दिन 1916 को वीणा वादक लेख अधिकारी के यहाँ उनकी माता का नाम और जन्म स्थान ही अंकित है कि यहाँ पर हुआ। उनका बचपन का नाम कुंजम्मा था। उनकी नानी अक्कम्मा वायलिन वादक थी और उनका प्रसिद्ध नाम NMS था। बचपन में कुंजम्मा अपने छोटे भाई और बहन के साथ संगीत के वातावरण में पली बड़ी और उनका घर मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास था। MS सुब्बा लक्ष्मी देवासी परिवार में उत्पन्न हुई और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत अकेडमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। शुरुआत में उनके मन में अपने संगीत के संबंध में ये भावना थी कि उनके संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दे। बस यही सपना लेकर उन्होंने संगीत में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और सुब्बा लक्ष्मी बचपन से ही कर्नाटक संगीत से जुड़ गई थी और उनका पहला एल्बम मजहब 10 साल की उम्र में निकला था। प्रसिद्ध संगीताचार्य सेमनगुड़ी श्रीनिवासन अय्यर से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पंडित नारायण राव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और सुब्बू लक्ष्मी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने गायन का प्रदर्शन एक समारोह के दौरान किया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास संगीत अकेडमी चली गई, जहां सिर्फ 17 साल की उम्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने कन्नड़ के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती में भी गीत गाए। 1945 में भक्ति मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की। उन्होंने मीरा के भजन को अपने सुरों में पिरोया जो आज तक लोगों द्वारा सुने जाते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी। और 1936 में स्वतंत्रता सेनानी सदाशिव से मिली और 1940 में उनकी जीवन संगनी बन गई। सदाशिव ने अपनी पहली पत्नी से 4 बच्चे थे जिन्हें सुब्बू लक्ष्मी ने अपनी संतान की तरह पाला पोसा। तो आइए उनकी लोकप्रियता के बारे में आगे बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और गीत आपके लिए खास सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बातें कर रहे थे हम लोग विशेष संगीतकारा सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, और प्रशंसकों की बात करें या फिर उनका जो है लोकप्रियता की बात करें। सुब्बुलक्ष्मी की लोकप्रियता उनके गायन के कारण तो होती ही, परंतु उन्होंने जो भक्ति संगीत भारत और संपूर्ण विश्व को दिया है उसके कारण विशेष रूप से उन्हें स्मरण किया जाता है। और जब वो गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे गाती है, तो एक विशेष प्रकार का जादू सा श्रोताओं पर छा जाता है। उन्होंने मीरा के अनेक भजन भी गाए, उन्होंने मीरा नामक तालीम फिल्म में भी काम किया, और जब इस फिल्म का हिंदी रूपांतरण पेश किया गया तो सुब्बुलक्ष्मी को हिंदी जगत में विशेष रूप से जाने जाने लगा। वे इसके कारण संपूर्ण देश में पॉपुलर हो गई। सुब्बुलक्ष्मी ने जब संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में अपना गायन पेश किया था तो प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा था कि वे अपने संगीत के द्वारा पश्चिम के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती हैं उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझे, इसके लिए उनके कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर पश्चिमी श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। सुब्बुलक्ष्मी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लोग भाषा नहीं समझते थे वे उनकी गायकी सुनते थे। उनकी आवाज़ को परमात्मा की अभिव्यक्ति कहा जाता था और लोग प्रसन्न चित्त होकर उनका गायन सुनते थे। उनके प्रशंसकों की प्रेरित में महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल जैसे कई दिग्गज प्रख्यात श्रोता थे। उनके बारे में गांधी जी का कहना था कि वह किसी और का गायन सुनने के बजाय सुब्बुलक्ष्मी की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे। तो है ना ये कमाल की बात। आइए आगे बढ़ते हैं। और पति का मार्गदर्शन सुब्बुलक्ष्मी को विश्व की सर्वोत्तम गायिका बनने में उनके पति का मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यदि मुझे अपने पति से मार्गदर्शन और सहायता नहीं मिली होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और 20वीं शताब्दी में महान भक्ति गायक का होने के बावजूद वे सदैव नम्र बनी रहती थी और संगीत में अपनी ख्याति के लिए अपने पति सदाशिव का आभार मानती रही। सदाशिव की विशेषता ये थी कि गांधीवादी और आज़ादी की दीवानी होने के बावजूद जब वे सुब्बुलक्ष्मी का हाथ थामा ऐसे कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा जिससे सुब्बुलक्ष्मी की ख्याति दिनों दिन बढ़ती न रहे। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी की गायन सभाओं का इस प्रकार आयोजन किया कि वे सफलताओं की सीढ़ी चढ़ती ही गई। इन्हीं के प्रयासों के कारण सुब्बुलक्ष्मी का नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा गया, जबकि इससे पहले यह खिताब केवल सरोजनी नायडू को ही प्राप्त था। रामधनु और भक्ति संगीत को गाने की प्रेरणा भी उन्हें सदाशिव से ही मिली थी। प्रशंसकों के नाम अगर कहे, उनके मशहूर संगीतकारों ने श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी की कला की तारीफ की। लता मंगेशकर ने आपको तपस्वी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने आपको सुस्वर लक्ष्मी पुकारा। किशोरी आमोनकर ने आपको आठवां सुर कहा जो संगीत के साथ सुरों से ऊंचा है। MS लावण्य और MS सुब्बुलक्ष्मी को लोग सेक्सोफोन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई माननीय नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संगीत के प्रशंसक थे। एक अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी हरी तुम हरो जन की पीर इस मीरा भजन को गाने के बजाय बोल दे तब भी उनको वो भजन किसी और के गाने से अधिक सुंदर सुरीला लगेगा। तो देखिए इतनी प्रशंसक उनकी रहे हैं। और श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा वह पहली स्त्री है जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त हुआ है। तो चलिए, बहुत सारे सम्मान है, सम्मान की कोई कमी नहीं है उनके जीवन में। और ये 88 साल की उम्र में महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी 11 सितंबर 2004 को दुनिया को अलविदा कह गई। तो है ना कमाल की व्यक्ति, है ना। आप सुने हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और सुब्बू लक्ष्मी का एक छोटा सा मीठा गीत मुझे मिले तो मैं सुनाऊँ आपको। आप सुन रहे हैं, सुनते रहो।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: And as he walked through Riven City and village ablaze, through a miasma of hate, Narsee Bhagat's immortal bhajan, rendered here by M.S. Subbulakshmi, sustained him in the darkest hours.

तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और ये भजन था एमएस सुब्बालक्ष्मी का आपके लिए, वैष्णव जनते, जिसकी महिमा गांधी जी खुद करते हैं। और जितने भी लोगों ने इनको सुना, लाइव परफॉर्मेंस जब सुने, तो सिर्फ शब्द कहने से भी उन्हें सुरीला लगेगा, ऐसा उनकी महिमा थी। तो वो भजन मैंने आपको सुनाया है। अब आशा करूँगा आप सभी भी उनकी बातें सुनकर एक अलग जो टचिंग है इसमें वो आप फील कर रहे होंगे इस आवाज़ में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और शख्सियत के बारे में। श्यामलाल गुप्ता के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, भारतीय आज़ादी का संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक थे श्यामलाल गुप्ता। भारतीय आज़ादी का संग्राम के दौरान प्रत्येक झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे। आइए ऐसे महान रचनाकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनना है, सुनते रहो मस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना सुब्बा लक्ष्मी का। अब आइए वैष्णव जनते आप सभी को ले चलता हूँ, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। हाँ, इनका जन्म आज के दिन 16 सितंबर 1893 को कानपुर जिले के नरवल कस्बे में हुआ था। और साधारण व्यवसायी विश्वेश्वर गुप्ता के घर पर इनका जन्म हुआ। यह अपने गांव भाइयों में सबसे छोटे थे, पांच भाइयों में, और इन्होंने मिडिल की परीक्षा के बाद विशारद की उपाधि हासिल की और इसके पश्चात जिला परिषद तथा नगर पालिका में अध्यापक की नौकरी शुरू कर दी थी। परंतु दोनों जगह पर 3 साल का बॉन्ड अनुबंध भरने के बाद नौबत आने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और 1921 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता होने शुरू कर दिया। अपने एक व्यंग रचना लिखी जिसके लिए तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। अपने वर्ष 1924 में झंडागान की रचना की जिससे 1925 में कानपुर में सम्मेलन में पहली बार झंडारोहण के समय इस गीत को सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से गाया गया। ये झंडा गीत इस प्रकार था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, शांति सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये गीत इनका ही रचना, ये धूम मची और आज भी इसका जो गीत है, ये गीत आपके उतना ही प्यार देता है जितना वो पहले देता था। वे बचपन से ही बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और प्रकृति ने उन्हें कविता करने की क्षमता सहज रूप में प्रदान की थी। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने ये कविता लिखी थी, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखे, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखे। क्या बात है। प्रथम श्रेणी में मिडिल क्लास होने का बाद उन्होंने पिता के कारोबार में सहयोग देना शुरू कर दिया और साथ ही किसी प्रकार पढ़ाई की जारी रखने और हिंदी साहित्य सम्मेलन में विशारद परीक्षा में उत्तीर्ण कर ली। और 15 वर्ष की अवस्था में वे हरि गीतिका, धनाक्षरी आदि छंदों में सुंदर रचना करने लग गए और फिर धीरे धीरे देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत पत्रिकाओं का उन्मुख कर दिया। सचिव नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन संपादन आरंभ कर दिया। सचिव के प्रत्येक अंक के मुख्य पृष्ठ पर पार्षद जी की नम्र पंक्तियां मुख्य रूप से प्रकाशित होती थी। राम राज्य की शक्ति शांति सुखमय स्वतंत्रता लाने को लिए सचिव ने जन्म देश की प्रतंत्रता मिटाने को। तो इस तरह से झंडे के गीत की रचना करने के बाद 1923 में फतेहगढ़ जिले में अधिवेशन के समय में ये गीत काफ़ी गूंजने लगा और फिर अधिवेशन के समय सभी बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो गई। फिर राष्ट्रगान की दिव्य ज्योति, राष्ट्रीय पताके, नमो नमो इन्होंने लिखा और फिर बहुत सारे गीतों को लेकर झंडा ऊंचा रहे हमारा ये पूरे भारतवर्ष में घूमने लगा और धूम मचाने लगा। जहाँ भी गांधी जी या फिर किसी का भी प्रोग्राम होता तो पहले ये गाना बजता, उसके बाद कहानी, समाचार या फिर संभाषणों का शुरुआत होता। आज़ादी का संग्राम में विशेष इनका योगदान, समाज सेवा में भी इनका योगदान और इसके लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान तो मिले। लेकिन 10 अगस्त 1977 की रात को इस समाज सेवी राष्ट्र कवि का निधन हो गया। तब वे 81 वर्ष के थे। आज़ाद भारत ने उन्हें सम्मान दिया और 1952 में लाल खेले से अपना प्रसिद्ध झंडा गीत गाया और 1972 में लाल खेले में उनका अभिनंदन भी किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष श्यामलाल जी के बारे में, श्यामलाल गुप्ता के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ बहुत सारा प्यार, सलाम, नमस्ते। और आज हम लोग विशेष जिन लोगों के बारे में बातें की, MS सुब्बालक्ष्मी, बलवंत सिंह, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, इन सभी के जीवन कहानी से आपको रूबरू कराया। और श्यामलाल गुप्ता की बातें, सुब्बालक्ष्मी की बातें सुनकर मोटिवेशन तो मिला ही है। और चलिए जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: शिखा आपका भी धन्यवाद करते हैं। इस सहयोग सत्र में आज हम बात करेंगे ब्रेन रोट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर। इस सत्र को प्रसारित किया जा रहा है पीएम ए विद्या चैनल 6 से 12 तक और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी पीएम विद्या क्लास 6 टू क्लास 12 यूट्यूब चैनल्स पर। आज के सहयोग सत्र में बात करेंगे ब्रेन रोट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर। इस सत्र में यदि आप भी अपने प्रश्नों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर जुड़े मनोदर्पण काउंसलर्स के माध्यम से। नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, ये है 8448440632। साथ ही आप हमें हमारे IVRS नंबर के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर इस 8800440559। अपनी बात कहने के लिए या अपने सुझाव भेजने के लिए लिखें हमारी सहयोग की मेल आईडी sahyog.ncert@cret.nic.in पर। हमारे व्यूअर्स जो इस सत्र को हमारे साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के जरिए देख रहे हैं वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए अब टाइम है कि आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाया जाए। स्वागत करते हैं डॉक्टर जोया मृणालिनी का, असिस्टेंट प्रोफेसर RIENCERT भोपाल से। मैम नमस्कार, स्वागत है।
3: थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम। इस सत्र में हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं मिस निधि मालविया। मैम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार।
4: नमस्कार एंड थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच मैम। इस सत्र में चलिए हम अब अपने विषय को जानते हैं। सो मैम जानना चाहेंगे, निधि मालविया मैम आप प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं और शाब्दिक अर्थों में अगर हम देखें तो ब्रेन रोट को आज हम समझने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन रोट?
4: पहले मैं आज आपसे पहले कुछ सवाल लेना चाहूंगी, पहले उन सवालों के जवाब फिर हम अपने टॉपिक ब्रेन रोट पे लेंगे। ब्रेन रॉट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स, बट मैं ब्रेन रॉट के बारे में बात करूंगी तो उस टॉपिक पे बाद में आते हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि जब हम फोन उठाते हैं अपना और सोचते हैं कि बस हम एक नोटिफिकेशन आया है उसको चेक कर लेते हैं, उस नोटिफिकेशन में जो भी कंटेंट है उसको देख लेते हैं और फिर हम फोन रख देंगे, बट ऐसा होता है कि आप एक रील देखना स्टार्ट करते हैं फिर दूसरी रील देखना स्टार्ट करते हैं, देन ऐसे आप एंड अप 30-40 मिनट्स लेटर यू रियलाइज दैट कि आपने बहुत सारा टाइम निकाल दिया है रील्स देखते हुए। तो ऐसा क्या आप लोगों के साथ भी होता है?
2: जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि किसी ज़रूरी काम के लिए फ़ोन उठाते हैं और फिर अननेसेसरी की चीज़ों में लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता है इस टाइम में हमने एक घंटा या फिर 40-50 मिनट्स बस यूं ही चले जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम।
4: मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, जब आपने फोन उठाया आपने रील्स देखना स्टार्ट किया, जो आजकल शॉर्ट वीडियो काफी पॉपुलर, जब आपने वो देखना स्टार्ट किया, जब आप उसको रखते हैं, फिर बच्चों से मेरा ये सवाल है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई काफी डिफिकल्ट हो गई है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा भी काफी होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है इनफैक्ट कभी कभी।
2: बिल्कुल होता है
4: जी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन आने पे ये सोचा होगा कि मैं एक नोटिफिकेशन का जवाब देकर मैं रख देता हूँ फोन, बट आप एक ऐप से दूसरे ऐप की तरफ स्विच करते हैं फिर दूसरे ऐप से तीसरे ऐप की तरफ स्विच कर जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। क्या ये भी आपने कभी रियलाइज किया है?
2: एब्सोल्युटली राइट मैम, ये सभी बातें बिल्कुल ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, हमेशा ही लगभग हो जाता है
4: जी। तो आज की जो टर्म है ब्रेन रॉट, ये इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस का पॉपुलर टर्म है, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हम कर रहे हैं इन्हीं का एक पॉपुलर टर्म है जिसको ब्रेन रॉट कहते हैं। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, सो ब्रेन रॉट इज एन इनफॉर्मल टर्म टू डिस्क्राइब द परसीव्ड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ लो क्वालिटी रिपीटेटिव एंड हाईली स्टिमुलेटिंग डिजिटल कंटेंट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्रेन रॉट, जहां पे कुछ ऐसे इफेक्ट्स हमारे दिमाग पर आ रहे हैं जो कि आपको आपके फोकस को इफेक्ट करते हैं, आपके अटेंशन को इफेक्ट करते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, या फिर आपकी एवरीडे लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रेन रॉट से रिलेटेड है. इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं ये चीज भी कहना चाहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ब्रेन लिटरल टर्म में रॉट हो रहा है. यहाँ पे ये कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव लो क्वालिटी कंटेंट की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से इसको ब्रेन रॉट कहा जाता है. एंड ब्रेन रॉट जो टर्म है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 1854 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी. 1854 में तो आप सब जानते हैं कि ना कोई फोन्स थे, ना ही किसी तरीके के इंटरनेट और ये सारे माध्यम हमारे पास मौजूद थे, बट फिर भी ये टर्म यूज हुई थी तब. तो तब ये यूज हुई थी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसकी डिक्लाइन हो रहा है, वो एक सिर्फ सतही लेवल पे चीजों को देख रहा है, वो डीप थिंकिंग के लिए नहीं जा रहा. ये तब यूज होता था, बट ये टर्म फिर से रिसर्फेस हुई अर्ली 2000s में जब से इंटरनेट हमारी लाइफ में आया. तो इन सारे चीजों के बाद ये जो टर्म है ये काफी यूटिलाइज होने लग गई. बट रिसेंटली 2023 एंड 2024 में ये 230% बढ़कर यूटिलाइजेशन इसका हुआ, वो भी जेंसीज और जेन अल्फा के द्वारा. एंड ये जो टर्म है इसको हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी अपने डिक्शनरी में इसको जगह दी है 2025 में, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर रहा है 2024 में. तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रेन रॉट से रिलेटेड है.
2: बिल्कुल जी, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं मैम, इसके एंडलेस स्क्रॉलिंग, रिपीटेड शॉर्ट वीडियोस और रील्स वगैरह जो हम विदाउट पर्पस देखते रहते हैं, इन्हें समझना चाहेंगे.
4: जी, मैं उसी पे आ रही थी कि जब हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम ये करते क्यों हैं. यहाँ पे दो चीजें हम ये देखेंगे कि पहली चीज कि आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम में, लाइक 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में, एक लिमिटेड डोपामाइन किकिंग कंटेंट अवेलेबल है, जिससे आपकी जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत छोटे टाइम में आपको एंटरटेन आपका ब्रेन हो पा रहा है, वो इजियर एंटरटेनमेंट है उसके लिए. तो वो जब एक रील देखता है तो उसको, हमारे दिमाग को ये फील होता है कि अब मुझे दूसरी रील देखनी है, क्या नया आएगा, कैसा, कौन सा ऐसा कंटेंट आएगा जो नया होगा, किस तरीके के नए वीडियोज आएंगे जो फुलफिलिंग करेंगे. तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम पैसिवली करते चले जाते हैं. जब हम पैसिवली करते चले जाते हैं तो इसी के लिए एक पॉपुलर टर्म जो है दैट इज ब्रेन रॉट.
2: जी बिल्कुल, तो हमने समझ लिया है कि ब्रेन रॉट होता क्या है. हम बात कर रहे हैं आज के सहयोग सत्र में ब्रेन रॉट एंड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को लेकर. आगे चलते हैं डॉक्टर जोया, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे व्हाई डज ब्रेन रॉट हैपेंस, क्यों होता है ब्रेन रॉट, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट.
3: थैंक यू. जैसा कि निधि मैम ने बताया कि ये जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है और हर समय जो हमारा फोन पे एक नोटिफिकेशन ऑन और हर टाइम उसे स्क्रोल और हर टाइम हम अपने दिमाग को वहाँ पे बिल्कुल बिजी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक ब्रेन रॉट के का काम कर रहा है. ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये मेडिकल टर्म नहीं है, इसको विद द टाइम अगेन इसके डेफिनेशन को चेंज की गई है. तो अगर फैक्टर की बात करें तो वी कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
2: यस,
3: तो फैक्टर्स में सबसे पहला जो बात हुई वो उसी को मैं रिपीट करूंगी, जैसे इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, बार बार किसी भी कंटेंट को आप बैठे हुए हैं और यू आर कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग, चाहे वो इंस्टाग्राम के रील्स हो, यूट्यूब के जो शॉर्ट वीडियोस हैं, आप कंटिन्यूअसली अगर उसको स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो वो एक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है जो कि ब्रेन रॉट में कॉज कर रहा है. सेकेंड अगर हम आते हैं तो जैसे कहे जो भी आप स्क्रोल करते हैं, जो भी कंटेंट आप स्क्रोल करते हैं, तो वो जो डिजिटल सिस्टम है वो ये कैच कर लेता है कि इस इंसान का प्रेफरेंस क्या है. आपने कोई गेमिंग ऐप, आप कोई गेमिंग को लेके, क्रिकेट को लेके, या कोई सेलिब्रिटी कंटेंट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, लोग देखते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपके फीड में वही सारे कंटेंट रिलेटेड चीज़ें देते रहता है, और आप उसको विदाउट टाइम का ध्यान रखे, अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखे, आप स्क्रोलिंग करते रहते हैं. ये एक सेकेंड रीजन है जो कि कॉज करता है आपका कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग और कॉज टू ब्रेन रॉट. थर्ड फैक्टर देखते हैं ऑफ कोर्स कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी हमारे फोन से पिंग की आवाज आई और हम वापस से फिर देखने लग जाते हैं कि अच्छा किसी ने हमारे पोस्ट को लाइक किया, किसी ने हमें मैसेज किया। और वो अगर हम बस देखने के लिए करते हैं बट वो हमारा कितना टाइम कंज्यूम करता है वो हमें भी अंदाजा नहीं रहता। एंड देन कम्स आर वेरिएबल रिवॉर्ड, मतलब भले हम कंटेंट देख रहे हैं और उसमें से हमें बहुत सारे वीडियोस इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहे हैं बट येट वी आर स्क्रोलिंग और कुछ एक इंटरेस्टिंग मिल गया। मतलब अगर हम 5 कंटेंट देख रहे हैं उसमें एक कंटेंट इंटरेस्टिंग लग गया और फिर भी हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग लग गया फिर उसके बाद उससे रिलेटेड देखते रहते, तो ये एक तरीका ट्रैप है जो हमें समझने की जरूरत है। ऑफकोर्स इट्स नॉट ओनली कि अब स्क्रोल कर रहे हैं क्योंकि डिजिटली हमारे पास बहुत सारे रीजन भी हैं, जैसे अगर हम कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं, हम अकेले हैं या हम परेशान हैं या हम स्ट्रेस्ड हैं पढ़ाई को लेके या एग्जाम को लेके, तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा देख लेते हैं कंटेंट। बट वो देख लेना इस समथिंग कि वो कब हमारा 5 मिनट का ब्रेक 40 मिनट्स ले लेता है वो हमें भी अंदाजा नहीं रहता। तो एक बोर्डम स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कॉज करता है इन चीजों को। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका कहीं ना कहीं वैल्यूएबल अटेंशन ले रहा है। सी वैल्यूएबल अटेंशन मतलब आप सोचिए कितना वैल्यूएबल है कि कुछ एप्स और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप पैसा कमा रहे हैं इससे। तो आप इट्स नॉट कि डिजिटल एक्सेस करना और डिजिटल हेल्दी हैबिट जो हम बाद भी देखेंगे कि वो डिजिटली सब कुछ गलत ही है, बट नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन योर सर्फिंग एंड नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन व्हेन टू स्टॉप इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक। टेलीविजन में जब हम सीरियल्स देखते थे तो उसका भी एक नेचुरल स्टॉपिंग है, बट हम जब स्क्रोलिंग करने लगते हैं तो हमारा वो नेचुरल स्टॉपिंग खत्म हो जाता है। तो ये खुद का जो कंट्रोल हम लूज कर गए ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्रेन रॉट को कॉज कर रहा है। जी
2: जी हमने समझा कि ये क्यों होता है, और अब चलते हैं अगले कुछ बात को लेकर, फैक्टर्स पर भी बात करना चाहेंगे मैम। लेकिन निधि मैम, यहाँ मेरा अगला प्रश्न आपसे है, व्हाट आर सम ऑफ इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन आर थिंकिंग, अटेंशन, लर्निंग एंड वेलबींग? क्या कुछ हो सकता है हमारी थिंकिंग पर ब्रेन रोट का प्रभाव, और हमारी अटेंशन, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को भी क्या ये अफेक्ट करता है?
4: हाँ जी, तो ये सारे जो 6 फैक्टर्स हैं मैं इन पे बात करूंगी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे इन सारे 6 फैक्टर्स पे मैं बात करूंगी जो कि पॉसिबल इफेक्ट्स हैं ब्रेन रॉट के, जिनकी वजह से हमारी थिंकिंग, हमारा अटेंशन, हमारी लर्निंग और हमारी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग दोनों ही इफेक्ट होती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और ये कहना चाहूंगी कि ये जितने भी मैं पॉसिबल इफेक्ट्स कह रही हूँ ये सबके लिए सेम एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों पे ये ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और कुछ लोगों पे ये कम इफेक्ट डालते हैं, तो ये सबका पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अलग होता है और सबकी कैचिंग पावर के अकॉर्डिंग भी अलग होते हैं, और कोई कितना इसमें कितना अपना टाइम कंजप्शन कर रहा है ये उसके भी बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम थिंकिंग की अगर बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारी एक होती है, एक होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये जो एक क्रिएटिविटी होती है ये सारी इन सारी चीजों की ब्रेन रॉट की वजह से काफी इफेक्ट होती है। अब मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ विच इज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। आप सब जानते हैं कि जब हम कोई एक काम करते रहते हैं और सडनली हमें हम फोकस्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर, सपोज एक स्क्रीन पे फोकस्ड हैं और अगर वहां उस स्क्रीन से हटके कोई और आवाज आती है, स्पेशली आज की डेट में नोटिफिकेशन आया, तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ब्रेन रॉट का, जिसमें डिस्ट्रैक्ट इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो काफी कम हो गया है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो 2000 अर्ली 2000s में जब ये इंटरनेट हमारी लाइफ में आया था तब जो अटेंशन स्पेन एक सिंगल स्क्रीन को देखने का हुआ करता था वो हुआ करता था 2.5 मिनट्स, बट ये घट के आज की डेट में 2026 की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 47 सेकेंड्स रह गया। इट मीन्स कि जो हमारा अटेंशन स्पेन है हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे टास्क पे फोकस करने की हमारी एबिलिटी सिर्फ 47 सेकेंड्स की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रह गई है। तो डिस्ट्रैक्ट हम बहुत जल्दी होते हैं, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है जो कि हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑलवेज यू नो दैट डिलेइंग समथिंग इट मींस टालना, टालम टोल करना। आप सोचेंगे कि आज मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं कल कर लूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों कर लूंगा। अब इसके पीछे ब्रेन रॉट कैसे काम करता है, जब हम सोचते हैं कि हमें स्टडी करनी है बट अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो मैं ये सोचूंगी कि 10 मिनट का टाइम है, या आप लोग ये सोचेंगे कि 10 मिनट का टाइम है तो चलो थोड़ी देर के लिए हम फोन देख लेते हैं अपना और फिर हम थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे। अब फोन देखते देखते आपको ये नहीं पता चला कि वो 10 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए या कब 1 घंटे में बदल गए, आपका वो जो पूरा टाइम था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे थे उसके लिए, तो वो तो चला गया। अब आप क्या करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आज नहीं करूंगा, डिले कर देता हूँ, मैं कल करूंगा ये काम। तो जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरीके से बढ़ता है। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है स्लीप डिस्ट्रप्शन। जब हम स्लीप डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे जो इश्यू है, आप बेड टाइम आपका 10:30 है सपोज, आप रात में सोने चले गए हैं बट आपने सोचा कि अब तो 10:30 हुआ है, मैं 10-15 मिनट रील देख लूंगा, तो ये जो रील देखने वाला कल्चर आया है उसकी वजह से सोचते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए सोने से पहले, तो हम क्या करेंगे, अपना फोन लेंगे और रील्स देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो रील आपको कंटिन्यूअसली इंगेज रख रहा है, आपको डोपामिन किक दे रहा है, डोपामिन इफेक्ट दे रहा है, दूसरा आपकी बॉडी में मेलाटोनिन जो है, जो कि जिसकी वजह से नींद थोड़ी बेटर हो पाती है, वो हार्मोन कम जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से जो स्लीप है वो काफी डिस्ट्रप्ट होने लगती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आई स्ट्रेन, इनएक्टिविटी एंड पुअर पोस्चर। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि हम रील्स जनरली जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, तो फोन पे जितने भी हमारी चीजें हैं, हमारे फोन आंखों के बहुत नजदीक होता है, तो आंखों पे काफी स्ट्रेन आता है, ड्राई आईज होने लगती हैं, समटाइम्स हेडेक्स भी होने लगते हैं, या हमारी आई साइट में प्रॉब्लम आने लगता है। और हम ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोन देख रहे हैं तो हम इनएक्टिव हैं, हम सिर्फ बैठे हुए ही सारी चीजें देख रहे हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी का पार्ट है वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इस वजह से हमारा जो फिजिकल वेलबींग है वो भी अफेक्ट हो रहा है। देन पुअर पॉस्चर, आप सब जानते हैं कि जब हम फोन देखते हैं तो हमारी जो गर्दन है वो उस तरीके से कुछ झुक जाती है, तो जब हमारी गर्दन नीचे होती है तो आपके जो सर्वाइकल इश्यूज हैं या आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो नेक से कनेक्टेड है पूरा सिस्टम, उस पर भी इफेक्ट आने लगता है। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि क्या भी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आपने फोन देखा, 1 घंटे फोन देखने के बाद भी आपके अंदर को कंटेंटमेंट नहीं आया, आपको वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आई कि आपने इतनी देर फोन देखा, वो उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है कि जैसे जब हमारा पॉस्चर होता है, जब हम सर झुकाकर बैठते हैं या बातें करते हैं, तो आपने ये रिलेट किया होगा कि ये जो हमारा पोस्चर है सर झुकाने वाला, ये तब होता है जब हम डिफीट में होते हैं या हम किसी ने हमें डांट दिया होता है, तो या हम कोई गलती किए होते हैं, तो इसी वजह से ये जो है ये हमारे पूरे एक सिस्टम पे निगेटिव इफेक्ट डालता है, तो ये भी एक ब्रेन रॉट का ही पॉसिबल इफेक्ट है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं, देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंगल सिंपल बिना कुछ किए साइलेंस में बैठ ही नहीं पाते, आपको जस्ट ऐसा लगता है कि बस मैं अपना फोन उठा लूँ, मेरे फोन में कुछ नोटिफिकेशन नहीं भी आया तब भी आप चाहेंगे कि आपको अपना फोन उठा लें, तो ये जो होता है दिस इज द सिम्टम ऑफ रेस्टलेसनेस। यहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं कि बस मुझे अपना फोन देखना है। एंड लास्ट इज आइसोलेशन। तो जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम रियल से तो कनेक्टेड हैं बट हम रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, अपने आसपास वालों से कनेक्शन जो है वो थोड़ा कम कर दे रहे हैं। हमें लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ऑनलाइन तो हमारे फ्रेंड्स हैं, बट हम फिजिकल स्पेस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते। अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फैमिली में 4 लोग बैठे हुए हैं डिनर के टाइम पे, बट वो सारे फिजिकली प्रेजेंट है बट दे आर नॉट प्रेजेंट मेंटली, दे आर ऑन देयर फोन, वो सब अपना अपना किसी और ऐप पर है जहाँ पे उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, तो इस तरीके से धीरे धीरे धीरे धीरे आइसोलेशन बढ़ता जाता है। तो ये जो पॉसिबल इफेक्ट है ब्रेन रॉट के, ये मैंने डिस्कस किए, और इसके बाद हेल्दी डिजिटल हैबिट्स के बारे में जाना आपसे।
5: बिल्कुल, तो ब्रेन

0: रूट को हमने समझा, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसके फैक्टर्स और इसके इफेक्ट्स पर बात कर ली है। अब चलते हैं प्रिवेंशन पर, कैसे बचा जा सकता है, हेल्दी डिजिटल हैबिट्स क्या हो सकती हैं। सो डॉक्टर जया मृणालिनी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे व्हाट हेल्दी डिजिटल हैबिट्स कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस ब्रेन रूट।
1: जी या तो कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी सभी जो भी बच्चे सुन रहे हैं और जितने भी टीचर्स सुन रहे हैं, कि देखिए ये जो डिजिटल एरा है और ये जो रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी के वजह से, हमें इसका माइंडफुल यूज अगर हम करते हैं तो इट कैन कॉज वंडर, लेकिन अगर हम इसको माइंडलेस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए तो डिस्ट्रक्शन का भी कॉज हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वो डिजिटल हेल्दी हैबिट्स अपनाएं और तब हम इसका यूसेज करें। तो क्या हो सकता है? तो ऑफ कोर्स सबसे पहले कि जब भी आप यूज कर रहे हैं अपना फोन और टेक्नोलॉजी पे जो भी आप सर्व कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इट शुड बी इंटेंशनल, यानी ऑब्जेक्टिव, क्यों आप किसी चीज को खोल रहे हैं, तो वेन टू वाई यू आर ओपनिंग दिस एंड वेन टू स्टॉप, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। सो इट शुड बी इंटेंशनल एंड नॉट कि जस्ट, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस, वी ऑल नो दैट, हम सभी अपने काम को पूरा करने में काफी अपना टाइम लगाते हैं, तो टाइम हमारा जाता है, तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूसेज करें और ना कि जस्ट माइंडलेसली इसको यूज करें। सो चूज एक्टिव यूजर, इट मीन्स कि वी हैव टू, अगेन व्हाट आई सेड, कि ये टेक्नोलॉजी का यूज हमें लर्निंग के लिए करना चाहिए, जो क्रिएटिविटी इन्हांस करे, हमारे स्किल्स को इन्हांस करे, तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज इन रीजन से करना चाहिए, ये हमारे पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि माइंडलेस यूज, कि एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, रिपीटेडली अपने नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में हमें रखने की जरूरत है। देन सेट बाउंड्रीज, ऑफकोर्स जैसा मैम ने बताया कि हम सोने से पहले सोचते हैं कि चलो अब हम देखते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मील्स जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप ये डिसिप्लिन अपने माइंड को डिसिप्लिन रखिए कि नहीं, इस टाइम पे मैं नहीं यूज करूंगा या करूंगी अपना फोन। तो ये हमारा एक बाउंड्री सेट करना इज रियली इम्पॉर्टेंट। सबसे और एज मैम सेट कि नोटिफिकेशन, कि जब भी नोटिफिकेशन आया, हमें वो एक है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम कुछ मिस तो नहीं कर जा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा कि हम अनकूल हो गए अपने फ्रेंड सर्कल में, तो इन वजह से हम बिल्कुल इनसेसेंट वे में बिल्कुल अपना नोटिफिकेशन देखते रहते हैं कि किसने लाइक किया, किसने अभी हमें मैसेज किया, तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के, यू शुड स्टॉप इट, जो इम्पॉर्टेंट है उनको रखते हुए, जो नहीं इम्पॉर्टेंट है उसे हमें स्टॉप करके रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दैट हेल्दी ब्रेक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, आपका एक्सरसाइज, आपकी आउटडोर गेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ यू कनेक्ट विद पीपल ऑफलाइन, जैसे कि मैम ने कहा अभी कि मील्स के दौरान जब आप फ्रेंड से भी बात करते हैं तो अपने फोन को साइड रखें। सिमिलरली दो और पॉइंट है इन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम बाकी दो पॉइंट देखें तो यस, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुरंत सोने से पहले हमें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखना चाहिए जिससे कि हमारे स्लीप डिस्ट्रप्शन हो, हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़े, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव, यू हैव टू काइंड ऑफ गिव स्पेस, मतलब ये नहीं होगी अब मैंने, ठीक है मैं नहीं यूज करूंगा या करूंगी, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आप बंद करोगे तो वो और आपके लिए एक तरीके का प्रॉब्लम कॉज होगा कि आप अगर बिल्कुल ड्रास्टिकली आपने बंद कर दिया, फिर आपको टाइम स्पेंड करने के लिए आपको लगा कि मैं क्या करूं, तो यू हैव टू रिप्लेस इट विथ हेल्दी हैबिट्स, लाइक यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज, योर आउटडोर गेम, एंड ऑफकोर्स दैट इंटरेक्शन पार्ट, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ यू अडॉप्ट डिजिटल हैबिट टू अवॉइड ब्रेन रॉट। सो यस, फाइनली मैं इसे तीन हेडिंग में बोलूंगी, यू जस्ट नीड टू पॉज योर अर्ज, प्लान द पर्पस एंड टाइम, ऑफकोर्स यू हैव टू प्लान इट एंड देन यूज इट, एंड यस प्रोसीड इंटेंशनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टॉप व्हेन इट इज डन।
0: थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप समझें कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ब्रेन रोट पर आज हम बात कर रहे हैं और हेल्दी डिजिटल हैबिट्स हम सभी को अपनाने की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझना होगा। हमारे आज के सहयोग सत्र के पैनलिस्ट रहे डॉक्टर जया मृणालिनी, असिस्टेंट प्रोफेसर RIENCERT भोपाल से। मैम थैंक यू सो मच, नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: धन्यवाद करते हैं मिस निधि मालवीय, हमारी आज की प्रैक्टिसिंग काउंसलर। मैम थैंक यू सो मच। आज के सहयोग सत्र को यहीं से समाप्ति की तरफ लेकर जाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।
2: पर्यावरण को सुरक्षित हम और आप जरूर रख सकते हैं, साथ ही साथ विकास को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और सदा याद रखें, इस गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाते हुए पर्यावरण की स्वच्छता और कूड़ा करकट यहाँ वहाँ ना फैलाते हुए अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ आप जुड़ चुके हैं और आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान को लेकर मैं मोना वापस आ चुकी हूँ। तो चलिए, आज दोस्तों के बीच कुछ कहानियां जरूर सुनाना चाहूंगी। इन कहानियों में कई शिक्षाएं आपके लिए होंगी, इन शिक्षाओं को आप सुनिएगा जरूर और जीवन में धारण करने की कोशिश मैं और आप जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, असली इनाम की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं आज की उड़ान में। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, बहुत गरीब, लेकिन उसकी माँ हमेशा उससे बहुत अच्छी चीजें सिखाती रहती थी। बेटा, सच बोलना और ईमानदारी से रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति कैसे भी आए। एक दिन मोहन स्कूल से घर लौट रहा था, रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक चमकदार बटुआ मिला। उसने बटुआ खोला तो उसमें बहुत सारे रुपए और कुछ जरूरी कागजात भी थे। मोहन के मन में आया कि इन पैसों से वो नई किताबें और जूते खरीद ले, लेकिन तभी उसे माँ की बात भी याद आई। उसने बटुए में रखे पहचान पत्र को ध्यान से देखा और उसमें गांव के सबसे बड़े सेठ हरिराम का नाम जो लिखा था। मोहन तुरंत सेठ जी की दुकान में पहुंचा, वहां बहुत भीड़ थी। सेठ जी परेशान होकर गांव के लोगों से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने मेरा बटुआ देखा है, तो क्या किसी ने बटुआ देखा है, उसमें से जरूरी कागजात भी हैं। मोहन आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, क्या ये आपका बटुआ है? सेठ जी ने बटुए को देखते ही खुशी से कहा, हाँ हाँ, यही तो मेरा बटुआ है। उन्होंने खोलकर देखा, सारे रुपए और कागजात सुरक्षित थे। सेठ जी ने मोहन से कहा, बेटा, मेरा बटुआ लौटा कर, बहुत ईमानदारी दिखाई तुमने, मैं तुम्हें
1: इनाम में 5,000 रुपए देता हूँ। कुछ वर्षों बाद मोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपका सामान लौटाया है, इसके बदले इनाम लेना ठीक नहीं होगा। सेठ जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन की माँ से मुलाकात की और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया।
0: कुछ वर्षों बाद मोहन खूब पढ़ लिखकर गांव का सम्मानित अधिकारी बना। जब भी कोई उसकी सफलता का राज पूछता, वो मुस्कुराकर कहता,
1: उस दिन अगर मैं बटुआ अपने पास रख लेता तो शायद कुछ रुपए मिल भी जाते, लेकिन ईमानदारी ने मुझे जीवन भर का सबसे बड़ा इनाम दिया है।
0: बिल्कुल, तो सीख यही है, ईमानदारी का फल
1: हमेशा मीठा होता है। सच्चाई और अच्छे चरित्र की कीमत किसी भी धन से कहीं अधिक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, गीत एक आपके पास लेकर आते हैं, मजेदार ये गीत, शंकर जी का डमरू बाजे।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक श्रोता गण आए थे, हम आग्रह करेंगे उनसे पुनः वो कॉल करें, क्योंकि उनसे बात करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। नमस्कार, हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, नहीं आ रहा बात। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, वन भी हो गया। चलिए दोस्तों, हम गीत सुन रहे थे, आगे भी सुनते हैं, क्योंकि ये वन वे हो रहा है, जिसकी वजह से हमें उनकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है।
2: डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूसक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक और कहानी हम और आप जरूर सुन लेते हैं। उड़ान कार्यक्रम है दोस्ती, दोस्तों का असली चेहरा। मुसीबत के टाइम पर कई बार दोस्त कौन होते हैं और क्या बोलते दुश्मन कौन होते, काफी मुश्किल होती है पहचानने में। लेकिन अब इस कहानी में जरूर सुनेंगे।
1: कहानी के

0: आओ आओ जल्दी आओ।
1: हमारे बिल्लू की आवाज कितनी अच्छी है ना, मानना पड़ेगा।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: ओह अच्छा, अगर बिल्लू की आवाज ही सब कुछ है तो फिर मैं अब से बजाऊंगा ही नहीं।
0: क्या बात है लालू, तू अब बजा क्यों नहीं रहा?
1: मैं जा रहा हूँ।

0: काफी दिनों बाद ऐसे हरे हरे खेत, ऐसा खुला आसमान देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया।
1: तेरे की लालू की वजह से कहानी गीत की महफिल बर्बाद हो गई।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने भाई।
0: कहानी गीत? काका, ये कहानी गीत क्या है?
3: बिल्लू के कहानी गीत इस गांव का एक आकर्षण है।
0: ऐसा है क्या?
4: अच्छा, तो ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना बेटा?
0: जी पिताजी। पिताजी, आते वक्त बिल्लू के कहानी गीत के बारे में सुना। मैं सामने से देखना चाहता हूँ वो।
4: अच्छा ठीक है, मैं कल ही इंतजाम करता हूँ।

0: कहानी के कहीं प्रकार।
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ का माहौल भी ना बहुत अच्छा।
2: बहुत शुक्रिया।
1: पर बिल्लू, इतने से काम नहीं चलेगा। शहर में मेरा एक दोस्त रेडियो में काम करता है, उसके जरिए तुम्हारी प्रतिभा मैं सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ, क्या कहते हो?
3: जी जी हाँ, जरूर, शहर तो जाना ही चाहिए।

0: अरे अरे लालू, सुना तुमने हमारे बिल्लू का नाम अखबार में आया है?
1: मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ।
0: अरे बाप रे, अब यहाँ क्या चल रहा है? अरे सुन, कल शंकर बिल्लू को लेकर गांव में आ रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तुम भी आना। कार्यक्रम? सच में बिल्लू, तुझे लेकर हमें बहुत गर्व होता है।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप सबके उत्साह से ही तो मैं आगे आ पाया हूँ, और लालू भी तो हर वक्त मेरी मदद करता है।
0: नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सही कहा लालू, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है।
3: अब बिल्लू को थोड़ा सा आराम चाहिए, चलो बिल्लू।
4: किसी से पूछ लेते तो अच्छा होता ना।
5: वो देख, एक आदमी आ रहा है।
4: सुनिए भाई, जरा सुनिए, वो गायक बिल्लू का घर किस तरफ है?
0: सुबह सुबह बिल्लू का घर? पर क्यों?
4: हम लोग ताल बागीचा गांव के सांस्कृतिक मंच से आ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में गेस्ट बनने के लिए उन्हें इनवाइट करने आए हैं। उनका घर कहां पर है?
0: अच्छा, अभी बताता हूँ। अरे आप लोग तो गलत जगह आ गए।
5: गलत जगह?
3: क्या बात है लालू, क्या हुआ?
0: अरे रे रे, अब ये कहाँ से आ गया?
4: दरअसल हम लोग गायक बिल्लू बाबू का घर ढूंढ रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, आप बता सकते हैं?
3: नहीं नहीं, आप लोग सही जगह ही आए हैं, आप लोग मेरे साथ आइए, चलिए। लालू लालू लालू, घर पर हो क्या?
0: मर गया लगता है, उन दोनों ने सब कुछ बता दिया। जी साहब।
3: सुनो, बिल्लू के साथ कल ताल बगीचे के कार्यक्रम में जाना होगा, तैयार रहना।
0: क्या? जी अच्छा ठीक है। ये देखो लालू भी आ गया।
1: जल्दी चल बिल्लू, हमारे जाने का वक्त हो गया है।
0: संभल कर जाना। जी आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी।
2: और कितना रास्ता बाकी है भाई, हम सही तो जा रहे हैं ना?
0: अरे हाँ हाँ, मैंने तो जानबूझकर ही गलत रास्ता लिया है,
2: क्योंकि देर से जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी।
0: यही तो मैं चाहता हूँ कि लोग तुझे थू-थू करें।
3: हेलो,
4: मैं ताल बगीचे सांस्कृतिक समिति से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये किस तरह का व्यवहार है बताइए तो?
3: मतलब
4: इस तरह बात पलटने से क्या मतलब है?
3: मैं समझा नहीं।
4: नहीं समझे? अरे बिल्लू बाबू अब तक नहीं पहुँचे यहाँ, हमारे वक्त की कोई कीमत नहीं है क्या? बदतमीज लोग।
3: क्या कहा? पर वो लोग तो काफी देर पहले निकल गए हैं। रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी उन्होंने?
2: ची ची ची, कहीं वो लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे।
1: चल हम लोग वापस चलते हैं।
2: पर क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं?
3: अरे वो लोग तो यहाँ है, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्लू, अब बिल्लू।
2: कौन? अरे शंकर,
3: तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
2: दरअसल रास्ता मालूम नहीं है, उस वजह से।
3: पर मैंने तो लालू को अच्छे से पता समझा दिया था।
0: हाँ जी, वो मेरा मतलब वो मुझसे गलती हो गई।
2: अच्छा जाने दीजिए, अब हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा।
3: अरे अब जाने से कोई फायदा नहीं है, अब गांव वापस चलो।
4: मुझे कुछ खटक रहा है, लालू ने गलत रास्ता कैसे ले लिया?
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज कार्यक्रम में काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
0: आप चिंता मत कीजिए साहब।
3: सही कहा। और सुनो, वक्त का ध्यान रखना,
0: ज्यादा हवा में उड़ मत बिल्लू। ऐसा ध्यान रखूंगा कि पुरस्कार तो दूर, फिर कभी गाना नहीं गा पाएगा तू।
4: जो सोचा है अगर वही हुआ तो मछली जाल में फंसेगी।
0: ये ले बिल्लू, जल्दी से पी ले,
1: इसे पीने से गले से बिल्कुल साफ आवाज निकलेगी।
2: सच में तेरे जैसे दोस्त मिलना किस्मत की बात है।
6: अब संगीत पेश करेंगे हमारे गांव के नामचीन गायक बिल्लू।
7: अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही?
0: तो महफिल जम जाएगी।
8: ये क्या, बिल्लू गाना क्यों नहीं गा पा रहा है? क्या हुआ उसे?
7: ये सब क्या हो रहा है?
8: नहीं रहा है।
7: अरे इसके गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही
9: है इसे?
7: हाँ, अरे
10: नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे गाना ही पड़ेगा, पर कैसे?
0: ये क्या, वो सो गया क्या? आंखें बंद करके क्या कर रहा है बिल्लू? इतनी कोशिशें करके भी सब नाकाम हो गया।
11: बिल्लू बिल्लू, जल्दी से ये दवा पी लो तुम, इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी।
2: पता नहीं अचानक से क्या हो गया था।
11: हाँ, पर बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? अच्छा बिल्लू, तुमने कार्यक्रम से पहले कुछ पिया था क्या?
2: नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे।
8: ये जरा ये शीशी अच्छे से देखो एक बार।
2: हाँ याद आ गया, ये तो लालू ने ही मुझे दी थी, शायद उसी ने दी।
1: नहीं नहीं, झूठ है ये, सुन मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया।
11: सच में ऐसा है क्या लालू? देखो अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे ही सबके सामने तुम्हारा मुखौटा उतारना पड़ेगा।
1: क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
11: बिल्लू के प्रति जलन ने तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया है कि तुमने काफी बार बिल्लू का नाम खराब करने की कोशिश की है।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शंकर, ये गलत है।
11: लालू अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा।
1: नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ, ये सब मैंने ही किया है। बिल्लू के घर का गलत पता, ताल बगीचे के कार्यक्रम में गलत रास्ते जाना, और तो और आज इसकी आवाज का खराब होना, ये सारी मेरी गलती है।
2: लालू ये सब तूने किया?
1: दरअसल पहले हम एक साथ काम करते थे, तेरा नाम हुआ, तुझे बड़ा मौका मिला और मैं जहाँ था वही रह गया।
11: इसमें बिल्लू की गलती कहाँ है? बिल्लू को अपनी मेहनत का फल मिला है।
1: छी छी छी, लालू तूने जो किया है तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी।
2: नहीं मुखिया जी, इसने जो भी किया है उसके लिए मैंने इसे माफ कर दिया है।
11: ये तुम क्या बोल रहे हो?
2: हाँ शंकर जी, कहीं ना कहीं शायद मैं भी स्वार्थी हो गया था। थोड़ा सा नाम पाकर मैं अगर लालू के बारे में सोचकर उसके लिए कुछ करता तो शायद लालू ये सब कभी नहीं करता।
1: बिल्लू मुझे माफ कर दे भाई, तू सच में मुझ पर इतना भरोसा करता है।
2: हाँ लालू, तू मुझे भी माफ कर दे, जो होना था वो हो गया। चल अब हम नए सिरे से शुरू करते हैं, है ना? ठीक है।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग।
0: काफी काफी मुश्किल से आपसे बात हो पा रही है। थैंक यू, गुड इवनिंग।
1: मैं चार दस से आपकी राह देख रहा हूँ।
0: ओहो,
1: चार दस से छह बजे से सुन भी रहा हूँ।
0: अच्छा, थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुन भी रहा हूँ, गीत सुने, कहानी सुने, सच्चे दोस्त कैसे होते तो जिसको हमने दोस्त मान लिया
0: जी,
1: एक बार स्वीकार कर लिया
0: जी जी जी जी,
1: जो उसने कुछ गलती भी की तो भी हम माफ करना चाहिए, उसको ही सच्चा दोस्त बोलते हैं
0: जी जी जी।
1: दीदी, आपको, रूहानी को, रेडियो मधुबन परिवार, सभी श्रोते भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। गणेश जो उत्सव है, जो उत्सव इस उत्सव का बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लगता
1: दीदी
0: जी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।

0: मिसाल
1: सदा बेमिसाल। आगे बढ़ते हैं और जादुई डब्बे के बारे में कुछ बातें आप तक जरूर पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं
2: उड़ान
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जादुई डब्बा
2: फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा जादुई डिब्बा है जो हमेशा आपकी मदद करेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स छोटी मोटी चोट के लिए तैयार मदद का वो डिब्बा है जिसमें ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो कट लगने, खरोंच आने या हल्की चोट जैसी स्थिति में शुरुआती राहत के काम आ सकती है। और शायद इतना कह सकते हैं कि हर घर में ये फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए, ये जादुई डिब्बा जरूर होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखें हम?
2: बैंडेड रखनी चाहिए। जब छोटी मोटी खरोंच लग जाए तो ये फौरन घाव को ढक देती है, इससे कीटाणुओं से बचाव होता है।
1: वहीं पर रुई और गौज पैड भी रखना चाहिए, चोट की सफाई करने के लिए, खून बहने से रोकने के लिए। ये फर्स्ट एड का ये जो रुई और गौज पीस है ये काम आता है।
2: और एंटीसेप्टिक क्रीम भी रखनी चाहिए।
1: घाव पर लगाकर जल्दी ठीक करने में मदद करती है ये एंटीसेप्टिक क्रीम। हमारे बीच एक श्रोता भी आ चुके हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी फिरोज जी, कैसे हैं?
3: बस एकदम अच्छे। आपको और रूहानी और सभी रेडियो मधुबन परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और बापा सब सबके विघ्न हरता है और सबके विघ्न दूर करे, ऐसे बापा से मेरी प्रार्थना है।
1: जी जी, हमें भी ऐसी प्रार्थना, हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार, आपके प्यारे और जो भी आपके सगे संबंधी हैं, सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते जरूर रहें। कार्यक्रम में हमने कोई सवाल तो रखा नहीं था, लेकिन हाँ कहानियां दो बेहतर सुनाई और अभी हम जादुई डिब्बे के बारे में बात कर रहे हैं।
3: जी,
1: थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे और इस उत्सव को आप बहुत धूमधाम से मनाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया फिरोज जी। और जहां एंटीसेप्टिक क्रीम घाव पर लगाकर जल्दी ठीक करने में मदद करती है, अपने बड़ों से पूछकर अपने फर्स्ट एड में इसे जरूर रखें।
2: एंटीसेप्टिक दवा या लोशन भी रखना चाहिए। ये कीटाणुओं को मारता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, इसे घर में किसी बड़े से पूछकर ही रखना चाहिए।
1: और इसके अलावा कौन सी चीज रहनी चाहिए हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में?
2: थर्मामीटर।
1: शरीर का तापमान या टेम्परेचर जांचने के लिए थर्मामीटर बहुत जरूरी है। चोट लगने पर आप क्या क्या करें? 3 आसान स्टेप्स अपनाएं।
2: पहला स्टेप है घबराइए नहीं, शांत रहे और तुरंत किसी बड़े, माता पिता या शिक्षक को बताएं।
1: घाव को दूसरा स्टेप है घाव को साफ करें। चोट वाली जगह को साफ पानी से धोए या गीली रुई से धीरे धीरे साफ करें।
2: तीसरा स्टेप है बैंडेड लगाए, क्रीम लगाकर उस पर बैंडेड या पट्टी बांधे।
1: और यदि ज्यादा इमरजेंसी है तो 108 पर कॉल करके आप हॉस्पिटल तक जरूर जा सकते या मदद या उपचार ले सकते। 108 है हॉस्पिटल या एम्बुलेंस का नंबर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम
2: 6 बजे।
1: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
2: गुड बाय।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। सबसे मिलते तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते। तो आज हमें खुशी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआ में हम पहुंचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं, और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में, और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, गिरबर, आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है, और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते हैं। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा, क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज से होगा, भले हमारा वीडियो नहीं लेकिन आवाज लगेगा। हमारा हूँ नाम
1: कुमारी, पुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम पुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजा बहन।
0: जीजा बहन, बहुत अच्छा।
1: इंदिरा बहन।
0: इंदिरा बहन कहाँ से तुम? कौन सा गाँव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के?
1: हाँ।
0: सब बगेरी तो हाथ उठाओ, वेरी गुड। सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं, है ना? सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता है टाइम पर?
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता, यहाँ पर सास बैठे होंगे, है ना? सास है क्या ये?
1: हाँ,
0: इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़े को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़े को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गणगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने,

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुँचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और हमारे साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है, व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में ये जो गीत गाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है, ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना, दोनों का लड़का वाले ना लड़की में लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप? लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जो ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराए घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से पैर घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर, जाएगी तुम?
1: नहीं
0: जाएगी क्योंकि इतना दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराए घर, इसलिए लड़की को छोकरी को पराए सोचते हैं, लेकिन पराया नहीं है। फूली हमारा होशियार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए बोलते भाई हम ससुराल घर नहीं जाएंगे, माँ बाप को दुख क्यों दूँ, ऐसे। हाँ चलिए कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारा जो आवाज में जो मिठास है एक के बाद एक गीत मिलेगा। जब भी आदिवासी अंचल में जाते हैं, चाहे बगरी हो, चाहे धमसरा हो, चाहे फूलाबाई खेड़ा हो, चाहे भूला हो, जहाँ भी जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेगी जीजा जी से जीजा तो जीजा भी हंस रही, लेकिन वो भी अपना आवाज सुनाएगी, उनका दोस्त का साथ सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: वो रुका वो रुका वो त्रिदेव त्रिमूर्ति वो एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती वो बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे मालूम नहीं तुमको भाई अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज
0: ओए तुम्हारे मैच की तो वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे ओए ये ट्रैफिक है भाई यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो

मन तब रेंगे गाड़े से रे मन हेंगे गाड़े से रे तला।

0: तो श्रोता मित्र ग्राम वासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है। इस तरह मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमें सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मान कर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर इधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस आस्था से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिल, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं, इसमें मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत,
1: मेला
0: जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, तो क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं, कुछ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए, उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो जाते हैं आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने, इस तस्प से उसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोल भाई ये उनका देन है, भावना है, बोला हमारा माता है, बहन का भी आवाज आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
2: सुमित चौहान।
1: सुमित चौहान, वाह, कहाँ से आप आए?
2: यूपी।
1: यूपी से आए, वाह, इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
2: काफी सालों से हो गए, 1.5 साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है।
1: जी जी, जी। बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते
2: हैं। शिव ही शक्ति है, हर जगह शिव ही शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से जितना मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव से जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही हैं, शिव सिर्फ एक ही हैं।
1: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो बगरी स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया। और जो बगरी में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता 4-5 एकड़ का जमीन है।
2: हाँ हाँ, कम से कम
1: यहाँ से पानी, यहाँ मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
2: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसीलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता, पवित्रता और हरा भरा मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब ही लोग सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई देखो हर जगह जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
1: यहाँ पर हम देखें पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल हर सीजन में फल फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
2: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब, गुलाब के पौधे वौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
1: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
2: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया वो चूहते थे,
1: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
2: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, नहीं अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले का मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए, बड़ा आराम से मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
1: जी जी,
2: सब जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
1: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
2: ये मेरी मम्मी माता श्री।
1: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
2: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप हैं और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थे उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
1: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा, श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो,
2: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती हैं। देखो माँ का प्यार माही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माई होती है।
1: इसमें माँ का अवदान को कभी भूल नहीं पाएंगे। एक तो घर में जैसे लोग की माँ है, ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
2: पिता ये है वो सब, मतलब
1: परमात्मा का कृपा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्यों जब इस तरह आकाशवाणी में आते हैं टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन, चलो हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज को भी दुनिया सुन रहे है, क्यों हम क्या कहना चाहते, चाहे गीत का माध्यम से हो, जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं, माता पिता का, क्योंकि उनका देन है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए, हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा, और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं वो देते रहते हैं, तो प्रकृति के बारे में पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
2: पेड़ पौधे देखो सबको लगाना चाहिए, पेड़ पौधे से क्या है, जो अपने हमारे ये वृक्ष देख रहे होंगे आप, आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी, कितना सारे
1: 6 फुट 7 फुट है,
2: हाँ, और देखो कितने फल लगे हैं, अब यहाँ जो इतने पौधे लगे इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं आजकल, तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया

0: डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से। अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर। अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा, कूलर की हवा, पंखे की हवा, बस यही है। अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसे चलता है बस चलने दो।
1: सबका सोच ऐसे होने से चलने दो भाई, हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
0: साथ वैसा सबका विकास
1: ऐसे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा जो आने वाला पीढ़ी को उनके लिए भी तो रखना चाहिए ना। हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपने लालच का चलते, ग्रीडी होकर हम ले लेंगे तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा।
0: ये जब
2: बारिश भी नहीं होगा टाइम
0: कुछ टाइम पर, ना बारिश होगी ना कुछ होगा। अभी देखा होंगे कितनी, अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई, ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया। प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती। अगर जब बारिश नहीं होगी, जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी। पर यही है कि अब मैं यही कहूँगा कि ठीक है जो भी है।
1: ठीक है, इतना नाराज से आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया। और फल फ्रूट
0: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं। और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान और ये वो हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा करो, मतलब गौ माता की भी, अपने मात पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करो। आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया, वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है। अब
1: इसका कारण वजह क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? ये तो खराब है ना,
0: ये तो खराब है। बस वो क्या समझाए, यही तो है ना कि मतलब संगत, जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले हमें अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा।
1: जैसे संग ऐसे रंग,
0: जैसे संग वैसे रंग।
1: जैसे पानी
0: जैसा देश वैसा भेष,
1: जैसे पानी वैसे पानी,
0: वैसे पानी
1: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या निकलेगा।
0: आजकल तो इतने शराब, इतने स्टूडेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सब, ये शराब
1: सब तो हो रहा है। इसलिए कला क्लास का अच्छा दुनिया लाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे। इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा। तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा, और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें। इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे। तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने कहेंगे। माताएं बोलते हैं वंशम, और हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे। माताओं को भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें खुशी आज बड़ों का साथ छोटे भी कम नहीं है। हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो, क्या नाम है?
1: फुली कुमारी।
0: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
1: 11वीं में।
0: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं और बाद में। तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
1: पापा, मम्मी, बहने, भाई।
0: कितना भाई कितना बहन?
1: 7 बहने 1 भाई।
0: बाप रे, 7! हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है। और शक्ति सेना का, पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
1: हाँ।
0: अरे वाह, पैसा कहाँ से आते हैं इतना बहन को पैसा? पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते?
1: काम करते, पाइपलाइन का।
0: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ।
1: सोनिया।
0: सोनिया कौन सा क्लास हो?
1: 7वीं
0: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुल्ली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
1: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
0: हाँ, चंडेला। सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का? बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गांव बताओ?
1: तेलपुर, अंबावीरी, गिरवर, गिरवर बाट और चनार।
0: अंबावीरी?
1: अंबावीरी बोला
0: बोला था। अरे वाह। और तेलपुर फली
1: बोल दिया।
0: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम। सुनीता मैडम जानते हैं?
1: नहीं मैडम आए।
0: अच्छा, और एक छोटी सी कन्या है। हेलो, क्या नाम है?
2: सिरमी।
0: हाँ, कौन सा क्लास?
2: 7वीं।
0: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
2: कपड़े और खाने का।
0: वाह, बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ऐसे एक को देखकर एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, भाग लेते और अपना बात को रखते। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: थी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चोक की केन हो। जी हाँ, आबू की शाम, ठंडी ठंडी हवाएं, और मैं पहुंच चुका हूँ आपके पास, आपका दोस्त होस्ट केवल, और आप सुन रहे आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज है बुधवार 16 सितंबर, और शाम फिर से बारिश ने अपना मुख मोड़ लिया है आबू से। आबू की पहाड़ियों पे भी फिर से 2 दिन से बारिश नहीं है, और हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ रहे, शायद बुरीलाल जी ही है। हेलो,
1: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति फिरोज भाई, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम मस्त है।
0: क्या बात है, आज आपका कॉल सबसे पहले आया है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है।
1: एक शायरी बोलता हूँ
0: जी।
1: जिस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता,
0: वाह,
1: जिस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की निगेबान है आंखें, जिस मुल्क की निगेबान है आंखें।
0: क्या बात है, वाह, जिस मुल्क को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की निगेबान है ये आंखें, वाह, यानी कि अपनी आंखें, वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी शायरी।
1: और दूसरा के अपने एक गीत सुनने का है
0: जी,
1: ये अपना

0: होगी ये गीत सुनने का है।
1: चलिए बिल्कुल से कोशिश करते हैं हम आपको आज ये गाना सुनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत दिन शुभ रहे, शुक्रिया। ओम शांति। यहाँ दोस्तों, तो आज हमारे फिरोज भाई ने हमें सबसे पहले कॉल किया है, और ये शायद बुरीलाल जी का, मैं आज सिर्फ आइडिया लगा रहा हूँ कि आज किस किस के कॉल आने वाले, या बुरीलाल जी का कॉल है या फिर, अच्छा शायद कट गया फिर से, हो सकता है बुरीलाल जी कॉल लगा रहे, फिर से एक और बार कॉल आ गया। चलिए आज यही बात होने वाली, कौन कॉल कर रहा है कौन कॉल नहीं कर रहा है। हेलो
2: जी, नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार
2: भाई साहब, मेरा फोन काट दिया उन्होंने यार।
1: नहीं,
2: फोन लगाया था तो उनका फोन मेरा वाला था, उन्होंने मेरा फोन कट दिया।
1: आज सबसे पहला कॉल
2: वो सिविल भाई जी अपना पक्का दोस्त है।
1: हाँ, लेकिन आज
2: गाड़ी के अंदर आगे बैठ देंगे, फिर इनके घर में लग जाए।
1: अच्छा,
2: क्या कह रहे हैं, इनके साथ में रह करके हमें तो हमारे मुस्कुरा करके रहना है।
1: क्या बात है।
2: मेरा एक गाड़ा है सर
1: जी,
2: बंधन के प्यार का बंधन है, जन्मों जन्मों का बंधन है।
1: कौन सा
2: बंधन? तो प्यार का बंधन है
1: ये, बंधन प्यार का बंधन है।
2: हाँ, जन्मों जन्मों का संगम है
1: ये, बंधन तो प्यार का बंधन है,
2: जन्मों जन्मों का संगम है।
1: अच्छा,
2: धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भाई है और बुराराम जी है, सुरेश भाई तो कहीं कहीं इंतजार करते होंगे और वो बैठे बैठे सुनते होंगे।
1: हाँ बिल्कुल,
2: जैसे मजे ले रहे दुनियादारी के सर, मजे बैठे बैठे सुनते होंगे। एक वो महाराष्ट्र में आदमी है, उनका नाम है सुभाष जी
1: जी।
2: उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार बोल रहे सर।
1: चलिए ठीक है, बिल्कुल से हम कोशिश कर, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे बुरीलाल जी। आज बुरीलाल जी का कॉल आ गया है, फिरोज भाई का कॉल आ गया है, और शायद एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे भी कर लेते हैं बातें। हेलो, हाँ जी, जी सादिया जी, कैसे हैं आप? हेलो, जी बिल्कुल सुनाइए। हेलो हेलो,
3: चंडे बोले मस्त को के झुंडे, आज जंग की घड़ी है तुम हार दो, आने बाने चाने आपकी जान का हो दाने, आज एक दिन उसके मान पे उतारी दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंडे, आज जंग की घड़ी है तुम हार दो, मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का स्वर है, युद्ध ही तो विंग का प्रमाण है, कौरवों के वीर हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की है बस नहीं किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाने आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड।
1: हेलो,
4: हाँ
1: हाँ जी, हो गया?
4: हाँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया आपने शिव भक्ति का ये गाना सुनाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी।
4: हाँ।
1: थैंक यू सो मच। यहाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सादिया जी ने हमें ये गाना सुनाया, और मुझे भी लग रहा है कि कहीं हमें भी ये गाना कभी ना कभी तो प्ले करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आज हम इस गाने को प्ले करें, और देखते हैं कि ये गाना हम प्ले कर पाते हैं कि नहीं पाते। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े, चलिए सुनते हैं उनसे भी। हेलो,

0: मौसम थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, अच्छा चल रहा है बारिश के बाद, गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने आज के शो कार्यक्रम की तरफ, और पहला नगमा हम सुनते हैं। पहला नगमा जो है, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, जी हाँ, कई बार हमने आपसे सवाल भी पूछे और कई बार जवाब भी आए, शायद फिर से हमारे बुराराम जी हमें कॉल करें, चलिए सुनते हैं उनसे भी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: शायद फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले एक गाना सुन ले बुराराम जी, और आप फिर से उसके बाद हमें ट्राई कर सकते हैं, अगर बुराराम जी मुझे सुन रहे हैं तो। तब तक चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये पहला गाना।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: यहाँ दोस्तों वेलकम बैक। और अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना, अगर मैं पूछूँ तो कहोगे तुम। यहाँ दोस्तों बहुत ही प्यारा शांत म्यूजिक में ये गाना अभी हमने सुना। और जिस तरह से इस गाने की, पहले तो मैं ये बात करता हूँ, गाने से पहले मैं ये बात करता हूँ कि जब हमने बात कही थी कि आज हमारे जो भी हमारे कॉलर्स हमें कॉल करने, हम सबकी लाइन बात करने वाले हैं, तो हमारे सुभाष भाई ने भी हमें अभी ऑफलाइन में कॉल किया था जब गाना चला था, तब सुभाष भाई ने भी कहा। सुभाष भाई ने इतनी प्यारी बात कही, चलिए उनसे भी बात करते, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, चेतन भाई बुराराम बोल रहा हूँ।
1: जी बुराराम जी, कैसे हैं आप?
2: बस आपके दया से बैठा हूँ और जब फोन लगा।

0: बहुत बीच में कट हो गया था
1: जी,
0: मेरा।
1: आवाज आवाज नहीं आई तो फोन कट गया था जी।
0: आवाज नहीं आ रही थी
1: जी।
0: और सब आपको मधुबन भाइयों को सुरेश भाई अपने भूरे लाल जी का तो बहुत इसमें वो आवाज सुन के मेरा पूरा आधा दम तो मिट जाता भूरे लाल जी की आवाज सुन के। और सब मदन भाई सुभाष भाई सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम
1: जी।
0: और मेरी एक फरमाइश है
1: जी भाई जी।
0: हेलो।
1: हाँ जी।
0: हेलो, मैं सुनाओगे?
1: हाँ हाँ सुनाइए ना, बिल्कुल अपनी फरमाइश सुनाइए।
0: अगर तेरे जलवे नुमाइन होती खुदा की कसम ये जुदाई न होती। अगर आस तुमसे मिलाई न होती खुदा की कसम ये मोहब्बत न होती। ये गाना
1: ठीक है, जरूर से हम कोशिश करते हैं आपके लिए गाना बजाए और आपको सुनाए।
0: ओके ओके सर,
1: थैंक यू बुराराम जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात हम यही कर रहे थे कि आज हमारे साथ जो भी हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं उन सभी की हम बात करेंगे और शायद हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, सुनते हैं। नहीं, शायद फ़ोन कट गया है, कोई बात नहीं, शायद फिर से उनका कॉल हमें आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात यही कर रहे थे कि आज कितने कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, तो अभी तक हम नाम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे भूरीलाल जी, बुराराम जी, हमारे सुभाष भाई ने हमें ऑफलाइन में कॉल किया, जैसे मैंने बताया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि इस तरह से आप सभी का प्यार देख करके, आप सभी के कॉल आते हैं, कॉल को देख करके प्रोग्राम इतने अच्छे तरह से चल रहा है, तो उनको बड़ी खुशी हो रही है। उनको ये खुशी हो रही है कि सारे लोग मिल रहे हैं, जैसे आज फिरोज भाई ने भी हमें फ़ोन किया, उनकी पोती सादिया जी ने भी हमें फ़ोन किया, इतना प्यारा सा उन्होंने हमें गाना भी सुनाया। तो आज यही बात हो रही थी और इसी बात पर फिर सुभाष भाई भी इतने खुश हुए हैं और उनकी जब ये खुशी हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा प्यारा अच्छा सा लगता है। और ये शायद हमारे सुरेश भाई का कॉल है, मैं कोशिश करता हूँ शायद वही है और मैं नाम से ही करूँगा, सीधा नाम से ही लूँगा। हेलो सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
0: सर कैसे हो आप?
1: आज नमस्कार, मुझे मालूम था ये सुरेश भाई का ही कॉल है, आज मैं इसी कॉल
0: उसके। हाँ मैं सोच रहा था कि हमारे कई सारे मित्र जुड़ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी धीरज रखूं और हमारे सभी श्रोताओं को मैं थोड़ा सा यानी कि बात करने का मौका दूं
1: जी,
0: तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी गैप पड़ेंगे, बाद में मैं बात करूंगा। तो आज हमारे देखो आज कई सारे मित्र ऐसे लगातार जुड़े हैं, ये हमारा एक दूसरे का प्यार है सर।
1: जी बिल्कुल,
0: ये हमारा परिवार है, हमारा प्यार है, इसीलिए तो आज हमारे सभी मित्र दोस्तों। हमारा भूरे राम जी इतनी भी उम्र है, इतने बढ़िया गाना उसने गाया, मैं खुश हो गया
1: बिल्कुल।
0: तो भूरी लाल जी को भी हमारा नमस्ते है, क्योंकि ये उम्र से नहीं लगता है सर, ये बस एक आनंद है, खुशी है।
1: एक चीज और बताता हूँ फिरोज भाई, मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठ करके मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठ करके मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मुझे किसी की उम्र के बारे में नहीं पता है। मैं आप सभी से जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये शो स्टार्ट किया था तब मुझे सिर्फ नाम से पता था कि सुरेश भाई है, फिरोज भाई हमारे पालनपुर से हमें कॉल करते हैं, हमारे भूरीलाल जी जो हमें कॉल करते हैं, सुभाष भाई जो हमारे पूना में बैठे वो हमें कॉल करते, बस मुझे ये पता था। लेकिन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जा रहा है और आप सभी का इतना प्यार और एक दूसरे को जिस तरह से आप जानते हैं, मैं ज्यादातर जानना आप दूसरों से मैंने आप लोगों को जाना है।
0: बिल्कुल सही बात है। ये सभी जो है ना, सभी उम्र वाले, जो जो आपने बात की सभी हमारे बहुत उम्र वाले
1: जी,
0: फिर भी देखो छोटे से बच्चे की तरह एक दूसरे इतने बढ़िया गाने गाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो ये हमारी परिवार की खुशी है सर। हमारे रेडियो मधुबन का जो
1: बिल्कुल
0: प्यार है ये हमको एक दूसरे को खींच लाता है,
1: वही
0: तो परिवार है हमारा। तो सभी हमारे परिवार मित्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जैसे ही हमारा परिवार फला फला रहे और एक दूसरे का प्यार जो एक दूसरे को मिलता रहे, ऐसी हम शुभकामना करेंगे बाबा से
1: जी।
0: तो चलो मैं भी एक गाना लगातार दे दूं लाइन में
1: जी सुरेश भाई,
0: बिल्कुल। तो वो गाना है मेरा नाम जोकर का गाना है, बहुत पुराना गाना है, अच्छा गाना है, हमारे शंकर जय किशन ने वो संगीत किया है और गीत गाया सलंदर ने
1: जी,
0: तो मुकेश साहब की आवाज में सर
1: जी।
0: जीना यहाँ मरना यहाँ, इसकी सिवा जाना कहाँ, जी चाहे।

0: हुआ जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये सब
1: क्या बात है, बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा गाना आपने दिया है।
0: बस बस इसी तरह हम जिया यहाँ मरना यहाँ, इसी तरह हम वाला एक दूसरे का प्यार बढ़ता रहे।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी हम दुआ करेंगे। नमस्ते सर।
1: नमस्कार सुरेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, आपका दिन शुभ रहे। और जी हाँ दोस्तों, यही बात है कि प्यार कैसे हम बांट रहे हैं, जैसे भी हम प्यार बांटे, दिलों को एक दूसरे से जोड़े, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे हम एक दूसरे को आमने सामने मिल करके एक दूसरे से प्यार बांट रहे हो, चाहे जैसे भी प्यार बांट रहे हो, बस हमारी एक ही तमन्ना है, एक ही आशा है और एक ही हमारा फलसफा है जीवन का कि बस प्यार बांटते चलो, और वही हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अभी जो हमने गाना सुना, अगर मैं पूछूँ जवाब दोगे, जी हाँ दोस्तों मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सबके जब कॉल आते हैं तो मुझे किसी भी तरह के कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल जो मेरा तड़प रहा है हर सोमवार से बुधवार आप तक पहुंचने के लिए, वो इसीलिए है कि आपके जो कॉल हमें आते हैं उससे हमारे सारे जवाब हमें मिल जाते हैं। जी हाँ, तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में ज़रा ज़रा सा है, बिल्कुल हमारे दिल में भी। ये जो गाने के बोल है, मैं ये गाने के बोल गा रहा हूँ, अगर मैं पूछूँ जवाब दोगे तो दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे दिल में भी है ज़रा ज़रा। जी हाँ, ये गाना अभी हमने जो सुना मूवी शिकारी से था, 1963 में आया। इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे GS कोहली जी, इन्होंने इसे म्यूज़िक को डायरेक्ट किया है। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने अपनी आवाज़ दी है इस गाने में, और इसे लिखा था फारूक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की, और जो हमारा अगला नगमा है हमारे भूरा राम जी ने ये फरमाइश के रूप में हमें दिया है, और आशा करते हैं कि हम ये गाना उनको पसंद आएगा। और सुनते ही रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोग जी। हाँ दोस्तों, ये गाना था 1954 की फिल्म नागिन से, और इसे गाया है हेमंता कुमार मुखोपाध्याय जी ने, और इसे डायरेक्ट भी, यानी कि म्यूजिक को जो कंपोज किया है, म्यूजिक डायरेक्शन जो किया है वो भी उन्होंने ही किया है, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी ने। इसे लिखा था राजेंद्र किशन जी ने, और बहुत ही पुराना ये गाना है जिसमें वैजंती माला जी भी है, और वैजंती माला जी, प्रदीप कुमार, जीवन जी शायद इसी गाने को गा रहे हैं, शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है जीवन जी ही इसमें फिल्माया गया है। और शायद हमारे साथ हमारे कोई कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनसे सबसे पहले। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: शायद नेटवर्क का कई बार इशू रहता है, कई बार हम उनसे बात ठीक से नहीं हो पाती है। यहाँ दोस्तों सुभाष भाई का भी शायद कॉल आने वाला है, उन्होंने भी कहा था कि मैं फिर से जुड़ता हूँ, कोशिश करते हैं शायद उनका फिर से हमें कॉल आ जाए, तब तक करते रहेंगे हम बातें आपसे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ये मूवी इसमें शायद जीवन जी ने ही, ये मुझे नहीं मालूम है, बट शायद जीवन जी ने ही इस गाने को गाया है नदी किनारे पे या झरने के किनारे पे, जब वैजयंती माला जी ने इस गाने के लिए गाया है। और इस मूवी के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है क्योंकि 1954 का गाना है, बट हाँ ये गाना हमने ज़रूर से सुना है, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, और काशी देखी मथुरा देखी। और दोस्तों जब बात हो रही है और भी अगले गाने की, तो हम शायद कोशिश करते हैं बढ़ते हैं अगले गाने के लिए, और हो सकता है सुभाष भाई का कॉल फिर से हमारे पास आ जाए, तो चलिए सुनते हैं तब तक ये अगला गाना। हाँ जी दोस्तों, ये कहना मैं भूल गया कि ये जो फरमाइश अभी हमने जो गाना सुना तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, हमारे फिरोज़ भाई ने इसे हमें फरमाइश के रूप में दिया था, और ये गाना उन्हीं के लिए था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर। अगला जो गाना है ये हमारे भुराराम जी जो ओस है, उन्होंने हमें फरमाइश के रूप में दिया था, अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती। चलिए सुनते हैं ये गाना और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। जी हाँ, बेटा बेटी बेटी बेटा मूवी से ये गाना अभी हमने सुना, शंकर जय किशन जी की कंपोजिंग में, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर इसके, संगीतकार इसके शंकर जय किशन जी थे, गीतकार यानी कि इसे जिसे लिखा था हसरत जयपुरी जी ने, और इसे मोहम्मद रफ़ी जी ने और सुमन जी ने अपनी आवाज़ से इसे सजाया था, और बहुत ही प्यारा अभी हमने एक गाना सुना। और चलिए बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की ओर। जो अगला जो नगमा है हमारा, ये भी बहुत ही प्यारा है, तो सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो हेलो
2: हेलो नमस्कार।
1: हेलो
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: हेलो
2: आवाज आ, हेलो
1: हाँ जी मदन लाल जी, अब आवाज आ रही है आपकी, बताइए।
2: क्या आवाज है, कहाँ हवा उड़े, आवाज कहाँ चली जाती है?
1: कहीं ना कहीं आवाज चली जाती है जी, बिल्कुल
2: जी जी जी। और नमस्कार करते हैं आपको और सभी दोस्तों को सुन रहे हैं
1: जी।
2: और बस आज का दिन तो बड़ा आसमान है
1: जी
2: और बारिश नहीं गिरा है
1: जी। आज बारिश तो कहीं पे भी नहीं है शायद, मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है बारिश तो कहीं पे भी नहीं गिरी है, सब जगह सूखा ही था आज के दिन।
2: नहीं है, कहीं नहीं है बिल्कुल। और गर्मी पड़ रही है, धूप, और अभी शाम को ऐसा लग रहा है जैसे कोई सियाले में ठंडी लगने वाली है।
1: बिल्कुल मौसम बिल्कुल बदल गया,
2: ऐसा मौसम ऐसा लग रहा है, झुरमुरा झुरमुरा
1: जी।
2: तो बस नमस्कार करते हैं और एक गाना सुन रहे हैं
1: जी, सुना दीजिए।

मौसम मिसाल बेनजीर है, हर कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है। शरबतों के जन्मिया है, जन्मतों के जन्मिया है, आज के दिन

0: कश्मीर है। नमस्कार सर, आज कश्मीर का इसलिए गाना गा रहे कि हम वहीं जाने वाले।
1: क्या बात है, अरे वाह।
0: जी जी, वो बनारस का थोड़ा इजर कर दिया और कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर, ये सब वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए बहुत कुछ अच्छा लगता है।
1: चलिए अभी आपको ये हम गाना भी सुना देते हैं और इस गाने को भी आप सुनिए और उसी जगह पे आप खो जाइए जहां अभी आप जाने की सोच रहे, और हम आशा करते हैं कि आपका ये सफर और बहुत ही सुखमय और सुंदर रहे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: ओम शांति भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी बात हमारे मदनलाल जी की। मदनलाल जी ने भी कहा, तो हम आशा करते हैं कि उनका जो सफ़र है बड़ा ही सुंदर रहे और ये जिनके भी साथ जा रहे हैं सभी सुकुशल यात्रा करें और अपनी इस यात्रा को एंजॉय करें और मस्ती करें खूब। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने तो हमारी उम्र में, हम तो कहीं भी घूमने जाते तो यही बात करते कि यस एंजॉय करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो अभी हमने गाना सुना मेरे नाम जोकर से, हमारे सुरेश भाई ने इसे हमें फरमाइश के रूप में दिया था कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके जीवा जाना कहाँ, और इन्होंने ये बात इसमें ऐड की थी कि रेडियो मधुबन के साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ही यहाँ जीना है यहाँ मरना है। बहुत ही प्यारी बातें कही थी सुरेश भाई आपने, और ये गाना था मेरे नाम जोकर मूवी से, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन जी, शाहिल शैलेंद्र जी ने इसे लिखा था, मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी थी, और इसी तरह से हम बहुत ही आगे प्यार प्यारे गाने भी आज सुन रहे। और एक और गाना अभी अभी हमारे मदन लाल जी ने भी हमें फरमाइश के रूप में दिया थी कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, और कसम से बेहद ही खूबसूरत जन्नत है वो कश्मीर, जहाँ हम वहाँ पर वो जाते हैं और उस जगह को देखते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी प्लेसेस है। और अगर आप में से कोई भी वहाँ पे गया है या जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल से कोशिश करिए आप जाए एक बार कश्मीर, ज़रूर से देखें, बिकॉज वो ज़रूर देखने जाए जगह है। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: वेलकम बैक दोस्तों. और अभी हमने जो गाना सुना, बेमिसाल मूवी से ये गाना था. सुरेश वाडकर जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, इन्होंने आवाज़ दिया. और मैंने देखा है अमिताभ जी के लिए काफ़ी बार सुरेश वाडकर जी ने उनको आवाज़ दिया. और मैंने कहीं देखा भी था कि जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह ही, उनकी जैसे ही फील होता था. तो ज़्यादातर म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो भी होते थे वो यही कोशिश करते थे कि सुरेश वाडकर जी अमिताभ जी की आवाज़ बने. आर डी बर्मन जी ने इसे म्यूज़िक दिया है, आनंद बख्शी जी ने इसे लिखा है, राखी जी, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, ये तीन कलाकार इसमें ने अभिनय किया है. और एक और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे जो कॉलर नए जुड़े थे, नीलेश जी गोंदिया से, इन्होंने भी आज हमें कॉल किया था. और इन्होंने भी एक गणपति के ऊपर एक हमें कहा कि एक कोई भी गणपति के ऊपर कोई भी गाप हमें गाना सुना दीजिए. और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी जो हमने गाना सुना, कितना खूबसूरत ये तस्वीर है. और ये जो गाना अभी हम सुन रहे थे, ये हमारे मदन लाल जी की फरमाइश थी. और मदन लाल जी ने शायद दो दिन पहले, जिस दिन गणेश चतुर्थी की स्थापना थी, स्थापना के दिन भी उन्होंने हमें कहा था कि हमें ये गाना सुनना है. और बट हमने वो पहले ही बजा दिया था गाना. उस वजह से हम मदन लाल जी को कहा था कि हम इसको कल बजाएंगे. लेकिन देखिए, मदन लाल जी आज आपके लिए बैक टू बैक दो गाने एक साथ प्ले हो रहे हैं. और आशा करते हैं कि ये दोनों आपकी भी फरमाइश है, और हमारे नीलेश भाई गोंडिया से जो है उनको भी ये गाना पसंद आएगा गणपति के ऊपर. और सुनते हैं ये गाना. और रेडियो मधुबन 107.8 पर आप बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और ये जो गाना सुना, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुम।

महान स्वामी हमसे बड़। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी हमने गाना सुना हमसे बढ़कर कौन मूवी से ये गाना था, और गणपति के उपलक्ष्य पर जब भी ये गाना बजता है तो ये गाना, मतलब जब भी गणपति जी का आना होता है, स्थापना होती है या विसर्जन होता है, ये गाना बजना अनिवार्य है, ये गाना बजता ही बजता है। तो चलिए दोस्तों, वक्त है अभी आप सभी से अलविदा कहने का, और अगले हफ्ते फिर से मिलने का करना वादा है, क्योंकि अब वक्त भी हो चला है और हमारे पास और भी दो तीन गाने हैं जो बैक टू बैक हम बजाएंगे। आप सुनते रहिए ये गाने, बने रहिए रेडियो के साथ। और अगला जो कार्यक्रम है वो भी है सहज स्वास्थ्य के बारे में, तो अपने स्वास्थ्य की जानकारी और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसकी जानकारी, और हम आपसे मिलेंगे फिर अगले हफ्ते सोमवार को ठीक 8 बजे। तब तक आपसे लेते हैं हम विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, खमा गणी जी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम अपने वेलबींग के बारे में बात करते हैं या अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर देखते हैं तो प्रायः सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अनेक आयामों के बारे में हम समझते आए हैं, आज हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के नीचे की जो परतें हैं वो भी हमें समझ में आ रही हैं। प्रायः जब हम अपनी तबीयत खराब है ये बात कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। जब तक वो शारीरिक गड़बड़ी दिखती नहीं है तब तक हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या ऐसा संभव है कि हम स्वास्थ्य को बिगड़ने से पहले पहचान ले? क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है? अगर ये समझ में आ जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि हम स्वस्थ बने रहें? ऐसे ही विषयों पर सही जानकारी हासिल करना आवश्यक है जिससे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकें। रेडियो मधुबन की यही कोशिश है कि हम ऐसी सही जानकारियां आप तक लेकर आए जिससे हम सभी स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य कहते ही हम आज अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य समझने लगते हैं। जब तक शरीर में कोई गड़बड़ी, किसी प्रकार की व्याधि दिखाई नहीं देती या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, असहजता महसूस नहीं होती, तब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान देते ही नहीं है। आज हम स्वास्थ्य के अनेक परतों के बारे में जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर भी हमारा चिंतन चलता है। तो ऐसे में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को सही तरीके से आप कैसे देखते हैं? क्या स्वास्थ्य के विषय में बेहतर समझ होने से क्या हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं?
1: अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, ये जरूर संभव है। जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि हमको बादल दिख रहे हैं और तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी, तो हम घर से एक छाता पहन के निकले। तो इसी तरीके से यदि हमको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमें क्या चीज नुकसान कर सकती है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप ही क्या एग्जांपल लें भैया, जो अगर हम आबू रोड स्टेशन पे रहते हैं तो हमको गर्मी लगती है और अगर हम सीधे कोई गाड़ी या टैक्सी लेके ऊपर माउंट पे चले जाते हैं तो हमें ठंडक लगने लगती है। तो हम अब नीचे में टी शर्ट में या एक पतला कुर्ता में घूम रहे हैं तो ऊपर जाके हमें एक पतली जैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और अगर आपको सही ज्ञान है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि आप क्या चीज जो आपको फायदा कर सकती है, क्या चीज आपको नुकसान दे सकती है, तो आप अपने आप को ज्यादा बचा लेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, हम सारे लोग जो भी ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, हम एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी तरीके का नशा हमें नहीं करना चाहिए। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो कोई भी अगर हम नशा करते हैं वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति का भी नुकसान करता है। हमें मालूम है वो चीज हमें नुकसान कर रही है तब भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और हमें किसी एक अच्छे व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति या समाज में कोई अपना बहुत इष्ट मित्र रिश्तेदार की जरूरत है जो हमें अगर समझा देता है कि ये चीज तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन दोनों को नुकसान कर रही है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। अधिकतर जगहों में ये देखा गया, कोई गुरु अगर है वो बता देता है कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए चीज अच्छी नहीं है, तुम छोड़ दो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। एकदम यही बात है, अगर आपको मालूम है कि आपको ये चीज नुकसान कर सकती है, आप अपने आप को बचा लें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, तो आप मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।
0: ये बात समझ में आती है कि स्वस्थ रहना संभव है अगर हम थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, हमारा भोजन खान पान इत्यादि चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना सहज है, ये बात समझ में आती है। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम कई बीमारियों को आम समझ लेते हैं, या हम समझते हैं कि ये तो कॉमन चीज है, ये होना तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है डायबिटीज। पिछले दिनों हमने डायबिटीज के विषय पर बहुत गहराई से चिंतन किया और उसको बेहतर तरीके से समझा, और एक दूसरी बीमारी जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आम रीति बोलचाल में सुनने को मिलता है वो है बीपी। लोग कहते हैं कि आप कोई डायबिटीज बीपी की गोली तो नहीं लेते, ये जैसे दोनों साथ साथ की बात की जाती है। और बीपी के बारे में जब हम समझने की प्रयास कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, क्या चीजें हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर को समझकर उसका सही निदान, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसका सही निदान क्या है, इन चीजों को भी हम समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जब हम हृदय रोग से संबंधित चीजें हो या बीपी से संबंधित चीजें हो तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, वो है डैश डाइट। हमारे कई श्रोता मित्रों के लिए नई चीज होगी, मगर जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं वो इन चीजों को ज्यादा सुनते होंगे। तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये डैश डाइट है क्या, इसके बारे में आप
1: डैश डाइट इसके बारे में बात करें तो ये है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका सीधा साधा ये मतलब है कि हम भोजन में ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर पाए। और अब सबसे अच्छी बात इस डैश डाइट की है कि हमारा मतलब ये अमेरिका में विकसित देशों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है और उन्होंने

0: आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और सबसे पहली बार जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो कहा जाता है कि ये चाय, कॉफी, सिगरेट और शराब या जिसमें भी निकोटीन होता है इसको प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। अगर हम बहुत सिंपल परिभाषा में बोले कि जिस चीज को रिसर्च करके अमेरिका और यूरोप के कंट्री के रिसर्चर्स ने, डाइटिशियंस ने, डॉक्टर्स ने ढूंढा, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने बातों में बहुत पहले बता रखा था कि आप सब्जी, फल और अनाज खाइए, पूरा अनाज खाइए, आप घी की मात्रा, मांस मछली एकदम नहीं खाइए, घी को बहुत कम खाइए, तेल को बहुत कम खाइए, आप नमक को एकदम कम कर लीजिए। तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन में हम सबसे पहले जो चीज को कंट्रोल करने या एकदम कम करने की बात करते हैं वो है नमक। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहता है कि आप नमक की जगह थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए जिससे खटास आ जाए, आप कुछ ऐसे मसालों का हल्का प्रयोग कर लीजिए जिससे आपके स्वाद में उतनी परेशानी ना हो। पर अगर आपको जरूरत है तो आप करीब 1.5 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक नमक रोज खा सकते हैं। सोडियम के लिए ये बोला जाता है कि 2.5 ग्राम तक आप नमक दिन में खाइए। आप अपने जो आपका पूरा भोजन है उसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि आपको खूब सारा फल खाना है, खूब सारा सलाद खाना है और आपको होल व्हीट ग्रेन्स जो है उसको खाना है। अगर यंग जनरेशन के लिए मैं बात करूं, जिन आजकल तो बहुत छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो चीज को उनको छोड़ देना चाहिए वो है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। ये श्रोता मित्रों को जान के अचंभा होगा कि इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कैफीन और शुगर और इवन सॉल्ट का भी कंपोनेंट होता है। तो कृपा करके अगर हम फ्रोजन फूड को, कोल्ड ड्रिंक को, आइसक्रीम को, इसको अगर हम छोड़ दें तो हम अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा पाएंगे। हमें खाना क्या है, हमें खाना है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलेड, घर में बना हुआ भोजन, उसमें तेल और नमक की मात्रा हमें कम रखनी है, हमको जहां तक हो सके थोड़ा सा नमक को नींबू से चेंज करना है कि जिससे हमें खट्टापन थोड़ा सा मिल जाए जो हमारा काम कर पाए। बस ये एकदम सरल भाषा में डैश डाइट का मतलब है।
1: अब ये बात समझ में आती है कि हम नमक की मात्रा को लेकर सजग हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम तो ये बात समझना आवश्यक है कि नमक को हम इतना हानिकारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, अक्सर ये चीज कहा जाता है अनेक जगहों पर, ये कहावते हैं कि नमक से स्वादिष्ट कुछ नहीं, अगर एक चिटकी नमक डालो तो स्वाद बिल्कुल ही बदल जाता है, स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, इत्यादि लोग कहते हैं। और खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, या कहीं पार्टीज वगैरह पे जाते हैं, या कहां पर भी जब हम डाइनिंग टेबल पे नमक की शीशी रखी हुई देखते हैं और लोग सोचते हैं ये तो अच्छी चीज है, स्वादवर्धक चीज है, इसको हम ऊपर से छिड़क लें। कई बार लोग सलाद के ऊपर नमक छिड़क लेते हैं या किसी चीज में, जैसे दही खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल लेते हैं। तो ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस सी नजर आती है कि नमक तो अच्छी ही चीज है, इसमें खराबी क्या है?
0: भैया, नमक में सोडियम है, नमक को अगर हम केमिकली ब्रेक करें तो वो सोडियम क्लोराइड है, और हमारे हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हमारे हृदय को सिकुड़ने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास ज्यादा सोडियम होता है तो हमारा हृदय तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए नमक का एक कंपोनेंट है सोडियम, उसको रोकने की बात की जाती है। इसमें जो नमक है उसको NaCl कहते हैं, और NaCl का जो सोडियम है ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, नमक जो है वो शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, तो इसकी वजह से हम जब नमक ज्यादा खाते हैं तो हमारे

0: बॉडी में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और हमारा खून की का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए वो जो प्रेशर है ब्लड का तो बढ़ जाता है। नमक के लिए इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि एलोपैथी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो थोड़ा सा काम करना कम कर देती हैं, कि अगर हमें नमक जो है वो अगर हम सॉल्ट को खा रहे हैं, तो इसीलिए नमक को रोकने की बात की जाती है कि अगर नमक ज्यादा रहेगा तो वो हमारे शरीर में बॉडी में पानी को जो है वो रिटेंशन करेगा, उसका हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी रक्त की धमनियां हैं उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए नमक को हम भोजन में कम करने की बात करते हैं।
1: यानी ये जो हम टेबल सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फलों के ऊपर, जैसे अभी वाटरमेलन खाते हैं, तरबूजा खाते हैं या फिर ककड़ी या खीरा खाते हैं, तो कई चीजों के ऊपर नमक छिड़कने की आदत जो है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमें नहीं करना चाहिए?
0: भैया, प्रकृति ने अपने स्वाद दिया है। हम लोग एक पुरानी बीरबल और अकबर की कहानी भी कहते हैं कि भोजन में सबसे स्वादिष्ट क्या है, तो बोलता है नमक। आपने भी अभी एग्जाम्पल दिया कि एक चुटकी नमक डालते ही खाने का स्वाद जो है वो बदल जाता है। सबसे बेसिक बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति ने अपना स्वाद दिया है, तो भैया वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी या तरबूज, ये बिना नमक डाले भी खाया जा सकता है। और आप खुद देखते हैं कि नमक और नींबू दोनों डाला जाता है, तो जिनको भी अगर ये ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें नमक को रोक लें और आप प्लीज नींबू का प्रयोग करके खीरा और ककड़ी को खा लें। तरबूजे में प्लीज उसको अवॉइड करें, तरबूजा खुद इतना मीठा है, उसमें इतना अच्छा पानी है, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज नमक डाल के उसका स्वाद न डिस्टर्ब करें।
1: एक और चीज जो प्रायः हम देखते हैं कि हम चीजों को स्वादिष्ट बनाने के प्रयासों में ये भूल जाते हैं कि इसका शरीर पर असर क्या होता है, और ऊपर से नमक इन चीजों में ऐसा इस्तेमाल करना, और खासकर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आज आपने डैश डाइट के बारे में बताया, तो ये आखिरी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये डैश डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं, या सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे फॉलो करने की जरूरत है?
0: अगर आप हफ्ते में 2 दिन डैश डाइट में कोई भी चमत्कारिक चीज नहीं है, वो एक बेसिक बात ये बोलती है कि फल खाइए, सब्जी खाइए और आपका मन करे और आप होल व्हीट खाइए, मतलब चोकर समेत आटे की रोटी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, छिलका लगा हुआ चावल खाइए, आप मिलेट्स खाइए, तो एक सिंपल की बात है कि जो हेल्दी फूड है वो डैश डाइट का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया गया है कि नमक कम खाने की बात की गई है। अगर आप डैश डाइट हफ्ते में 2 या 3 दिन करते हैं, मतलब आप खूब फल, खूब सब्जी, खूब सलाद, खूब सारा होल व्हीट ग्रेन खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तेल और घी कम खाते हैं, तो आपका वजन भी कम होगा। आप ये हल्का भोजन है और इससे कोई भी कर सकता है कि जो भी कर ले उससे उसको फायदा ही होगा, क्योंकि एक तरह से स्वस्थ भोजन है जिसमें सिर्फ हेल्दी खाने की बात कही है, कम नमक खाने की बात करी गई है और शाकाहारी भोजन करने की बात की गई है।
1: बहुत स्पष्टता से आपने ये बात हमको कही कि हम डैश डाइट के बारे में सिर्फ ये न सोचें कि ये सिर्फ बीपी के मरीजों के लिए है, मगर हम सभी लोग भी इसका पालन कर सकते हैं, और अगर हफ्ते में हम एक आध दिन भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम उठाते हैं। ये बात समझ में आती है। प्रायः ये चीज देखने को मिलती है कि लोग ये सोचते हैं कि घर में कोई एक बीपी का मरीज है तो उनके लिए अलग भोजन हो और बाकी लोग नॉर्मल भोजन करेंगे जिसमें अधिक मात्रा में नमक हो या इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्ट होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक नहीं है, मगर घर में जो एक व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। हम सब अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबको धीरे धीरे इन बदलावों को लाने की जरूरत है, जिससे हम ज्यादा सब्जियां खाएं, चुकर सहित आटे की रोटियां खाएं, नमक की मात्रा को कम करें। इन सभी चीजों को समझकर हम भी एक स्वस्थ समाज की रचना करने में, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ राष्ट्र की रचना में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े। उन्होंने हम सभी श्रोता मित्रों के लिए सुलभ मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य उपलब्ध कराया। आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने बीपी की इस समस्या के लिए डैश डाइट कैसे कारगर है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज डॉक्टर रोहन मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने ही भोजन में अगर इन परिवर्तनों को लाते हैं, जैसे डैश डाइट का परिवर्तन उन्होंने बताया, तो उन छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और घर परिवार में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपी के मरीज हैं उनको भी ठीक करने में हम सहयोग दे सकते हैं, उन्हें भी हम बेहतर स्वास्थ्य की ये तोहफे प्रदान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं। अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़े हुए और भी विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो
2: सपनों की सैर। और आजकल बातें हो रही है गणेश जी के बारे में।
1: हाँ, और आज एक नई कहानी सुनाएंगे हम गणेश जी और मूषक की।
2: ये तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, ध्यान से सुनना।
1: हाँ बच्चों, पता है एक बार गणेश जी के सामने एक बहुत चंचल मूषक यानी कि चूहा आया। वो सबको परेशान करता था।
2: गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपना वाहन बना लिया।
1: हाँ, और मूषक ने समझा कि अब उसे गणेश जी की ही सेवा करनी है। वो बहुत खुश हुआ और हमेशा गणेश जी को जहाँ जाना होता वहाँ ले जाने लगा।
2: तो सोचो बच्चों, इतना बड़ा गणपति बापा और छोटू सा मूषक।
1: हाँ, और यहाँ से क्या सीख मिलती है बच्चों हमें?
2: कि किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
1: हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है ना?
2: हाँ बच्चों, तो इसीलिए स्वयं की विशेषताओं को पहचान कर उसे बढ़ाओ और दूसरों की विशेषता से सीखो।
1: सही कहा परी। तो बच्चों चलो फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
2: सपनों की सैर।

चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अब बारी कहानी की है। आज कौवा और कबूतर की कहानी सुनेंगे। एक किसान के खेत में रोज कौओं का एक बड़ा सा झुंड आ जाता था। इससे उसकी खड़ी फसल का बहुत नुकसान होता था। किसान इन कौओं से परेशान हो गया था। आखिर उसने एक दिन कौओं को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपने खेतों में जाल बिछा दिया। जाल के ऊपर उसने अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए। कौओं की नजर दानों पर पड़ी। जो ही वे दाने चुगने के लिए नीचे उतरे, सब के सब जाल में फंस गए। किसान जाल में फंसे कौओं को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा हुआ कौओ, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी किसान को एक करुण आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ध्यान से जाल में देखा तो कौओं के साथ उसमें से एक कबूतर भी फंसा हुआ था। किसान ने कबूतर से कहा, अरे इस टोली में तू कैसे शामिल हो गया? मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बुरे लोगों की संगत का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। फिर किसान ने अपने शिकारी कुत्तों को इशारा किया। कुत्ते दौड़ते हुए आ पहुँचे और उन पक्षियों पर टूट पड़े। एक एक करके बच्चों उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया। तो देखा बच्चों कैसे किसान ने अपनी फसल को बचाया। तो बच्चों कहानी क्या समझाती है? बुरे लोगों की संगति दुखदाई होती है, उनसे दूर रहना चाहिए, वरना हमें भी उनके साथ सजा खानी पड़ती है। इसलिए कभी भी बुरा संग नहीं करना, अपना बचाव करना। तो चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, समय हो गया है। मनी दीदी लेकर आ गई है तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब, और इसमें हमने शुरू की है ये नई कहानी जिसका नाम है सप्तद्वीप नौखंड। अब सप्तद्वीप नौखंड एक ऐसा स्थान था जहाँ चट्टाने अधिक थी, इसीलिए खेती पर निर्भर मनुष्यों को ये निर्जन स्थल अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता था। किंतु नदी के विलुप्त होने के कारण प्रकट हुई इस धरती में अद्भुत उर्वरक शक्ति थी। कुछ ही वर्षों में सप्तद्वीप नौखंड की धरती हरियाली से ढक गई और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां उगाई थी। शीघ्रता से बढ़ने वाले पौधों ने जल्दी ही पेड़ का रूप ले लिया और वनस्पतियों में फूल और फल लगने लगे। पेड़ों पर चिड़ियों ने पनाह लेना आरंभ कर दिया। ये इस नवखंड की वो अवस्था थी जब उधर से गुजरने वाले यात्रियों को यह निर्जन वन स्थल अपनी प्राकृतिक संपदा की ओर आकर्षित करने लगा, और फिर धीरे धीरे वहाँ लोग आकर बसने लगे। और अब सप्तद्वीप नौखंड नाम से प्रसिद्ध यह स्थल मनुष्यों के रहने योग्य बनाया जाने लगा। चट्टाने तरासी गई, समतल भूमि पर बिछे घास फूस की जगह धान की हरियाली छाने लगी, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज उगाए जाने लगे। और इस तरह ये जो सप्तद्वीप नवखंड की धरती थी वह प्राकृतिक ऐश्वर्य से ओतप्रोत हो गई, और इस सप्तद्वीप नौखंड में एक मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ, क्योंकि विभिन्न प्रांतों से आकर लोग बसने लगे। और वह था परस्पर सहयोग की संस्कृति, साहचर्य की संस्कृति और हमेशा कर्मशील रहने की संस्कृति। तो ये विजयनगर का विशेष राज्य था जिसे सप्तद्वीप नौखंड के नाम से जाना जाने लगा। और विजयनगर की संपन्नता का भी एक मुख्य कारण था, क्योंकि महाराज कृष्णदेव राय का भी इस स्थान से बहुत ही गहरा लगाव था। तो अब इससे तेनाली राम का लिंक कैसे होता है बच्चों, ये तो आपको स्थान के बारे में बता दिया, अब तेनाली राम का क्या यहाँ पर चमत्कार होता है, क्या यहाँ पर उसकी बुद्धिमानी काम आती है, वो तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। हमने कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें की है ना, बड़ा मजा आया ना हमारे साथ। तो चलो भाई, अभी पिछली कड़ी में परी ने जो पहेली पूछी थी उसका भी तो जवाब जानना है ना। परी, कौन सी पहेली थी पिछली कड़ी में?
3: बच्चों, हमने पूछा था, दिन में सोता रात में जागता, चांद सितारों संग में सजता, कभी काला तो कभी नीला बनूं, बताओ मैं कौन हूँ।
2: और बच्चों, दिन में देखो उसे तो वो होता है नीला, और रात में देखो तो काला। तो सही जवाब है आसमान। दिन में नीला दिखाई देता है और रात में काला।
3: बिल्कुल बच्चों, सही जवाब है आसमान। तो चलो अब नोट कर लो आज की पहेली, ध्यान से सुनना। बिना मुंह के बोलूं मैं, बिना हाथों के लिखूं मैं, बिना शरीर के सबको सिखाऊं, बताओ मैं कौन हूँ।
2: अच्छा बच्चों, सोचो जरा वो कौन सी चीज है, बिना मुंह के जो बोलती है, बिना हाथों के लिखती है और बिना शरीर के सबको सिखाती है। तो बताओ, वैसे तो सिखाने वाले तो टीचर होते हैं बच्चों, लेकिन वो तो हमें मुंह से बोल करके बताते हैं, हाथों से लिखकर बताते हैं। और कौन सी चीज है जिसको देख करके टीचर पढ़ाते हैं? वही है सही जवाब इसका।
3: हाँ, तो बहुत अच्छी हिंट मनी दीदी ने दे दी। तो बच्चों, तो चलो मोबाइल उठाओ और 9414151415 पर हमको इसका आंसर लिखकर भेज दो।
2: हाँ, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अभी क्या करना है बच्चों? अभी तो भगवान जी को सॉरी और थैंक यू कहना है ना।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो हम भी करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय। सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर
3: सपनों की सर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घनी सा। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुणों को परखता है जिस पर आपको गर्व है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, चावल कौन सी बीमारी को ठीक करता है, कैसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जरूर जानेंगे घरेलू नुस्खों के माध्यम से। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ जो बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। अब क्या वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

उतना ही दान पुण्य करने वाला। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि करता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने के लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं, आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेच करके थोड़े पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुत्तिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। बारिश के दिन थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़ करके नगर में नहीं जा सकती थी कुतिया। व्यापारी को दया आ गई, उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दी। कुतिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हांफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचना चाहता है। व्यापारी व्यस्त था, उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बरोबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनवाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भर करके हीरे जवाहरात रखे, पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह शुरू हो जाए। जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और थैली में रख दिए। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाई और कहा कि इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव से कुछ उधार मांगने को चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते उसने थैली खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहां से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहां है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी, उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इससे इस धन से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिला करके जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो

ईश्वर वे गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके लिए भी कंकड़, पत्थर अनमोल रत्न हो सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुन लेते एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहे और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चावल रांध्या, मूंग रांध्या, चावल रेग्या काचा, चावल रांध्या, मूंग रांध्या।

बना। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये मजाक का गीत था, आप बुरा मत लगाना, मजाक वाले गीत बोलते ना शादी ब्याह में। लेकिन आज मैं आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ चावल पर, तो सोचा कि चलो दो लाइन सुनाई देते हैं। तो चावल कौन सी बीमारी ठीक करता है जरूर आप जानेंगे। देखिए, अतिसार और ज्वर है तो चावल को खिलों को पीस करके सत्तू बनाइए, और आवश्यकता के अनुसार दूध या शहद, चीनी, जल आदि मिला करके स्वादिष्ट इसको कर लीजिए। इसे लाल तर्पण कहते हैं। इसे देश काल और रोगी की दशा के अनुसार सेवन करने से ज्वर, महादत्यय, दाहकता या सीने की जलन, अतिसार, इन सभी में राहत मिलती है। तो अतिसार और ज्वर है तो चावलों की खिलो, जिसको लाजा भी कहते हैं, इसको पीस करके सत्तू बनाइए, और आवश्यकता के अनुसार दूध या फिर शहद या फिर चीनी डालिए या फिर जल, ठीक है, दूध या जल, ये सब मिला करके इसको स्वादिष्ट कर लीजिए। फिर इसको क्या कहते हैं, लाल तर्पण। इसे देश काल और रोगी की दशा के अनुसार सेवन करने से ज्वर, महादत्यय, दाहकता या सीने की जलन, अतिसार आदि में लाभ मिलता है। आधा सीसी सिर की तकलीफ है तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले चावल की खील 25 ग्राम के लगभग शहद के साथ खा करके सो जाइए। ऐसा दो तीन दिन करिएगा, इससे आधा शीशी रोग दूर हो जाएगा। आधा शीशी बोले तो आधा सिर दर्द करता हो उसको आधा शीशी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी तकलीफ है मेरे प्यारे श्रोता बंधु जो लगातार चलती रहती है। अब लगातार सिर दर्द होगा, आधा सिर भी हो तो भी क्या सहन होता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सूर्योदय से पहले ही चावल की खील 25 ग्राम के लगभग शहद के साथ खा करके सो जाइए। ऐसा दो तीन दिन करने से आधा सीसी का रोग दूर हो जाता है। अगर फोड़े फुंसियों की दाहकता है, यदि शरीर के किसी भी अंग पर ऐसा फोड़ा निकला हो जिसमें अग्नि के समान जलन और दाहकता का अनुभव हो रहा हो, तो कच्चे चावल को पानी में भिगो करके सिलपट्टे पर पीस करके इसका लेप लगाइए। इससे ठंडक पड़ेगी और रोगी को चैन मिलेगा। कभी कभी ऐसे फोड़े निकल आते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सहा नहीं जाता, इतनी जलन के ऐसा लगे कि अब क्या करे, कैसे ठंडक पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में चावल लीजिए कच्चे, उसका पानी डाल करके उसके पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाकर इस लेप को आप जहां पर भी फोड़ाए वा लगाइए, ठीक है। तो ऐसा करने से ये जो दाहकता है, ये जलन है, वो ठीक हो जाएगी, ठंडक की अनुभूति होगी, और जिसके भी ये तकलीफ है उसको चैन आ जाएगा कि हाश अब जलन ठीक हुई। और भी सुंदर सा उपाय आपको बता रही हूँ। नेत्रों की लाली अगर है तो सहन करने योग्य गर्म भात, मतलब उबले हुए चावल की पोटली बनाकर सेक करिएगा। वादी एवं कफ के कारण आंखों में होने वाली दर्द युक्त लाली समाप्त हो जाएगी। लेकिन सहता सहता ऐसा नहीं, गरम गरम पोटली भाई आँख का सवाल है, डॉक्टर से राय लीजिएगा और सहता सहता करें, ठीक है। चावल तो हम बनाते ही है, उबले हुए चावल, ठीक है, तो इसकी पोटली बना दीजिए। सेक करने से वादी और कफ के कारण नेत्रों में होने वाली दर्द युक्त लाली समाप्त हो जाएगी। और अगर हृदय की धड़कन चलती है, मतलब धान की फलियों के पौधों के ऊपरी भाग को पानी के साथ पीसकर लेपन करने से हृदय कंपन और अनियमित धड़कन समाप्त हो जाएगी। हृदय की धड़कन बिना कारण ही धड़कती है नियमित, तो धान की जो चावल के धान की फलियों के पौधों के ऊपर, मतलब ऊपरी भाग को पानी के साथ पीस करके लेप करिए, इससे हृदय कंपन और अनियमित धड़कन समाप्त हो जाएगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, मधुमेह व्रण, मतलब चावल के मधुमेह व्रण है तो चावल के आटे में जल रहित गाढ़ा दही मिला करके पुलटिस बनाकर लेप कर दीजिए। ये पुलटिस रोग की दशा के अनुसार दिन में 3-4 बार बदल करके बांध देने से शीघ्र लाभ होता है।
मधुमेह व्रण। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही सुंदर है और आप आजमा सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से राय ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक, चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, हेलो, तो यहीं पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। और
2: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो यही रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहे और मुस्कुराते रहे।
1: जी, आज का प्रश्न पहले सुना रही हूँ। आज का प्रश्न है, विश्व में, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है?

0: आज का विषय है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहिए। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही बात है, अभी चर्चा ही हुई। देखिए, मतलब अपना जीवन कैसे जीना है वो अपन को देखना है, बाकी क्या करे उसकी उसकी तो भावना अपन नहीं बदल सकते, मगर खुद को बदलना सीखिए, खुद को बदलिए। अगर आपने खुद को बदल दिया ना, तो बस यू ही समझिए कि सारे विश्व को बदल दिया, क्योंकि आप खुश है तो कुछ कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिंदगी में। मतलब देखिए, आपने जो भी है प्रतिनिधि, मतलब आस पड़ोस के लोग, वो तो अपन को मतलब दुख देने की कोशिश भी करेंगे, मगर अपना जीवन बदलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा दीदी
0: जी।
1: इसलिए अपन स्वयं को बदलिए, औरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सही है ना
0: जी? बिल्कुल
1: हाँ, औरों को बदलने जाओगे तो वहां दुख मिलेंगे, मगर स्वयं को बदलने की कोशिश करोगे तो वहां सुख मिलेंगे
0: जी।
1: अच्छा, प्रश्न का उत्तर तो अभी दो,
0: अगर आपको समय मिले तो फिर जुड़िएगा, नहीं तो फिर दे दीजिए। हाँ,
1: ज्यादा इंडिया में चीजें आ रही है, एक तो वो देश,
0: आप तो खाली इनडायरेक्टली बता दीजिए तो भी पता चल जाएगा।
1: सस्ती चीजें आ रही है इंडिया में
0: जी,
1: समझ में आ गया?
0: हाँ जी, फिर भी कौन से शब्द से, कौन से मात्रा से शुरू होता है उस देश का नाम? एक मात्रा बताइए खाली।
1: एक मात्रा बता दो
0: जी।
1: अब वो बता दिया तो स्वयं गड़बड़ हो जाएगी।
0: ठीक है, चलिए ठीक है,
1: आपको समझ में तो आ गया होगा ना, मतलब सस्ती चीजें तो वहीं से आ रही है।
0: अच्छा ठीक है, फिर भी हाँ, कोशिश करिएगा वो फिर जुड़ने की, क्योंकि
1: हाँ ठीक है।
0: हाँ जी,
1: और वायरस भी वहीं से आया था।
0: ठीक है, मैं समझ गई, आपका जवाब समझ गई।
1: ठीक है, चलो जय माता
0: दी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय आज का बहुत ही सुंदर है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए आप सुकून से अपना जीवन व्यतीत करिए। हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, भूरीलाल जी कैसे हो?
2: बहुत ही बढ़िया, खुशी के अंदर है।
0: कहाँ खो गए थे इतने दिन, कहाँ खो गए थे?
2: कहीं नहीं खो था, इतना नहीं था,
0: बहुत अच्छी बात है जी। आज का प्रश्न है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है? जी, और आज का विषय है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहे।
2: बिल्कुल खुश रहे और लोगों का दिल जीते रहेंगे, दुनिया भी खुश रहेगी, दुनिया का दिल भी जीतेंगे, खुश रहेंगे नहीं, उनको बिना बात करेंगे, बिना सोचेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, ये हमारा निवेदन है। और वो छीन है क्षेत्रफल में, छीन है
0: जी, अच्छा
2: में छीन है
0: जी,
2: और क्षेत्रफल में रूस।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम अंत में जवाब देंगे। ठीक है,
2: हाँ जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी
2: सुरेश भाई है, गुलाराम जी है, मदन भाई है, धीरेन भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत आभार, सभी सुन रहे होंगे आपकी आवाज। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, और विषय देखिए बहुत ही सुंदर है, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। अब लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते तो फिर क्या करेंगे, आप बताइएगा। हेलो हेलो नमस्कार। कहते हैं ना कि भाई चाह कर भी लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, तो फिर खुद को बदल दीजिए ना। क्यों लोगों की बातों में आते हैं, कोई आपके एक जना तारीफ करेगा तो चार जने आपके आलोचना भी करेंगे, इसलिए आप उनकी धारणा को नहीं बदल सकते। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो उनके लिए जान छिड़कते, फिर भी वो कभी हमें प्रेम देते ही नहीं, कभी हमारी तारीफ नहीं करते, कभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके, उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो नमस्ते, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन, कैसे हो?
3: बहुत अच्छे हैं, बाबा की दुआ से और आपकी भी।
0: हाँ नहीं नहीं, ईश्वर की दुआ, ईश्वर साथ में है तो सब कुछ है, परिवार की दुआ तो खैर चाहिए।
3: हाँ तो देखो इससे भी बहुत अच्छा है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते कभी
0: जी।
3: हाँ दूसरों को बदलने जाएंगे तो हम खुद खड्डे में गिर जाएंगे दीदी। पहले हमको बदलना है, हम बदले हुए होंगे ना। हेलो
0: जी। हाँ जी हाँ जी।
3: हाँ हम बदले हुए होंगे जो हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो हमारी पूरी दुनिया अच्छी लगेगी हमको।
0: बिल्कुल।
3: हाँ तो पहले हमको बदलना है
0: जी। बिल्कुल।
3: और प्रश्न का जवाब तो दे दूँ या
0: अगर दूसरी बार नहीं जुड़ सकते तो दे दीजिए।
3: हाँ तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो देखो सबसे आगे है रूस, और जनसंख्या में भारत देश आगे है हमारा।
0: अच्छा तो ठीक है, देखते हैं सही है गलत है, आप कार्यक्रम सुनिए, हम अंत में जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, विषय को अच्छा स्पष्ट किया है आपने। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। गणपति के दिन भी चल रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी जगह गरबा वगैरह भी होता है, गुजरात में नवरात्रि में गरबा होता है, राजस्थान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां नवरात्रि में भी गरबा करते हैं और अभी गणपति के दिनों में धूमधाम से गरबा करते हैं। तो चलिए बहुत ही आप भी इसका आनंद ले रहे होंगे और विषय भी बहुत ही सुंदर है, तो आप विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न भी आज का बहुत सुंदर है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा देश सबसे आगे है। जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, आज के विषय को स्पष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। चलिए जाते जाते भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो पहले बात करेंगे। हेलो
4: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस बहुत अच्छे दीदी, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप सभी की दुआ से।
4: चलो अच्छा है, दुआ तो एक दूसरे की चलती रही, इसीलिए तो दुनिया टिक रही है
0: जी जी जी,
4: वरना तो हम देखते हैं कहीं कि आज हमारे देश में तो बस दुनिया ही का एक दूसरे की दुआ से चलता रहता है
0: जी।
4: देखो कितने सारे त्योहार आते हैं जाते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो बस अच्छा ही हमारा देश है कि हर दम नए त्योहारों की एक हर बार चलती रहती है
0: जी।
4: तो जैसे आपने जो विषय की बात अच्छा है दीदी कि स्वयं को बदलो सब कुछ बदल जाएगा। अब देखो हम किसी को उपदेश करने के जाते हैं दीदी तो वो सामने से वही जवाब आता है कि आपको अपनी ही बात में अपनी ही कर भी याद करो, हमको समझाने के लिए जरूरत नहीं है
0: जी।
4: तो वही जवाब मिलता है दीदी, ठीक अच्छा है तो ठीक है समझ जाता है, वरना तो किसी के कहने की बात हम करेंगे तो उल्टा हमको भी डांटेंगे। तो किसी को कुछ कहना नहीं है, बदलना तो हमको ही बदलना है, बस ऐसे ही रहेंगे कि जो करना उससे करे, हमको क्या करना है हम नहीं जाने।
0: बिल्कुल,
4: तो आज वैसा ही दीदी, आज लोगों का जो माइंड ऐसा हो गया है, लोगों का एक कुछ ऐसा होता है कि भाई हम सब भले के लिए किसी के कहते, लेकिन कोई सामने वाला तो अच्छा लगता है भाई हमारी ये हो सकता है, हमारे को कुछ सिखाने के लिए आए, लेकिन हमको कुछ सब कुछ सिखा है, हमने दुनिया देखी है, सबकी बात करते हैं
0: जी।
4: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे, बस चलो कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो, हम हमारे हिसाब से जो हम सुनते हैं
0: जी।
4: जो आप तो सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मैं ऑफलाइन में जरूर दूंगा।
0: ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। हाँ जी, और आइए अब यहाँ पर सुन लेते हैं गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में फिर से हम चर्चा करेंगे। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहे, यह तो आज का विषय है। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है। तो जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा और विषय में भी जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। देखिए, हम दूसरों की धारणाओं को तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। हमें पता है कि हम नेक कार्य कर रहे हैं। घर परिवार में अक्सर ऐसा होता है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, घर परिवार में महिलाओं में तू में सबसे ज्यादा इसी बात पर होती है कि एक काम में पिटा जा रहा है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। और कोई सिर्फ बातों में लपेटे जा रहे, लेकिन उनकी तारीफ हो जाती है कि अरे भाई, फलानी बहू तो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत ही हिलमिल के रहती है, भले वो काम नहीं करेगी। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई। ओम शांति।
1: और बहुत बहुत अच्छा विषय चल रहा है।
0: अच्छा, ये बताइए, बॉम्बे से आ गए आप?
1: हाँ, बॉम्बे तो मैं परसों ही आ गया था बॉम्बे से।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, तो दीदी विषय के बारे में बस ये कहूँगा दीदी के मैं अभी 2-4 दिन पहले बॉम्बे गया था, तो कई लोग ऐसे जो भीख मांगते हैं ना, भिखारी कहते हैं ना वो, तो दीदी क्या कहते हैं कि जो अभी बच्चिया 17-18 साल की या 20 साल की आसपास में गोद में छोटा सा बच्चा लेकर भीख मांगती है
0: जी।
1: तो अगर तो बच्चा भी होगा तो पति भी होगा, और इतने जवान लोग होकर भी भीख मांगते हैं, तो मैंने तो कहा, समझाया कि चलो आप इतनी बूढ़े तो नहीं हो गए तो के काम धंधा नहीं, कुछ काम धंधा करिए, अपने ये बच्चे आने वाले टाइम में जो ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे, तो बहुत समझाया। लेकिन जो अभी आपने कहा ना कि जो समझते हैं वो समझ जाते हैं और नहीं समझते, तो ये भी होता है, और कई ऐसे लोग भी होते हैं हम समझाने की कोशिश करें तो नहीं समझते, तो हमें भी यही समझ लेना चाहिए कि चलो वो तो नहीं समझते, पर हमारे जीवन में हम ऐसा कुछ करें ताकि अच्छे हमारा बच्चों का और सभी का हम अच्छे रहेंगे ना, तो हम भी किसी का भला कर सकते हैं। तो ये एक तो ये बात है दीदी।
0: जी
1: जी जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, सही बात है।
1: हाँ दीदी, मैं तो ये कहूँगा कि आखिर मुझे भी समझ में नहीं आया, और मैं ये सवाल ढूंढता हूँ कि आखिर ये जवान होते हुए भी ये क्यों कार्य करते हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य ठीक नहीं रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं।
0: देखिए सुरेश भाई, हमारा भारत देश क्या धार्मिक प्रवृत्ति का है ना, दीन दुखियों को गरीबों को देखते तुरंत ही अंदर दया आ जाती है, उनके प्रति रहम भाव आ जाता है, और हम कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर करते हैं। आप लोगों की आदत पड़ जाती है, जब इजी वे में मिल रहा है तो मेहनत क्यों करें, वो पांचों ही उंगलियां बरोबर नहीं होती ना, ऐसे हर एक के स्वभाव संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं। किसी की आदत पड़ जाती है कि बस मांग के खाओ और मस्त रहो।
1: जो छोटे बच्चे का भविष्य क्या होगा,
0: इतने अगर वो दूर की सोचते तो वो ऐसा करते ही क्यों, उनको तो ऐसा है कि हमारा कट रहा है, बच्चों का भी ऐसे ही कटेगा।
1: तो ये तो चलो उनकी माइंडसेट यही समझ ले।
0: हाँ, बाकी तो जब आप यूथ है तो मेहनत कर सकते हैं। अरे इतने काम चल रहे दुनिया में, इतने काम चल रहे हैं, मजदूरी काम भी मिल सकता है, जो भी कार्य करना चाहो मिल जाता है भाई, योग्यता के अनुसार काम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
1: वही तो,
0: बहुत सारे लोग क्या है कि बस वो मेहनत से कतराते हैं, इजी वे में मिल जाता है तो बस घर घर में मांगना, किसने झिड़क दिया तो क्या फर्क पड़ गया, और किसने दे दिया तो अच्छा ही है, बल्ले बल्ले। कोई कोई देखो आप, बहुत सारी उम्र होने के बावजूद भी वो मेहनत करते हैं, तो अपन देखते हैं तो क्या कहते हैं, देखो कितने मेहनत करते हैं इस उम्र में भी।
1: वही तो, और कई बुजुर्ग वही पर जो इतने अच्छी 90 साल के बुजुर्ग भी कहीं बेचने के लिए कुछ बेटे है ये है वो कर रहे हैं
0: जी,
1: ये भी हाँ ये बातें दीदी लोगों की मानसिकता तो हम चलो बदल नहीं सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं
0: बिल्कुल।
1: इसमें अगर वो
0: कितनी बार आपने देखे न्यूज सुनी होगी समाचार सुने होंगे कि कितने भिखारी जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते तो उनके पास बहुत सारा पैसा निकलता है। तो मतलब देखो भीख मांग करके लाखों करोड़ों जोड़ के जाते हैं, अब क्या काम आया उनके वो पैसा, इससे अच्छा नेक कार्य करो।
1: और वही पैसा छड़ भी जाता है काम का भी नहीं आता, ये भी मैंने देखा है
0: जी। क्योंकि हम किसी के लिए करेंगे तो हमारे लिए वो रास्ता और खुलता जाएगा और हमें मिलेगा।
1: बिल्कुल आपने, चलो मेरे भी मन में कुछ ऐसे सवाल मन में थे तो वो भी दूर हो गए आपके जरिए से। और सभी को मैं कहूंगा कि आप भी जुड़िए और अपना राय व्यक्त करिए और प्रश्न का जवाब मैंने भेज दिया है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेरा से, आपका देखो कंफ्यूजन था। वास्तव में हर एक के मन में चलते है कि भाई आप कमा सकते हैं, आप यूथ है तो कुछ करिए, मांगने से तो मरना भला, ये हम अक्सर कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई की आदत पड़ जाती है, उनकी धारणाएं आप नहीं बदल सकते हो। इसलिए आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव सुख मतलब खुश रहिए। तो वो मुझे नहीं चाहता, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, नहीं क्यों आप टेंशन लेते हो, करने वाला करके भी मस्त है और हम उनका टेंशन से ऊपर नहीं आ रहे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी ना। अरे भाई उसकी धारणा नहीं बदल रही, जाने दो, हम तो भाई जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो गीत है ना। तो आप क्योंकि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें न घबराने की जरूरत है न डरने की जरूरत है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति, ओम शांति। अभय सिंह जी बोल रहे? ओ ज्ञानेंद्र भाई जी, कैसे हो?
2: बढ़िया है, आप तो बढ़िया है?
0: हाँ जी, हम भी अच्छे हैं।
2: तो सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या में भारत है।
0: अच्छा, और विषय के लिए क्या कहेंगे?
2: विषय के लिए कुछ बताएं
0: जी। विषय है आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और सदैव खुश रहिए, क्या कहेंगे आप?
2: जी
0: जी, जी
2: तो अपनी नजर में सही रहना चाहिए, दूसरे की नजर में तो चार लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप सही करोगे तो भी कहेंगे, करोगे तो भी कहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। उनसे तो जितना हो सके उनसे बचके रहो और उन्हें परिवर्तन करो, दूसरे बदलने की वजह है, उनको बदलेंगे बदलेगा, हम खुद रहेंगे
0: जी। जी बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी, ओम शांति जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी, आपने भी बहुत ही सुंदर अपनी बात रखी है। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। घर परिवार में अक्सर देखते हैं ना कि दो दो तीन तीन बहुएं होती, वहां पर एक का दिल दुखता रहता है कि मैं इतना करती हूँ, इतना त्याग करती हूँ सभी के लिए, फिर भी किसी का रवैया

0: मेरे प्रति चेंज ही नहीं होता है, फिर भी जो भी करना है मुझे ही कहते हैं, डांटते भी मुझे ही है और काम भी मुझसे ही लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, उषा बहन जी।
0: हाँ जी, दयाराम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते।
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, और आप सभी आरजी बहनों की और दादियों की
0: जी।
1: मैं इस वक्त बॉर्डर के पास था, जो मैंने बात भी बो के रखी है, तो वहाँ मैं कार्य बात भी कर रहा था, और मुझे भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब खोजी भाई आए अभी
0: जी,
1: तो वो हमारे फेंसिंग के आसपास में जो जो पेड़ होते हैं, कहीं ऐसा कुछ होता है जो कुछ दिखने में दिक्कत होती है तो वो काटते हैं, तो मुझे भी बुलाया है।
0: अच्छा,
1: तो मैं भी जा रहा हूँ, उसके लिए कुछ हेल्प करके आता हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है,
1: और थोड़ी वो हमारी सेवा करती है तो हम उनकी भी सेवा करती है, जो जो भी हमसे हमारे से बनता है वो मदद करती है, जो हमारे योग्य होता है तो वो तो हमारे करना ही पड़ता है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो फौजी भाई चार पांच हमारे साथ रहेंगे और हम जाएंगे, चार पांच बंदे, वो जो छोटे छोटे फ्रिज वगैरह होती है तो कुछ दिखाई नहीं देती है तो
0: जी जी, अभी क्या है, बारिश का मौसम था ना, बारिश के मौसम में अपने आप ही अनचाहे पेड़ भी लग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं
1: जी जी। 2 महीने पहले काटे थे, फिर भी हो गई, बारिश भी उसके बाद फिर भी बड़ी हो गई है, तो वो फेंसिंग के पास से होती है तो उनको साफ सुथरा करती है, तो वो कैमरा में सब साफ सुथरा दिखाई दे
0: जी,
1: इसलिए बुलाया है भाई ने।
0: अच्छा अच्छा,
1: सप्तन साहब भी काटने हैं।
0: अच्छा,
1: और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, तो विषय के बारे में अभी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बुलवाया है।
0: हाँ हाँ, प्रश्न का जवाब दे दीजिए।
1: मैं सवाल का जवाब एक दीदी आज दे दूंगा
0: जी।
1: तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा देश रूस है, और जनसंख्या के हिसाब में हमारा देश नंबर 1 पर भारत है। 147 करोड़ के आसपास अभी हमारी पब्लिक पहुंच गई है।
0: चलिए ठीक है दयाराम जी, देखते हैं आपका जवाब क्या है, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी, रामपुरा से। व्यस्तता के बाद भी जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो बस इस विषय का सार यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, स्वयं को बदल दीजिए। सामने वाले की धारणाओं को आप नहीं बदल सकते, उनकी धारणा जो हमारे प्रति है सो है, हम सही है, हम सही कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे सामने वाला कितना भी छटपट आए। और अगर हम ही गलत हैं तो अपनी नजरों में हम गिर जाएंगे सबसे पहले तो। हेलो हेलो,
2: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते, कैसे हो?
2: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी।
2: और आपने जो प्रश्न पूछा है इसका अभी जवाब दे सकता?
0: दे दीजिए दे दीजिए।
2: हाँ, तो क्षेत्रफल के अंदर रशिया बड़ा है, और पहले अपने जन बस्ती के अंदर तो पहले चीन था, लेकिन अभी अपने अपना भारत है।
0: चलिए ठीक है फिरोज भाई, देखते हैं आपका।
2: और
0: हाँ जी,
2: बस एकदम अच्छे है। और एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं, मोहब्बत खुदा खुदा की मोहब्बत का फरमान हूँ मैं, खता अगर हो जाए तो बख्श देना यारो गलतियों का पुतला, एक इंसान हूँ मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। विषय के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विषय है, आप जाकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिए और खुश रहिए।
2: बराबर है, दूसरों की गलतियां अपने को देखना नहीं है, और अपने अंदर कितनी गलतियां हैं वो देख के अपने को चलना है, और खुशी से अपने को अपने खुशी से अपना जो जीवन बिताना है अपने को
0: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: देखो देखो बहन जी, के बदी का अंत है कहीं आस पास, नेकी का अंत नहीं, किताब नेकी की पढ़ले बंदे, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं।
0: बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी।
0: तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और बस कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, दूसरों की धारणा हमारे प्रति कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना है, नेक कर्म करना है और सही मार्ग पर चलना है, फिर चाहे किसी की भी धारणा कैसी भी हो, उनको बदलने की हमें जरूरत नहीं है. हमें नहीं छटपटाना है कि वो ऐसे वो ऐसे वो क्यों नहीं बदल रहे, क्यों हमसे प्रेम नहीं करते, क्यों हमको मतलब हमारी भावनाओं को क्यों नहीं वो महसूस करते. कुछ करने की जरूरत नहीं, समय सब कुछ सिखा देगा. बस आप अपनी खुशी को गायब मत करिए और हमेशा खुश रहिए. यही खुशनुमा जीवन का राज है. और आज का प्रश्न है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है. जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15. फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: बहन जी, वो आप बोले थे वापस फोन करना, तो इसीलिए किया है।
1: आप ऑफ एयर जुड़े थे, हमने कहा कि 2 मिनट के बाद फोन करिएगा, ऑन एयर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़े नहीं। विषय तो समाप्त हो गया, कोई रेसिपी आप देना चाहेंगे?
0: नहीं, रेसिपी तो ये अपने वो क्या
1: करेगा। कुछ आपने जीवन में कुछ बनाया हो तो आप सिखा सकते हैं सबको।
0: अभी ऐसा तो सीखा तो क्या, अभी बाहर पूना में 30-35 साल सर्विस किया, वहाँ कभी हाथ से बना के सब सब्जी हाथ से बना के खाते थे, वो ऐसे किया सब्जी ये बनाने को आती है।
1: हाँ तो कोई भी सब्जी बना दीजिए, सिखा दीजिए सभी को सात्विक सब्जी।
0: तो भी इतना क्या बनोगे,
1: कभी जीवन में बनाई हो तो सिखा दीजिए।
0: नहीं नहीं बनाई बोले तो पूरा 40 बरस निकाला, उधर कभी फैमिली साथ में रहते थे, कभी नहीं रहते थे, कभी अकेले रहते थे, कभी नाम आते ऐसे मतलब नहीं रहते थे, जब आते बना के खाते थे।
1: जी जी जी जी,
0: बनाने आती है, दाल भी बनाने आती है।
1: जी जी जी जी,
0: कभी नाश्ता पुआ हुआ सब बना देते हाथों में।
1: क्या बात है, फिर तो पोहे ही सिखा दो।
0: अभी सिखाना क्या, अभी तो आपको बोल रहा हूँ बातों को क्या
1: बोलूं।
0: चलो आप आते रहे, तभी सुनेंगे अभी हम।
1: अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो चलिए ये थे भुराराम जी ओर से। अगर आप लोग भी कोई भी रेसिपी सिखाना चाहते हैं तो जरूर सिखाइएगा, है ना, हमें बता दीजिए कि हम सिखाना चाहते हैं। हेलो, तो मैं आज आपको, देखिए अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं, गणपति जी के किस किस का भोग लगाते वो चीजें ही सिखाती हूँ। मीठी चीजें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं आपको सिखा रही हूँ बेसन का लड्डू, ठीक है, क्योंकि बेसन का लड्डू ऐसा है कि गणपति जी के भोग में भी चढ़ता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आजकल थोड़ा सा बच्चों का फास्ट फूड पसंद करने लगे हैं, लेकिन फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभार तो खाएंगे ना भाई, बड़े भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करवाओगे। तो आइए मैं आपको बेसन का लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो होती है ना उसको आप, चले सामग्री बता देती हूँ, चने की दाल, घी, पीसी हुई शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, तो ये हो गई सामग्री, चने की दाल, घी, चीनी, मतलब पीसी हुई शक्कर को चीनी कहते हैं, ठीक है, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। अब बनाने का तरीका सिखाती हूँ। आप धीमी आंच पर कढ़ाई में चने की दाल सेकिए, मतलब धीमी आंच में आपको सेकना है, अगर आंच तेज करेंगे तो ऊपर से तो दाल काली काली हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक है, इसलिए कढ़ाई गर्म करने तक आप भले थोड़े से तेज रखिए, मध्यम, कढ़ाई का पेंदा थोड़ा मोटा होता है ना, तो पेंदा गर्म हो तब तक आप मध्यम आंच पर रखिए, फिर चने की दाल डालने के बाद धीमी आंच पर इसको सेकिएगा, सेकने की मेहनत है, ठीक है, लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे लेकिन सेकना तो पड़ेगा, तो धीमी आंच पर आप सेकिए, अच्छी तरह हिलाते रहिए, सेकिए बीच बीच में, आप अपना भी काम कर सकते हैं दूसरा, और इसको भी हिलाते रहिए बीच बीच में, और जब खुशबू आने लगे वैसे पता चल जाएगा, एक तो कच्चे कोई भी चीज़ होती उसकी खुशबू पके हुए की खुशबू अलग ही हो जाती है, तो हल्के हल्के रेड दाने होने लगे समझ जाइए कि चने की दाल सिक गई है, ठीक है, उसको निकाल दीजिए, फिर इसको पीस लीजिए मिक्सर में, थोड़ी ठंडी हो जाए दाल मिक्सर में पीस लीजिए, पीसने के बाद अब इसमें घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स सब डाल करके अच्छी तरह इसका मिक्स कर दीजिए और फिर लड्डू बना दीजिए, जो साइज पसंद करते हैं लड्डू बना दीजिए और बस लगाइए गणपति जी के भोग। तो आप इस तरह बेसन के लड्डू बना सकते हैं जो गणपति जी के भोग में चढ़ता है, बूंदी के लड्डू भी चढ़ते हैं, बेसन के लड्डू भी चढ़ते हैं, मोदक भी चढ़ता है, चूरमा का लड्डू भी चढ़ाते हैं हम, और पेड़े भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह गणपति जी को रोज, क्योंकि 5 दिन हम लाते हैं घर पर बिठाते हैं, तो 5वें दिन भोग लगाते हैं, आरती पूजा सब करते हैं और भोग लगाते हैं, तो बहने क्या करती है घर पर ही बनाना ज़्यादा पसंद करती है, ऐसे भले वो बाहर से लाते होंगे लेक

गणपति जी को घर पर बिठाते तो एक भावना और भी बढ़ जाती है ना, तो लगता है कि नहीं मैं अपने हाथों से बनाऊं प्रसाद और हाथों से बना करके चढ़ाऊं गणपति जी को और फिर सभी भक्तों को बांटूं। तो इस तरह आप लड्डू बनाकर गणपति जी को चढ़ा सकते हैं, फिर बांट सकते हैं। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है? भोग लगाने के बाद ही खाना है। और अभी तो गणपति जी के दिन चल रहे हैं, तो गणपति जी का भोग लगाइए, भक्तों को भी बांटिए, आप भी खाइए। तो ये बन गए बेसन के लड्डू। और आइए फिर से ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, चावल कौन सी बीमारी ठीक करता है आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो बेसन का लड्डू बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा देश और जनसंख्या में कौन सा देश सबसे आगे है। तो बहुत ही सुंदर आप सभी ने सही जवाब दिया है, एक आध श्रोता बंधु को छोड़कर के बाकी सभी ने सही जवाब दिया है। भारत की जनसंख्या, देखिए क्षेत्रफल में रशिया सबसे आगे है और जनसंख्या में भारत देश सबसे आगे है। भारत की जनसंख्या 148 करोड़ है और रूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, माने 17,98,242 वर्ग किलोमीटर है। तो आप सभी का जवाब सही है। पहले तो मैं जवाब के लिए तालियां बजाना चाहूंगी। अब मैं नाम सुनाना चाहूंगी जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, उनका नाम सुनाना चाहूंगी। सुरेश भाई धानेराव से आपने सबसे पहले जवाब दिया है और आपका जवाब सही है। फिर दीपा जी कप्पासन से, अलका जी कप्पासन से आपका जवाब भी सही है। भूरीलाल जी मानपुर से आपका आधा जवाब सही है, आपने कहा है कि भारत देश सबसे आगे है, नहीं चाइना सबसे आगे है। रशिया का तो जवाब सही दिया है लेकिन चाइना सबसे आगे है, लेकिन चीन नहीं, अभी भारत देश आगे है। फिर सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, सगुना बहन जोटाना से, भूरा राम जी और से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, ज्ञानेंद्र जी यादव, सुरेश भाई धानेराव से बोल गई, दयाराम जी रामपुरा से, फिरोज भाई पालनपुर से। आप सभी का जवाब भी सही है और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए भी डेढ़। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी, आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। कर्म परछाई की तरह सदा हमारे साथ रहता है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म की शीतल छाया में चलो अर्थात श्रेष्ठ कर्म करो। अब मैं आपको गणपति पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM यहाँ।

कि तुम ही तो लाज बचाते, अब लाज आज रख मेरी भी, अब लाज आज रख मेरी भी। संकट ने मुझको घेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। हे मात तुम्हारी पार्वती, शंकर जी पिता कहाते, तुम मूषक चढ़ के आओ गन।

प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। जो सच्चे मन से करे ध्यावना उनके काज बन जाते, जो नर न करे पूजा तेरी वो सफल नहीं हो पाते। उषा किला

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: का अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरी साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: हे राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
8: अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
9: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग।
10: पढ़ाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
11: जी भैया लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहो मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
10: कर्म अच्छे हो वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
11: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
10: ओ अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
11: देखा लाइव प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
0: हेलो दीदी, अब
11: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
0: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
11: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
12: दीदी रोहन के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
11: क्या?
10: हे भगवान।
11: शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है।
0: हाँ दीदी सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया, जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
12: 2 दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे और कल ही उनका कॉल भी आया था, बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे।
11: मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने।
0: अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है।
11: अच्छा अब ठीक है भैया, जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
0: हाँ दीदी जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
11: देखा भैया, सुना आपने?
10: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
11: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
10: हाँ दीदी, सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।

आज जमाना बदलने का समय है। बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते। इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है। तो हमें बहुत खुशी मिलता है सबसे मिलते, तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते। तो आज हमें खुशी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआ में हम पहुंचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं, और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में। और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, बीरबर आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है। और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा, क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज से होगा, भले हमारा वीडियो नहीं लेकिन आवाज लगेगा। तुम्हारा हूँ नाम
1: कुमारी, फुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम फुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजाबेन।
0: जीजाबेन बहुत अच्छा।
1: इंद्राबेन।
0: इंद्राबेन कहाँ से तुम? कौन से गाँव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के? सब बगेरी, तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं ना, सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता टाइम पर।
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता है, यहाँ पर सास बैठे होंगे, है ना? सास है क्या ये? हाँ, इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गनगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदाय के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुंचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले। और हमारा साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में ये जो गीत गाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत है?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना, दोनों का लड़का वाले ना लड़की में लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप? लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जे ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराए घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से पेयर घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर? जाएगी तुम?
1: नहीं
0: जाएगी क्योंकि इतना दुख दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराए घर, इसलिए लड़की को छोकरी को पराए सोचते हैं, लेकिन पराया नहीं है। फूली हमारा होशियार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए बोलते भाई हम ससुराल घर नहीं जाएंगे, माँ बाप को दुख क्यों दूँ ऐसे। हाँ चलिए कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारा जो आवाज में जो मिठास है एक के बाद एक गीत मिलेगा। जब भी आदिवासी अंचल में जाते हैं, चाहे बगरी हो, चाहे धमसरा हो, चाहे फूला भाई खेड़ा हो, चाहे

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

만다우엔게

तो श्रोता मित्र ग्रामवासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है। इस तरह मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमें सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मानकर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर इधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस आस्था से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिलती, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं, इसमें मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत, मेला जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं कुछ लेते हैं छोटा सा, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए, उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो जाते हैं आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने, इस तस्पर से उसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोल भाई ये उनका देन है, भावना है, बोला हमारा माता है बहन का भी आवाज आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
2: सुमित चौहान।
1: सुमित चौहान, वाह, कहाँ से आप आए?
2: यूपी।
1: यूपी से आए हैं, वाह, इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
2: काफी सालों से हो गए, 1.5 साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा लगता है। जी। बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते हैं।
2: शिव ही शक्ति है, हर जगह शिव ही शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से जितना मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव से जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही है, शिव सिर्फ एक ही है।
1: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वर विश्वविद्यालय का जो बगर स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, जैसे अपना इंट्रोडक्शन में बताया। और जो बगर में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता है 4-5 एकड़ का जमीन है।
2: हाँ, कम
1: से
2: कम
1: यहाँ से पानी, यहाँ पूरा मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
2: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता, पवित्रता और हरा भरा मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब भी लोग सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई देखो हर जगह जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
1: यहाँ पर हम देखे पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल हर सीजन में फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
2: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब, गुलाब के पौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब, तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
1: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
2: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया वो चूहते थे,
1: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
2: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, नहीं अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले का मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए, बड़ा आराम से मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
1: जी जी,
2: जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
1: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
2: ये मेरी मम्मी माता श्री।
1: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
2: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप है और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थी उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
1: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा, श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़के हो,
2: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती हैं। देखो माँ का प्यार माँ ही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माँ ही होती है।
1: इसमें माँ का अवदान को कभी भूलने पे, एक तो घर में जैसे लोग की माँ है, ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
2: पिता तुम्हें पिता ही है वो सब, मतलब
1: परमात्मा का कृपा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्योंकि जब इस तरह आकाशवाणी में आते हैं टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन चलो हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज़ को भी दुनिया सुन रहे हैं, क्यों हम क्या कहना चाहते चाहे गीत का माध्यम से हो। जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं माता पिता का, क्योंकि उनका देन है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए, हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा, और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं वो देते रहते हैं, तो प्रकृति के बारे में पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
2: पेड़ पौधा देखो सबको लगाना चाहिए, पेड़ पौधे से क्या है जो आप हमारे ये वृक्ष देख रहे होंगे, आप आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी कितना सारे
1: 6 फुट 7 फुट है,
2: हाँ अब देखो कितने फल लगे हैं, अब यहाँ जो इतने पौधे लगे इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं आजकल, तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से, अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर, अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा कूलर की हवा पंखे की हवा बस यही है, अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसे चलता है बस चलने दो,
1: सभी का सोच ऐसे होने से चलने दो भाई, हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
2: साथ ऐसा सबका विकास
1: ऐसे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा जो आने वाले पीढ़ी को उनके लिए भी तो रखना चाहिए ना, हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपना लालच का चलते ग्रीडी होकर हम ले लेंगे, तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा,
2: ये जब
3: बारिश भी नहीं होगा टाइम
2: कुछ टाइम पर ना बारिश होगी ना कुछ होगा, अभी देखा होंगे कितनी अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई ये हो गया, प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती, अगर जब बारिश नहीं होगी जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी, पर यही है कि अब मैं यही कहूंगा कि ठीक है जो भी है
1: ठीक है, इतना नाराज आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया, और फल फ्रूट्स
2: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं, और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान हो ये वो हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा का मतलब गौ माता की भी अपने मात पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब आप अपने से बड़ों की इज्जत करो, आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, अब
1: इसका कारण वजह क्या है क्यों ऐसा करते हैं, ये तो खराब है ना,
2: ये तो खराब है बस वो क्या समझाए, यही तो है ना कि मतलब जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले हमें अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से अच्छा दे रहे हैं, जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा,
1: जैसे संग ऐसे रंग,
2: जैसे संग वैसे रंग
1: जैसे पानी
2: जैसा देश वैसा भेष,
1: जैसे पानी वैसे पानी,
2: वैसे पानी
1: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या निकलेगा,
2: आजकल तो इतने शराब इतने स्टूडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सब ये शराब
1: तो हो रहा है, इसलिए कला क्लास का अच्छा दुनिया हलाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे, इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा, तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें, इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे, तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने कहेंगे, माताएं बोलते वंश मोर हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे हैं, माताओं को भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी है, आज बड़ों का साथ छोटे भी कम नहीं है, हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो, क्या नाम है?
1: फुली कुमारी।
0: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
1: 11वीं में।
0: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास, और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं, और बाद में तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
1: पापा, मम्मी, बहने, भाई।
0: कितना भाई कितना बहन?
1: 7 बहने 1 भाई।
0: बाप रे, 7, हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है। और शक्ति सेना का, पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
1: हाँ।
0: अरे वाह, पैसा कहाँ से आता है इतना बहन को पैसा? पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते हैं?
1: काम करते, पाइपलाइन का।
0: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ।
1: सोनिया।
0: सोनिया कौन सा क्लास हो?
1: 7वीं
0: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
1: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
0: हाँ, चंडेला, सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का? बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गांव बताओ?
1: तेलपुर, अम्बावीरी, गिरवर, गिरवर बाट और चनार।
0: अम्बावीरी,
1: अम्बावीरी बोला
0: बोला था। अरे वाह। और तेलपुर फली
1: बोल दिया।
0: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम। सुनीता मैडम जानते हैं?
1: नहीं मैडम आए।
0: अच्छा, और एक छोटी सी कन्या है। हेलो, क्या नाम है?
2: सिरमी।
0: हाँ, कौन सा क्लास?
2: 7वीं।
0: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
2: कपड़े और खाने का।
0: वाह, बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ऐसे एक को देखकर एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, भाग लेते और अपना बात को रखते। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया।

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूँ आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार अब ये मौका मिला है कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए और एक शानदार कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो हम हर बार कोशिश करते हैं कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ को, अलग अलग सिचुएशंस को आप सबके सामने ले करके आते हैं इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से, और ऐसी ही कोशिश हमारी आज भी होने वाली है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आप सबको ये प्रोग्राम पसंद ज़रूर आएगा। बाकी तो आप सबकी प्रतिक्रियाएँ बताएंगी, और अब कोशिश ये भी रहेगी कि अगर हमें हमारे मेहमान मिलते रहेंगे तो प्रोग्राम रेगुलर होता रहेगा। खैर, आप सब जानते हैं श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम एक ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसको सिर्फ ये सोच करके प्रस्तुत किया गया था कि एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में परिवार का, सोसाइटी का या उसके आसपास के माहौल का क्या रोल होता है, और वो किस तरह अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि जॉब मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जीवन साथी की तलाश और उसमें भी एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर को पाना, ये तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, और एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी में तो ये होता ही होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं। इनकी जिंदगी के 25 साल शायद किसी और कहानी को कहते हों, और बाद के 25 साल हो सकता है किसी और कहानी को कहते हों, लेकिन सवाल वही है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान को रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेटेड भी रहना चाहिए, और उसके लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम किन से मिलवाने वाले हैं। श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका हमराही प्रोग्राम में स्वागत है, और आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर चिराग मित्तल सर, और एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मित्तल मैम। तो चिराग सर और मोनिका मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
3: थैंक यू।
1: मैं चाहूंगा सबसे पहले चिराग सर, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं।
3: जी, संदीप त्रिवेदी जी का नमस्कार, और रेडियो मधुबन का थैंक्स कि उन्होंने हमें आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया। मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मोना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, दिल्ली NCR। एक साल से कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 और शेयर ट्रेडर।
1: जी, क्या बात है सर। तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है।
3: मैं संदीप जी रेटिनोसिस पिगमेंटोसा ब्लाइंड हूँ।
1: ओके।
3: तो जब पैदा हुआ तो बहुत रेटिना में काफी छोटा डैमेज था जो एज के साथ बढ़ता गया, और बाय एज ऑफ अराउंड 30 आई गॉट ऑलमोस्ट 100% ब्लाइंड।
1: ओके, 30 साल की उम्र में आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गए।
3: जी।
1: ओके, तो आरपी का तो सर सुना है कि मतलब कोई इलाज है नहीं शायद, इसके बारे में आपने कितना कुछ पता किया सर, या आपकी फैमिली ने क्या कुछ जाना समझा?
3: दिल्ली में एम्स मूलचंद से लेके साउथ में एलवी प्रसाद से लेके USA के डॉक्टर्स, काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, जो टेस्ट हो सकते थे सारे करवा लिए। एक ही सवाल बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बस 5 साल में इलाज आ जाएगा। 5 के 50 साल तो मेरी जिंदगी का ही हो गया, आज तक कोई इलाज आया नहीं है, और डॉक्टर्स का जवाब अब तक सेम है, आई डोंट नो।
1: जी, थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि आप बेसिकली मतलब कहाँ से हैं।
3: इंटरेस्टिंग। देखिए मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मामी स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों ही क्लासरूम के असिस्टेंट ऑफिसर्स थे। और मेरा बचपन की आप बात करें तो मेरा बचपन एक राजकुमार की जिंदगी से कम नहीं था।
1: वाह,
3: डबवाली, फतेहाबाद वगैरह में जब पापा जब क्लास वन एग्जीक्यूटिव एक्सिन होते थे तो क्योंकि मैं लिटिल बहन हुआ तो उस टाइम पर मैं बाइक कार वगैरह भी चला लिया करता था छोटे होते।
1: अच्छा।
3: तो उस टाइम पर अपना साथ में गन्स, गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड्स,
1: क्या बात है,
3: अपने पिक्चर हॉल में अपना शो सेट करवा लिया, किसी फार्म हाउस से कुछ भी उठा लिया, समथिंग लाइक दैट। पूरा का पूरा उस टाइम पे प्रिंस की तरह लाइफ थी। और मेरे डबवाले स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे श्री रणवीर सिंह, वो कहते थे कि चिराग, योर फादर हैज मेड यू इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट टू मेंटेन दिस पोजीशन यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
1: राइट, बिल्कुल सही कहा सर उन्होंने कि उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तो सर जब इतनी अच्छी पोजीशन थी तो मतलब जो थोड़े दबंगई टाइप जो माहौल होता है उसमें भी कभी पड़े आप या नहीं उससे दूर ही रहे?
3: हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है, यू आर राइट। स्कूल में एक दो बार कान खींचा, स्टेज पे बुलाया गया था करने के लिए क्योंकि असर आ ही जाता है वो सब करने में।
1: जी जी जी जी जी।
3: बट इसका कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए कि ज्यादा उस ग्रुप के अंदर में ज्यादा गया नहीं, हालांकि मैं अपने टाइम में टाइकोंडो चैंपियन रहा था ब्लू स्ट्रिप के अंदर में, कराटे वगैरह करने का तो ये शौक हमेशा रखता था
1: जी।
3: बट ठीक है, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है हमेशा।
1: जो गवर्नमेंट जॉब मिला आपको पहला वो किस एज में मिला?
3: 2016 40
1: की एज में। जनरली इस एज में आते आते लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं या मेहनत करना कम कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा और आखिरकार जो एक अच्छे से अच्छी पोस्ट होती है उसको हासिल किया।
3: उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोनिका मोना को जाता है जो मेरे साथ बैठी हुई है।
1: बहुत बढ़िया, तो फिर इस पे चर्चा फिर आगे करेंगे जरूर।
3: क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे तो जैसे फादर साहब ने मेरा बिजनेस सेटअप करवा दिया था, साइबर कैफे और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कोचिंग का, और जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लाइन गई तो मोनिका ने बताया कि तो फैमिली के पास कुछ रिसोर्सेज भी थे बिजनेस फेल होने के बाद, कुछ सालों के बाद में जब बिजनेस चले शुरू हो गई, वो कह रहे थे कि आप कुछ और बिजनेस सेटअप कर लो। पर उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि बिजनेस सेटअप करोगे पहले की तरह ये वाले फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस कर चुका था, 8-10 बिजनेस में कर चुका हूँ, साइबर कैफे, वीडियो गेम, शेयर ट्रेडिंग का टर्मिनल, एम इंडिया का मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स और उसके अलावा भी कई तरह के जो काफ़ी टाइम चलाए हुए बिजनेसेस। तो उन्होंने समझाया कि आप, उन्होंने मेरी कमजोरियों को नहीं क्षमताओं को पहचाना है, कैपेबिलिटीज को पहचाना। उसने कहा कि आप में टैलेंट है, आप क्वालिफाई कर सकते हो जॉब्स को ब्लेंड होने के बाद में, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करो। और योर एफर्ट एंड कोऑपरेशन, रिजर्वेशन की एज रहते रहते सरकारी गाड़ी में सवार हो गया।
1: क्या बात है, बहुत जबरदस्त सर, बहुत मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि अब मोनिका मैम का जिक्र चला है तो हमारे श्रोताओं को अब मोनिका मैम से भी मिलवा देते हैं। जी मैम, एक बार फिर आपका स्वागत, और जरा आप भी अपनी जर्नी और अपने बारे में बताइए प्लीज।
2: धन्यवाद सर। जैसा कि बताया, मैं चिराग की वाइफ मोनिका हूँ, और जब मेरी शादी के लिए ये आई थी मुझे देखने के लिए, तो मुझे पता था कि आप ही है और थोड़ा सा आईज विजन में प्रॉब्लम है, बट तब भी जब ये बात इज लाइक हमारे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है लाइक लड़की का, कि इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तब मैंने रियलाइज किया कि बहुत टैलेंटेड है।
1: अरे वाह, उन क्वेश्चंस को पूछते ही आप समझ गए।
2: हाँ, तभी मैंने समझ लिया था, एंड तो मैंने कहा शादी करनी है तो यही करनी है मुझे।
1: अच्छा।
2: तो तब मुझे लग गया था, और तब साइबर कैफे था इनका। अच्छा, तब भी बहुत 2001 की बात है, तब कंप्यूटर्स आए थे हमारे यहाँ नेट, तो तब लगा कि हाँ ये बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो बहुत अच्छा सा रन कर रहे हैं। और 10 साल के बाद धीरे धीरे नेट हर घर में आने लगा, इंटरनेट फिर बंद होने लगा
1: जी।
2: तब मैंने देखा कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा है, आईक्यू बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत जबरदस्त है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 24 आवर्स आप किसी भी बिजनेस में दोगे और उसके बाद आप उसके अंदर एड ऑन करते चले जाओगे, लेकिन जहाँ हो वहीं की वहीं रहोगे। तो आप इससे अच्छा 24 आवर्स स्टडी में दो और कोई अच्छी पोस्ट लो। अब इसमें भी ट्विस्ट है सर, जब मैं छोटी थी तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनके पापा SBI बैंक के अंदर मैनेजर थे।
4: अच्छा।
2: तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी किसी SBI मैनेजर से हो, तो मिलती है घूमने के लिए।
4: जी।
2: तो मेरा ये था कि SBI वाले बड़े अच्छे क्रीमी लोग होते हैं। शादी के बाद मैंने इनसे कहा कि आप बैंक की तैयारी कीजिए और 100% आप उसमें निकलेंगे और SBI बैंक के ही एग्जाम्स देने आपको।
4: अच्छा।
2: छोट भगवान ने उसमें इनका रिजल्ट आया, पास हुए, असिस्टेंट मैनेजर लग गए सर।
4: जी।
2: दूसरा ट्विस्ट ये कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की शादी से पहले प्रोफेसर थी सर।
4: अरे क्या बात है।
2: तो मुझे हुआ कि ये इतने पॉलिटिकल की इनको नॉलेज है, न्यूज वगैरह जितनी भी चैनल्स देखते थे इनको हर चीज की नॉलेज थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम्स दो, नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं आप और आप प्रोफेसर लग जाएंगे सर। वो एग्जाम भी दिया, SDET, CTET, नेट, सारे एग्जाम से क्लियर करते चले गए सर। मैं बुक्स रिकॉर्ड करती थी, ये पढ़ते थे और ये मार्क्स लेते चले गए। जो सपने मैंने देखे ना सर, वो सब इन्होंने पूरे किए सर।
4: गजब, बहुत ग्रेट मैम। लेकिन वो आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग थी तो फिर मैडम पढ़ते नहीं तो करते भी क्या। इसीलिए तो नहीं, वो स्वीट हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मतलब इतने हम्बल कैसे हैं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
2: सॉरी सर, हम्बल तो आप भी बहुत हैं सर।
4: जब भी मैं नई फैमिलीज के साथ मैम इंटरेक्शन करता हूँ तो आप दोनों से तो मेरी मुलाकात हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और मुझे थोड़ा ये था कि मैं ये प्रोग्राम कर भी पाऊंगा कि नहीं, 1 घंटा बिता पाऊंगा कि नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं मजा आएगा, बात करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, तो मैम आप थोड़ा सा बताएं, आप भी हरियाणा से हैं या कहीं और से हैं?
2: सर मैं राजस्थान से हूँ।
4: क्या बात है, गजब मैम, हम भी राजस्थान से।
2: क्या बात है सर, राजस्थान में कहाँ से सर?
4: मैं अजमेर में हूँ।
2: क्या बात है सर, तभी तो राजस्थान वाली होते ही बहुत मीठी है ना सर।
4: ये जो रेडियो चैनल है ये भी राजस्थान में है, रेडियो मधुबन माउंट आबू में, आपने नाम सुना ही होगा और गए भी होंगे शायद।
2: आप
3: बागड़ी में ही बात कर सकते हैं।
2: मारवाड़ी में सर।
3: मारवाड़ी में,
4: मारवाड़ी। लेकिन राजस्थान और चाहिए ना सर, कि अपने यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो खैर, तो राजस्थान में कहाँ से हैं मैम?
2: सर गंगानगर से।
4: श्री गंगानगर, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए मैम कि पॉलिटिकल साइंस से आप तो पहुंच गए ये जो प्राइवेट सेक्टर है, MD बन गए आप, और सर जो है कैफे चलाते चलाते पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, तो ये इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या?
2: तो कहानी तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था
4: जी,
2: और चिराग कर रही थी बीकॉम बीबीए, MBA कर रही थी बीबीए के बाद। तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं और मुझे था कि ये उसमें क्रैक कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं है विद JRF।
4: जी मैम।
2: तो इन्होंने वो क्लियर किया, तो ऐसी जर्नी बनी कि मैंने जब इनसे कहा कि आप पॉलिटिकल में कीजिए, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। उसके लिए वापस से 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BA, MA, ये सब इनको करनी पड़ी सर, BEd, MEd, सब कुछ।
4: ये बहुत बड़ी बात होती, नहीं तो लोग करते नहीं है इतना, तो छोड़ देते हैं लोग तो। जी मैम।
2: इनकी डेडिकेशन इतनी जबरदस्त थी सर, सुबह 4 बजे उठते और 8 बजे तक अपनी स्टडी करते, 8 बजे शॉप पर जाते सर, रात को 10 बजे वापस आते। सिर्फ सुबह के जो 4 घंटे होते थे उसके अंदर इन्होंने अपना 100% दिया, जो भी आते हैं अपनी मेहनत से हैं सर
4: जी।
2: मतलब मेरे तो सिर्फ सपने थे, कहते हैं ना बच्चों के साथ माँ बाप अपने सपने पूरे करते हैं, बट मेरे तो हस्बैंड ने ही ये सपना पूरा कर दिया। तो बच्चे अपना करें ना करें, मेरी लाइफ सेट है सर।
4: आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर ही हो रहे हैं।
2: सर ये सब सपने मेरे छोटे होते के थे, बड़े होने के बाद मैंने कहा कि देखो ये सब बचपन के सपने थे, आपने पूरे कर दिए, अब बड़ी हो गई हूँ, सपने भी बड़े हो गए हैं, आइए इसका एग्जाम दीजिए आप सर। वो भी दिया इन्होंने, वो भी क्लियर किया सर।
4: ग्रेट।
2: पर वो था कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा थी, तो किसी ने सजेस्ट किया हमारे अंकल की प्रोफेसर की जॉब ठीक है, इसमें ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, और एक टाइम 2 बजे के बाद तुम फ्री हो जाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो ये प्रोफेसर की जॉब रखो।
4: जी मैम,
2: हमने SBI भी छोड़ दिया, IAS वाला भी छोड़ के सिर्फ प्रोफेसर पे फोकस किया।
4: और भी कोई मैम सपना बचा है?
2: अभी सपना सर आप तक बताऊं तो एक सपना और था बचपन का, वो भी देखो।
4: जी,
2: वो भी ये था कि फॉरेन ट्रिप अगर मुझे लगाना है तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाऊंगी सर, और कहीं नहीं।
4: क्या बात है, ग्रेट।
2: चिराग जी ने मुझे कहा कि थाईलैंड चलो, मॉरिशियस चलो, और अपने आसपास के जितने भी हैं यहाँ पे चलो। मैंने कहा नहीं, स्विट्जरलैंड। कहते ठीक है। फिर जो फॉरेन ट्रिप लगा उसमें सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड पे ही पैर रखा सर, वो सपना भी इन्होंने पूरा किया सर मेरा।
4: मतलब लगभग सारे सपने हो गए पूरे
2: सर। एक सपना और था, गाड़ी चलाना सीखना, वो भी चिराग ने सिखाई मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल की गुड़िया थी हमारी, गोद में लेती थी मैं। चिराग को कम दिखाई देता था बट फिर भी मैनेज करके, और एक खाली ग्राउंड में ले जाते थे गाड़ी को, वहां मुझे दे देते थे। और मुझे लगता था डर कि अगर ये गाड़ी कहीं लग गई तो पापा क्या बोलेंगे।
4: हम सही है, मैं
2: पापा से छुप कर गाड़ी सीखते थे सर। पापा को बताया चिराग ने कि मैंने मोना को गाड़ी सिखा दिया, अब आप देख लो, फाइनल टेस्ट देना है तो दे दो। तब उन्होंने देखा, कहते ये कब सीखा, कहते मैं शॉप पे आता था, सिखा दी इनको गाड़ी। और सर आज गाड़ी इतनी बढ़िया चलाती हूँ, टच वुड कभी किसी के साथ भी नहीं लगी मेरी गाड़ी।
4: बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: सारे सपने सर चिराग जी ने पूरे किए सारे।
4: ग्रेट, मतलब क्या कहें, ये तो एक ऐसा बहुत रेयर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, लेकिन वाकई में ईश्वर की बहुत कृपा है आप दोनों पर, ये अच्छा लग रहा है देख करके। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही रेडियो मधुबन पर, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद भी आ रहा होगा। आज हम चिराग जी और मोना जी से, यानी मोनिका मैम से बातें कर रहे हैं। चिराग सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं, और मोनिका मैम एक कंपनी में जिसका नाम है ईकॉम स्ट्रीट इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। सही कहा मैंने मैम?
2: यस सर, नोएडा बेस्ड कंपनी है
4: जी,
2: और इसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।
4: चलिए तो अब शुरू करते हैं बातचीत मैम, कि ये दिव्य दृष्टि कैसे मिल गई आपको, कि आपने चिराग जी को जब पहली बार मिलने आए तो परख लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया कि भाई ये बंदा तो कुछ करेगा आगे चल करके। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि उस समय आपको ब्लाइंडनेस के बारे में इन जनरल कितना नॉलेज था?
2: सर अब क्या बताऊं सर, ये कहानियां भी ऐसी ऐसी लाइफ में जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है आपके साथ, और स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि ये सब ईश्वर ने कैसे किया, क्यों किया। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो एक टीवी सीरियल आया करता था जिसके अंदर मुझे उसका नाम भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, बस जरा सी झलक याद है सर। उसके अंदर था कि कुछ ऐसा शहर था जिसमें सिर्फ ब्लाइंड्स रहा करते थे, और अच्छा उसके अंदर जिसको दिखाई देता था उसको उस शहर में रखना क्राइम था। ठीक है, तब छोटे होते आया था कि ब्लाइंड की लाइफ कैसी होती है, मुझे वो देखनी है। अंदर से कुछ ऐसा निकला, और जो भी हुआ लाइफ के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे मिल गई। और जब आप ये बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन क्या था सर,
4: आपको ब्लाइंडनेस के बारे में कितना अंदाजा था जब चिराग जी का रिश्ता आपके सामने आया, क्योंकि रिश्ते जाहिर है और भी आए होंगे, या हो सकता है तैयारी चल रही होगी, तो आपको कितना नॉलेज था? आपने कभी कुछ खुद से सोचा कि यार कहीं ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो अच्छा खासा विजन है, बाद में क्या होगा, या कुछ भी, मतलब आपको आइडिया था क्या?
2: सर इतना आइडिया था कि विजन थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो स्पेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा इतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना हो जाएगा, ये कैसे ऐसा हो जाएगा। पर ये था कि शायद इलाज आ जाएगा 2 साल में 3 साल में तो ठीक हो, जैसा चिराग ने बताया कि डॉक्टर्स कहते रहे थे 2 साल 3 साल में ठीक हो जाएगा।
4: हम समझ रहे हैं 25 साल पहले की उन भावनाओं को फील कर रहे हैं, और थोड़ा मुझे लगा आप इमोशनल भी हो रहे हैं शायद, लेकिन खैर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
2: बट सर कभी इनकी ब्लाइंडनेस को लेकर इतना फील नहीं हुआ कि ये दिखाई नहीं दे रहा है या काम नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपनी इस चीज को कमजोरी कभी नहीं माना सर, हमने हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में ही लिया कि चलो जो भी हुआ है, लेकिन हमें दूसरी चीज हमेशा दी है भगवान ने, एक चीज ली है तो दूसरी दी है। तो इनका जो ब्रेन है ना सर, वो आज नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा सही है, जो देख पाते हैं उनसे ज्यादा इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया सर। मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ सर।
4: बहुत अच्छे मैम। और जब सर का रिश्ता आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था मैम? उनको भी तो पता होगा ये सब।
2: हाँ उनको भी पता था, बट ऐसा इतनी वीक नहीं थी ना सर उस वक्त इनकी आईज।
4: नहीं आज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैम प्लीज आप अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, आज हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत अच्छा विजन है मैम, उनकी मतलब यूं समझिए कि एक आंख बिल्कुल सही है, एक आंख थोड़ी सी खराब हो सकता है वो, उन तक को भी, और जॉब की तो फिर बात मत करिए, जॉब तो बहुत अच्छा है ही मान लीजिए, फिर भी उनको जब वो रिश्ता लेकर के जाते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि यार ये ब्लाइंडनेस आड़े आ जाती है हमारे, तो उस केस में आपके यहाँ भी तो ये कुछ अवेयरनेस इस बारे में थी या नहीं? कुछ भी ऐसा सोचा नहीं आप लोगों ने, सब ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम।
2: एक्चुअल में सर देखो, मम्मी पापा का उस वक्त आप भी जानते होंगे 25 साल पहले इतनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती थी लड़की के साथ, राइट?
4: बिल्कुल सही है मैम।
2: और जो रिश्ता आया था वो मेरी कजन मौसी थी, यानी कि मेरी मम्मी की कजन सिस्टर थी वो
4: जी।
2: और चिराग की चाची लगती थी वो, तो अच्छा, हमारी फैमिली के अंदर ही ये रिश्ता हुआ था। उन लोगों में आपस में क्या बात हुई सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट उन्होंने ये था पूछा था कि तुम ठीक हो, खुश हो इस रिश्ते से? तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत एजुकेटेड है पूरी फैमिली, एक्चुअली में एजुकेटेड थी। जैसे हम कहते हैं ना सर, रिश्ता सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, पूरे खानदान से होता है, पूरी फैमिली से होता है सर।
4: ये बहुत सही कहा मैम आपने, बहुत सही कहा जी।
2: तो इनकी मम्मी पापा, इनकी दोनों सिस्टर, सबका नेचर बहुत ही, आज भी मैं कहती हूँ कि वो जबरदस्त था। और मैं जब मेरे फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे, तब भी मैं उनको कहा करती थी, इवन कोई भी रिलेटिव घर पे आता था, मैं हमेशा कहती थी कि शायद मैं भगवान में एक टाइम गलती निकाल सकती हूँ, लेकिन अपनी फादर इन लॉ मदर इन लॉ में नहीं निकाल सकती सर, वो मेरे लिए लेवल पे थे सर।
4: बहुत खूब मैम।
2: और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया सर कि जो मैंने, मतलब हम लोगों ने ये रिश्ता लिया है या यहाँ शादी की है ना सर, 1% भी पछतावा नहीं है। और शायद ऐसा घर परिवार बहुत ही किस्मत से मिलता है, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गंगानगर से थी, राजस्थान में आपको पता है इतना नहीं होता हमारे यहाँ लड़कियों पे, पर इन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया, कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारी बहू है, एक बेटी से भी ज्यादा दर्जा दिया सर हर चीज में। तो फैमिली से हुआ है सर ये जो शादी हुई है, पर्सन से नहीं हुई सर।
4: बहुत खूब मैम। ये जॉब आप पहले से करते थे या ये भी शादी के बाद ही शुरू हुई आपकी जॉब?
2: ये शादी के बाद ही सर, हम दोनों ने एक साथ ही जो भी किया अपनी ग्रोथ एक साथ किया सर। बहुत चीजों में चिराग ने मेरी हेल्प की है, बीएड एमएड करना, हम लोग एक साथ एक कॉलेज में जाते थे, लोग हमें हस्बैंड वाइफ कहते ही नहीं थे, कहते तुम तो फ्रेंड्स लगते हो, लगते ही नहीं हो कि तुम ऐसे हो। हमारी नोक झोंक सब कुछ ऐसे होती थी जैसे फ्रेंड्स में होती है सर। एक साथ बैठना, एग्जाम्स देना, मतलब टोटल हम लोगों ने एक साथ ग्रोथ की है। और आज बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं सर, मेरी ट्विंस बेटियां हैं और बेटा है, और ट्विंस लड़कियों ने यूएस में फ्लोरिडा से एमएस कर रही है सर वो दोनों।
4: क्या बात है मैम, ग्रेट, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, और सच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप दोनों को, आपकी फैमिली को यूं ही मिलती रहे। ये जो कंपनी है ये आप ही ने स्टार्ट की थी मैम?
2: सर ये की थी हमारे फादर इन लॉ ने रिटायरमेंट के बाद।
4: अच्छा ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए हम चिराग जी के पास जाएं उनसे पहले कि इस कंपनी का कामकाज क्या रहता है, आप करते क्या है दरअसल?
2: सर ये IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन सर।
4: अच्छा एंड्रॉइड आईफोन सबके लिए?
2: हाँ यस सर सबके लिए, वेबसाइट बनाना ये सब करते हैं।
4: आपने भी डेवलपमेंट सीखा मैम या सब बाकी लोग करते हैं? डेवलपर
2: सी टीम रखी हुई है सर हमने।
4: ओके ओके,
2: तो 30-50 लोगों की टीम है सर, कुछ यूएस के अंदर भी है, यूएस बेस्ड भी है कंपनी, यूएस से ही हमारे क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, इंडियन क्लाइंट्स नहीं आते सर।
4: तो चिराग जी के लिए भी कुछ बनाया मैम एपी के?
2: सारे चिराग जी का ये सर, और करेंगे सब बन जाएगा।
3: मैं राष्ट्रपति
4: नहीं नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐप
2: नहीं, ऐसा अभी रिक्वायरमेंट नहीं आई चिराग जी को
4: पूरी कंपनी है
3: मैं प्रेजेंट हूँ अवार्ड देने के लिए।
4: मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी कंपनी है चिराग जी के पास,
2: right,
3: पोस्ट बनाई है मेरे प्रेजेंट।
4: चलिए, तो मैं पूछ रहा था सर कि जब शादी की बात चलने लगी घर परिवार में, तो क्या डिस्कशन मतलब रहते थे, ये कभी डिस्कशन में था पॉइंट ब्लाइंडनेस वाला, या एज अ नॉर्मल जैसे आपने कहा राजकुमारों की तरह रहे हैं तो फिर मतलब वैसे ही सब कुछ चल रहा था।
3: दूसरी बात है, जब कभी कोई चीज लेने में दिक्कत आई नहीं आज तक, तो लड़की लेने में कहां से आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
4: बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में कोई भी डिस्कशन इस तरह का नहीं हुआ?
2: नहीं सर, चिराग ओनली 23 के थे और मैं 22 की थी सर।
4: जी मैम।
2: तो बचपन में ही होगी, चिराग तो फन में बस देखने आए थे कि फर्स्ट टाइम चिराग का था लड़की देखने आने का, और फर्स्ट टाइम ही मेरा था सर। सेकंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था, चिराग को ये था कि मैं जाऊंगा, लड़की पसंद आएगी तो ठीक, नहीं तो मैं रिजेक्ट करके आ जाऊंगा।
4: पहली बार में दोनों को दोनों पसंद आ गए।
2: यस सर।
3: जस्ट कहते ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन।
4: यस, बिल्कुल सही कहा सर, ये वाकई में मतलब लगता है, आप दोनों को और इस तरह की जोड़ियों को देख करके ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच कहा है कहने वाले ने। जी, तो चिराग सर आपका क्या ओपिनियन था मैम से मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद? बेसिकली फिर इंटरव्यू में मतलब मार्क्स वार्क्स कितने दिए आपने?
3: देखिए 3 राउंड्स हुए।
4: अच्छा।
3: एक के बाद एक अलग अलग ड्रेसेस में आई मोनिका, ठीक है, अलग अलग रूम में बिठाया किया, और काफी सारी पॉलिटिक्स से लेके जनरल लाइफ वगैरह सबके बारे में बातें हुई, डिजीज के बारे में बताया कि मुझे पिगमेंटोसा है, कि इस वक्त आगे डिजीज बढ़ेगी, अभी घर में बाहर थोड़ी दिक्कत आती है, घर में और अपने काम करने में कोई इशू नहीं है।
4: जी,
3: उस टाइम तक यही था। हमने कहा कि ठीक है, बाद में हम हाना का फैसला बाद में करेंगे, चार करने का टाइम रखते हैं। गैप ऑफ अराउंड सलाह मशवरा के बाद में हम दोनों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए पेरेंट्स को।
4: शादी कितने महीनों में हो गई?
3: 7 जनवरी को शायद देखा था ना, और 15 अप्रैल को शादी हुई।
4: ओके 2001।
3: यस,
4: ग्रेट, बहुत खूब। तो चिराग सर फिर मतलब वही बात आती है बार बार, मतलब कि मैम को तो ये उम्मीद थी कि आप कर लेंगे, लेकिन आपको खुद को भी क्या उम्मीद थी कि आप ये सब अचीव कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना लगभग 38-40 की एज में, एक मतलब स्टूडेंट की तरह एग्जाम देने जाना, और फिर उसके बाद भी कॉलेज एजुकेशन का भी एग्जाम आपने क्लियर किया और नेट सेट सब कुछ, मतलब ये आपने खुद को कैसे समझाया?
3: देखिए, लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि रिजर्वेशन होती है हमारे लिए दो चैलेंज के लिए। जब मैं 2010 के अराउंड में ब्लाइंड हो गया, तब इसका क्रेडिट मोनिका को जाता है। मोनिका पापा के साथ बैंक में गई थी, वहाँ पे मांडवी को देखा जो ओबीसी में एज ए पीओ काम कर रही थी।
4: बिल्कुल, मांडवी गर्ग।
3: यस
4: बिल्कुल।
3: उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी एक ब्लाइंड लड़के से मिली हूँ जो बैंक में लगी हुई है, आप उससे मिल कर आओ। तो मैंने उससे टाइम लिया, रेफरेंस से की मिल के आई थी, तो मैंने मुझे कहा ठीक है आप घर पे आके मिल लो, हम दोनों अर्बन स्टेट में रहते थे हिसार में। तो उसके घर जाके मिला, उसने मुझे गाइड किया, सारा बताया, और एक हमारे मदनलाल गोयल साहब हैं जो उस टाइम पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके पास रेफर किया। तो उन्होंने कहा कि आप एमए दोबारा से पढ़ाई शुरू करो, तो उन्होंने कहा एमए में पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई दोबारा शुरू करो। तो और मांडवी ने मुझे गाइड किया एनएबी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, जॉब सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, नेसेसरी कॉन्टैक्ट दिए, टेक्निकल होल्डिंग दी, जो थोड़ा हेल्प की कराने में आई एम ग्रेटफुल टू। और उसके बाद मैं पापा को बताया कि आप इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाओ, और फिर 2010 में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पापा ने बनवाया, पढ़ाई दोबारा शुरू की आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 11 इयर्स। 99 में मैंने IMS गाजियाबाद, जो देश के नंबर 2 कॉलेजेस में आता है, वहाँ से BBA किया था, और उसके बाद में IMT गाजियाबाद, जो देश के टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता है, वहाँ से PGDBM किया था। तो लॉन्ग गैप ऑफ 11 इयर्स आई स्टडीड पढ़ाई अगेन, अपने जैसे बना ने बताया कि सुबह सदर कैफे था, सुबह 4 बजे उठ के ना डेस्कटॉप से पढ़ाई करना, और उसके बाद में 12 घंटे दुकानदारी करनी और फिर रात को आके बेहोश होके सो जाना। 2010 में हम लोग तीन देश के तीन कोनों में घूमने गए थे, मैं और मोना। उसके बाद से फिर दोबारा पढ़ाई का इतना जोर चला, 5 साल तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। 15-16 में हमारी फिर SBI में जब जॉब लगी, उसके बाद से तो फिर नो टर्निंग बैक फॉर आवर टूर्स। वो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ घूमने गए हैं 2010 में और उसके बाद में, और कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं।
2: सर हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 उत्तराखंड के 4 धाम और इंडिया के 4 धाम सर, 51 शक्तिपीठ, 5 केदार, 5 प्रयाग, 5 कैलाश सर, ये सब फिर हमने किए।
4: मैं हैरान हो रहा हूँ मैम, सच बता रहा हूँ मैं। फैमिली भी साथ साथ चल रही है, इधर बच्चे भी छोटे, और अपनी आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस एजुकेशन भी, और जो अचीव करना है वो भी, और अपनी अपनी जॉब को भी मैनेज करना, तो ये सब, और ये जो घूमना फिरना वाला तो एक और नया एंगल, तो ये सब कैसे कर लिया आप लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
2: और सर अभी रिसेंटली हम लोग लद्दाख से आए थे, अब इसमें भी आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ सर। हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ गए थे 2021-22 में आफ्टर कोरोना।
4: यस मैम।
2: तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग एक पैकेज में गए थे सर, तो उसके अंदर था केदारनाथ में सिर्फ विजिट करने और दर्शन करने और वापस आने। तो वहाँ जैसे ही मैं पहुंची तो मेरा मन था कि मैं रात को वहाँ पे नाइट स्टे हो और रात की आरती देखूं और स्नोफॉल हो जाए बहुत ज्यादा कि हमें वहाँ रुकना पड़ जाए। सर 2 बजे हमें कहा कॉल आई कि अब वापस चलना है आप लोगों को, और ये 2:15 बजे बहुत हैवी स्नोफॉल होने स्टार्ट होगी सर, और ऐसा हुआ कि हमारा वहां जाना बंद कैंसिल हो गया कि अब जा नहीं सकते हैं, सब बंद हो गया और यहाँ रात को रुकना पड़ेगा। और हम वहां रुके और रात को आरती देखी सर।
4: डायरेक्ट कनेक्शन है लग रहा है भगवान से,
2: वही तो मैं बोल रही हूँ ना सर, जो जो मैंने सोचा वो हुआ सर। और उसके बाद नेक्स्ट डे मोदी जी आए सर वहां पे, ठीक है, और वो जस्ट हमारे होटल की विंडो के बाहर से हमें दिखाई दे रहे थे।
4: क्या बात है।
2: तो वो अच्छे से हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई सर केदारनाथ, तो वहां जैसे गई तो मैं, सारा अली खान हमेशा आती रहती है यहाँ पे केदारनाथ में और अमरनाथ वगैरह में, तो इस बार मुझे सारा अली खान को देखना है सर। अब ये नहीं करोगे सर, वो मैं मतलब मंदिर से बाहर निकल रही थी और वो एंटर कर रही थी सर, जस्ट एकदम पास से क्रॉस होकर गई, मैं उसको देख नहीं पाई, अलग बात है, बट वो मेरे बिल्कुल पास से क्रॉस होकर अंदर गई मंदिर में सर। अब इसमें उसको देखा नहीं, वो क्रॉस कर गई, पर ठीक है, ये सपना भी महादेव ने पूरा किया सर। अब भी हम 28 तारीख राखी वाले दिन हम वापस आ रहे थे सर, और लेह लद्दाख शक्तिपीठ है, लेह में एक शक्तिपीठ है अगर आपने सुना हो, तो उसके दर्शन करके हम वापस आ रहे थे सर।
4: जी
2: एयरपोर्ट पे सर मुझे सारा अली खान मिली सर, सिर्फ वो और मैं, हम दो ही थे आमने सामने, और मैं उसको पहचान नहीं पाई, मुझे लगा सारा है नहीं है। उसके पास गई, मैंने पूछा आप सारा अली खान हो, कहती नहीं, मैंने कहा नहीं आप हो, बस एक सेल्फी चाहिए आपके साथ, महादेव ने उस वक्त आधा अधूरा मिलाया था आपसे और आज पूरा मिलाया सर। सारा अली खान का गए इत्तफाक नहीं है, ये ऊपर से कॉल है, बस आप ही का आना एक है कि हाँ जो मैंने सोचा वो आज पूरा किया उन्होंने 3 साल बाद। फिर सर चिराग के साथ सेल्फी ली सर हम दोनों ने, सारा
4: क्या बात,
2: हम दोनों के साथ तो सर जो जो जैसा जैसा सोचे है ना सर लाइफ में, वो सब प्री प्लान था सर, वो आज तक होता चला जा रहा है सर। और अब देखिए सर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक ड्रीम था बहुत पहले कि कोई हमारा इंटरव्यू ले सर।
4: अरे गजब क्या बात है, मैंने तो मतलब
2: सब ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
4: गजब मैम, मेरी तो चिराग सर से बात हुई 1-2 मिनट की मुश्किल से, मैंने सर को ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर एक प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। अच्छा थोड़ा वो भी रहता है ना कि पता नहीं लोग कन्विंस होंगे नहीं होंगे, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बताइए आप कि आपका कभी ये ड्रीम था, और हमको, हम तो ऐसे ड्रीम को ढूंढते ही हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते ही हैं कि जो इतने इतने मतलब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में।
2: नहीं सर 10 साल लगे सर ये ड्रीम पूरा होने में, हमारा तो बहुत पहले से ड्रीम था।
4: अच्छा लग रहा है मुझे, और यही हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम लोगों को ये समझा सकें कि जिंदगी का अंत कहीं पर है ही नहीं, बस हमें पहचानने की जरूरत है। वो दरवाजा आपके से जो सामने है, जो शायद नजर भी नहीं आ रहा है, उसको देखना भी है और उसको खोल के आगे बढ़ना भी है।
2: और सर खुशी खुशी लाइफ को जीना भी है,
4: बिल्कुल सही,
2: आपके हाथ में है कि आप लाइफ को किस डायरेक्शन में किस तरीके से जीते हो सर।
4: तो मौना मैम सच बताएं मैम, जब पता चला घर में खबर मिली, न्यूज मिली कि चिराग की जितनी भी रोशनी थी वो पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो गई है, उस दिन को थोड़ा सा याद कीजिए मैम। उस दिन क्या माहौल था, क्या मन में चल रहा था उस दिन, पहले से क्या प्रिपेयर्ड थे या फिर संभाल लिया खुद को?
2: सर ये एक्चुअली में इनकी आईज अब बहुत स्लो स्लो गई है ना सर।
4: नहीं एकदम से, जिस दिन अब आज जैसे टॉकिंग सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत पड़ती है सर को ना, लेकिन एक जमाना था जब सर अपनी आंखों से फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर सब एक्सेस कर रहे थे।
2: नहीं सर वो एक्चुअली भी ये फोन आए ही बहुत लेट है ना सर, तब तक तो विजन चली गई थी ना सर, तो ये स्टार्ट तब तक तो कीपैड का फोन था तो
4: इतना। जब आपकी शादी हुई तब तक तो सर को ठीक ठाक दिखता था, अच्छा खासा दिखता था, लेकिन एक दिन तो आया होगा ना 2005 6 7 8 कभी तो आया होगा जिस दिन पूरी तरह से पता चला कि नहीं अभी हो गया, तो उस दिन कैसे संभाला आपने खुद को मैम?
2: सर ये आपको ऐसा लग रहा है सर, बट हम लोग अपनी फैमिली में और इन सब चीजों में इतना बिजी थे ना सर, वही बात है ना, कभी इस चीज को हमने नेगेटिव लिया ही नहीं सर।
4: नहीं सवाल नेगेटिविटी का नहीं है मैम, सवाल है कि एक ऐसी चीज जो एक हम एक उम्मीद रखते हैं ना, चलो यार जितनी है उतनी रह जाए, भगवान करे जितनी रोशनी है उतनी तो रहेगी, और खासकर आप जबकि एक अलग बैकग्राउंड से आए थे और आपके लिए ये ज्यादा थोड़ा सा था ना कि भाई इतनी भी रह जाएगी तो बहुत है, एक होता ही ना हम लोग अच्छे की उम्मीद तो करते ही है ना मैम हमेशा से, उस लिहाज से हम ये पूछते हैं।
2: फैमिली का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, अपना खुद का है कि ये उम्मीद थी कि डॉक्टर्स ने कहा है 2 साल बाद विजन आ जाएगी, तो
4: एग्जैक्टली वही
2: एक बार लगा कि अब क्या होगा कि कैसे करेंगे मैनेज, नहीं दिखाई देता तो आगे बच्चे भी हैं सब कुछ है तो कैसे होगा सब कुछ, तो थोड़ा टाइम आई थिंक अब उतना याद भी नहीं है कि एक बार तो फील हुआ सब कुछ। पापा मम्मी एक्चुअली में फैमिली पूरी साथ में थी ना, तो पापा मम्मी से भी डिस्कस हुआ तो बस ये था कि ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है, बट एक उम्मीद जो होती है ना कहते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है, डॉक्टर्स के आप चक्कर काट रहे हो सब कुछ कर रहे हो, फिर वो आपका माइंड तैयार होने लग जाते हैं सब चीजों के लिए।
4: जी मैम
2: वो ही था कि डॉक्टर्स पे घूमते घूमते ऑटोमेटिक माइंड सेट होता चला गया सर, फिर लाइफ को अलग डायरेक्शन देनी थी तो वो देनी स्टार्ट कर दी थी सर।
4: बहुत खूब मैम, बहुत
2: भी पहली बार जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तब उनको भी लगा कि हमारे पापा दूसरों के पापा से थोड़ी डिफरेंट है। मैंने बच्चों सेक्टर में पूछा कि तुम्हें जब पापा का पता लगा तो तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि हमने तो कभी बताया नहीं, बच्चे अपने आप ही देखेंगे जो भी देखेंगे।
4: बिल्कुल सही है मैम।
2: तो कहते हमें भी एक बार लगा, बहुत छोटे होंगे एलकेजी यूकेजी वगैरह में, तो कहते मामा एक बार हमें लगा था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा बड़े आराम से चल रहे हैं, हमारे पापा को हमें बताना पड़ रहा है कि इधर नहीं इधर से चलो, तब हमें पहली बार लगा कि पापा को दिखाई नहीं देता। तो बच्चे थे तो बच्चों के मन में बस ये चीज आई, उसके बाद बच्चों ने बहुत केयर करनी स्टार्ट कर दी, इवन अपने लगा बहुत छोटी एज से फर्स्ट क्लास से बच्चों ने, तो आज तक बच्चे अपने पापा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं सर, मुझसे भी ज्यादा।
4: क्या बात है, बहुत खूब मैम, बहुत जबरदस्त। कभी कोई शिकायत रही मैम इन 25 सालों में किसी से भी, लाइफ से या ऊपर वाले से, या कोई रिग्रेट रहा मैम?
2: सर मैंने तो थैंक्स ही कहा है ऊपर वाले को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे सारे सपने चिराग शायद आईज नहीं है इस वजह से ही पूरे कर पाए, मे भी ऐसा भी हो सकता है सर, बट उन्होंने सारे सपने पूरे किए सर हमने, तो मुझे कभी रिग्रेट फील ही नहीं हुआ सर, और मैं तो थैंक्स करती हूँ कि जितना भी जो कुछ भी आज मैं हूँ या जो भी मुझे मिला है वो सिर्फ चिराग की वजह से मिला है सर।
4: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो चिराग सर
3: जी,
4: आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर तो खैर हैं ही हैं, तो फैमिली के अलावा, फैमिली में तो आपके जलवे हमको पता चली गए मैडम के माध्यम से, लेकिन अपनी कॉलेज में कैसे आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होने के बाद तो और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं।
3: किस्मत जी, टेक्नोलॉजी ने लाइफ हमारे लिए काफी आसान कर दी है,
4: राइट सर।
3: ये चैट जीपीटी, क्लाउड एआई वगैरह आने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, डेस्कटॉप के ऊपर में व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी, जीमेल्स, एक्सेल, इनसे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ईजी हो जाता सारे ईमेल्स को पढ़ना, उनके लिए अलग अलग लेटर्स बनाने, ड्राफ्ट सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स बनाने, और जितने भी अब पहले हमारे लिए इश्यूज आते थे कि जो

0: सकते हैं और अच्छा काम कर सकते
1: हैं। हिम्मत हार गए हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा उनको भी गाइड कीजिए।
0: देखिए, एक हमारे फैमिली में है स्वामी रामदेव जी, हमारे परिवार समूह उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक माँ आई छोटे बच्चे को लेके कि बता जी इसके सिर पे हाथ रख। बाबा जी ने कहा उससे क्या हो? तो लेडी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि इसे बोलो प्राणायाम करे, कपालभाति करे, उसे ठीक होगा, मेरे हाथ रखने से नहीं हो। तो वही खुद के मरे बगैर स्वर नहीं मिलता।
1: मोटिवेशन
0: हम कितना भी दे सकते हैं लोगों, लेकिन चलना तो इंसान को खुद ही पड़ेगा। कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जितनी हो सकता है सभी की हेल्प करता हूँ, बुक्स देता हूँ, अलग अलग लैपटॉप्स भी देता हूँ, दान भी करता हूँ, गाइडेंस भी करता हूँ। कोई सफल हो जाता है, कोई नहीं भी हो पाता उनके अंदर में से, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन है आगे बढ़ने की जील, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहते हैं अरिस्टोटल को, जो सारे ज्ञान अरिस्तो पर ही जाते हैं। तो उसने कंसेप्ट दिया था यूडोमिया, फाइनल कॉज या पर्पस, जो कार्य करने का। जब तक आपका यूडोमिया क्लियर नहीं है, पर्पस उद्देश्य क्लियर नहीं है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। उसी चीज को आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स ने अपना शिव खेड़ा ले लें, जिन्होंने अपना गोल दिया हुआ है सेट योर टारगेट प्लान एक्ट एंड गेट। आजकल जो नए यूट्यूबर्स मोटिवेशन आए हैं, उन्होंने इसका नाम दिया प्लेसिबो कंसेप्ट दिया है इसको, कि आप सोचो उसे कर लो, ट्रेड्स सीक्रेट का नाम दिया है, रहस्य मोटिवेशन जो लिखते हैं, सारे के सारे अरिस्टोटल फिलोसफी से ही निकले हैं सारे मोटिवेशन कंसेप्ट। हम तो ये चीज मानते हैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं कि फोकस ऑन फोर डीज। डी, पहला डी आपका डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या होना चाहिए, ये सबसे पहला है क्या मुझे लाइफ में इस तारीख तक ये चीज करनी है, विजुलाइज करनी लाइफ को चीज को। देन डायरेक्शन, उसके लिए प्लान बनाए। देन डेडिकेशन, यानी कि समर्पण करें। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डी है इसके लिए डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड दैट कम्स विद पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, कि अपना टारगेट बनाए। क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि जब 2010 से लेके 15 तक, जैसे मैंने बताया 5 साल हमने कठोर तपस्या की है पढ़ाई के लिए और करने के लिए, सुबह 4 बजे से लेके 5 साल तक कठिन तपस्या की है। उस टाइम पे मेरी कंप्यूटर में एक एक्सेल रिपोर्ट आती थी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया करता था, क्या आज मैंने ये करना है, और लिखता था उसके अंदर में कि ये शिवखेड़ा की बुक पढ़ के जीत आपकी, नई दिल्ली से मंगवाई
1: जीत आपकी
0: वो किताब, उसी से मुझे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन पढ़ने के लिए मिली। और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, अपने विद्युत चलन साथियों को कि, और सभी को भी, कि वो किताब जरूर कंठस्थ करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मान लेता था कि ये टारगेट पूरा हुआ तो अपने आपको ये रिवार्ड दूंगा, टारगेट अगर पूरा नहीं हो पाया तो अपने आपको पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट हो सकती थी 10 उठक बैठक लगाऊं, एक्सरसाइज करूं, खाना कम खाऊं, 2 टाइम दो दिन 2 घंटे मोबाइल को दूर रखूं, अलग अलग तरह से पनिशमेंट्स अपने आपको दें और अचीव कर लूं तो रिवार्ड। तो ये डिसिप्लिन, तो ये जब तक आप 4 डीज नए लाइफ में नहीं अपनाएंगे, हर एक व्यक्ति के लिए डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तब तक
1: क्या बात,
0: गोल को पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये पालोगे तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो सर, सोसाइटी के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं घूमने फिरने के अलावा मैम के साथ, या नहीं जा पाते हैं?
0: हाँ,
1: ब्लाइंड फील्ड के प्रोग्राम्स होते हैं,
0: ब्लाइंड समाज के प्रोग्राम्स में, तो अभी का आपका ही प्रोग्राम होगा जिसमें हम जाएंगे पहली बार मुंबई में,
1: ये हमारी खुशकिस्मती होगी। चलिए, तो बहुत बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप दोनों की जर्नी के लिए बयान करने के लिए, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो चिराग सर, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या मन में आता है, मतलब आज तो सब कुछ है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया हो, अब आप जब अपने आप को देखते हैं, अपनी जर्नी को देखते हैं, तो क्या महसूस होता है?
0: मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ के 11 साल वेस्ट हुए इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से,
1: राइट,
0: पढ़ाई के बाद में मुझे, जबकि हम मम्मी प्रिंसिपल स्कूल के अंदर में, हमारे रिश्तेदार सभी, कोई सेंट्रल बैंक में मौसाजी मैनेजर, कोई बाकी मामा जी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल प्रोफेसर, पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना जुलना, जब हम लोगों को नहीं पता था कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या रिजर्वेशन होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आम इंसान को कैसे पता हो।
1: बिल्कुल सही है सर,
0: मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सफरिंग हुई वो रुको ना हो,

0: बहुत सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तो यही एक जरिया होता है सर इस तरह से, जब आपको लोग सुनते हैं या आगे भी सुनेंगे तो ऐसे ही सीखने को मिलता है। तो सर आपको अभी तक लगा कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर कि यार ब्लाइंडनेस की वजह से मैं इस चीज में पीछे रह गया?
2: वो तो अनगिनत जगह पर है, झूठ नहीं
1: अच्छा
2: बोलूंगा कि
1: जी
2: हम कह
1: जी
2: दें कि हम ये कह लें कि जी बिल्कुल हम सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, नो डिपोर्शन। जो असलियत है वो असलियत है यही है कि ब्लाइंड व्यक्ति को लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हम किसी को पहचान नहीं सकते, इंडिविजुअली चल फिर नहीं सकते, बहुत सारे काम जो लोग कर सकते हैं उनकी तरह से नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर साइट्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, रास्ते हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों का दृष्टिकोण हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, रिश्तेदारों का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता समाज के अंदर में। सो चैलेंजेस बहुत हैं और हमें हर काम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर कैपेबल। और एक ही स्टेज आती है जब इंसान प्रूव करके थक जाता है कि वाई टू प्रूव एंड टू हुम टू प्रूव, किस लिए प्रूव करें कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं बिता सकते हैं। हमें जो इंटरनल खुशी होती है वो चाहती है कि औरों को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लाइफ अच्छे से बीत सके, हमारे लिए अपने व्हाट्स इनफ फॉर अस, ये फाइंड करें कि हमारे लिए क्या इनफ है, क्या अच्छा है, वो फाइंड करें और लाइफ को और मीनिंगफुल और प्लेजेंटली कैसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। यूं हम लोगों को खुश करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये काम कर रहे हैं, वो काम करने करेंगे, फिर तो हम कोलू की बेल की तरह गोल गोल घूमती रह जाएंगे पूरी जिंदगी में। उस चीज में रैट रेस में मैं नहीं पड़ा। जब मैं छोटा था तो मेरे दीदी ने एक घोड़े की फोटो लगाई हुई थी रूम के अंदर, पोस्टर का, भागता हुआ घोड़ा और एक पैर उसको मुड़ा हुआ था, और टैगलाइन लिखी हुई थी ईच मस्ट फाइंड हिज ओन रोड। तो हमें अपना लाइफ, अपने रास्ता खुद फाइंड करना है, खुद देखना है।
1: वो देखना बिल्कुल।
2: औरों की तरह तो लोग तो पता नहीं क्या काम करते हैं दोस्तों का, हम औरों की रीस करेंगे तो फिर तो रीस ही करते रह जाएंगे।
1: बिल्कुल सही है,
2: दैट्स इट, लाइफ एंजॉय करें, अच्छे से जिए, सभी के लिए कहूंगा।
1: बहुत जबरदस्त। सर एक बात छोटी सी, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाह रहा हूं कि 7 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो टाइम था 2001 में, उस दौरान बातें वगैरह होती थी आप लोगों की?
2: मोबाइल तो थे नहीं, अमान जी तब तक लॉन्च किया नहीं था अपना फोन,
1: बिल्कुल।
2: वो सिर्फ तो मूवी आई थी एक, उस तरह से
1: पहली पहली
2: पे 180 रुपए का बिल,
1: बिल्कुल
2: 200 रुपए का बिल, 300 रुपए का बिल,
1: दीपक और आरती
2: तो बस वही
1: जी,
2: हम SDPC वाले को बिल पे किया करते थे,
3: 10,000 रुपए का बिल आया,
2: 10,000 रुपए का फोन का बिल जाता था, फिर शूट हुआ करते थे।
1: ये 2001 की बातें सोचता हूँ, 10,000 का बिल और केवल 3 महीनों में,
2: ये तो शूट
3: एवरी मंथ था,
2: महीने का है।
1: अच्छा महीने का, ओ माय गॉड।
3: बहुत
1: तो सर वो
3: करते थे सर,
1: जी,
3: लेटर्स बहुत आया करते थे, कैसेट्स रिकॉर्ड होकर आया करती थी सर,
1: अच्छा क्या बात है,
3: ना दिन का पता था ना रात का पता था सर।
1: माय गॉड, सब कुछ ही मतलब होता था, सारे ही, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था तो मतलब कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ होता
3: तो एक से एक सॉन्ग आया करते थे सर रिकॉर्ड होकर कैसेट्स में,
1: मैडम
3: कॉलर आने में टाइम लगता था।
1: कौन से कविताएं भी आती थी कभी, शेरो शायरियां वगैरह भी आती थी कि नहीं?
3: वो सर लिखी हुई आती थी लेटर्स में,
1: अच्छा लिखी हुई आती थी,
3: सब टाइप करके भेजते थे सर लैपटॉप से,
2: indiapost.com,
3: indiapost.com से।
1: क्या बात है, गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए तो अब आप दोनों से बात करते करते तो कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला हमको तो, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तो मैं 2-3 घंटे और बातें कर सकता हूँ आप दोनों से।
3: सर अभी तो बहुत कहानियां हैं, वाकई में पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी सर हमारी,
1: बात नहीं खत्म होंगी, कोई नहीं, मुंबई में सुनेंगे बाकी की कहानियां, मुंबई में सुनेंगे आप दोनों से।
3: यस सर।
1: एक कुछ ऐसी छोटी छोटी मस्ती भरी बातें आप दोनों से कर लेते हैं कि दोनों में जब कभी कुछ हो जाता है, ये है गड़बड़, तो सॉरी कौन बोलता है पहले?
2: देखिए आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस,
1: अच्छा,
2: एंड आई हैव माई वाइफ्स परमिशन टू से सो।
1: जी
2: वाइफ इज ऑलवेज राइट,
1: अच्छा। तो इसका मतलब आप बोलते हैं,
2: अपना अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं।
3: पर कोई भी बात हो जाए, चाहे गलती मेरी हो ना हो, बस मैं इनसे एक ही बात बोलती हूँ, आपको याद है ना मैं कौन हूँ, आपकी वाइफ, मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती, तो आप क्यों उम्मीद करते हो
1: कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ रॉन्ग देन अप्लाई रूल फर्स्ट।
3: यस।
1: अच्छा, तो कहीं अगर जाना हो घूमने तो किसकी जगह को अप्रूवल मिलता है, जो फाइनल कौन करता है कहाँ जाना है ये आप दोनों में से?
3: एक्चुअली ये होता है कि टिकट्स बुक सब कुछ बुक, बस ये बताया जाता है कि आपको 8 तारीख को वहां चलना है मेरे साथ।
1: क्या बात है, जवाब मिल गया मतलब मुझे।
3: इनके कॉलेज का सब पूछ लेती हूँ कि कब छुट्टियां आ रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे हैं। अभी 9 सितंबर का इनका बर्थडे आ रहा है सर, तो हमने ये कहा इनसे कि 9 को हम वृंदावन चलते हैं, प्रेमानंद जी से मिलकर आते हैं और आपका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो सारी प्लानिंग होगी सर, बस इनसे इतना बताना था कि चलना है, अब आप अपना मैनेज कर लेना सर। कहते हैं ओके ठीक है।
1: सही है, चलिए तो सर को एडवांस में बर्थडे के लिए ढेर सारी विशेस, और आप लोग ऐसे घूमते फिरते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहें। मैम ये बताइए कि आपके बनाई हुई कौन सी डिश सर को सबसे ज्यादा पसंद है?
3: सर दाल बाटी चूरमा।
1: अरे वाह क्या बात है, राजस्थानी सूरमा।
3: सर
2: और गट्टे की सब्जी झरने वाली।
1: ओके अच्छा मैम ये बताइए कि मूवीज का शौक है कि नहीं सर को?
3: सर को मूवीज का बहुत शौक है सर, हमने बहुत शादी के बाद हर हफ्ते एक मूवी देखी है सर हमने।
1: अब तक सर को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आप बताओ?
3: अच्छा मैं बताऊं सर, इनको सबसे अच्छी लगती है शोले, शोले के हर इनको पसंद है सर, जबरदस्त लगती है वो मूवी। और इनकी फेवरेट हीरोइन है रवीना टंडन सर।
1: ओहो टिप टिप बरसा पानी है। क्या बात है, ग्रेट। तो चिराग सर आप भी बता दीजिए, इंडिया में अभी कौन सी ऐसी जगह है जो मैम नहीं गई हैं और उनको जाने की बहुत इच्छा है?
2: शक्तिपीठ का चल रहा है, काफी सारे शक्तिपीठ हम कवर कर चुके हैं, कुछ शक्तिपीठ रह गए हैं, अभी मुंबई आ रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं कि अगर पॉसिबल नासिक भी कवर कर लेंगे और शक्तिपीठ।
1: अच्छा सब जगह जाने का इरादा है आपका?
3: ऑल इंडिया सर।
1: ऑल इंडिया क्या बात है, ग्रेट।
2: फिर कामाख्या मंदिर आसाम वहां पर भी जाना है। काफी जगह लंबी लिस्ट।
1: अच्छा लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी ऐसी जो जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि बस कहीं और जाए या ना जाए यहाँ जरूर चलना है सबसे पहले?
2: फिलहाल तो बरसाना जाएंगे।
1: अच्छा बरसाना, ओके ठीक है। और मैम का फेवरेट कलर, मैम का फेवरेट कलर?
2: कलर आजकल नजर तो आते नहीं, फिर भी यहाँ तक मुझे याद पड़ता है फेवरेट कलर ब्लैक तो रहा नहीं, मैरून टाइप में काफी पसंद करते थे कपड़े।
1: सही है, सही कह रहे हैं।
3: यस सर राइट।
1: चलिए मतलब सर को याद तो है अभी, देखिए आपकी पसंद के बारे में। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। चिराग सर अगर एक सेंटेंस में मैम के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
2: सिर्फ इतना कि मोना यू आर ग्रेट, यू हैव मेड माय लाइफ एंड तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी सलाहकार हो, फ्रेंड हो और तुमने ही मेरी लाइफ को काफी अच्छा बनाया है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कहीं अंधेरों में खो चुका होता। तुमने मुझे मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पहचाना, मोटिवेट किया, गाइड किया और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो थैंक्स कहना भी बहुत छोटी चीज होगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए।
1: बहुत बहुत खूब बहुत खूब। मोना मैम अब आप भी कुछ कह दीजिए, एक सेंटेंस में अगर सर की लाइफ को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे?
3: ठीक है सर, अब सर की लाइफ को तो मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी सर उनके लिए।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर।
3: एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
3: करसते रहेंगे हम जन्मों जन्मों तक, एक शुक्रिया प्यार को इतने प्यार से निभाने के लिए।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह। तो सोचता हूँ बहुत बहुत बहुत जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 94 14 15 14 15 पर। और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप दोनों क्या मैसेज देंगे?
3: मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी निराश नहीं होना, उसमें भी उम्मीद की रोशनी जरूर देखना, और भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। हमेशा आगे बढ़ते रहो अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ।
1: और चिराग सर आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सिंपल, खुश रहो, अपने ध्यान समस्याओं की जगह अपॉर्चुनिटीज पे लगाओ, सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। चिराग सर और मोनिका मैम बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हमराही प्रोग्राम का इंतजार करते रहें।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदारी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 17 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त और सर्विस के प्रति है। बाबा कहते जो बच्चों की धारणा अच्छी होती है वह सर्विस में भी आगे रहते हैं। दूसरा, जिनकी धारणाएं ठीक नहीं है अर्थात जिनके लक्षण ठीक नहीं है, कोई ना कोई उल्टे कर्म करते रहते हैं तो सर्विस में उछल नहीं आती है। या तो बाबा कहते अशुद्ध अहंकार में रहते हैं या फिर इस देह और देह की दुनिया में कहीं ना कहीं ममत्व समाया हुआ है, लोभ है, तो मोह और लोभ के कारण भी सर्विस में उछल नहीं आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब ये दुनिया होपलेस केस है, समाप्त होने वाली है, तो तुम सब तरफ से ममत्व मिटा करके माम एकम याद करो। जिस तरह दुनिया के अंदर भी कोई बहुत उच्च पद की प्राप्ति करते हैं जिस्मानी पढ़ाई से, इसी तरह ये रूहानी पढ़ाई से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद श्री लक्ष्मी श्री नारायण का प्राप्त कर सकते हो। तो पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है। और चौथी बात जो बाबा ने बताई, खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी हमेशा बनी रहे क्योंकि तुम इतना ऊंचते ऊंच देवता बनते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माम एकम याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर है, पहला कारण, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं इसलिए सर्विस नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण बाबा ने बताया, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते हैं। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं और जो त्योहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं, शिव के पुजारी बहुत है, रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान। कहते भी है पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं है। शिवाय नमः भी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े।
तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है। तो खुशी हमारी कभी जानी नहीं चाहिए। लिखते भी रहते बाबा, जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। कोई भी तकलीफ भी हो तो भी बाबा कहे तुम्हारा चेहरा खुशनुमा हो, क्योंकि तुम्हारी खुश नसीबी खुश किस्मत अभी बने हैं। हम बाप के बने हैं ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बल लिखते हैं हमको निश्चय है। बाबा को हम जानते हैं फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसे बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को, उदाहरण भी बाबा कितना सुंदर देते, जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना, मैं राजा का बच्चा बनता हूं। जब गरीब का बच्चा शाहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना, जान जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो है फिर भी 1 जन्म की बात। यहां बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। बाप ही समझाने देते हैं मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो, मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। पतित पावन है ही एक पाप। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात ये लिखाओ। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है। तब लिखा है, बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। यह तो समझाना है कि दो बाप हैं। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहे कभी भी ये कहना नहीं है भगवान आया हुआ है। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नर्क का विनाश होना है, उसकी भी निशानी ये महाभारत लड़ाई है।
बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझेंगे नहीं, ढिंढोरा पीटते रहते हैं। ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं, तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पढ़ते हैं अपने बच्चों से। हाँ बाबा, ये बात भारी मन से कहते होंगे, अनेक प्रकार के विघ्न भी पढ़ते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वालों ने आपे ही अपने को चमाट मारी है ना। वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हम हिंदू है, अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपने धर्म की ग्लानी शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए

और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, ये आंतरिक युद्ध है। यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उसकी विजयी हुई, उसमें नाम से कृष्ण का दे दिया है, वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध। बाप बच्चों को कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं, बाप को याद ही नहीं कर सकते। समझते भी है, हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूं। कहीं महसूस भी करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाप कहते दे सहित दे के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, मारो मतलब भूलो। कहते आप मुए मर गई दुनिया, ये बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो। एक बाप को याद करो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर इससे ममत्व मिटाना होता है। फिर उनको कहते राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होने ही है, सब मर जाएंगे, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वह तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहां तो एक की बात नहीं है, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूं, मामेकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहते हैं। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, तो फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं, यहां तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसीलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठकर करता हूं, ये तो सारी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाप कहते हम कभी कृपा आदि नहीं करते, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा कहते वास्तव में दूसरे से कृपा मांगनी नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कृपा करनी है अच्छे कर्म करने से। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है, बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं। बाप भी कहते हैं वह ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे, गाया हुआ है चढ़े तो चाक

बैंकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत उच्च मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ भी कम नहीं है, लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है, विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इनमें क्या मोह रखना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। तुम जानते हो इस भंबोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझाओ। ये शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा देते हैं, संगम पर ही ये वर्षा उनसे मिला हुआ है। यह समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझाने आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हो। इन्हों को ये राज्य कैसे मिला? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा ये ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले, जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते हैं, सर्विस पर भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बाबा कितना अच्छी तरह से बैलेंस में रहकर कैसे चलना है वो भी सिखाते हैं। ऐसे लिख कर भी देते हैं, फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दिए को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं। तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय को यह नहीं कह सकते कि हम पावन है।
पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है, लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योगयुक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अपने को सदैव दाता अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। तभी आपकी मूरत में ऐसी झलक होनी चाहिए जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित न रहे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वाले में जो फलक और झलक रहती है, अभी उन संस्कारों को इमर्ज करो। अच्छा,